कन्नी सुत कन पहला इतबारी खाए नानक हंसादमी बदे जमपुर जाए महला पहला सबो सुत भरम है दूजे लगे जाए जमन मरना हुक्म है पहने आवे जाए खाना पीना पवित्रा तुरख संभाए नानक जिनी गुरमुख बुझे आवा तिना सूत कनाए।

ये आकाशवाणी जी सिंधी सर्विस है 9870 किलोहर्ट्ज़ से तैखा सवाए तमा आकाशवाणी जी सिंधी सर्विस न्यूज ऑन एयर मोबाइल ऐप एंड डीडी फ्री डिश ते बुधी सकंदा आयो। प्रोग्राम शुरू थी चुका है, डिटेल्स कुछ इन तरह है। थोड़ी देर में अवां हमेशा भगत कोराम साहब जन जे मिठड़े आवाज में कलाम बुधंदा, तंहिंखां पोइ अवां हिकु तकरीर बुधंदा, उनवान आहे कारगिल विजय ॾींहुं। तंहिंखां पोइ अवां जनाब सुंदर अगनाणी जो लिखियलु नाटक ॿुधंदा संबंध। इहा अथई असांजे प्रोग्राम जी तफ़सील, तव्हां आकाशवाणी जी सिंधी सर्विस ॿुधी रहिया आहियो। हींअर अचो त भगत कोराम साहब जन जे मिठड़े आवाज़ में कलाम ॿुधूं।

तव्हां भगत कंवरराम साहब जन जे सदाबहार आवाज़ में कलाम ॿुधी रहिया। हीअ आकाशवाणी जी सिंधी सर्विस आहे। हींअर पेश आहे हिकु नंढी तकरीर, उनवान आहे कारगिल विजय ॾींहुं। कारगिल विजय ॾींहुं हर साल 26 जुलाई ते मल्हायो वेंदो आहे। हीउ ॾींहुं साल 1999 जे कारगिल जंग में पाकिस्तानी मदाख़लत कंदड़नि ते हिंदुस्तान जी फैसलेवार सोभ जी निशानदेही करे थो। इहो ॾींहुं फ़क़ति यादि करण लाइ न, पर उन्हनि नज़रियुनि जी अकासी, शुक्रगुज़ारी ऐं उन्हनि नज़रियुनि जी तजदीद आहे जिन लाइ असांजा बहादुर सिपाही विढ़िया ऐं पंहिंजे क़ीमती ज़िंदगियुनि जूं क़ुर्बानीूं ॾिनियूं। कारगिल जंग हमले जो हिकु हिमथ भरियो दिलेराना रदमल हो। साल 1998-99 जे सख़्त सियारे में बाक़ायदे पाकिस्तानी फ़ौजूं कश्मीरी विढ़ाकनि जे रूप में जम्मू ऐं कश्मीर जे कारगिल ज़िले में लाइन ऑफ कंट्रोल LOC पार करे हिंदुस्तानी इलाइक़े में दाख़िल थियूं। इन्हनि स्ट्रेटजिक यानी कि हिकमत अमली पहाड़ी चोटियुनि ऐं विंटेज पॉइंट्स ते कब्ज़ो कयो, जंहिंमें टोलिंग, टाइगर हिल ऐं पॉइंट 4875 शुमार आहिनि। श्रीनगर लेह नेशनल हाईवे NH1A तंहिं लाइ हिकु वॾो ख़तरो पैदा थी पियो, जेको लद्दाख में असांजे भारतीय फ़ौजनि जे लाइ हिकु अहम सप्लाई रूट आहे। हमिलो कंदड़ जो मक़सदु साफ़ हो, लद्दाख खे कटणु, कश्मीर जे मसइले खे बैन अलाक़वामी बणाइण ऐं हिंदुस्तान खे पंहिंजनि शर्तनि ते ॻाल्हियूं करण लाइ मजबूर करणु। इन खां पोइ ज़मीन ते कुझु इंतिहाई बेरहम इलाइक़नि में जंग थी। समूरी समत खां ऊचाई 14,000 खां 18,000 फुट मथे हुई, जिते ऑक्सीजन जी समत तमामु ई घणी घटि आहे ऐं गर्मी पद टेम्परेचर इंतिहाई माइनस में पहुची वेंदो आहे। असांजे सिपाहियुनि खे बर्फ़ीले बीठल ढलाननि ते मज़बूत दुश्मननि खे किलेबंद पोज़ीशन खां हटाइण जे मुश्किल कम खे मुंहुं ॾियणो पियो। अक्सर करे सिधे निशाने ऐं सख़्त गोलीबाज़ी हेठि भारतीय सिपाहियुनि मुंहुं ॾिनो। इहा न फ़क़ति दुश्मन ख़िलाफ़ जंग हुई, पर कुदरत जे ज़ालिम ताक़त जे ख़िलाफ़ पिण जंग हुई। हिंदुस्तानी हथियारबंद फ़ौजनि ऑपरेशन विजय जे तहत हिकु तेज़ ऐं प्रज़ुम जवाबी हमले जी शुरूआति कई। असांजा बहादुर जवान, जिन मां घणा ई कुझु हफ़्ता अॻु मैदानी इलाइक़नि सां पाण खे ठाहे रहिया हुआ, तिन खे ऊची पहाड़ियुनि वारी जंग में मोकिलियो वियो। इन्हनि बेमिसाल जुरत, साबित कदमी ऐं पेशेवराना यानी प्रोफेशनल सलाहियत जो मुज़ाहिरो कयो। सिधे हमले, तोपखाने जी बमबाज़ी ऐं हिंदुस्तानी हवाई फ़ौज ऑपरेशन सफ़ेद सागर जे हवाई मदद जे मेलाप खे इस्तेमालु

कंदे सिपाहिन सिलसिलेवार तरीक़े सां हिक पहाड़ी खां पोइ ॿी पहाड़ी ते पंहिंजो कब्ज़ो कयो। जंग में गैर मामूली बहादुरी जा बेशुमार मिसाल ॾिठा विया। असां कैप्टन विक्रम बत्रा जे बेमिसाल जज़्बे ऐं हिमत खे यादि त करियूं, जंहिं पॉइंट 4875 खे ॿीहर हासिल करण दौरान आख़िरीन क़ुर्बानी ॾियण खां अॻु मशहूरु तौर ते ऐलान कयो, ये दिल मांगे मोर। असां ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव जे बहादुरी खे यादि करियूं, जंहिं घणी गोलियूं खाइण जे बावजूद बि टकरी जे चोटी ते चढ़ी करे दुश्मन जे बंकरनि खे बेअसर कयो। असां कैप्टन मनोज कुमार पांडे खे सलाम था कयूं, जंहिंजे क़यादत ऐं खलोबार में जुरत सबब शहीद थियण खां पोइ परमवीर चक्र सां नवाज़ियो वियो। ऐं असां राइफलमैन संजय कुमार खे इज़त था ॾियूं, जंहिं अकेले सिर दुश्मन जे पोस्ट ते हमिलो कयो ऐं तमामु ई घणो सख़्तु ज़ख़्मी थी वञण जे बावजूद बि बंकर साफ़ कया। इहे त तमामु ई घणनि बहादुर सिपाहियुनि मां सिर्फ़ चंद नाला आहिनि ऐं इन्हनि खे मुल्क जे आला तरीन फ़ौजी इज़त सां नवाज़ियो वियो। जंग ॿिनि महीननि खां बि वधीक अरसे ताईं हली, मई खां जुलाई 1999 ताईं। 26 जुलाई ताईं हिंदुस्तानी फ़ौज हिंदुस्तानी सरज़मीन तां आख़िरीन पाकिस्तानी मदाख़लत कंदड़ खे कामयाबी सां पुठिते धिके छॾियो। सोभ हिकु भारी क़ीमत ते आई, 500 खां बि वधीक भारतीय सिपाहियुनि अज़ीम क़ुर्बानी ॾिनी ऐं 1300 खां बि वधीक सिपाही ज़ख़्मी थिया। इन्हनि मां हर हिकु बहादुर सिपाही कंहिंजो पुटु, कंहिंजो भाउ, कंहिंजो मुड़ुसु ऐं कंहिंजो पीउ हो। हू हिकु हीरो हो ऐं हर कंहिं मुल्क खे अवलियत ॾिनी। कारगिल विजय ॾींहुं फ़क़ति सोभ जो जशन न आहे, बल्कि उहो ॾींहुं इन्हनि शहीदनि खे श्रद्धांजलि आहे, जिन देश जे ख़ुदि मुख़्तियारी ऐं सालमियत जे हिफ़ाज़त लाइ पंहिंजियूं क़ीमती जानियूं क़ुर्बान कयूं। इहो ॾींहुं असांजे हथियारबंद फ़ौजनि पारां असांजी हिफ़ाज़त ऐं आज़ादी खे यकीनी बणाइण लाइ ॾिनल अज़ीम क़ुर्बानीनि जी यादि ॾियारे थो। इहो असांजे सिपाहियुनि जे जुरियत ऐं हिमत ते असांजे ईमान जी तस्दीक करे थो, जेके सभिनी ख़तरनि जे ख़िलाफ़ हिकु मज़बूत ढाल वांगुरु अटल बीठा रहिया। हीउ ॾींहुं क़ौमी इतिहाद ऐं मोटी उभरी अचण जी अहमियत जी हिकु ताक़तवर यादि ॾियारींदड़ ॾींहुं आहे। कारगिल जंग दौरान पूरो देश यकमुश्ती बीठो ऐं हथियारबंद फ़ौजनि जी मज़बूत हिमायत कई। इन्हीअ दुनिया खे ॾेखारियो त भारत हिकु अहिड़ो मुल्क़ आहे जेको अमन खे पसंदि करे थो, पर पंहिंजे सरहदनि जो बचाउ करण लाइ पूरी ताक़त सां मुक़ाबिलो कंदो आहे। अचो त कारगिल विजय ॾींहं ते पंहिंजे बहादुर सिपाहियुनि खे यादि करियूं, जिन मुल्क जे सलामती लाइ पंहिंजी क़ीमती जाननि जी क़ुर्बानी ॾिनी। अचो त संदनि क़ुर्बानीनि खे फ़क़ति हिकु ॾींहुं न पर हर रोज़ यादि रखूं। अचो त संदनि क़ुर्बानीनि खे यादि कंदे हिकु मज़बूत, यकमुश्त ऐं खु़शहाल देश भारत देश ॾियूं ऐं ईंदड़ पीढ़ियुनि खे सिपाहियुनि जूं बहादुरी वारियूं कहाणियूं ॿुधायूं त कीअं न असांजे बहादुर सिपाहियुनि भारत जी एकता ख़ातिर पंहिंजे जाननि जूं क़ुर्बानीूं ॾिनियूं। तव्हां कारगिल विजय ॾींहं ते तकरीर ॿुधी रहिया। आकाशवाणी जी सिंधी सर्विस आहे।

हीअ आकाशवाणी जी सिंधी सर्विस आहे 9870 किलोहर्ट्स ते। तंहिंखां अलावा तव्हां आकाशवाणी जी सिंधी सर्विस न्यूज़ ऑन एयर मोबाइल ऐप ऐं डीडी फ्री डिश ते ॿुधी सघंदा आहियो। तव्हां आकाशवाणी जी सिंधी सर्विस ॿुधी रहिया। हींअर पेश आहे नाटक संबंध, तहरीर आहे जनाब सुंदर अगनाणी जी।

0: नर्स?
1: यस डॉक्टर।
0: सभी मरीजन जो टेम्परेचर वरतो थे?
1: यस डॉक्टर।
0: की आहन?
1: बेड नंबर 10 जी हालत काफी सीरियस आहे।
0: वेरी डिस्करेजिंग। भला हुनला रत जो बंदोबस्त थियो?
1: नो सर।
0: ओ चंग अज तक तपासे वठा।

में इन में केतरा ई वार्ड आहिनि। मां इन अस्पताल जे T2 वार्ड में 10 नंबर बिस्तरे ते सुम्हियो पियो आहियां। बिस्तरे ते मौत जे बिस्तरे ते हिन मौत जे बिस्तरे ते सुम्हण जी बि क़ीमत आहे। हिननि ते सुम्हण वारनि जी बि हिकु लिस्ट ठहियल आहे। लिस्ट जो हर मरीज बिस्तरे जे खाली थियण जो इंतज़ारु कंदो आहे ऐं चाहींदो आहे त जल्द ई को बिस्तरो खाली थिए त हू अची हुन ते सुम्हे। हर रोज़ कंहिं न कंहिं मरीज़ जी दुआ सां को न को बिस्तरो ज़रूरु खाली थींदो आहे।

0: क्या ही मिस्टर रमेश?
1: फाइन डॉक्टर,
0: नाइस, वेरी नाइस। जरा पेंजी ये पर देखा। हाने जरा खमी से मथे कर। सिस्टर, इन्हें जो बीपी वर्तो है थे?
2: यस सर, ही दिसो।
0: ठीक है रमेश, मां समझा तो तू बीमारी सा का गहरी दोस्ती कही है।
1: हाँ डॉक्टर, दोस्ती कई हुआ, पर यह दोस्ती हाने वधी का वक्त न आ रही सकती। डॉक्टर मौत मुड़ा केतरे वक्त का हथ टिकेरे बीठो आए पैंजे आगोश में आने लाए। डॉक्टर है मौत जी दोस्ती दायम है। डॉक्टर जिंदगी खावे वधी का दायम।
0: मंदिर में हर रोज कई सवाल वेंदा है का न का मुराद खड़ी। यह अस्पताल भी एक मंदिर समान है, इतने भी कई सवाल इंदा है। सभी के मन की मुराद सिर्फ एक होंगी है, ठीक थी इतना निकल।
1: वो तो ठीक है डॉक्टर, पर
0: अच्छा
1: यो ही तो मां अस्पताल में मौत के बिस्तर ते केतरा ही फेरा सुमी चुको है डॉक्टर। हर दफे बीमारी सा ठाव करे मौत के शहर की कोशिश कई अथम, पर हिंसर थक जी पो आया डॉक्टर, थक जी पो आया। हिंसर मुझे सहन में मौत जो ख्याल दायमा बाजी है डॉक्टर, दायमा। बीमार के बीमारी जो अंत सताई है डॉक्टर, यो अंत है मौत। इन करे मैं जल्दी पैंजे अंत के हासिल कर तो चाहें डॉक्टर, जल्द हासिल कर तो चाहें।
0: पर मौत के हासिल कर तुझे हथ में ना है मिस्टर रमेश।
1: मां समझा तो डॉक्टर, मां समझा तो, पर मौत का निजात दियारण ते डॉक्टर जे हथ में ना है।
0: दिस तू पढ़ल लिखल आई तोखे यहां खबर आए तो तुझे बीमारी जो दुनिया में को इलाज को ना है।
1: आई नो,
0: पर इन जो यो मतलब तो कोने तो तू मरी वेने। दिल वडी रख मिस्टर रमेश, ईश्वर में विश्वास कंदो आ।
1: नो डॉक्टर, आई डोंट बिलीव।

0: हली कोन कंदो आई
1: नो
0: मां डॉक्टर आया तदे मुझे ईश्वर में पको विश्वास आए थी सके तो ते तुंजे ग्रुप जो रत हिया ना बैसा के मिली वने ए तू बची पवी
1: डॉक्टर पर हिया त रात थी चुकी है रात जो के रत देने दो डॉक्टर
0: ये अस्पताल है मिस्टर रमेश जो भी एक कलाक कोन को रत देना इंदो ही आए बी ब्रेव माय बॉय ओके सिस्टर मां हला तो रत मिली वने तो मुके इतला दे जा चंगो रमेश गुड लक
1: थैंक यू वेरी मच डॉक्टर थैंक यू

0: हेलो डी टू मेडिकल प्लीज ब्लड बैंक में हाँ चौ रक्त मिली रहा है गुड छा इतना पैसा ठीक है पेशेंट रुपया दीन दो तो हम एकदम रक्त मोकल तुम्हें लकी है मिस्टर रमेश फिर ब्लड बैंक में फोन आयो उन्हें के तहां जे ग्रुप जो रक्त मिली रहा है रक्त देने वालों बोतल जा काफी रुपया घुरी रहे हो पर मुंह हा कर छिया है पैसे का अधिक अहमियत इंसान जी जिंदगी जी है
1: काश ही हो जी सिस्टर
0: तुम्हें काफी जज्बाती था नजर अच्छे मिस्टर रमेश रत अच्छी हुआ है
1: पर हूँ अटते हजार रुपया
0: तुम्हें क्या कहना चाहते तुम पैसा दो बिल तो सही कर छिया थम सुबह जो नहीं छड़ी बस
1: सिस्टर
0: बात सीधी कर मिस्टर रमेश करत चढ़ाई

0: गुड मॉर्निंग मिस्टर रमेश।
1: गुड मॉर्निंग सिस्टर।
0: तुम हाँ बिल्कुल ठीक आयो। डॉक्टर साहब तक घर बने की इजाजत दे रहा है।
1: अच्छा
0: तुम हाँ घर बनी सको था।
1: सिस्टर इन अस्पताल में मां पंजो दफो आयो आया। ही अस्पताल मुखे घर का भी बधिक प्यारी थी चुकी है। सिस्टर इन वार्ड जी हर शय मुझी जिंदगी जो हिस्सो बनी चुकी है। वरी वरी फिर मां ताया मां मरीज आया। सिस्टर चंद महीनन बाद वरी हुई वार्ड टी टू बेड नंबर थ्री।
0: मिस्टर रमेश हर भर ई ना है मुमकिन है तो जे मानो जरूरत ता के दिन वे है सुताने लकी साबित थी ए तो हमेशा ला ठीक थी बनो।
1: हां सिस्टर वो तो ठीक है। बाय द वे सिस्टर जे इंसान जो रत मुखे दिन वे है मां जो नालो जान तो चाया
0: उन जो नालो पूछी छा कना
1: मां मां उन रत दिन जो दर्शन कर तो चाया। सिस्टर छाका तो हो मुझे ईश्वर है
0: वो ब्लड बैंक में दर्ज थेला है ता के पूछी बताया थी पर
1: अच्छा सिस्टर
0: असिरत देने वाले जो नालो अक्सर को नहीं बधाई नहीं मुमकिन है तो
1: क्या मुमकिन है
0: यो ही तो कदें कने रत देने वालो ऐसा इंसान निकल रहा है जो रत बैठने रखे होने का शख्स ही नफरत
1: नहीं ना। सिस्टर ना मुझे केस में ये कौन थी दो आखिर रत दिन रत तो कोई इंसान ही आए ना। सिस्टर प्लीज तुमने जो नालो बताया मां संदस एहसान चुकाया तो चाहे। सिस्टर
0: तुम्हारा जोर था भरो तुम्हारा ताकि पूछे बताया थी।
1: सिस्टर चाहो रत नींदर कदे कदे अड़ो इंसान निकली पौधो है जो रत वठन वाले के उन शख्सी नफरत थी पौधी है। न न मां ही न कंदस मां हुन सां नफरत न करे सकंदस। हो तो मुझे ईश्वर है मुझे जीवन दाता है मुझे जीवन दाता है।
0: हाँ वो मिस्टर रमेश उनजो नालो है
1: छा है सिस्टर
0: मोहम्मद जुम्मन।
1: मोहम्मद जुम्मन तो चैबो मुखे एक मुसलमान जो रत्न भी आए
0: मूर्ति का ख्याल।

0: चाहो तो कदे कने रख दिना रही को
1: बस बस सिस्टर वधी के कुछ भी न चाहो सिस्टर आज खां वठी मुझे धर्म जी माना बदल जी चुकी है सिस्टर हिंदू मुसलमान सिख ईसाई वगैरह ये सब नाला रबड़ जे उनन टपन में सलाइन जेके समाज जे ठेकेदार महज पैंजन स्वार्थ के सिद्ध करण ला ठाराए रखा है सिस्टर जेके जमा वक्त हर नए इंसान के खांस बिना पूछा जाया वेंदा है उन वक्त उनके धर्म जी माना भी को नहीं दिया है सिस्टर अज खां वठी मुझे कैं भी धर्म सा वास्तो को ना है मां सिर्फ इंसान आया सिर्फ इंसान हाँ सिस्टर ही मोहम्मद जुमन रहंदो किथे आहे
0: उन जो कोक ठिकानो ना आहे हाँ? हू भिखारी आहे
1: ओ
0: पर एतरी खबर आहे तो हू शायद स्टेशन जे भरसा बियन भिखारिन सा गड रहंदो आहे
1: ओ चमो सिस्टर थैंक यू वेरी मच थैंक यू वेरी मच

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पेपर लीक और परीक्षा में गड़बड़ी के मामलों में फास्ट ट्रैक अदालतें बनाने और कड़ी सजा के लिए एक मसौदा विधेयक को मंजूरी दे दी है। संसद भवन परिसर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में इसे मंजूरी दी गई। इस विधेयक को अगले सप्ताह संसद में पेश किए जाने की संभावना है। श्री मोदी ने बृहस्पतिवार को एक वीडियो संदेश में पेपर लीक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के प्रावधानों वाला विधेयक संसद में पेश करने की घोषणा की थी। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि सरकार विद्यार्थियों के भविष्य के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठा रही है।
1: सोमवार को बिल तो हम लोग तो तैयारी कर रहे हैं। हम तो प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि छात्रों को लेकर के जो हम बिल ला रहे हैं तो उसमें कोई विलंब नहीं होना चाहिए, और जो प्रधानमंत्री जी ने कहा है इसमें कोई रुकावट पैदा करने के लिए कोई हठकंडे अपनाना ठीक नहीं होगा। अब इसको राजनीतिकरण करके फायदा नहीं, हम लोगों को ठोस कदम कैसे उठाना चाहिए छात्रों का भविष्य के लिए, इस पे ध्यान देना चाहिए।
0: सरकार ने सख्त रुख अपनाते हुए राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के 47 अधिकारियों को बर्खास्त कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक इनमें से कुछ अधिकारियों के खिलाफ कानूनी और आपराधिक कार्रवाई भी की जाएगी। सरकार परीक्षा प्रणाली में सुधार और पेपर लीक रोकने के उपायों से जुड़ी मांगों को लेकर कांग्रेस जनता पार्टी CJP के प्रतिनिधिमंडल के साथ आज एक और दौर की बातचीत करेगी। इससे पहले कल भी नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री JP नड्डा और डॉ जितेंद्र सिंह ने CJP प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठक की थी, जिसके बाद श्री नड्डा ने बताया कि बैठक में परीक्षा प्रणाली में सुधार को लेकर CJP की मांगों को ध्यानपूर्वक सुना गया है। दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने बताया है कि दिल्ली में सुरक्षा कारणों से आज सुबह 7:30 बजे से अगले आदेश तक 18 स्टेशन बंद रहेंगे। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही, नीट परीक्षा पेपर लीक और विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन पर लगातार हंगामे के कारण सोमवार तक स्थगित कर दी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने वीडियो पर मिली प्रतिक्रिया और सुझावों के लिए युवाओं को धन्यवाद दिया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने युवाओं के अपार समर्थन के लिए उनका आभार व्यक्त किया। वीडियो को अब तक 30 करोड़ 30 लाख से अधिक बार देखा जा चुका है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को रोमानिया की बुखारेस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ इकोनॉमिक स्टडीज ने डॉक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित किया। ये सम्मान उन्हें विशिष्ट सार्वजनिक सेवा, शिक्षा और सामाजिक समावेश के प्रति प्रतिबद्धता और भारत रोमानिया संबंधों को मजबूत करने में उनके योगदान के लिए दिया गया। राष्ट्रपति ने सम्मान स्वीकार करते हुए इसे भारत की जनता को समर्पित किया। उन्होंने कहा कि सम्मान दोनों देशों के लोगों के बीच अटूट मित्रता को दर्शाता है। भारत सरकार ने कहा है कि सिंधु जल संधि तब तक स्थगित रहेगी जब तक पाकिस्तान सीमा पार आतंकवाद को समर्थन देना बंद नहीं करता। नई दिल्ली में मीडिया को जानकारी देते हुए विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने पाकिस्तान के उन मीडिया दावों को खारिज किया जिनमें भारत पर जानबूझकर बाढ़ लाने का आरोप लगाया गया था। उन्होंने कहा कि चनाब नदी में जलस्तर बढ़ना 20 से 23 जुलाई के बीच जम्मू और आसपास के जलग्रहण क्षेत्रों में हुई भारी मानसूनी बारिश का परिणाम है। भारत ने कालासागर में वाणिज्यिक पोत MV ओमोर्फी पर हुए हमले की कड़ी निंदा की है। हमले को अस्वीकार्य बताते हुए भारत ने सभी संबंधित पक्षों से समुद्री नौवहन और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की सुरक्षा सुनिश्चित करने का आह्वान किया। तेहरान स्थित भारतीय दूतावास ने आज पुष्टि की कि मोजाम्बिक ध्वज वाले

संगीतिका कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे हरितीरथ सिंह के गाए कुछ शब्द। हम आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़ पर 7:30 हुए हैं। ये वक्त है आपके अपने पसंदीदा कार्यक्रम गीतों भरे गुड मॉर्निंग का। गीतों भरे गुड मॉर्निंग के आज के इस शो के साथ मैं हूँ आपका दोस्त नवीन सक्सेना, बहुत ही खूबसूरत गीतों का एक गुलदस्ता लेकर, कुछ चुनिंदा फूल लेकर, जो आज आपकी सुबह को बेहतरीन बना देंगे दिन भर के लिए। सो एंजॉय विद दिस ब्यूटिफुल नंबर।

जीवन का सबसे खूबसूरत कोना वो होता है जब आप किसी को दिल दे बैठते हैं, है ना। इसलिए नहीं कि वो आपको बहुत अच्छा लगता है, इसलिए भी नहीं कि उसकी बहुत सारी बातें, बहुत सारी अच्छाइयां उसमें हैं, बल्कि इसलिए कि कहीं ना कहीं एक बात ऐसी होती है जो आपको छू जाती है और आपको लगता है कि शायद बस यही है जिससे बात करनी है, जिसकी बात सुननी है, जिसकी बात माननी है।

बिल्कुल भी नहीं, अपने हाल को बिल्कुल भी बेहाल मत कीजिए, क्योंकि हाल बेहाल जब हो जाता है ना तो ऐसा लगता है कि जीवन में थोड़ी बहुत उथल पुथल हो रखी है। तो इस उथल पुथल और इस हलचल से अपने आप को दूर रखिए, कूल एंड काम रखिए। और हाँ, जिंदगी जैसे चल रही है ना वैसे ही चलने दीजिए, और इस खूबसूरत गीत के साथ आज के इस मौसम में खूबसूरत से सफर पर निकल पड़िए।

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात।
1: तो याद रखिएगा, लेकिन हाँ एक बात और भी याद रखिएगा कि जब भी आपके मन में कुछ हो ना, उसको अपने सबसे अच्छे दोस्त के साथ जरूर शेयर कीजिए। कुछ बातें ऐसी होती हैं जो आप अपनों को बताना तो चाहते हैं लेकिन कहीं थोड़ा सा हिचकते हैं। हिचकिचाहट को दूर रखिए जनाब, मन की बात अपने मन के दोस्तों से कीजिए। और हाँ, जब अपने आप अपने दिल की बात को शेयर करते हैं ना, बांटते हैं ना, तो खुशियाँ दोगुनी हो जाती हैं और दुख कम हो जाता है। एंड वाकई देन दिस इज अ प्रैक्टिकल थिंग, आप करके तो देखिए। और हाँ, एक खूबसूरत सी बात अपने दोस्त के साथ शेयर कीजिए, चाय पर उसके साथ बैठिए और हल्की हल्की चुस्कियों के साथ सब कुछ कह डालिए, मन हल्का होगा। और अगर भारी भी हो गया तो इस गीत से हम हल्का कर देंगे।

0: विक्रम की तो बड़ी गुड मॉर्निंग, और आज आपका साथ दे रहा था आप ही का दोस्त नवीन सक्सेना। हम आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज पर 8 बजने को हैं। अब हिंदी, अंग्रेजी और उर्दू में समाचार प्रसारित किए जाएंगे।
1: घर खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी,
2: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
1: और लाइट बिल के
2: अब 0 रुपए कैसे दूं?
1: ओहो, भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
2: पक्का।
3: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
4: हर घर सूर्य घर।
5: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं हैं, मदद बस एक कॉल दूर है।
6: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं कनकलता। सरकार ने पेपर लीक रोकने और कड़ी सजा के प्रावधान वाले मसौदा विधेयक को मंजूरी दी। संसद में अगले सप्ताह विधेयक पेश किए जाने की संभावना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेपर लीक रोकने के लिए प्रस्तावित सुधारों पर अपने वीडियो पर युवाओं से मिले सुझावों के लिए उन्हें धन्यवाद दिया। कहा, आपसी संबंध और अधिक घनिष्ठता के साथ आगे बढ़ेंगे। सरकार और सीजेपी के प्रतिनिधियों के बीच आज नई दिल्ली में तीसरे दौर की वार्ता होगी। भारत ने काला सागर में वाणिज्यिक जहाज एमवी ओमर्फी पर हुए हमले की कड़ी निंदा की। हमले में एक भारतीय नाविक की मौत। मौसम विभाग ने गुजरात, कोंकण, गोवा और ओडिशा के कुछ हिस्सों में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया। और ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों में भारत को पहला पदक मिला। झंडू कुमार पैराथलन में कांस्य पदक जीता। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पेपर लीक और परीक्षा में गड़बड़ी के मामलों में फास्ट ट्रैक अदालतें बनाने और कड़ी सजा के लिए एक मसौदा विधेयक को मंजूरी दे दी है। संसद भवन परिसर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में इसे मंजूरी दी गई। इस विधेयक को अगले सप्ताह संसद में पेश किए जाने की संभावना है। श्री मोदी ने बृहस्पतिवार को एक वीडियो संदेश में पेपर लीक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के प्रावधानों वाला विधेयक संसद में पेश करने की घोषणा की थी। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि सरकार विद्यार्थियों के भविष्य के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठा रही है।
7: सोमवार को बिल तो हम लोग तो तैयारी कर रहे हैं। हम तो प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि छात्रों को लेकर के जो हम बिल ला रहे हैं तो उसमें कोई विलंब नहीं होना चाहिए, और जो प्रधानमंत्री जी ने कहा है इसमें कोई रुकावट पैदा करने के लिए कोई हठगंडे अपनाना ठीक नहीं होगा। अब इसको राजनीतिकरण करके फायदा नहीं है, हम लोगों को ठोस कदम कैसे उठाना चाहिए छात्रों का भविष्य के लिए, इस पे ध्यान देना चाहिए।
6: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने वीडियो पर मिली प्रतिक्रिया और सुझावों के लिए देश के युवाओं को धन्यवाद दिया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने युवाओं के जबरदस्त समर्थन के लिए आभार व्यक्त किया।
8: थैंक यू फ्रेंड्स, मेरे जो वीडियो पोस्ट किया था उसको जिस प्रकार से आपने रिस्पॉन्ड किया, सकारात्मक सुझाव दिए, थैंक्स टू एवरीबडी। आपका प्यार बना रहेगा, हमारा नाता और अधिक सक्रियता से जुड़ता रहेगा। थैंक यू।
6: वीडियो को अब तक 30 करोड़ 30 लाख से अधिक बार देखा जा चुका है। ये पहले 24 घंटों में सबसे अधिक देखा जाने वाला वीडियो है। सरकार परीक्षा प्रणाली में सुधार और पेपर लीक रोकने के उपायों से जुड़ी मांगों को लेकर कांग्रेस जनता पार्टी सीजेपी के प्रतिनिधिमंडल के साथ आज एक और दौर की बातचीत करेगी। इससे पहले कल भी नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और डॉ जितेंद्र सिंह ने सीजेपी प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठक की थी, जिसके बाद श्री नड्डा ने बताया कि बैठक में परीक्षा प्रणाली में सुधार को लेकर सीजेपी की मांगों को ध्यानपूर्वक सुना गया है। उन्होंने बताया कि सीजेपी ने 3 प्रमुख मांगे रखी हैं और पेपर लीक रोकने के लिए कुछ सुझाव भी दिए हैं।
9: बातें सौहार्दपूर्ण वातावरण में हुई और कई दृष्टि से उन सारी बातों पर हर तरीके से चर्चा हुई। उनकी मुख्यतः 3 डिमांड थी और 5 सुझाव हुए।
6: दिल्ली पुलिस ने पेपर लीक और परीक्षा संबंधी अन्य अपराधों की जांच के लिए एक विशेष कार्यबल एसटीएफ का गठन

0: किया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये कार्यबल लोक परीक्षा अनुचित साधनों के रोकथाम अधिनियम 2024 के अंतर्गत आता है।
1: दिल्ली पुलिस ने कहा है कि अलग अलग प्राधिकारियों की ओर से आयोजित होने वाली पब्लिक परीक्षाओं से जुड़े अपराधों की जांच तेजी से और पेशेवर तरीके से विशेष कार्यबल द्वारा की जाएगी। इनमें संघ लोक सेवा आयोग, कर्मचारी चयन आयोग, रेलवे भर्ती बोर्ड, बैंकिंग कार्मिक चयन संस्थान, राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी के साथ साथ केंद्रीय सरकार के मंत्रालय या विभाग और स्टाफ के भर्ती के लिए उनसे जुड़े हुए और अधीनस्थ कार्यालय शामिल है। जाँच के अलावा विशेष कार्यबल मुकदमा चलाने वाली एजेंसियों के साथ बेहतर तालमेल भी बनाए रखे ताकि तेजी से मुकदमा चलाया जा सके और ये पक्का किया जा सके कि ऐसे मामलों में सुनवाई रोजाना हो। शिवा मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: सरकार ने सख्त रुख अपनाते हुए राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के 47 अधिकारियों को बर्खास्त कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक इनमें से कुछ अधिकारियों के खिलाफ कानूनी और आपराधिक कार्रवाई भी की जाएगी। एनटीए ने महाप्रबंधक स्तर के वरिष्ठ पेशेवर पदों पर नियुक्ति के लिए विज्ञापन प्रकाशित किए हैं। संघ लोक सेवा आयोग के प्रतिभा सेतु पोर्टल द्वारा 16 युवा पेशेवरों की भर्ती प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही, नीट परीक्षा पेपर लीक और विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन पर लगातार हंगामे के कारण सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने बताया है कि सुरक्षा कारणों से आज सुबह 7:30 बजे से अगले आदेश तक 18 स्टेशन बंद हैं। हालांकि राजीव चौक, मंडी हाउस और केंद्रीय सचिवालय में इंटरचेंज सुविधा उपलब्ध रहेगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
2: भारतीय वायु सेना में अग्निवीर वायु और एयरमैन मेडिकल असिस्टेंट बनने के लिए जल्दी रजिस्टर करें। रजिस्ट्रेशन 26 जुलाई 2026 को बंद हो जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए www.iefrecruitment.edcil.co.in पर जाएं।
3: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। रोमानिया के बुखारेस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ इकोनॉमिक स्टडीज ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को उनकी विशिष्ट सार्वजनिक सेवा, शिक्षा और सामाजिक समावेश के प्रति प्रतिबद्धता तथा भारत रोमानिया संबंधों को मजबूत करने में उनके योगदान के लिए डॉक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित किया। राष्ट्रपति ने सम्मान स्वीकार करते हुए इसे भारत की जनता को समर्पित किया और कहा कि यह दोनों देशों के लोगों के बीच अटूट मित्रता को दर्शाता है। राष्ट्रपति ने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और तकनीकी परिवर्तन के इस युग में विश्वविद्यालयों की जिम्मेदारी है कि वे ये सुनिश्चित करें कि ज्ञान का मार्गदर्शन विवेक, नैतिकता और करुणा द्वारा किया जाए।
2: टुडे द वर्ल्ड इज बीइंग रिसेप्ट बाय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिजिटल टेक्नोलॉजीज एंड अदर रैपिड साइंटिफिक एडवांसेस। यूनिवर्सिटीज लाइक दिस हैज गिवन ग्रेटर रेस्पॉन्सिबिलिटी टू एंश्योर दैट नॉलेज इज गाइडेड बाय विजडम, ethics and compassion. India's national education policy reflects this vision by promoting innovation, research, creativity and international academic collaboration.
1: भारत सरकार ने कहा है कि सिंधु जल संधि तब तक स्थगित रहेगी जब तक पाकिस्तान सीमा पार आतंकवाद को समर्थन देना बंद नहीं करता। नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने पाकिस्तान के उन मीडिया दावों को खारिज किया जिनमें भारत पर जानबूझकर बाढ़ लाने का आरोप लगाया गया था।
3: रिसेंट इंक्रीज इन फ्लोज,
4: चिनाब नदी में जल प्रवाह में हालिया वृद्धि, 20 से 23 जुलाई के दौरान जम्मू और आसपास के जलग्रहण क्षेत्रों में मूसलाधार बारिश का परिणाम है। नदी के जल प्रवाह में वृद्धि एक प्राकृतिक जल वैज्ञानिक प्रतिक्रिया है और ये भारत द्वारा जानबूझकर किए गए किसी भी प्रयास का

0: आम नहीं है।
1: नॉट द रिजल्ट ऑफ एनी डिलिबरेट एक्शन बाय इंडिया।
2: भारत ने काला सागर में वाणिज्यिक पोत एमवी ओमोट्री पर हुए हमलों की कड़ी निंदा की है। हमले को अस्वीकार्य बताते हुए भारत ने सभी संबंधित पक्षों से समुद्री नौवहन और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की सुरक्षा सुनिश्चित करने का आह्वान किया। विदेश मंत्रालय ने बताया कि 18 जुलाई को काला सागर से गुजरते समय पोत पर हमला हुआ। हमले में एक भारतीय नाविक की मृत्यु हो गई। पोत पर 3 भारतीय नागरिकों सहित चालक दल के 10 सदस्य सवार थे। अन्य 2 भारतीय नागरिक सुरक्षित हैं। तेहरान स्थित भारतीय दूतावास ने आज पुष्टि की कि मोजाम्बिक ध्वज वाले एलपीजी टैंकर दिशा पर ईरानी जल क्षेत्र में हुए हमले के बाद जहाज पर सवार भारतीय चालक दल के सभी 28 सदस्य सुरक्षित हैं। दूतावास ने आधिकारिक बयान में एलपीजी टैंकर से जुड़ी घटना की पुष्टि की और कहा कि चालक दल की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए वो स्थानीय अधिकारियों के संपर्क में हैं। लद्दाख के द्रास में स्थित करगिल युद्ध स्मारक ऑपरेशन विजय में भारत की जीत की स्मृति में मनाए जाने वाले 27वें करगिल विजय दिवस के भव्य समारोहों की मेजबानी के लिए पूरी तरह से तैयार है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: द्रास का कारगिल वॉर मेमोरियल 27वें कारगिल विजय दिवस समारोह के लिए पूरी तरह से तैयार है। शहीदों की याद में बनाए गए इस स्मारक को विशेष रूप से सजाया गया है। 2 दिवसीय समारोह का आगाज आज युद्ध संस्मरण, गौरव में संस्कृति और शौर्य संध्या जैसे कार्यक्रमों के साथ हो रहा है। कल 26 जुलाई को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मुख्य अतिथि के रूप में श्रद्धांजलि समारोह में शामिल होंगे। द्रास कारगिल से आकाशवाणी समाचार के लिए मैं इनायत अली।
2: मौसम विभाग ने गुजरात, कोंकण और गोवा, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा और राजस्थान के कुछ हिस्सों में आज बहुत तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। पूर्वोत्तर भारत, तटीय कर्नाटक, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, दक्षिण आंध्र कर्नाटक और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में भी आज मध्यम से तेज बारिश की संभावना है। असम में बाढ़ की स्थिति अब भी गंभीर बनी हुई है। राज्य में 115,000 से अधिक लोगों ने राहत शिविरों में शरण ली है। राज्य में बाढ़ से मरने वालों की कुल संख्या 61 हो गई है। ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों में भारत ने अपना पहला पदक जीत लिया है। झंडू कुमार ने पैरा भारोत्तोलन की पुरुष हैवीवेट स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। भारत और जिम्बाब्वे के बीच दूसरा T20 मैच आज शाम 4:30 बजे से हरारे में खेला जाएगा। भारत के स्क्वाश खिलाड़ी अनाहत सिंह ने कनाडा के ओंटारियो में विश्व जूनियर स्क्वाश चैंपियनशिप के महिला सिंगल्स फाइनल में पहुंचकर इतिहास रच दिया है। सेमीफाइनल में अनाहत ने मिस्र के बाब सामे को 3-1 से हराया। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
4: धन्यवाद कनक। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए के 47 अधिकारियों को बर्खास्त किए जाने की खबर आज के अखबारों की पहली सुर्खी है। हिंदुस्तान ने इसे नीट को लेकर सरकार की बड़ी कार्रवाई बताया है। अमर उजाला लिखता है आक्रोश का असर, एनटीए से 47 अफसर बर्खास्त। नवभारत टाइम्स की हेडलाइन है पेपर लीक पर होगा 10 करोड़ रूपये जुर्माना, 10 साल की सजा। संशोधन बिल को कैबिनेट की मंजूरी, कड़ी सजा का प्रस्ताव। दैनिक जागरण कहता है कानून बदला कार्रवाई हुई फिर भी सीजेपी टस से मस नहीं, शिक्षा मंत्री के इस्तीफे पर अटकी बात। दैनिक भास्कर ने लिखा है कानून में संशोधन को केंद्रीय कैबिनेट से मंजूरी, एनटीए में बदलाव की तैयारी। राजस्थान पत्रिका ने इसे बवाल थामने का प्रयास बताया है। नवभारत टाइम्स ने एनटी पेपर लीक बिल में संशोधन पर अपने संपादकीय में लिखा है सरकार तेजी से निर्णय लेकर छात्रों को यकीन दिलाने का प्रयास कर रही है कि उनकी आवाज अनसुनी नहीं रह गई है। पत्र लिखता है केंद्र द्वारा नीट में किए जा रहे सुधारों की सर्वोच्च न्यायालय लगातार निगरानी करेगा। छात्र अब मूलभूत बदलाव चाहते हैं और शीर्ष अदालत की निगरानी से इसमें मदद मिलेगी। सोशल मीडिया प्रसारण को लेकर सर्वोच्च न्यायालय का फैसला जनसत्ता में सबसे ऊपर है। अनुमति के बिना कार्यवाही को पोस्ट करने पर रोक। लोकसत्य लिखता है सोशल मीडिया पर नहीं डाल पाएंगे कोर्ट की वीडियो। कक्षा 6 से 8 में कौशल शिक्षा अनिवार्य करने के केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के निर्देश को भी पत्र ने स्थान दिया है। अमरीका द्वारा भारत से आयातित वस्तुओं पर 10% शुल्क लगाए जाने को राजस्थान पत्रिका ने ट्रंप का नया दांव बताया है।
2: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकार ने पेपर लीक रोकने और कड़ी सजा के प्रावधान वाले मसौदा विधेयक को मंजूरी दी। संसद में अगले सप्ताह विधेयक पेश किए जाने की संभावना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेपर लीक रोकने के लिए प्रस्तावित सुधारों पर अपने वीडियो पर युवाओं से मिले सुझावों के लिए उन्हें धन्यवाद दिया। सरकार और सीजेपी के प्रतिनिधियों के बीच आज नई दिल्ली में तीसरे दौर की वार्ता हुई।

0: claiming life of an Indian seafarer. Heavy rainfall expected in parts of Gujarat, Konkan, Goa and Odisha. And in the Commonwealth Games, Jhandu Kumar clinches bronze medal for India in the men's heavyweight para powerlifting. And with that, we are in the morning news. Have a nice day.
1: आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं असलम बेग। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। हुकूमत ने पेपर लीक वाकयात की रोकथाम के लिए ज्यादा सख्त सजा से मुतालिक बिल के मसौदे को मंजूरी दे दी है। उम्मीद है कि यह बिल पार्लियामेंट में अगले हफ्ते पेश किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने नौजवानों का शुक्रिया अदा किया है कि उन्होंने पेपर लीक वाकयात की रोकथाम के लिए मुजवजा इस्लाहात से मुतालिक उनके वीडियो पर तजावीज पेश की हैं। उन्होंने कहा कि ये ताल्लुकात मजीद मजबूती के साथ ताल्लुकात जारी रहेंगे। हुकूमत और CJP आज तीसरी बार बातचीत करेगी। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू को उनकी इम्तियाजी अवामी खिदमात पर रोमानिया ने डॉक्टर ऑनरिस कोजा के खिताब से नवाजा है। भारत ने बहरे असवद में कमर्शियल जहाज पर किए गए हमले की सख्त मजम्मत की है, जिसमें एक भारतीय मल्लाह की मौत हो गई थी। गुजरात, कोंकण, गोवा और उड़ीसा के कुछ इलाकों में मूसलाधार बारिश का इम्कान है। और दौलत मुश्तरका खेलों में झंडू कुमार ने मर्दों के हेवी वेट पैरा पावर लिफ्टिंग मुकाबले में भारत की तरफ से कांस्य का तमगा हासिल किया है। अब खबरें तफसील से। मरकजी काबीना ने तेजी से काम करने वाली अदालतें कायम करने और पेपर लीक से निमटने और इम्तिहान में गलत तौर तरीके अपनाने पर सख्त सजा को यकीनी बनाने से मुतालिक बिल के एक मसौदे को मंजूरी दे दी है। पार्लियामेंट हाउस कॉम्प्लेक्स में वजीर आजम नरेंद्र मोदी की सदारत में बिल के इस मसौदे को मंजूर किया गया। जराए ने हमारे नामनिगार को बताया कि उम्मीद है कि यह मुजवजा बिल पार्लियामेंट में अगले हफ्ते पेश किया जाएगा। इसी दौरान इम्तिहान के निजाम में इस्लाहात करने की एक बड़ी कोशिश के तौर पर इम्तिहानात का इनेकाद कराने वाली एजेंसी NTA ने 47 अफसरान को बर्खास्त कर दिया। जराए के मुताबिक इनमें से कुछ एहलकारों के खिलाफ कानूनी और फौजदारी कार्रवाई भी की जाएगी। ये इकदामात NTA में मुकम्मल तौर पर तब्दीली लाने का एक हिस्सा है। इम्तिहानात मुनाकिद कराने से मुतालिक कौमी एजेंसी NTA ने जनरल मैनेजर की सतह पर सीनियर पेशावर अफराद के तकरूर के लिए इश्तहारात जारी किए हैं। उसने यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के पोर्टल प्रतिभु सेतु के जरिए 16 नौजवान पेशावर अफराद की खिदमात हासिल करने के लिए भी दरखास्त तलब की है। NTA ने एक बयान में कहा है कि इन इकदाम से एजेंसी की इदारा जाती तश्कील 9 के पहले इकदाम की अक्कासी होती है। NTA ने कॉन्ट्रैक्ट के तौर पर 4 जनरल मैनेजर के ओहदों को नोटिफाई किया है, जिनमें से हर एक की इब्तदाई मुद्दत 3 साल मुकर्रर की गई है। उसने बताया कि नौजवान पेशावर अफराद की पहली मर्तबा खिदमात हासिल की जा रही है। दिल्ली पुलिस ने पेपर लीक के वाकयात और इम्तिहान से मुतालिक दीगर जराइम की तहकीकात के लिए एक खसूसी टास्क फोर्स STF तश्कील दी है। ये टास्क फोर्स सरकारी इम्तिहान में नाजायज तौर तरीकों की रोकथाम से मुतालिक 2024 के कानून के तहत तश्कील दी गई है। तफसील हमारे नामा निगार से।
2: दिल्ली पुलिस ने एक बयान में कहा है कि ये टास्क फोर्स मुख्तलिफ अथॉरिटीज के जरिए मुनक़िद कराए जाने वाले सरकारी इम्तिहानात से मुतालिक जराइम की फौरी पेशावराना और जामे तहकीकात कराएगी। इन इम्तिहानात में यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, रेलवे भर्ती बोर्ड्स, बैंकिंग अमले के इंतखाब का इदारा, इम्तिहानात का इनेकाद कराने वाली कौमी एजेंसी और मरकजी हुकूमत की इदारतें व महकमे नीज अमले की भर्ती के लिए इनसे मुंसलिक और ज़ेरी दफातर शामिल हैं। तहकीकात के अलावा ये खसूसी टास्क फोर्स मुकदमा चलाने वाली एजेंसियों के साथ मौसर तालमेल रखेगी ताकि इस तरह के मुकदमात में तेजी लाने के लिए रोजाना अहमद को यकीनी बनाया जा सके। शिवांग मिश्रा की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं मुजीब अख्तर।
1: दिल्ली पुलिस ने पेपर लीक के वाकयात और इम्तिहान से मुतालिक दीगर जराइम की तहकीकात के लिए एक खसूसी टास्क फोर्स STF तश्कील दी है। ये टास्क फोर्स सरकारी इम्तिहानात में नाजायज तरीकों की रोकथाम से मुतालिक 2024 के कानून के तहत तश्कील दी गई है। दिल्ली पुलिस ने एक बयान में कहा कि ये टास्क फोर्स मुख्तलिफ अथॉरिटीज के जरिए मुनक़िद कराए जाने वाले सरकारी इम्तिहानात से मुतालिक जराइम की फौरी पेशावराना और जामे तहकीकात कराएगी।

0: जहाजों को निशाना बनाकर किए गए इस तरह के हमलों और अमले के बेकसूर अरकान की जिंदगियों को जोखिम में डालने की वाजह तौर पर सख्त मजम्मत करता है। ईरान की हदूद में मोजम्बिक के परचम बरदार एलपीजी टैंकर दिशा पर हुए हमले के बाद इसमें सवार अमले के तमाम 28 भारतीय महफूज हैं। तेहरान में भारतीय सिफारतखाने ने इसकी तस्दीक की है और एलपीजी टैंकर दिशा के साथ पेश आने वाले वाकये की बात तस्लीम की है। एक सरकारी बयान में सिफारतखाने ने कहा है कि वो अमले की खैरवाफियत को यकीनी बनाने के लिए मकामी अफसरान के साथ राबते में है। हुकूमत ने कहा है कि वादी सिंध का समझौता उस वक्त तक इल्तिवा में रहेगा जब तक पाकिस्तान सरहद पार की जाने वाली दहशतगर्दी की हिमायत से बाज नहीं आ जाता। नई दिल्ली में नामनिगारों से बात करते हुए वजारत खारजा के तर्जमान रणधीर जायसवाल ने पाकिस्तानी मीडिया की इन खबरों को मुस्तरद कर दिया कि भारत पड़ोसी मुल्क में जानबूझकर सैलाब की सूरत हाल पैदा कर रहा है। कल वजीर दिफा राजनाथ सिंह श्रद्धांजलि समारोह में बहैसियत मेहमान खुसूसी शिरकत करेंगे। तफसील हमारे नामनिगार से।
1: द्रास में वाके कारगिल वार मेमोरियल 27वीं कारगिल विजय दिवस की तकरीबात की तैयारियों की तकमील के बाद पुरवकार और पुरजोश मंजर पेश कर रहा है। दो रोजा यादगारी तकरीबात का आगाज आज से हो रहा है, जबकि कल वजीर दिफा राजनाथ सिंह ऑपरेशन विजय के शोधा को खिराज अकीदत पेश करने में कौम की क्यादत करेंगे। हजारों विजिटर साबिक फौजियों शोधा के अहलखाना और फौजी एहलकारों की इन यादगारी तकरीबात में शिरकत की तवक्को है। ये तकरीबात 1999 की कारगिल जंग के दौरान भारतीय मुसल्ला फौज की गैर मामूली शुजात हिम्मत और अजीम कुर्बानी को एक अजीम शान खिराज अकीदत है। कारगिल से इनायत अली रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं फहीम अहमद।
0: ग्लासगो में 2026 के दौलत मुश्तरक खेलों में भारत ने मेडल जीतने का आगाज कर दिया है। झंडू कुमार ने मर्दों के हेवी वेट पैरा पावर लिफ्टिंग में कांसे का तमगा हासिल किया। उन्होंने बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए दूसरी कोशिश में 190 किलोग्राम वजन उठाया। इस तरह उन्होंने 130.9 पॉइंट्स के साथ कांसे का तमगा हासिल किया। मर्दों के क्रिकेट में आज हरारे में भारत 3 मैच की T20 सीरीज के दूसरे मैच में मेजबान जिम्बाब्वे से मुकाबला करेगा। यह मैच भारतीय वक्त के मुताबिक शाम 4:30 बजे शुरू होगा। भारतीय टीम को सीरीज में 1-0 से सबकत हासिल है। उसने जुमेरात को पहले मैच में 7 विकेट से जीत हासिल की थी। भारत की स्क्वैश खिलाड़ी अनाहत सिंह ने आज सुबह कनाडा के ओंटारियो में मिस्र की बर्ब समय को सेमीफाइनल में 3-1 से हराकर आलमी जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप के खातीन सिंगल्स के फाइनल में पहुंचकर तारीख रकम की है। भारत की 18 साल अनाहत इस अहम जूनियर मुकाबले के फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बन गई है। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने मुत्तला किया है कि कौमी राजधानी में सिक्योरिटी के सबब 18 स्टेशनों को सुबह 7:30 बजे से दूसरी हिदायत जारी होने तक कल बंद कर दिया गया है। इनमें राजीव चौक, पटेल चौक, नई दिल्ली सेंट्रल सेक्रेटरिएट, आईटीओ, मंडी हाउस, सुप्रीम कोर्ट और दीगर स्टेशन शामिल हैं। अलबत्ता डीएमआरसी ने वाजे किया है कि राजीव चौक, मंडी हाउस और सेंट्रल सेक्रेटरिएट पर ट्रेन तब्दीली की सहूलियत बरकरार रहेंगी। ये थी खबरें, अब अखबारात के आईने के साथ हैं मुजीब अख्तर।
2: शुक्रिया असलम। राजधानी दिल्ली से शाया होने वाले आज के बेशतर अखबारों ने पेपर लीक मामले में कसूरवार को सख्त सजा दिए जाने वाले तरमीम बिल के मसौदे को काबीना की तरफ से मंजूरी मिलने की खबर को शह सुर्खी बनाया है, जिसमें कसूरवारों को 10 साल की जेल और 10 करोड़ रुपए जुर्माने का इल्तिजाम रखा गया है। रोजामा प्रताप ने पेपर लीक मामले में एनटीए के 47 अफसरों को बर्खास्त किए जाने की खबर को जली सुर्खी के साथ शाया किया है। रिपोर्ट के मुताबिक एनटीए इंतजामिया में गड़बड़ियों की शिकायतों के बाद ये बड़ा कदम उठाया गया है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कल रात एक वीडियो पैगाम में नौजवानों और आम लोगों को यकीन दिलाया कि हुकूमत पेपर लीक के मामले में सख्त कार्रवाई कर रही है। इस खबर को रोजनामा इंकलाब ने पहले सफ़े पर जगह दी है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने बुखारेस्ट में भारत रोमानिया बिजनेस फोरम से खिताब के दौरान रोमानियाई कंपनियों से भारत की तरक्की के सफर में शामिल होने की अपील की। इस खबर को रोजनामा प्रताप ने खसूसी तौर पर शाया किया है।
0: और आखिर में खास खबर एक बार फिर, हुकूमत ने पेपर लीक वाकयात की रोकथाम के लिए ज्यादा सख्त सजा से मुतालिक बिल के मसौदे को मंजूरी दे दी है। उम्मीद है कि यह बिल पार्लियामेंट में अगले हफ्ते पेश किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने नौजवानों का शुक्रिया अदा किया है कि उन्होंने पेपर लीक वाकयात की रोकथाम के लिए मुजवजा असलाहत से मुतालिक उनके वीडियो पर तजावीज़ पेश की हैं। उन्होंने कहा कि ये ताल्लुकात मजीद मजबूती के साथ जारी रहेंगे।

0: हुकूमत और सीजेपी आज तीसरी बार बातचीत करेगी। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू को उनकी इम्तियाजी अवामी खिदमात पर रोमानिया ने डॉक्टर ऑनरिस कोजा के खिताब से नवाजा है। इसी के साथ ये खबरनामा खत्म हुआ।
1: आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है, मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़ पर। 8:45 हुए हैं, आइए सुनते हैं कार्यक्रम हमारी सेहत।
2: स्वास्थ्य पत्रिका हमारी सेहत में स्वीकार करिए अपने दोस्त शालिनी मित्तल का नमस्कार। आज इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे एक परिचर्चा। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं डॉक्टर जवाहरलाल जैन।
3: श्रोताओं नमस्कार। हर वर्ष 25 जुलाई विश्व डूबना रोकथाम दिवस के रूप में मनाया जाता है और एक खास विषय या थीम पर केंद्रित है और इस वर्ष का थीम है एकजुट होकर इस स्थिति को बदलना, यूनाइट टू टर्न द टाइड ऑन ड्राउनिंग। श्रोताओं विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा 2025 से 2035 तक इस विषय पर एक रणनीति, एक स्ट्रेटेजी बनी है और एक अभियान की व्यवस्थित की जा रही है जिसमें समुदाय, सर्वाइवर्स, कम्युनिटी, बिहेवियर चेंजेस, हाउ टू इम्प्रूव वाटर सेफ्टी का कंसेप्ट है और उसका जिक्र है। डूबना जैसी विश्वव्यापी समस्या पर एक विशेष परिचर्चा के लिए आमंत्रित विशेषज्ञों से आपका परिचय करा दूं। हमारे आमंत्रित विशेषज्ञ हैं डॉक्टर बी के राव जो कि चेयरमैन हैं क्रिटिकल केयर मेडिसिन सर गंगाराम हॉस्पिटल न्यू दिल्ली और भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण से सम्मानित है। हमारे दूसरे विशेषज्ञ हैं प्रोफेसर डॉक्टर मीनाक्षी पहुजा जो कि प्रोफेसर हैं डिपार्टमेंट ऑफ स्पोर्ट्स एंड फिजिकल एजुकेशन लेडी श्रीराम कॉलेज ऑफ वुमेन दिल्ली यूनिवर्सिटी और एक इंटरनेशनल स्विमर है। और हमारे तीसरे विशेषज्ञ हैं मिस्टर रणवीर शर्मा जो कि स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी भारतीय खेल प्राधिकरण के स्विमिंग कोच है और काफी बार इंडियन टीम के साथ बाहर जा चुके हैं। डॉक्टर आप सबसे पहले तो आपसे मैं ये समझना चाहूँ क्योंकि आजकल रोजाना अखबारों में कभी भी रोज खबर सुनने को मिलती है, क्या ये जो डूबने वाली जो प्रॉब्लम है क्या ये मेडिकल प्रॉब्लम है या ये पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम है? आपकी राय।
4: अगर जो न्यूज में आता है वो अधिकतर डेथ होती है, इतने लोग मर गए, अगर डेथ की बात करो तो ये मेडिकल प्रॉब्लम है, लेकिन अदरवाइज अगर ड्राउनिंग की आप बात करते हैं तो वो एक पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम है, एक सोशल प्रॉब्लम है। क्योंकि ड्राउनिंग का असली अगर आप हैंडल करें इसको या कम करना चाहें तो प्रिवेंशन इसका असली आंसर है। मेडिकल केयर कंट्रीब्यूट करती है उसकी रिकवरी में या उसको आगे क्या होगा डूबने के बाद। डूबना किसे कहते हैं
3: रणवीर जी? जैसा डॉक्टर राव कह रहे हैं डूबना किसे कहते हैं, और एक अनुमान के अनुसार हर वर्ष भारत में 30,000 लोगों की डेथ होती है ड्राउनिंग से और दुनिया का सबसे ज्यादा ग्लोबली इंडिया की फिगर्स हाईएस्ट है, उसके बाद में गुआना आता है साउथ अमेरिका। तो क्या ये जो ड्राउनिंग है आप किसको कहते हैं डूबना?
5: सर देखिए जो डूबना जो वर्ड है उसमें जब हम जो हमारी एक्टिविटी को कवर करने के लिए जब हमारा जो पानी है जो हमारे शरीर में जाने के बाद हमारी जब एक्टिविटी बंद हो जाती, क्योंकि जब आदमी पूरा डूब जाता है या फिर जब उसकी एक्टिविटी बंद हो जाती है पूरी बॉडी में पानी चला जाता है ऑटोमेटिकली वो फ्लोट पे आ जाता है। उस फ्लोटिंग से पहले का जो फेज होता है जिसमें हम डीपली जाते जाते पूरे डीप चले जाते हैं उस कंडीशंस को हम डूबना कहते हैं जहां हमारी एक्टिविटी एकदम से बंद हो जाती है।
3: डॉक्टर मीनाक्षी जैसा कह रहे हैं डूबने की समस्या निश्चित रूप से गंभीर है और आप इंटरनेशनल स्विमर है, इंग्लिश चैनल आपने पार किया, लेक ज्यूरिच आपने पार किया, अब ये बताइए मुझे कि डूबने के कारण क्या है? कैसा कहते हैं कि साहब एक छोटा बच्चा भी डूब सकता है, जो एक साल से कम है वो टब में डूब गया या बाथ सिंक में डूब गया और या बाल्टी में डूब गया, एक साल से चार साल के बच्चे हैं वो घर में लोगों ने स्विमिंग पूल बना रखे हैं वो उसमें डूब गया। तो आप क्या समझते हैं ये स्विमिंग जो इतना छोटा बच्चा कैसे डूब जाता है, रिस्क फैक्टर्स क्या है? शुरुआत इससे करेंगे फिर बात करेंगे कि हम क्या स्कूल्स में या कॉलेजेस में या यूनिवर्सिटी में स्विमिंग पूल की व्यवस्था या सुविधाएं होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए और स्विमिंग हर एक को सीखनी चाहिए, क्योंकि क्या हम स्विमिंग को एक एक्सरसाइज माने, स्विमिंग को एक स्पोर्ट्स माने, स्विमिंग को एक थेरेपी माने, आप क्या कहेंगे?
6: डॉक्टर जनार्दन आपका सवाल बहुत दुरुस्त है बट ये मैं आपको पार्ट्स में इसका आंसर देना चाहूंगी। जैसे कि आप रिस्क फैक्टर की बात कर रहे हैं, देखिए जब छोटे बच्चे होते हैं वो जरा से भी पानी के भाव में, जैसे आप छोटे स्विमिंग पूल में भी लेके गए, ये मान लिया आपने कि 2 फीट पानी है बच्चा खड़ा हो पा रहा है, बट जब पानी में जरा सा मूवमेंट बनता है बच्चा गिर जाता है, हेड टर्न

0: जाता है, तो उसकी वजह से बच्चे की ड्राउनिंग हो जाती है। तो उसी तरीके से आप ये अंदाजा लगाइए कि आपको बच्चे को अनसुपरवाइज नहीं छोड़ना है। जहां बच्चे से आपने सुपरविजन हटा दी और आपने उसको अनअटेंडेड छोड़ दिया, जरा सा पानी का भाव स्विमिंग पूल के अंदर उनको गिरा देगा पानी के अंदर, और हेड टर्न होते ही बच्चे की ड्राउनिंग हो जाएगी। उसी तरीके से जैसे बड़े लोग हैं जो थोड़े एज के हैं, एडवेंचर में आ जाते हैं, दोस्तों का पीयर प्रेशर, अरे मैं देख लूंगा डीप में, चल मैं संभाल लूंगा, दे आर नॉट ट्रेन लाइफ गार्ड। किसी के पुश करने पे, पीयर प्रेशर में आप गहरे पानी पे मत कूदिए। आपको शैलो वाटर्स में रहना है, वेस्ट से बिलो पे रहना है। जब आप एक माहिर स्विमर हो जाए तब आप गहरे पानी की तरफ अपना रुख करिए। सावधानी सबसे इंपॉर्टेंट है। ज्यादातर स्विमिंग पूल्स पे आप देखेंगे बोर्ड लगा होता है स्विम एट योर ओन रिस्क, राइट? वो इसलिए लगा के छोड़ा हुआ है कि आप अच्छी तरह से जानते हैं कि स्विमिंग एक रिस्क है। अगर आप एक बेहतरीन तैराक नहीं है, सावधानियों के बिना एंड विदाउट टेकिंग प्रिकॉशंस, ये मत सोचिए कि मैं कर जाऊंगा जोश में। आपका एक ब्रीदिंग पैटर्न है, किस तरह से आपने स्विमिंग सीखी है, वो सब चीजें ध्यान रखनी चाहिए, और जान से खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। ये हमारे यहाँ पे इतना ज्यादा प्रेशर बिल्ड कर दिया जाता है, पूल पार्टीज हो रही हैं, ये हो रही हैं। आप आए दिन, जैसे डॉक्टर राव ने बताया कि जिस तरह से प्रेशराइज हो जाते हैं लोग, ये गलत है। और हर जगह सेफ्टी नॉर्म्स बनाए गए हैं कि स्विमिंग पूल की गाइडलाइंस हैं, उसे फॉलो करना चाहिए। जहां भी आप गाइडलाइंस से सेफ्टी से कॉम्प्रोमाइज करेंगे, वहां हादसे होने के सबसे ज्यादा चांसेस हैं।
1: डॉक्टर राव, रिस्क फैक्टर्स क्या है? हु आर एट रिस्क?
2: रिस्क में सबसे बड़ा वो है जिसको स्विमिंग नहीं आती और वो डीप वाटर में उतरता है। सबसे बड़ा रिस्क वो है, बिकॉज इट्स अ रिस्की बिहेवियर। नेक्स्ट वो है जो कि हालात की वजह से होता है। आपके घर में पानी है, टब है, बच्चे को आपने छोड़ दिया, मदर कहीं बिजी हो गई, उसके बाद बच्चा गया और टब में उतर गया, तो वो अनसुपरवाइज बच्चा जो है वो एक रिस्क है, अगर उसके पास वाटर सोर्स है जिसमें वो उतर सकता है। तीसरा होता है कि आपकी एज क्या है। यूजुअली यंगर जो बच्चे होते हैं, ऑलमोस्ट 50% डेथ्स 18 साल से कम में होती है। उसके बाद आता है कि कोई एसोसिएटेड आपको डिजीज है या आप एक रिस्की बिहेवियर में करते हैं। डिजीज में जैसे आप समझ लीजिए आपको ऐसी कोई चीज है जो कि आपका बैलेंस खराब करेगी, ऐसी कोई रिस्क है जिसमें आपका हेड बहुत क्लियर नहीं है, मान लीजिए अल्कोहल पी हुई है आपने, ड्रग्स ली हुई है आपने, ऐसी चीज है जैसे आपको पानी में सीजर हो गया तो आप कंट्रोल नहीं कर पाएंगे उसको। तो इन लोगों के अंदर स्पेशल प्रिकॉशन आपको लेनी होती है कि या तो ये पानी में जाए ना, और अगर जाए तो सुपरवाइज जाए, दैट मीन्स कि कोई वॉच ओवर कर रहा है ताकि अगर आपको कुछ हुआ तो वो आपको बचा ले। और तीसरा, आप सारी प्रिवेंटिव मेजर्स करेंगे, जैकेट लेंगे, लाइफ बॉयज लेंगे, जो भी लेंगे, तो इन लोगों के अंदर वो वाला होता है। पर अधिकतर वो रिस्क पे है जो कि जाने अनजाने पानी में उतर जाते हैं। जैसे मान लीजिए आती है कि स्कूल के अंदर स्विमिंग पूल था, एक अभी आई थी कि गोल्फ कोर्स में एक हैजार्ड था, वाटर हैजार्ड, बच्चों ने टापा और उसमें उतर गए। दिस इज अ रिस्की बिहेवियर, क्योंकि वो जैसे कह रहे हैं आप वहां कोई बचाने वाला नहीं है और इनको स्विमिंग आती नहीं है, दे हैव नो आइडिया कि उसकी वॉल ऑलमोस्ट वर्टिकल है, वो सोचते हैं धीरे धीरे गहरा होगा ये, तो वहां पे वो फंस जाएगा।
1: डॉक्टर मीनाक्षी, 53% डेथ कहा जाता है कि स्विमिंग पूल्स में होती है, और आपने इतनी इंटरनेशनल स्विमिंग करी है, तो स्विमिंग पूल्स की क्या कोई क्राइटेरिया कुछ होना चाहिए कि साहब आपने स्विमिंग करते हो, तो क्या स्विम सूट का कोई कलर स्पेसिफिकली आइडेंटिफाई हो कि भाई ये वाला कलर कोडिंग आप करके जाओगे, आपने नियॉन ऑरेंज लिया या ब्राइट पिंक लिया या ब्लू लिया, तो ये सेफ कलर है तो दूर से पहचाना जाएगा कि भाई इसकी कलर कोडिंग अच्छी है, कैप लगाई हुई है, या कोई कलर कोडिंग की कोई जरूरत नहीं है, गर्म पानी होना चाहिए स्विमिंग पूल में सीखने के लिए या ठंडे पानी में? आपने इतनी इंटरनेशनल स्विमिंग, आप बताइए मुझे कि स्विमिंग पूल में क्या जिम्मेदारी होनी चाहिए?
0: देखिए, स्विमिंग पूल्स के साथ ना यूजर्स का एक बिहेवियर बहुत इंपॉर्टेंट है। हर स्विमिंग पूल के बाहर आप देखेंगे कि डेक एरिया मार्क करा जाता है कि शैलो एंड कहाँ है, यहाँ 3 फीट पानी है, यहाँ 2 फीट पानी है, यहाँ 4 फीट है, यहाँ 6 फीट है। तो जब एक यूजर स्विमिंग पूल में आता है तो उसे पहले ये ओरिएंटेशन देनी चाहिए स्विमिंग पूल के स्टाफ के द्वारा कि आपको तैरना आता है या नहीं आता। अगर वो यूजर कह रहा है उसे तैरना नहीं आता, दैट मीन्स दैट पर्सन शुड रिमेन, उन्हें शैलो वाटर्स में रहना है जब तक कि वो अपना प्रोत्साहन बढ़ाएं और ट्रेनिंग लें और इस लेवल पे आएं कि वो गहरे पानी में जा सके, तब तक उन्हें अपने आप को सेफ प्ले करना है और शैलो एरिया में रहना। तो स्विमिंग पूल पे, हर स्विमिंग पूल पे ये मैंडेटरी होता है कि आप एरिया को मार्क करिए, इंडिकेट कीजिए कि ये शैलो एंड है, 2 फीट से भरा है, यहाँ 3 है, अगर स्लोप है तो

0: स्लोप को इंडिकेट करा जाए ताकि जो यूजर्स हैं दे आर वेल अवेयर के एकदम शार्प स्लोप आएगा वो डीप में फिसल सकते हैं। इसी तरह से डीप एंड को भी मार्क करा जाता है कि ये 8 फीट गहरा है, 9 फीट गहरा है या ये 12 फीट गहरा है, क्योंकि कई बार जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि लोग डाइव ले जाते हैं उन्हें ये अंदाजा नहीं है कि कितना गहरा है, दे बैंग देयर हेड और हेड इंजरी हुई वहीं पे डेथ हो गई। सो बहुत प्रिकॉशंस के साथ एक इंसान को चलना चाहिए जब वो स्विमिंग पूल में है। देखिए स्विमिंग बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइफ स्किल है, इससे आप अपनी जिंदगी बचा सकते हैं। मैं तो आपके कार्यक्रम के माध्यम से सबसे अपील करना चाहूंगी कि स्विमिंग को आप स्कूल्स में कंपलसरी कीजिए, क्योंकि सबसे पहली चीज अगर हम देखें, अगर ड्राउनिंग के लिए हम सेफगार्ड करना चाहते हैं, एक इंसान को अगर अपनी जान बचानी आती है तो कम से कम ड्राउनिंग का लेवल डाउन होगा। ये एक एजुकेशन की तरह है, ये एक लाइफ स्किल है, हर किसी को आना चाहिए, इसमें हमें प्रोत्साहन देने की बहुत जरूरत है। और बड़ी खुशी हो रही है देख के कि पहले दिल्ली में बहुत कम सरकारी स्कूल्स के अंदर स्विमिंग पूल की फैसिलिटी थी, अब ओवर द इयर्स स्विमिंग पूल सरकारी स्कूल्स में, सर्वोदय में, केंद्रीय विद्यालय में, हर जगह पढ़ रहे हैं। जो बच्चे अपनी एजुकेशन के साथ वंचित थे कि भाई इट्स एन एक्सपेंसिव एंडेवर, नहीं अफोर्ड कर सकते, हर बच्चे की पहुंच के बाहर है, बट अब सरकार इतने प्रयास कर रहे हैं, हमारी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के भी स्विमिंग पूल्स दिल्ली में हैं, चाहे वो NDMC के हैं, चाहे MCD के हैं, एंड दे आर वेल मेंटेन्ड स्विमिंग पूल।
1: रवि जी, जैसा डॉक्टर मीनाक्षी के, ये बताइए कि आप कोच हैं, तो कोचिंग अगर करनी है या कोई पेरेंट्स आता है कि बच्चे को जी मेरे स्विमिंग सिखा दीजिए, तो व्हाट एज यू शुड स्टार्ट? कहते हैं स्पोर्ट्स में हमेशा कहते हैं कि नर्चर देम यंग, कैच देम यंग।
2: स्विमिंग सिखाने से पहले हमें स्विमिंग का एक पैटर्न जो होता है, जैसे कोई भी बच्चा जिसको पता नहीं है स्विमिंग का, या कोई भी इंसान जब आता है तो जो स्विमिंग पूल का जो रिसेप्शंस है उन पे अगर हम गाइडलाइन रखें स्विमिंग की कि इस चीज से ड्राउनिंग होती है, या अगर आपको स्विमिंग नहीं आती है तो आपको जैसे बहुत सारे स्कूल्स हैं या स्विमिंग पूल्स हैं उनमें जैसे रेड कैप का एक कोड होता है, जब हम स्विमिंग करते हैं तो कॉस्ट्यूम पानी के अंदर चला जाता है, तो हमारा जो सबसे ऊपर रहता है वो हेड
1: कैप ही दिखती है।
2: अब दूर से अगर हम किसी को आइडेंटिफाई करें कि ये नॉन स्विमर है या ये स्विमर है, तो वो कैप से हम उसको कोड कर सकते हैं। तो मोस्टली जैसे काफी सारे जो जिनको पता है कि भाई एक कलर कोडिंग कितना इम्पोर्टेंट है, तो वो अगर हम जैसे रेड कैप है या ब्लैक कैप है, एक ही तरह का कोड अगर हम सभी जितने भी बिगनर स्विमर हैं या जो जिनको स्विमिंग नहीं आती है या जो स्विमिंग सीख रहे हैं, उनको अगर हम एक कोड के माध्यम से अगर हम उनको स्विमिंग पूल के अंदर जाने की एंट्री देते हैं, तो ये मेरे हिसाब से कम अगर हम ज्यादा नहीं माने तो 20% जो ड्राउनिंग है जो स्विमिंग पूल की है वो हम कम कर सकते हैं, क्योंकि वहां जो स्टाफ होता है उसको भी ये एजुकेट करने किया जाता है कि जितने भी इस कोड के या इस कलर की कैप जिन्होंने वियर की हुई है उनको स्विमिंग नहीं आती है, तो वो सबसे ज्यादा उनका जो अटेंशन है वो इसी कोड इसी कलर के ऊपर रहेगा। और फिर जैसे आपने पूछा कि किस एज से हम स्टार्ट कर सकते हैं, तो एज देखिए हम 6 to 8 हमारी जो आइडियल एज है स्विमिंग के लिए वो मानी गई है, क्योंकि इस टाइम पे बच्चे की जो अंडरस्टैंडिंग है या फिजिकल ग्रोथ है ये सारी चीजें, और कुछ ऐसे ब्लॉक्स भी होते हैं जो हमारी फिजिकली जो ग्रोथ होती है, तो वहां पे हर एक बच्चे की अपनी जो अंडरस्टैंडिंग जो रेशो होता है उस एज में वो बहुत ज्यादा वो ब्लॉक ओपन हो जाता है, तो वहां पे जाके हम बच्चे को अगर ये बोलते हैं कि बेटा आप ये कीजिए, उस बात को वो जल्दी कैच कर लेता है, वो अंडरस्टैंडिंग लेवल उसका वहां पे जो ब्लॉक होता है उसमें वो ज्यादा रहता है, जैसे हाइट का है, स्पीड का है, इंडोरेंस का है, तो ये हर एक ट्रेनिंग पैटर्न्स में अपने ब्लॉक्स रहते हैं। तो ये जो एज है ये सबसे अच्छी एज मानी गई है कि यहाँ हम स्विमिंग सिखाने के लिए अच्छे बच्चों को हम प्रोत्साहन कर सकते हैं, उनको एजुकेट कर सकते हैं। स्विमिंग जैसे हमें जीने के लिए खाना सांस लेना जरूरी है, वैसे ही अगर हम स्विमिंग को अपनी लाइफ के अंदर बता दें कि हर एक इंसान को कि आपको स्विमिंग कितनी जरूरी है, क्योंकि ये सबसे जरूरी है कि हमें उस चीज की वैल्यू पता होना, क्योंकि स्विमिंग आज हमें हमारे इंडिया की अगर हम बात करें तो बहुत कम अवेयरनेस है कंपेयर टू अदर कंट्रीज, इसीलिए आज हम अगर कॉम्पिटिटिव स्विमिंग की भी बात करें तो आज हम बहुत पीछे हैं, इसीलिए पीछे हैं।
1: डॉक्टर मीनाक्षी आप क्या कहना चाहेंगे इस विषय पर?
0: देखिए मैं

0: हाँ अगेन इट इज वेरी थेरापेटिक. सब जानते हैं पानी में ग्रेविटी इज जीरो, आपका बॉडी वेट 1/10 रहता है. जो लोग अर्थराइटिस से, दूसरी समस्याओं से, बहुत से हेल्थ इश्यूज से जूझ रहे हैं, पानी से पड़ा उनके लिए कोई थेरेपी नहीं है. सो ये आपका देखने का जरिया है एंड इट इज अ मदर स्पॉट. लेट्स सेलिब्रेट वाटर. इट्स अ वेरी पावरफुल एलिमेंट ऑफ नेचर और इसका जितने कुदरत ने बहुत दिया है, जितना इसका फायदा उठा सकें, आई थिंक वो बहुत इम्पोर्टेंट.
1: डॉक्टर मीनाक्षी, अब ये कैसे पता लगे, मान लीजिए सुपरविजन भी है, वो गार्ड खड़ा है या लाइफ गार्ड खड़ा है, कोच खड़ा है, कैसे पता लगे कि फला व्यक्ति लेडी डूब रही है?
0: देखिए कई बार ऐसा होता है कि अच्छे से अच्छा तैराक भी क्रैम्प आ जाता है ऑल ऑफ अ सडन. आपकी नस-पे-नस चढ़ गई, ऑल ऑफ अ सडन आप वहीं के वहीं स्टेशनरी हो जाते हैं. तो इसीलिए लाइफ गार्ड को बहुत अलर्ट रहना जरूरी है. कई बार लोग सिर्फ आवाज नहीं लगा पाते, सिर्फ हाथ से ही इशारा कर पाते हैं कि मुझे मदद की आवश्यकता है. अगर वो चीज आपने कैच कर ली तब तो लोग मदद के लिए एकदम आ जाते हैं. कई बार ऐसा होता है कि स्विमिंग पूल्स के अंदर लोग गेम्स खेल रहे होते हैं, प्रैंक्स कर रहे होते हैं, तो लाइफ गार्ड भी सोच रहा होता है कि भाई डुबकी लगाने का, सांस होल्ड करने का नीचे प्रैक्टिस कर रहा है, ये कर रहा है, वो भी डिस्टर्ब नहीं करते. बट अच्छी चीज ये है, अगर आप कोई प्रैंक कर रहे हैं या ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर रहे हैं, पानी में होल्ड कर रहे हैं, तो आप स्टाफ को बताइए कि सर मैं ये कर रहा हूँ, ताकि जो स्टाफ ऑन ड्यूटी है वो अलर्ट रहे. ये एक सुपरविजन की बड़ी इम्पोर्टेंट चीज है. बट अब धीरे धीरे जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं दिल्ली में, स्विमिंग पूल्स हैं, सब धीरे धीरे सीसीटीवीज और वो सब इंस्टॉल कर रहे हैं, ताकि सावधानियां और ज्यादा बढ़ सकें. और पीछे जब गवर्नमेंट ने रूल्स वगैरह थोड़े मॉडिफाई करे हैं स्विमिंग पूल के, पहले डाइविंग के पूल स्विमिंग पूल्स के साथ अटैच होते थे, अब धीरे धीरे जो स्टैंडर्ड हमारा फीना का इंटरनेशनल बॉडी का जो रूल है कि हाँ आपको 6.5 फीट का एक स्टैंडर्ड स्विमिंग पूल बनाना है और वो करना है, ताकि गहराई को वो कम से कम रखें, ताकि ये हादसे कम हो.
1: डॉक्टर, एक मेडिकल कंडीशन के हिसाब से आदमी डूबता क्यों है?
2: डूबता क्यों है? बिकॉज उसको तैरना नहीं आता. पॉइंट इज कि डूबना कहते किसको है मेडिकली. जो लेमैन की टर्मिनोलॉजी है उसमें है कि इसके फेफड़े में पानी चला गया. पर पानी जाने से क्या होता है, वहां मेडिकल साइंस उसकी डिटेल में जाती है. आपकी जो लाइनिंग है लंग के अंदर वो डैमेज होती है, उसके अंदर से फ्लूड बाहर आएगा, ब्लड बाहर आना शुरू होगा, ऑक्सीजन अंदर जानी बंद हो जाएगी. अगर ऑक्सीजन आपके दिमाग में नहीं गई, आप सांस लेना बंद कर दोगे. अगर आपने सांस लेना बंद किया तो आपका हार्ट, किडनी और बाकी ऑर्गन सारे जाएंगे. ये सारी चीज कंट्रीब्यूट करती है कि ड्राउनिंग से डेथ कैसे हो.
1: ऑन द स्पॉट डॉक्टर मीनाक्षी, ये जब वो ड्राउन हो गया, डूब गया, आपने उसे निकाल लिया, तो आप ऑन द स्पॉट क्या करेंगे?
0: देखिए सबसे पहले जब आप आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि ये कैजुअलिटी है, ड्राउन हो रही है, उसको आप सपोर्ट देके आप पानी से बाहर लेके आए हैं, उसके बाद आपको सबसे पहले उसका एयरवे खोलने की वो कोशिश रहती है. और लाइफगार्ड जो ऑन ड्यूटी होते हैं सबको फर्स्ट एड और ये टेक्निक्स सिखाई जाती है. उसके बिना उनको सर्टिफिकेशन नहीं मिलता है. अच्छे तैराक होने के साथ साथ लाइफ गार्ड ऑन ड्यूटी को ये सब चीजें कंपलसरी हैं, फर्स्ट एड देना और साथ साथ सीपीआर. ये एक बहुत ही अहम चीज है और ये बहुत सीरियस मैटर है जब वहां बात आती है. यहां तक कि जब स्विमिंग पूल चलाने की आपको परमिशन मिलती है, लाइसेंस मिलती है, आपको वहां पे ऑक्सीजन सिलेंडर रखना कंपलसरी है, स्ट्रेचर होना जरूरी है, पूरा फर्स्ट एड का बॉक्स आपका रेडी होना चाहिए. अगर इमरजेंसी क्रिटिकल कंडीशन वहां पे है तो एम्बू बैग आपके होने वहां बहुत जरूरी होते हैं. इसके बिना आपको स्विमिंग पूल का लाइसेंस नहीं मिलता है. और वहां के जो चलाने वाले हैं स्विमिंग पूल, वो सब ट्रेन लोग होते हैं कि इमीडिएटली, देखिए डॉक्टर साहब आपको बता सकते हैं कि कितना ऑक्सीजन का लेवल आपको देना है, बट जो स्विमिंग पूल का स्टाफ है उसे वो ट्रेनिंग देनी चाहिए कि ऑक्सीजन का सिलेंडर तो है पर आपको देनी ही नहीं आती, तो वो एक समस्या है. ये सब चीजें आप धीरे धीरे एड्रेस हो रही हैं और जो लाइफगार्ड की ट्रेनिंग है और स्पेशलाइज तरीके से इम्प्रूव हो रही है. बट सीपीआर इज वेरी,
1: सीपीआर पर बात करेंगे डॉक्टर राव से. रवि जी ये बताएं कि जो एक ट्रेंड एथलीट है या एथलीट नहीं भी है, एक आम इंसान है, वो तो स्विमिंग सीख रहा है, अब जो पैरा वाले जो लोग हैं क्या वो भी स्विमिंग करते हैं? आप तो उस पर आप बहुत काम कर रहे हैं, आप भारतीय प्राधिकरण से जुड़े हैं, खेल प्राधिकरण से, आप क्या समझते हैं कि वो मुश्किल काम है या वो आसान काम है, और उन्हें सिखाना चाहिए नहीं सिखाना चाहिए?
3: देखिए सर, सिखाना चाहिए नहीं सिखाना चाहिए, इसमें मैं डेफिनेटली बोलूंगा कि उनको सिखाना चाहिए. और जो दूसरा है आपका कि इन बच्चों के लिए मुश्किल है, तो डेफिनेटली, क्योंकि एक डिसेबिलिटी

0: उनके पास पहले से है,
1: जी
0: तो जो हमारी जो सोसाइटी में अवेयरनेस की कमी है उसकी वजह से पेरेंट्स अपने बच्चों को फ्रंट पे लाना ही नहीं चाह रहे हैं जो आज की सिचुएशंस है। और हम अभी धीरे धीरे जितने भी कोचिज हैं, मैम हैं, हम लोग धीरे धीरे यही कोशिश कर रहे हैं कि हम अपनी सोसाइटी में ये अवेयर कर सकें, पेरेंट्स को बता सकें, और जितने भी कॉम्पिटिशन्स हमारे पैरा के होते हैं उनमें भी हम जहां जहां जाते हैं कि आपको ये एक डिसेबिलिटी नहीं है, ये आपकी जीवन का एक भाग है, इसके साथ आपको कैसे आगे आप बढ़ सकते हो वो हम उन लोगों को सिखाते हैं। डिसेबिलिटी एक अलग चीज है, स्विमिंग एक स्पोर्ट, एक हमारी ऐसी इम्पोर्टेंस है लाइफ की कि स्विमिंग जो सीख जाता है उसकी डिसेबिलिटी को ओवरकम कर लेता है। अब बहुत सारे बच्चे मेरे पास ऑटिज्म ऑटिस्टिक ऐसे बहुत सारे डिसेबल्ड बच्चे आते हैं जिनकी स्पीच कम होती है, स्विमिंग जिसने स्टार्ट किया है या जो कंटिन्यू स्विमिंग कर रहे हैं जिनकी स्पीच कम है उनकी स्पीच आ जाती है, जिनकी स्पीच क्लियर नहीं है उनकी स्पीच क्लियर हो जाती है, जिनके मूवमेंट क्लियर नहीं है उनके मूवमेंट क्लियर हो जाते हैं, जो चल नहीं पाता है स्विमिंग के कारण वो चल पड़ता है, चलने के साथ साथ धीरे धीरे वो दौड़ भी लेता है। मैंने खुद अपने बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, मेरे पास एक लड़का है पहले वो 5-7 फीट तक चल नहीं सकता था विदाउट एनी हेल्प, आज वो 400 मीटर ट्रैक रनिंग 800 मीटर रनिंग भी करता है। तो ये सब स्विमिंग के बेनिफिट्स हैं। और जो डिसेबिलिटी है स्विमिंग वाटर रेजिस्टेंस के कारण, क्योंकि जो वाटर प्रेशर होता है, अगर हम जैसे बहुत सारे जितने भी मोस्टली हमारे ज्वाइंट्स हैं तो ज्वाइंट्स पे जो प्रेशर आता है जो वाटर प्रेशर आता है वो स्विमिंग में उस ज्वाइंट के चारों तरफ रहता है। अगर हम जिम में कोई एक्सरसाइज करते हैं, फॉर एग्जाम्पल मेरे नी का रिहैब हुआ है, डॉक्टर साहब और अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएंगे, अगर मुझे बोला गया कि आपने नी में थोड़ी स्ट्रेंथनिंग करनी है तो वो स्ट्रेंथनिंग जब हम करते हैं तो जब हम वो मूवमेंट करते हैं तो वो मूवमेंट में जिम के अंदर या स्ट्रेंथ रनिंग में उस पर्टिकुलर एक साइड ही उसको प्रेशर मिलता है। बट अब अगर उसी चीज को हम पानी के अंदर लेके आए तो वो पानी के अंदर उसके चारों तरफ उस सेम प्रेशर मेंटेन करता है। तो ये इसका स्विमिंग का सबसे अच्छा है और सबसे बेस्ट वे है, क्योंकि वाटर थेरेपी से ही बहुत सारे ज्वाइंट्स हैं, लिगामेंट्स हैं, जब हम रिहैब करते हैं, आजकल आप देखिए बाहर जितनी भी कंट्रीज हैं तो स्विमिंग रिहैब में सबसे ज्यादा वो वाटर थेरेपी इसलिए यूज करें।
1: ऑन द स्पॉट वेन्यू पे क्या सीपीआर दिया जा सकता है, और अगर सीपीआर देना है या ऑक्सीजनेशन देनी, आपने उसे अस्पताल पहुंचा दिया तो अस्पताल में क्या उसका वो होगा?
2: जब एक इंडिविजुअल शख्स, बच्चा हो या बड़ा हो,
1: जी
2: जब वो बाहर आता है, खुद आए या कोई लाए, तो 3 कंडीशन हो सकती है उसके साथ। या तो वो खांस रहा है पर कॉन्शियस है, पर उसकी सांस ठीक है, खांसी आ रही है उसको। दूसरा है कि वो ब्रेथलेस है, खांस रहा है, सांस फूल रहा है उसका, पर वो कॉन्शियस है। तीसरा, वो खांस नहीं रहा, वो सांस नहीं ले रहा, वो कॉन्शियस नहीं है। ये 3 चीज ले पर्सन और ट्रेन्ड आदमी एक ही जैसे देखता है। मैं उसकी कॉन्शियसनेस देखूंगा, इज ही रिस्पॉन्सिव, कुछ बोला हिलाया। दूसरा, उसका रेस्पिरेशन, क्या वो सांस ले रहा है। तीसरा, उसका पल्स। यहां से शुरू होती है कहानी, जो डिफर करती है एक कार्डियक अरेस्ट जो कि दिल की वजह से होता है और एक कार्डियक अरेस्ट जो ड्राउनिंग से होता है। ड्राउनिंग इज प्राइमरली अ रेस्पिरेटरी कंडीशन, इज नॉट अ कार्डियक कंडीशन। दिल में उसको कुछ नहीं था, उसको ऑक्सीजन नहीं मिली क्योंकि रेस्पिरेशन नहीं चला, इसलिए हार्ट रुका। तो फर्स्ट अटेंशन जो बाई स्टैंडर्ड है उसकी होती है रेस्पिरेशन पे, हार्ट पे नहीं होती। उसमें अगर आपको लगता है कि ये सांस नहीं ले रहा, आप ऑक्सीजनेशन को छोड़ दीजिए, तो आप उसको 5 रेस्क्यू ब्रेथ माउथ टू माउथ देंगे एंड यू विल वॉच कि उसकी चेस्ट ऊपर उठे। इन लोगों के अंदर पानी पेट में भी भरा है, वो नाक से गया, मुंह से गया, पर अल्टीमेटली पेट में भरा है। एक कॉमन मिसकंसेप्शन है कि अगर आप उसका पेट दबाएंगे और उसके मुंह से पानी निकल गया तो वो ठीक हो जाएगा,
1: जी
2: ये एक मिसकंसेप्शन है, ये मेडिकली प्रूवन चीज नहीं है, इनफैक्ट इससे हार्म हो सकता है। ये आदमी और बच्चा अनकॉन्शियस है, अगर आप इसके स्टमक के पानी को मुंह में लाएंगे तो वहां से वो इसके लंग में जरूर जाएगा,
1: एस्पिरेट कर सकता
2: है। पहले नहीं गया था, अब जाएगा, और स्टमक खाली करने से आपको कोई फायदा नहीं होता। तो पहली चीज आप उसको रेस्क्यू ब्रीदिंग दीजिए, काफी सारे वही रेस्क्यू ब्रीदिंग से उनकी किक इन हो जाती है और वो अपने आप सांस लेने लगेंगे। अगर वो नहीं लेते तो फिर आपको उसको देना है, एम्बू बैग से दीजिए, ऑक्सीजन लगा के दीजिए, फिर देखिए उसकी पल्स नहीं चल रही तो आपको मसाज देनी पड़ेगी, जो CPR आप बोल रहे हैं। अगर डिफिब्रिलेटर है तो वो

0: लगेगा अगर उसको लगता है आपको कि ये सब करते हुए उसकी आ गई या नहीं आई रेस्पिरेशन या हार्ट. ही हैज टू बी मूव्ड और शी हैज टू बी मूव्ड टू हॉस्पिटल. देन नथिंग एल्स यू कैन डू ऑन द साइट.
1: तो डॉक्टर राव, अगर वो हॉस्पिटल पहुंच जाता है तो हॉस्पिटल पहुंचने के बाद उसका क्या आप इलाज करते हैं अगर उसे बचाना है तो?
0: लंग में जो पानी गया वो अपने आप एब्जॉर्ब होगा, हम उसको नहीं निकालते. ट्रेकिया हमारी 20 से 25 मिलीमीटर डायमीटर की है. एंड जहां पर होता है उसका वो 0.5 मिलीमीटर है, जो बॉल पेन की निब के बराबर है, टिप के बराबर है. 23 जनरेशन डिविजन के बाद आप उसे जो मर्जी कर लीजिए, उल्टा लेटा लीजिए, टांग दीजिए, पानी नहीं निकलेगा उसका. वो उसके अंदर चला गया और एब्जॉर्ब होगा. जो इंजरी हुई उसके डिपेंडिंग ऑन कि हम उसको वेंटिलेट करेंगे, ऑक्सीजन देंगे, जो जो उसके ऑर्गन इन्वॉल्व हुए उनको सबको सपोर्ट करेंगे. अल्टीमेटली अगर वो बहुत टाइम तक नहीं डूबा रहा तो वो पानी एब्जॉर्ब होने के बाद उसके चेंजेस रिवर्ट हो जाते, एनी सर्वाइव. पर अगर वो डूबा रहा बहुत दिन या उसको सीपीआर नहीं मिली 10 मिनट तक, तब उसका आउटकम अच्छा नहीं होगा.
1: तो सीपीआर में बेसिकली आपको क्या करना चाहिए या रेस्पिरेशन क्या करना चाहिए?
0: सिर्फ माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन.
1: कितनी देर तक?
0: जब तक आप अस्पताल नहीं पहुंचते, जब तक वो ब्रीद नहीं करता, जब तक आपको एम्बू बैग नहीं मिलता.
1: एज ए फिजिशियन, एज ए मेडिकल एक्सपर्ट, आप कुछ सलाह देना चाहेंगे पेरेंट्स को, नागरिकों को, जनता को कि आप अपने बच्चों को स्विमिंग सिखाएं लेकिन काइंडली इन कंडीशंस को जरूर फॉलो करें, क्या सलाह देना?
0: तीन चीजें. अगर आप घर की बात करते हैं और घर के इमीडिएट सराउंडिंग की बात करते हैं
1: जी,
0: तो ये गार्ड वार्ड नहीं चलते
1: जी,
0: क्योंकि छोटा बच्चा डूबता है
1: जी.
0: सो सुपरविजन केयर इज मोर इम्पोर्टेंट देन कीपिंग एनी गार्ड. अगर आप पब्लिक प्लेसेस की बात करते हैं तो वहां पे यू शुड क्रिएट बैरियर so that you don't have access to the water body. आप पानी में नहीं जाएंगे तो डूबेंगे नहीं. तीसरा ये है कि जहां आप चाहते हैं कि पानी में जाया जाए, जैसे स्विमिंग पूल्स हैं
1: जी,
0: तो वहां पे जो सेफ्टी प्रिकॉशंस है वो लेनी चाहिए आपको. कोच, लाइफ बॉयज, सेग्रीगेशन बिटवीन डीप एंड
1: शेलो वाटर,
0: ऑल दोस थिंग्स शुड बी देयर.
1: अविनाशी आप क्या कहना चाहेंगे?
2: देखिए, चेक किसी भी लेवल का कंपटीशन हो, बेसिक फर्स्ट एड और लाइफ गार्ड और ड्यूटी होना बहुत जरूरी है. इन सेफ्टी से हमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है. और हर जगह इंडिकेशंस, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि ये शैलो एंड है, ये डीप एंड है, ताकि यूजर वेल अवेयर हो. जो बिगनर हैं वो आइडेंटिफाई करे जाए, अलग सेग्रीगेट करे जाए, ताकि ट्रेंड लोग अलग तैर रहे हैं, बिगनर्स अलग एरिया में हैं, सब एक दूसरे का ध्यान करें. ये नहीं कि एक दूसरे से टकरा रहे हैं, कोई किसी पे जंप कर जाए. तो एक पूल में भी आपको डिसिप्लिन मेंटेन करना बहुत जरूरी है. और जब आप नेचुरल ओपन वाटर बॉडीज की बात करते हैं, नदी है, पॉन्ड्स हैं, आज भी हम देखते हैं रिवर के बैंक्स पे, पॉन्ड्स पे, साउथ इंडिया में देखिए, वेस्ट में देखिए, आप बंगाल में देखिए, बहुत अच्छे तैराक हैं जो पानी में और ये खुली ओपन वाटर बॉडीज में तैरना सीखते हैं, प्रशिक्षण ले रहे हैं, बट सावधानियों के साथ. सुपरविजन, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा, बिना सुपरविजन के, बिना ऑब्जर्वेशन के पानी में जाना बहुत खतरनाक है. और हर चीज का एक एरिया मार्क करते हैं. जो लोग पॉन्ड में भी स्विमिंग करते हैं वो पूरा का पूरा एरिया एक मार्क करके कि ये शैलो एरिया है, यहाँ सिखाया जाएगा. सो ये सब चीजें अगर ध्यान रखी जाए और सारे सेफ्टी गैजेट्स वहां पे अवेलेबल हो, जैसा मैंने आपको बताया.
0: ये तो इंडिविजुअल्स की बात हुई
1: जी.
0: लेट्स टॉक ऑफ मासेस. बाढ़ आई, 100 आदमी डूब गए
1: जी.
0: एक फेरी डूब गई, उसमें 150 आदमी गया
1: जी.
0: दीज आर ऑल सेफ्टी इश्यूज. सेफ फेरी का डिजाइन ठीक नहीं था, फेरी ओवरलोडेड थी. सो दीज आर एक्सीडेंटल कॉसेस. एंड थर्ड इज दी साइकोसोशल, क्योंकि डोंट फॉरगेट दैट ड्राउनिंग से डेथ बाय सुसाइड भी होती
1: है. हाँ, सुसाइडल डेथ भी एक बहुत बड़ा इश्यू है.
0: सो इट इज नॉट जस्ट कि आप बचा पाएंगे, उसका
1: बिहेवियरल चेंज भी होना बहुत जरूरी है. डॉक्टर बीके राव, डॉक्टर मीनाक्षी पाहूजा, रणबीर शर्मा जी, आपने जो आज बहुत ही एक महत्वपूर्ण जानकारी दी कि बहुत ही बर्निंग टॉपिक है ड्राउनिंग, और क्यों हम इससे कैसे बचाव कर सके, इसकी रोकथाम हो सके और जो प्रेशियस लाइव्स हैं वो बचाई जा सके. और इस परिचर्चा में भाग लेने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद. नमस्कार.
3: अभी आप ये परिचर्चा सुन रहे थे. संचालन कर रहे थे डॉक्टर जवाहरलाल जैन. इसी के साथ आज की स्वास्थ्य पत्रिका हमारी सेहत अब यहीं समाप्त होती है. फिर मिलेंगे अगली बार. तब तक के लिए स्वीकार करिए हमारा नमस्कार. अभी आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे थे कार्यक्रम स्वास्थ्य पत्रिका हमारी सेहत. कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता थी शालिनी मित्तल.

0: नमस्कार, धरती आकाश के इस अंक में आप सबका स्वागत है।
1: जैसा कि हमारे सुनने वाले जानते हैं कि हम अपने इन पत्रिका कार्यक्रमों के माध्यम से प्रत्येक सप्ताह उन तक नई नई जानकारियां नई नई विशेषज्ञों के द्वारा पहुंचाते रहते हैं। जैसा कि पता चला है 22 जुलाई 2026 को कि सिक्किम के नामची जिले में NHPC के निर्माणाधीन तीस्ता विद्युत परियोजना की सुरंग में एक दुर्घटना हो गई और सूचना अनुसार 20 श्रमिकों की मृत्यु हो गई है। इस तरह की दुर्घटनाएं उस पनबिजली परियोजना के लिए या बांध बनाने के लिए होती रहती है। आखिर बांध की सुरक्षा के उपाय क्या हो सकते हैं, इस पर तकनीकी क्या है, इसका विज्ञान क्या है, किस तरह से जगह का और उस जमीन का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है और उस तकनीक के अलावा इसमें जन जागरूकता किस तरह की होनी चाहिए लोगों के लिए, इन सब बातों पर विस्तृत जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ आकाशवाणी के स्टूडियो में उपस्थित है डॉक्टर विजेंद्र कुमार मिश्रा। आप भारत सरकार के राष्ट्रीय बांध सुरक्षा प्राधिकरण में पैनल बद्ध तकनीकी विशेषज्ञ है, साथ ही राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण भारत सरकार में विशेषज्ञ के रूप में कार्य कर चुके हैं और डिजास्टर एंड क्लाइमेट एक्शन फेडरेशन नई दिल्ली के संस्थापक भी रहे हैं। हमारे दूसरे विशेषज्ञ हैं श्री मणि कुमार, आप असम एकीकृत नदी बेसिन प्रबंधन कार्यक्रम, मेघालय की एशियाई विकास बैंक समर्थित जलवायु अनुकूलन एवं सामुदायिक जल संचयन परियोजना, सिक्किम की जल विद्युत परियोजनाओं, मराठवाड़ा क्षेत्र के विभिन्न नदी जोड़ों एवं जल हस्तांतरण से जुड़े विभिन्न परियोजनाओं में अपनी तकनीकी विशेषज्ञता दे चुके हैं। डॉक्टर विजेंद्र कुमार मिश्रा जी और श्री मणि कुमार जी, आपका आकाशवाणी के स्टूडियो में स्वागत है।
2: नमस्कार।
1: सबसे पहले हम बात करते हैं बांध के सुरक्षा की, विज्ञान की, तकनीक और जन जागरूकता की। तो एक जब बांध का निर्माण किया जाता है तो उस जगह का चुनाव और बांध की क्षमता, इन सब का निर्धारण कैसे किया जाता है? मिश्रा जी,
2: तो बांध का जो चुनाव होता है उसके लिए कई तरह के साइंटिफिक और रिसर्च स्टडीज की आवश्यकता होती है। जब भी सरकार किसी भी क्षेत्र में बांध बनाने के लिए घोषणा करती है उसके पहले उनको सबसे प्रमुख 3 से 4 तरह के साइंटिफिक स्टडीज करनी होती है। सबसे पहले तो बांध बनाने के लिए जो उपयुक्त स्थान है उसके लिए उसका जियोलॉजिकल और साइस्मिक स्टडीज सबसे मैंडेटरी होता है, बिकॉज जहां पर बांध बनेगा उसके अंदर की भू संरचना क्या है, उसमें जियोलॉजिकल एस्पेक्ट्स क्या है, कौन कौन से रॉक प्रोफाइल में वो डैम बनने जा रहा है, तो उसके रॉक की स्टेबिलिटी और वहां पे जो सोयल की स्टेबिलिटी, इन दोनों का असेसमेंट बहुत डिटेल रूप में किया जाता है। इसके साथ साथ उसकी टोपोग्राफी के एस्पेक्ट को देखना बहुत जरूरी, बिकॉज बांध बनाने के लिए जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो बेसिकली विस्तृत हैं, जैसे कि हाइड्रोलिक्ट्रिक प्रोजेक्ट जनरेशन है, इरिगेशन के प्रोजेक्ट्स हैं, फ्लड कंट्रोल्स हैं और अन्य हैं। तो इसके साथ साथ जो उस बांध बनाने के लिए जो लोकेशन का चुनाव करना है वहां पे जो अर्थक्वेक की क्या प्रोफाइल है, तो उसके लिए साइस्मिक स्टडीज भी बहुत महत्वपूर्ण होती है। इसके साथ साथ एनवायरमेंटल जो इम्पैक्ट हो सकता है बांध बनाने के दौरान या बांध बनाने के बाद, वहां की जो बायोडाइवर्सिटी है या इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या होंगे, उन सब के लिए बेसिकली मुख्यतः 3 तरह की स्टडीज प्रमुख होती है, जो कि जियोलॉजिकल असेसमेंट्स, उसमें उनका स्ट्रक्चरल असेसमेंट, साथ में साइस्मोलॉजिकल भूवैज्ञानिक या वहाँ का जो अर्थक्वेक का निर्धारण, साथ में उसका एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट और सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट को देखा जाता है।
1: अब जैसा कि अभी वर्तमान में मॉनसून का समय है और बारिश अनिश्चित होती जा रही है, कभी कभी काफी एक ही साथ बहुत सारी बारिश हो जाती है और कई बार लोग उसका पूर्वानुमान नहीं कर पाते हैं, संबंधित जो विशेषज्ञ होते हैं, तो मानसून के दौरान बांधों के लिए सबसे बड़ी चुनौती क्या होती है और ऐसे समय में किस तरह की विशेष सावधानियों का पालन किया जाता है?
2: इस संदर्भ में डैम जो ऑपरेटर्स होते हैं या जो अलग अलग प्रबंधन के जो डैम्स हैं, जैसे कुछ डैम्स तो प्राइवेट ओन्ड होते हैं, कुछ डैम भारत सरकार के नियंत्रण में होते हैं, उनका समय समय पे होता रहता है। इसमें जो डैम में जो वर्कर हैं, वहाँ के डैम के इंचार्ज हैं, वो प्री एंड पोस्ट मानसून एक इंस्पेक्शन अपने तरीके से करते हैं, साथ में ही जो भी डैम ऑपरेटर्स हैं या डैम यूनिट्स हैं, उन डैम यूनिट में एक इमरजेंसी एक्शन प्लान, एक विस्तृत जो है खाका सरकार तैयार करवाती है, जो कि नेशनल डैम सेफ्टी एक्ट में एक मैंडेटरी उनका एक डॉक्यूमेंट है। तो इमरजेंसी एक्शन प्लान जो होता है उसमें अगर कोई इमरजेंसी डैम में आती है, अचानक जल स्तर बढ़ता है या अगर डैम के ब्रेक की सिचुएशन होती है, तो उसमें जो इमरजेंसी एक्शन प्लान में जो भी प्रोटोकॉल्स दिए होते हैं, जैसे कि मान लीजिए गेट में अचानक पानी बढ़ रहा है, तो उस संदर्भ में क्या करें, उसमें डैम को ओपन करें, साथ में उनके जो डिजास्टर रिस्पॉन्स के जो प्रोटोकॉल्स हैं, जैसे कि स्टेट में आपका डैम सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन हैं उनको सूचना देना, उसके अलावा जो डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज हैं, साथ में SDRF, NDRF, पुलिस, तो जब भी इस तरह की अचानक कोई दुर्घटना होने का ऑब्जर्वेशन होता है तो इमरजेंसी एक्शन प्लान में

0: उसके स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स बने हुए होते हैं, वो पूरी तरह से निर्धारित होते हैं और नेशनल डैम सेफ्टी अथॉरिटी को वो सारी सूचनाएं रहती हैं कि कौन से पर्टिकुलर डैम में उसका ईएपी क्या है और ईएपी के अंदर कौन कौन से जो प्रभारी हैं या अधिकारी हैं जो नियुक्त हैं, किनका क्या काम है। तो इमरजेंसी जो एक्शन प्लान है वो एक डिटेल्ड डॉक्यूमेंट होता है और उसमें डैम में आने वाली कोई भी समस्या है या अचानक जल स्तर बढ़ रहा है या कोई डिजास्टर ऊपर आ गया, कोई ग्लॉफ का इंसिडेंस हो गया, उसमें जो भी सावधान बरतनी है उसके लिए ईएपी अपने आप में एक बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट होता है और ये एनडीएसए के एक मैंडेटरी जो एक डॉक्यूमेंटेशन है, असेसमेंट है, उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण
1: तो
0: है।
1: ये क्या कानूनी प्रावधान?
0: ये कानूनी प्रावधान है नेशनल डैम सेफ्टी एक्ट में। ये जितने भी छोटे या बड़े स्तर के डैम है, क्योंकि भारत में अभी करीब धर्मा जो पोर्टल है करीब 6,500 से ज्यादा डैम जो है उसमें रजिस्टर्ड है। धर्मा पोर्टल जो नेशनल सीडर सेंटर वाटर कमीशन का एक डिजिटल रिकॉर्ड है भारत में जितने भी छोटे बड़े डैम है, वही ओल्ड एज डैम है जो 100 साल से अधिक कुछ डैम्स है, करीब 290 डैम भारत में ऐसे हैं जो कि 100 साल से ऊपर या ओल्ड एज डैम्स हैं, वही 50 साल से पुराने डैम करीब 1,000 से अधिक उनकी संख्या है। तो इन सब के रखरखाव, उनके स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी असेसमेंट, या अगर कोई वहाँ पे दुर्घटना हो जाती है डाउन स्ट्रीम में जो जनता वहाँ रहती है, लोग रहते हैं, बड़ी बड़े मतलब बस्तियां हैं, एक डिस्ट्रिक्ट में कोई एक डैम है उसका जो कैचमेंट एरिया है या उसका जो इम्पैक्ट एरिया है अगर बांध टूटता है वो काफी बड़ा है, तो इस केस में भारत सरकार ने जो डैम सेफ्टी एक्ट 2021 में बनाया है उस डैम सेफ्टी एक्ट में इमरजेंसी एक्शन प्लान और उसका डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान भी एक मैंडेटरी ऑप्शन है। वो हर डैम यूनिट अपने लेवल पे बनाता है, उसमें सारे प्रोटोकॉल्स प्रोसीजर्स को लिख करके कंसर्निंग जो एसडीएसओ है और एनडीएसओ उसको जमा करना पड़ता है, तो सारा जो क्रियान्वयन है वो उसी एक्शन प्लान के हिसाब से ही ऑपरेट होता है।
1: मनी कुमार जी, जो बांध के जो डाउन स्ट्रीम में लोग रह रहे हैं उनके लिए सुरक्षा बहुत जरूरी होती है, क्योंकि कई बार वो पहाड़ी इलाकों में देखते नदी सूखी है, अचानक पानी छोड़ा जाता है, तो उस स्थिति में इवैल्यूएशन के लिए या इवैक्यूएशन के लिए किस तरह की प्लानिंग होती है और वहाँ के लोगों को क्या किसी तरह का ट्रेनिंग दिया जाता है, मॉक ड्रिल किया जाता है, प्रशिक्षण या जन जागरूकता कार्यक्रम आदि किया जाता है, तो वो किस तरह का है?
2: एनडीए के प्रोटोकॉल के तहत आज के डेट में जितने भी डैम्स हैं उनका हम लोग डैम ब्रिज एनालिसिस करते हैं। डैम ब्रिज एनालिसिस या डैम ब्रेक एनालिसिस के आधार पे हम ये जानते हैं कि अगर डैम ब्रिज कर जाता है चाहे जो भी सर्कमस्टांसेज हो, या तो वो एक्सट्रीम फ्लड हो, क्लाउड ब्रस्ट हो, ग्रोव का इफेक्ट हो, एकाएक ज्यादा पानी आ जाता है, हालांकि हमारे डैम्स में उसका प्रोविजन रहता है, फिर भी अगर उस तरह के अगर सिचुएशन आ जाते हैं उसके लिए हम लोग एक डैम ब्रेक एनालिसिस करते हैं। ये इसका प्रावधान एनडीएसए में किया गया है, ये हर डैम्स के लिए आवश्यक होता है। और उस डैम ब्रेक एनालिसिस के बाद हम देखते हैं कि अगर डैम ब्रेक करता है, डैम फेलुअर होता है, तो उसका पानी डाउन स्ट्रीम में नीचे के क्षेत्र में कहां तक फैलता है, उसका एक्सटेंट कहां तक जाता है, और वो पानी का जो जमाव होता है उसका क्या डेप्थ है, किस वेलोसिटी से वहां पहुंचता है, उसके अराइवल का समय क्या है, ये सारी जानकारी हम लोग उस एनालिसिस के आधार पे निकालते हैं और एक इमरजेंसी एक्शन प्लान बनता है और उस इमरजेंसी एक्शन प्लान में वो सारा चीज समाहित रहता है और अकॉर्डिंगली हम लोग एक प्लान इवैक्यूएशन का भी उसमें रखते हैं कि अगर इस टाइप की स्थिति आ जाती है, अगर ये हमारा एरिया इनंडेट हो जाता है तो वहाँ के लोगों को कैसे हम इवैक्यूएट करेंगे, और इसमें हमारा पूरा सिस्टम्स लगा होता है, हमारे केंद्रीय एजेंसी, राज्य स्तर की एजेंसी और लोकल प्रशासन और कम्युनिटी, ये सारे मिल के इस आपदा से हम लोग निजात पाते हैं। तो ये सारा प्रावधान किया हुआ है और आज की स्थिति में हम उसको करने में सक्षम है।
0: इसमें कुछ चीजें मैं जोड़ना चाहता हूँ, क्योंकि मैं डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी में भी एक्सपर्ट रहा हूँ, तो नेशनल डैम सेफ्टी अथॉरिटी के साथ साथ इमरजेंट सिचुएशन में अगर कोई डिजास्टर आती है, अचानक फ्लड लेवल हो गया या ऊपर कोई लैंडस्लाइड हो गया या ग्लॉफ हो गया, तो उस सिचुएशन में डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी बना हुआ है, क्योंकि डैम जो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट है वो 3 लेवल का स्ट्रक्चर भारत में बनाता है। ऊपर तो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है जो नेशनल लेवल पे पॉलिसी बनाती है, गाइडलाइंस बनाती है, उसके बाद स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज बनी हुई है, इसके बाद जो लोकल जो प्रशासन है वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी होती है, और डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का ये मैंडेट होता है कि अपने क्षेत्र में डिस्ट्रिक्ट में इस तरह के कोई डैम या क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर बने हुए हैं तो वहाँ पे समय समय पे मॉक ड्रिल हो, एक प्रॉपर सिचुएशन को क्रिएट करके, जैसे मान लीजिए कि अचानक दुर्घटना हो जाए तो उस केस में लोकल कम्युनिटी को इन्वॉल्व किया जाता है, लोकल जो वहाँ पे प्रधान होते हैं उनको बुलाया जाता है और एक पूरा मॉक ड्रिल किया जाता है कि उस सिचुएशन में कैसे कैसे करें, सपोज अगर इवैक्यूएशन मास इवैक्यूएशन प्लान करना है तो कैसे करें, तो उसमें पूरा डिस्ट्रिक्ट

0: एडजस्टमेंट अथॉरिटी फुली इन्वॉल्व होता है,
1: उसे लोगों को अवेयर कर
0: अवेयर किया जाता है।
1: आजकल जलवायु परिवर्तन का प्रभाव हर जगह दिखने को आ रहा है, अत्यधिक वर्षा, अचानक बाढ़, फ्लड्स के भी आ जाते हैं। ऐसी स्थिति में आप दोनों के अनुसार अंत में जानना चाहेंगे कि विज्ञान, आधुनिक तकनीक, प्रभावी कानून और जन जागरूकता, इन चारों के समन्वय से भारत को बांध सुरक्षा के क्षेत्र में और अधिक सक्षम कैसे बनाया जा सकता है।
2: जहाँ तक बांध की सुरक्षा का सवाल है, तो हमारे देश में नेशनल डैम सेफ्टी एक्ट 2021 बना है, जिसका हम लोग पालन कर रहे हैं। 2021 के पहले वैसा कोई यूनिफॉर्म फ्रेमवर्क, लीगल फ्रेमवर्क नहीं था, और जो भी होता था वो CWC केंद्रीय जल आयोग के गाइडलाइंस में किया जाता था। लेकिन ऐसा पाया गया कि बहुत सारे हमारे जो बांध हैं वो एक स्टेट के नहीं, दो स्टेट के जुडिशन को कवर करते हैं, या फिर वैसी स्थिति में अगर कहीं कोई रिस्क है तो एक इन्फॉर्म लीगल फ्रेमवर्क होना जरूरी होता है। तो ये सोचते हुए 2021 में एक लीगल फ्रेमवर्क तैयार किया गया, नेशनल लेवल पे एक कमेटी बनी और एक नेशनल डैम सेफ्टी अथॉरिटी का गठन किया गया। उसी तरह से फिर राज्य स्तर पे भी एक कमेटी है, और कमेटी के अलावा एक ऑर्गेनाइजेशन, स्टेट लेवल ऑर्गेनाइजेशन का भी गठन किया गया, जिसे स्टेट SDSO के नाम से जाना जाता है। तो ये सारे चीज एक्ट के हिसाब से गठित किए गए हैं। अब रहा कि ये हमारे डैम्स के संचालन में मदद करते हैं, और जो ओनर्स हैं इसको फॉलो अप करें, डैम सेफ्टी के लिए इसके प्रोटोकॉल्स को फॉलो करें, इसका सर्विलेंस प्रॉपर्ली होना चाहिए, मॉनिटरिंग होना चाहिए, ऑपरेशन मेंटेनेंस होना चाहिए। ये सारे चीज हमारे जो अथॉरिटी है उसको देखते रहते हैं कि किसी तरह की उसमें कोई कमी तो नहीं है, और उसमें वो मदद करते हैं।
0: जैसा कि आपने बताया, क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन बहुत बड़ी समस्या है, और हमारे डैम जितने भी हैं, बिकॉज बहुत सारा पानी उनमें स्टोर होता है, तो उसके लिए NDSE की जो गाइडलाइन है उसमें कई सारे प्रावधान है, जैसे कि CDSE है, कॉम्प्रिहेंसिव डैम सेफ्टी इवैल्यूएशन, वो अभी मैंडेटरी है सारे डैम्स को करना है, और वो 2026 दिसंबर तक सारे डैम को कम्प्लीट करना है। अभी भारत सरकार में जितने भी स्टेट में डैम्स है, सब लोगों ने भी CDSE करवाने का ऑलमोस्ट एकदम बीड़ा उठाया हुआ है। मैंने भी काफी सारे डैम में CDSE में मैं कार्यरत हूँ, पार्टिसिपेट भी किया है। जो डैम सेफ्टी के इश्यूज हैं बहुत ही कंसर्न में है, और सारे डैम ऑपरेटर्स एवं भारत सरकार, राज्य सरकार, डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज भी सेफ्टी को लेकर के कई सारे कदम उठा रहे हैं। इसमें कई सारे जो प्राइवेट कंपनीज हैं उसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं रिस्क असेसमेंट्स करने के लिए, और इसमें जैसे कि 8-10 मैंडेटरी कंप्लायंस है, स्टडीज है, जैसे कि आपका CDSE है वो सबको करना है, इमरजेंसी एक्शन प्लान सबको बनाना है, डैम ब्रेक एनालिसिस सबको करना है, हैजार्ड क्लासिफिकेशन होना अनिवार्य है, क्योंकि डाउन स्ट्रीम में लोग रहते हैं तो रिमोट सेंसिंग GIS का उपयोग करके कैचमेंट एरिया में फ्लड लेवल कितना बढ़ेगा,
1: ड्रोन वगैरह से भी
0: असेसमेंट करते हैं। और पिछले करीब 8-10 साल में हमने बहुत सारे डैम फ्लड में डैम को टूटते हुए देखा, जैसे चमोली इवेंट 2021 हुआ, सिक्किम में 2023 में, और आपने आज जिक्र किया कि बहुत बड़ी बड़ी दुर्घटना हुई। तो इन सबको देखते हुए NDSE एक्ट में काफी सारे कंप्लायंस और स्टडीज ऑलरेडी एक्सपर्ट ने बताया हुआ है, और उन सबका पालन भी डैम ऑपरेटर्स, चाहे प्राइवेटली ओन डैम हो या गवर्नमेंट संचालित जो भी डैम हो, वो उसको कर रहे हैं। और अभी भारत सरकार ने रिसेंटली करीब 100-101 लोगों की लिस्ट भी जारी किया एक्सपर्ट की, और वो सब लोग अलग अलग प्रदेशों में जहां जैसा उनका हो रहा है वो लोग अपने हिसाब से उसको असेसमेंट में इन्वॉल्व है। भारत सरकार इस पे बहुत सचेत है, और मैं तो ये कहूंगा कि पिछले 8-10 सालों में डैम सेफ्टी में भारत ने बहुत अच्छा काम किया, चूंकि एक ड्रिप प्रोग्राम वर्ल्ड बैंक फंडेड है जिसमें डैम के रिपेयर और सारी सुविधा की गई है, साथ में धर्मा पोर्टल जो डिजिटल रिकॉर्ड ऑफ डैम है, इसके पहले हमारे पास नहीं थे इतने रिकॉर्ड, तो धर्मा पोर्टल में करीब 6,600 से अधिक डैम जो है ऑलरेडी रिकॉर्ड में है, और उसमें सब कुछ असेसमेंट वगैरह स्काडा सिस्टम के थ्रू सब कुछ हो रहा है।
1: निश्चित रूप से बांध के निर्माण के बाद बांध की सुरक्षा बहुत महत्वपूर्ण होती है। डॉक्टर विजेंद्र कुमार मिश्रा जी और श्री मनी कुमार जी, आप आकाशवाणी के स्टूडियो में आए और आपने बांध सुरक्षा, विज्ञान, तकनीक और जन जागरूकता विषय पर विस्तृत जानकारियां दी। आकाशवाणी आने के लिए और इन सब जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
3: धन्यवाद। इसी के साथ धरती आकाश का ये अंक यहीं संपन्न होता है। प्रस्तुतकर्ता थे दिलीप झा।
4: आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल।

9:35 पर सुबह का ही प्रोग्राम पेश किया जाएगा और सुबह 9:45 पर आप सुनेंगे प्रोग्राम आज सवेरे। नौ बजकर 50 मिनट पर खबरें नशे की जाएंगी और सुबह 10 बजे आप सुनेंगे अखबार जरिए पर मबनी शम्मे फरोजा। हुस्ने वेदर प्रोग्राम में आज के फनकार हैं ईरा निगम और सलाउद्दीन अहमद। आप पेश करेंगे चंद गैर फिल्मी गजलें। इस प्रोग्राम का वक्त रहेगा सुबह 10:05। सुबह 10:30 पर आप सुनेंगे की तो भरी कहानी रेंगता जहर। 11 बजे आप सुनेंगे मेरी पसंद प्रोग्राम के तहत कुछ फिल्मी नक्मे और 11:30 पर जनाब बलराज वर्मा का तहरीर करता ड्रामा आप सुनेंगे टूटी कहां कमंद। 12 बजे खबर नशी की जाएंगे और 12:10 पर आप सुनेंगे फिल्मी दुकानों का प्रोग्राम मिले सुर मेरा तुम्हारा। 12:45 तक दौरान प्रोग्राम 12:30 आप सुनेंगे तारीख साज प्रोग्राम मौजू है गुलाम रसूल गलवान। 12:45 पर आप सुनेंगे प्रोग्राम सुर्खियों में 1 बजे आलमी खबरें नशी की जाएंगी और 1:15 पर उर्दू सर्विस की पहली मजलिस की नशरियात इख्तिताम पजीर हो जाएंगी। ये था एक मुख्तसर तारुफ इस मजलिस में नशवन आले प्रोग्रामों के हवाले से। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है।

0: सुन कहे प्रोग्राम में अभी आप समाप्त कर रहे थे भजन। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। पेश खिदमत प्रोग्राम आज सवेरे।
1: और अब समय हो गया है उन विशेष महानुभावों की पुण्यतिथियों, जयंती और जन्मदिन के बारे में बात करने का।
2: एंड फ्रेंड्स, 1908, रिमेम्बरिंग अ कर्नाटक म्यूजिक लेजेंड सेमन गुडी श्रीनिवास अय्यर वाज इंस्ट्रूमेंटल अलोंग विद हिज मेंटर मुथैया भागवतर फॉर द वर्क ऑन द कृतीज ऑफ महाराजा स्वाति थिरुनाल रमा वर्मा। Saman Gudi was invited to Travancore to assist the Bhagavatar, edit, notate and publish the compositions of Swati Thirunal. Succeeding the Bhagavatar as the principal of the Swati Thirunal College of Music, Saman Gudi Srinivasa Iyer left a lasting influence on the Carnatic music scene in Kerala. His style was distinct with an originality firmly grounded in tradition, widely renowned for his virtuosity as a concert performer. At the behest of the Government of India, he became the chief producer of Carnatic music of All India Radio, Madras, from 1957 to 1960. In later life, he concentrated on concert performances and tutoring youngsters. He gave public concerts even at the age of 90. He was the youngest recipient of the Sangeet Kalanidhi, awarded by the Music Academy in 1947, and has received many awards including Padma Bhushan, Padma Vibhushan, Sangeet Natak Academy Award.
1: और श्रोताओं, आज ही पुण्यतिथि है हिंदी फिल्मों के सुप्रसिद्ध लेखक और फिल्म निर्देशक बाबूराम इशारा की। वे छोटी उम्र में ही भागकर मुंबई आ गए थे। आइए सुनते हैं 1972 में उनके निर्देशन में बनी फिल्म मान जाइए से ये गाना। इसे गाने को आवाज दी है स्वर कोकिला लता मंगेशकर ने और संगीतकार हैं जयदेव।

मुंबई आने पर इशारा ने जहां पहली नौकरी की, उस निर्माता ने उन्हें बाबू नाम लिया। वो उन्हें अपने गुरु के नाम रोशनलाल से नहीं पुकारना चाहते थे, तो बाबू ने पहले अपने नाम में राम जोड़ा। फिर लेखक बने तो अपना तखल्लुस इशारा रख लिया, तो उनका पूरा नाम इस तरह से हुआ बाबूराम इशारा। आइए सुनते हैं 1970 में आई उनकी फिल्म दस्तक से ये एक और खूबसूरत सा नगमा। मजरूह सुल्तानपुरी की कलम से निकले इस गाने को भी अपनी मीठी आवाज से सजाया है लता दीदी ने।

अपनी फिल्मों में नए लोगों को ब्रेक देने वाले बीआर इशारा ने अमिताभ बच्चन की फिल्म एक नजर का निर्देशन भी किया था। तो लीजिए इसी फिल्म से ये एक और गाना।

0: बी आर इशारा की मुख्य फिल्में हैं हम दो, हमारे दो, चेतना, चरित्र, औरत, एक नजर और भी बहुत कुछ इसके अलावा। और श्रोताओं, जयंतियों में आज सबसे पहला नाम है भारतीय समाज शास्त्री और साहित्यकार श्यामचरण दुबे का। वर्ष 1993 में उन्हें उनकी कृति परंपरा और इतिहास बोध के लिए भारतीय ज्ञानपीठ ने मूर्ति देवी पुरस्कार से सम्मानित किया। और अब घड़ी की सुइयां जो हैं इशारा कर रही हैं कि श्रोताओं से अपने विदा ली जाए।
1: थैंक्स फॉर ट्यूनिंग इन फ्रेंड्स, हैव अ ग्रेट डे, नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे प्रोग्राम आज सवेरे, ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। मीडियम वेव्स 1071 किलो हर्ट्ज, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और DT फ्री डिश पर हमारी नशा जारी है। सुबह के 9:50 हुआ चाहते हैं, अब खबरें नशे की जाएंगी।
1: ये आकाशवाणी है, अब आप फहीम अहमद से खबरें सुनिए। हुकूमत ने पेपर लीक वाकयात की

0: नहीं रहते, हमेशा बदलते रहते हैं। खुदा ने इंसान को तमाम नेमतों से नवाजा है। कभी कभी इंसान को आजमाइश के लिए उसकी ज़िंदगी में कुछ रुकावटें और मुश्किलात पेश आती हैं, और यही वो दिन होते हैं जिसमें इंसान को इस बात का एहसास होता है कि कोई ना कोई ऐसी कादिर मुतलक हस्ती है जो तमाम जहां को चला रही है और उसके हुक्म के मुताबिक ये दुनिया चल रही है, और इंसान के साथ जो परेशानी और मुसीबत आती है उसका इल्म उसके खुदा को ज़रूर रहता है। इंसान के ऊपर दो तरह की मुसीबतें आती हैं, कुछ तो ऐसी होती हैं जो इंसान की खुद की कमाई हुई हुई होती हैं, इंसान अपनी बदामलियों से इन मुसीबतों को दावत देता है, और कुछ इसलिए होती हैं कि इंसान की आजमाइश हो और जब वो आजमाइश में पूरे उतरे तो उसको बुलंद मकामात हासिल हों। अल्लामा इकबाल ने कहा है, तुम दिए बाद मुखालिफ से न घबरा ए उकाब, ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। मुसीबत और परेशानी के वक्त इंसान को तहम्मुल से काम लेना चाहिए ताकि इज्जत समाज में बनी रहे और अच्छे दिन का इंतजार करे। किसी शायर ने क्या खूब कहा है, मिल्लत के साथ राबता उस्तवार रख, पेवस्त रह शजर से उम्मीद बहार रख। दरअसल यही जिंदगी का उसूल है, मुसीबत के दिनों में इंसान को सब्र व जब्त से काम लेना चाहिए और अच्छे दिनों का इंतजार करना चाहिए। तमाम बड़े लोगों की यही तालीम है। रसूलुल्लाह का फरमान है कि मुसीबत के दिनों में आसानी का इंतजार करना इबादत है, और रहीम ने भी यही बात कही है, रहीम चुप हो बैठिए देख दिनन के फेर, जब नेके दिन आए हैं बनत न लगी है देर। इसलिए इंसान को मुसीबत के दिन सब्र से काटने चाहिए, और जब हालात बदल जाएं तो उसका शुक्र अदा करे, क्योंकि दिन यानी हालात के बदलने में वक्त नहीं लगता। इसलिए इंसान को हमेशा अपने हालात के साथ साथ एक दूसरे के हालात भी दरियाफ्त करना चाहिए, और साथ ही उसका मुआविन व मददगार होना चाहिए ताकि इंसान एक दूसरे के बुरे वक्त में काम आए, वरना अकेला इंसान उस सूखे और बंजर जमीन की तरह है जो अपना वजूद तो रखती है मगर उसका कोई फायदा नहीं सिवाय जगह घेरने के। इंसान चूंकि जिंदगी गुजारने के लिए एक दूसरे का सहारा है, इस वजह से कहा जाता है कि अगर बुरा वक्त आ जाए तो अपनी इज्जत इसी में है कि खामोशी इख्तियार करे और इस बात की हर मुमकिन कोशिश करे कि अपनी तर्ज जिंदगी का मेयार दरमियाना रखे, ताकि बुरे वक्त में बड़ी मुसीबत और परेशानी को आसानी से झेल सके। वरना इंसान अच्छे दिन में मादियत, तकब्बुर और घमंड का शिकार हो जाता है और बुरे दिन में वही उसके लिए परेशानी का सबब बन जाता है। इंसान को बेहतर और मेयारी जिंदगी गुजारने के लिए सबसे बेहतर और उम्दा तरीका यही है कि हालात कैसे भी हों हमेशा सब्र, कनात और किफायतशारी से काम लेना चाहिए, और दुनियावी लाहौलाइब से जो इंसानों की दिल आजारी और परेशानी का सबब बनती हों उस अमल से परहेज करना चाहिए, और अच्छे दिन में गरीबों की मदद और सहारा बनकर अपने बुरे वक्त के लिए सामा इकट्ठा करना चाहिए। वरना इस दुनिया में बड़ी बड़ी हस्तियां पैदा हुईं और मिट गईं, लेकिन ऐसे लोग भी गुजरे हैं जिन्होंने अपनी इज्जत और वक़ार को गरीबी और अमीरी दोनों में बरकरार रखा और समाज में बेहतरी के काम किए। उसमें ऐसे लोग भी हैं जो माशी तौर पर बहुत कमज़ोर थे मगर अपनी शनाख्त, इज्जत और खुददारी को बरकरार रखा, और ऐसे लोग समाज के लिए आज भी मिसाल बने हुए हैं, जिसमें सूफिया किराम और रहीम दास और कबीर दास जैसे लोग काबिल जिक्र हैं, जिन्होंने अपने अमल और जबान के जरिए लोगों के दिलों को मोह लिया, और इसी खिदमत खल्क की वजह से आज भी ये लोग जिंदा जावेद हैं।
1: अभी आप सुन रहे थे अकवाल जर्रे पर मबनी शम फरोजा, ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। हमारी नशा जारी है मीडियम वेव 1071 किलो हर्ट्ज़, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और DD फ्री डिश पर। हुस्ने गजल इस प्रोग्राम में समाप्त कीजिए चंद गैर फिल्मी गजलें। फनकार हैं ईरा निगम और सलाउद्दीन अहमद। प्रोग्राम का आगाज कर रहे हैं फिराक गोरखपुरी के इस कलाम से, और इस गजल को अपनी आवाज दी ईरा निगम ने।

गीता इस कोठे पर परवरिश पाने के बावजूद भी मुकद्दस गीता की तरह पाक है। उसका दिल अपने हुस्न की आराइश और नुमाइश और माल दौलत की चाहत के बजाय अपने माबूद की परस्तिश में लगा है। गीता की रूह और जमीर को बेदार करने में उस बंजारे का भी हाथ है जो वक्तन फवक्तन इस बाजार हुस्न से गाता हुआ गुजरता है।

0: बाबा बाबा
1: आया बेटी आया।
2: आइए बाबा, इधर आइए, आप बैठिए, मैं अभी कुछ खाने के लिए लाती हूँ।
1: जीती रहो बेटी, जीती रहो।
2: ये लीजिए।

0: बाबा खूब दिल भर कर खाइए।
1: सलामत रहो बेटी, सलामत रहो। बेटी तुम्हारा नाम क्या है?
0: बाबा मेरा नाम गीता है।
1: वाह बहुत प्यारा नाम है, खुदा करे तुम गीता की तरह हमेशा पाक रहो।
0: शुक्रिया बाबा, भगवान करे आपकी दुआ सच साबित हो।

हेलो, मैं जुगनू भाई बोल रही हूँ। अरे अरे सूरज बाबू आ, बंदी आदाब बजा लाती है हुजूर। हुजूर मैं खुद आपको फोन करती, लेकिन किसी काम में मसरूफ हो गई इसलिए जहन से उतर गया। क्या गीता बेटी? अरे वो तो पूजा पाठ में लगी हुई है। अरे जनाब को हैरत क्यों? गुस्ताखी माफ हो हुजूर, क्या हम लोग भगवान के बनाए हुए बंदे नहीं हैं? और फिर वेश्या बनाने वाला भगवान तो नहीं है जो हम उससे नाराज होकर बैठ जाएं? इसका जिम्मेदार तो आपका ही समाज है। और फिर ये काम इतना बुरा तो नहीं है हुजूर, आजकल तो नाच गाना पढ़ी लिखी और ऊंची सोसाइटी का एक हिस्सा बन गया है। फर्क सिर्फ कोठे और पार्टी का है। हम लोग कोठों पर बैठकर नकदी कमाते हैं और समाज के कुछ बाइज्जत लोग पार्टी में नाच गाकर तोहफों से काम चला लेते हैं। खैर छोड़िए इन बातों को, अब जिसलिए आपने जहमत की है उस सिलसिले में अर्ज है कि आज रात गीता बेटी की रूनुमाई है। आप जश्न बहारा में आएंगे ना हुजूर? जी जी नहीं, अभी तो गीता बेटी मानी नहीं है, लेकिन अपनी कसम देकर मना लूंगी। हाँ, हम लोगों की किस्मत में नाच गाने के सिवा लिखा ही क्या है? उसे आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, ये पेशा अख्तियार करना ही पड़ेगा। जी नहीं जनाब, नहीं, माफ कीजिएगा, मैं गीता को 50,000 में आपके हवाले नहीं कर सकती हूँ। जी नहीं नहीं, मैंने माना कि गीता मेरी बेटी नहीं है, लेकिन मैंने बेटी ही की तरह उसकी परवरिश की है। हम लोग फन फरोश तो हैं, लेकिन इस्मत फरोश नहीं। अब गुस्ताखी ही माफी चाहूंगी हुजूर। तो आज रात तशरीफ ला रहे हैं ना? शुक्रिया हुजूर। अच्छा, अब बंदी इजाजत चाहती है। आदाब।

0: का। गीता बेटी, बेटी कहाँ हो तुम?
1: यहाँ हूँ बाबा। क्या बात है?
0: ये ले बेटी, घुंघरू सुना, आज से तू इनकी मालिक है।
1: बाबा।
0: बेटी, आज तू घुंघरू देखकर इतनी उदास क्यों हो गई? तू तो रोजाना ही रियाज करती है।
1: बाबा, पहले मैं अपनी माँ के हुक्म से रियाज करती थी, लेकिन आज मुझे दूसरों के लिए रियाज करना पड़ेगा।
0: बेटी, परवरिश ही तूने ऐसे घर में पाई है जहां सब कुछ दूसरों की खुशी के लिए ही करना पड़ता है। काश तूने गरीब प्रकाश का मासूम दिल थाम लिया होता

0: मेरी समझ में नहीं आता कि जब तू उसके प्रेम बंधन में बंध गई तो उससे शादी क्यों नहीं कर ली, उसके साथ तू कहीं चली क्यों नहीं गई।
1: बाबा, उस वक्त मैं अपनी माँ और अपने समाज से बागी होने की हिम्मत नहीं रखती थी, और जब ये हिम्मत पैदा हुई तो।
2: गीता, गीता,
1: प्रकाश,
2: तुम कहाँ हो?
1: प्रकाश, गीता? तुम ठीक तो हो ना?
2: मैं ठीक हूँ।
1: आज सुबह सुबह कैसे रास्ता भूल गए? तुम्हें तो शराब से ही फुर्सत नहीं मिलती।
2: जब शराब से भी दिल नहीं माना तो तुम्हें देखने चला आया।
0: बेटी, इसे संभालो ताकि ये तुम्हें संभाल सके।
1: बाबा, अब तुम खुद ही बताओ, जब प्रकाश को अपना होश नहीं रहता तो ये मुझे क्या संभालेगा? प्रकाश, तुम शराब पीकर न सिर्फ अपने जिस्म को जहरीला बल्कि मुझे भी बर्बाद कर रहे हो। शराब एक रेंगता हुआ जहर है जो धीरे धीरे तुम्हारे जिस्म को खोखला कर रही है। तुम्हारी शराब नोशी से मैं भी बर्बाद हो जाऊंगी।
3: गीता, मैं तुझसे कितनी बार कह चुकी हूँ कि तू इस लफंगे के चक्कर में मत पड़। और फिर बेटी, इन मर्दों का क्या भरोसा, जहाँ खूबसूरत फूल देखा भवरा बनकर बैठ लिए, रस चूसा और उड़ लिए। मर्दों की जात बड़ी खराब होती है। बेटी, मेरे साथ चल, आज बहुत काम है।

अभी गीता के घुंघरुओं की आवाज थमी भी न थी कि इस इलाके का जग्गू दादा आधम का। जग्गू गीता को इतना ही चाहता था जितने दूसरे रईस ज़ादे। फर्क सिर्फ इस कदर था कि लोग गीता को दौलत की बदौलत पाना चाहते थे, जबकि वो जुगनूबाई और गीता की हिफाजत के सिले में गीता को हासिल करना चाहता था। अभी जग्गू दादा और जुगनूबाई की आपसी तूतू में खत्म भी न हुई थी कि प्रकाश अपनी आदत के मुताबिक शराब की बोतल लिए हुए लड़खड़ाता हुआ मुजरे खाने में दाखिल हुआ।

0: जग्गू इस महफिल में दिल वालों का नहीं नोट वालों का काम है। जा नोट कमा और इस महफिल का मजा लू इन रईसज़ादों की तरह। और अगर मैं दौलतमंद होता तो आज और इसी वक्त गीता को पा लेता।
1: प्रकाश, प्रकाश,
0: गीता,
1: प्रकाश, मैं तुम्हें अब भी चाहती हूँ।
0: तो क्या तुम मेरे साथ चल सकती हो?
1: प्रकाश, समझने की कोशिश करो, मुझे सहारे की जरूरत है। जब तुम खुद अपने को नहीं संभाल सकते तो तुम मुझे क्या सहारा दोगे? तुम इतने कमजोर हो चुके हो कि अगर मैं अपने समाज से बगावत कर भी लूं तो तुम उनका मुकाबला नहीं कर सकते। काश तुमने हिम्मत ना हारी होती, काश तुम्हें नशे की लत ना पड़ी होती।
0: गीता,
1: लेकिन प्रकाश अभी भी वक्त है, मैं तुम्हें इस रेंगते जहर से मरने नहीं दूंगी, मरने नहीं दूंगी।
0: तो तुम तो ये लो,

अभी आप सुन रहे थे गीतों भरी कहानी रेंगता जहर, ततीहो पेशकश प्रेम वोरा की थी राबी थी अजरा कुरेशी। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। मीडियम वेव 1071 किलो हर्ट्ज, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और DD फ्रीडेश पर हमारी नशा जारी है। मेरी पसंद इस प्रोग्राम के साथ आपका मेजबान नईम हाजिर है। आप सभी को मेरा आदाब। आज के प्रोग्राम में खराज अकीदत अपने वक्त

जेएस कोहली ने ओपन एयर की मुआवनत करी और उस दौर की मारूफ फिल्में थीं सीआईटी, मिस्टर मिसेस 55, आर पार, हम सब चोर हैं, नया दौर, मुजरिम, दोस्तात, कश्मीर की कली वगैरह वगैरह। और ये है इस प्रोग्राम की आखिरी पेशकश, लता मंगेशकर और उषा मंगेशकर की आवाज़ों में दो मतवाले फिल्म से जेएस कोहली की मौसीकी।

0: अरे आप, इतनी देर कर दी आपने, आप कब से खड़ी थी?
1: बड़ी गमजदा तुम थी।
0: थी तो गमजदा ही, मगर
1: मगर अगर कुछ नहीं सुनो, पर जरूर कोई बात है। तुम कैसी भी हो मगर गम दिल में ना हो तो आवाज में इस तरह नहीं उतरता।
0: तुम तो
1: छुपाओ नहीं सुनोबर, तुमने कसम खा रखी है कि मुझसे अपनी कोई बात कभी ना छुपाओगी।
0: मेरी क्या बात हो सकती है?
1: तो फिर ये धुन, ये गम का अलाप।
0: मुझे क्या गम हो सकता है?
1: कुछ तो है, मुझसे कोई गलती हुई है अनजाने में। मैंने ऐसा कुछ कहा या किया है जो
0: तुम नाहक परेशान हो रही हो। बात मेरी है ना तुम्हारी।
1: तो फिर ऐसी कौन सी बात है?
0: लाओ कोट मुझे दो।
1: तो तुम नहीं बताओगी? खैर तुम्हारी मर्जी।
0: जी जी, तुम्हारी रहती मुझे भला कौन सा गम हो सकता है? तुम इतने बड़े आदमी, तुम्हारा कोई शागिर्द देख ले तो क्या कहेगा?
1: क्या कहेगा?
0: यही कि उनका प्रोफेसर हैदर कितना जज्बाती आदमी है, तुम कितने भोले हो और वो सब समझते हैं तुम बहुत होशियार, बहुत बड़े दानिश्वर हो। माँ सच कहा करती थी।
1: क्या कहा करती थी तुम्हारी माँ?
0: सनोबर बेटी, तुम देखोगे कि ये आदमी लोग कभी बड़े नहीं होते। माँ कितना ज्यादा जानती थी।
1: ये माए हमेशा ज्यादा जाना करती हैं। माए होती हैं जब भी वो सब बिला झिझक कह जाती हैं, जो हकीकत में हर दौर की हर औरत हमेशा से जानती आई है।
0: क्या जानती आई है हमेशा से हर दौर की औरत?
1: यही कि आदमी जिसे वो ताहयात इस फरेब में मुब्तला रखती है कि वो खालिक का सबसे अहम करिश्मा और सबसे अजीम तख्लीकी कारनामा है, बहादुर, जंगजू, दिलेर और दाना। दरअसल एक नासमझ बच्चा है, मगर तुम वो औरत नहीं हो जो ऐसा समझती है। तुम तो सनोबर हो, मेरी सनोबी। मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करता हूँ सनोबी, मैं जानता हूँ तुम भी मुझसे उतनी ही मोहब्बत करती हो।
0: नीलूफर का खत आया है।
1: खत आया है? क्या लिखा है नीलूफर ने?
0: बहुत कुछ।
1: क्या अब्बा जान ने कोई नया एतराज उठाया?
0: कोई पुराना एतराज भी कभी उठाया था उन्होंने?
1: तो फिर कौन सी ऐसी परेशानी आ गई अचानक जिसने नीलूफर के खत में इतना गम भर दिया कि छलक कर तुम्हें भी लबरेज कर गया?
0: अब्बा हजूर ने पहले कब कोई एतराज उठाया है जो अब उठाने लगे? नीलूफर कमाल से जिंदगी का नाता जोड़ना चाहती है, जोड़े, उन्हें क्या एतराज हो सकता है?
1: तो फिर
0: बात अब्बा हजूर की नहीं, तुम्हारे कमाल की है।
1: कमाल ने ऐसा कुछ कहा या किया है जिससे उसकी नीलूफर को दुख हो? नामुमकिन।
0: तुमने फैसला ही सुना दिया तो फिर मजीद कुछ कहना फजूल है।
1: कमाल मेरा दोस्त है सनोबर।
0: नीलू मेरी बहन है, मेरी माँ जाई।
1: नीलू मेरी भी तो कुछ है सनोबी।
0: है तो मगर।
1: मगर क्या?
0: कुछ भी हो तुम बिलाखिर कमाल ही का साथ दोगे, ये मैं जानती हूँ।
1: अरे तुम कमाल को नहीं जानती हो सनोबर, और सच तो यह है कि तुम अपनी बहन को भी नहीं जानती हो। कमाल जिंदा है मेरी जान, तो महज इस वजह से कि नीलू है, और नीलू है तो इसलिए कि कमाल है। वो तो एक दूसरे की सारी जिंदगी, सारी दुनिया है।
0: मैंने कब इनकार किया है? मैं जानती हूँ कि नीलू कमाल से प्यार करती है।
1: दोनों एक दूसरे से बेपनाह मोहब्बत करते हैं।
0: नीलूफर को मैं बचपन से जानती हूँ, अम्मी को, अब्बा को, मुझे, अपनी गुड़िया तक को। जिस किसी को भी उसने कभी चाहा है

0: जज्बात की पूरी शिद्दत से चाह है।
1: मगर बात तुमने अभी तक नहीं बताई।
0: डॉक्टर मोशी, डॉक्टर प्रभ्याल और डॉक्टर इजहार उल हसन रिजवी ने कमाल की आंखों का मुआयना किया है और उन सबकी राय है कि उनका मर्ज लाइलाज है और ये कि उनका अंधापन मुलतवी तो किया जा सकता है मगर कतई रोका नहीं जा सकता।
1: मुलतवी हो सकता है, मैं तुम्हारी बात नहीं समझा।
0: समझना तुम्हारा काम नहीं, तुम्हारे दोस्त का है। डॉक्टरों का कहना है कि आने वाली मुसीबत किसी हद तक कुछ अरसे के लिए मुलतवी की जा सकती है बशर्ते कि।
1: क्या शर्त है, क्या इलाज है?
0: कुछ अरसे के लिए मुसीबत मुलतवी करने को वो तैयार हो तब ना। फरमाते हैं जब मेरा अंधा हो जाना लाजमी है तो क्यों ना आंखें खो देने से पहले उनका भरपूर इस्तेमाल कर लूं। रोजाना 12 घंटे तक पढ़ते हैं। फरमाते हैं जब खूब पढ़ पढ़ा कर थक जाऊंगा यानी मजीद खुद से पढ़ सकने के काबिल ना रहूंगा तो आज तक जो पढ़ा है और देखा है उस पर गौर करूंगा, सोचूंगा और फिर लिखूंगा और फिर किसी रोज दुनिया की सबसे अहम सबसे खूबसूरत कहानी लिखूंगा।
1: वो ठीक कहता है सुनोबी डियर, वो जिन्होंने अपनी ये दुनिया इस कदर खूबसूरत बनाई है इसी तरह सोचा और किया करते हैं।
0: तुम यही सब कुछ कहोगे मैं पहले से जानती थी, मगर मेरी बहन का क्या होगा?
1: क्या हो जाएगा तुम्हारी बहन को?
0: मासूम की जिंदगी क्यों बर्बाद हो, अल्लाह जाने क्या होने वाला है।
1: तुम नीलोफर से ज्यादती कर रही हो।
0: तुम इसे ज्यादती कहते हो?
1: उसकी रूह में उतरे बगैर उसके जाहिरी दुख का चर्चा कर रही हो। उन दोनों ने एक दूसरे से पहली बार मिलकर ही तय कर लिया था कि वो एक दूसरे की मंजिल है।
0: तुमने नीलोफर का खत नहीं पढ़ा?
1: जरूरत भी नहीं। अगर नीलोफर वाकई कुछ डर गई है तो यकीन करो कि ये इसलिए नहीं कि उसका कमाल किसी गलत और नामुनासिब डगर पर चल दिया है। कमाल तो नीलोफर के लिए गलत और दुरुस्त का बैरोमीटर है।
0: मैं जानती हूँ कि हर वो बात जो वो कहता है नीलो के नजदीक इल्हामी फरमान की तरह पाक व मुकद्दस है।
1: तो फिर
0: तुम क्यों नहीं समझती हैदर कि नीलो मेरी बहन है, मेरी इकलौती बहन। नीलो का गम दुख दर्द मेरा गम दुख दर्द है।
1: जिसे तुम नीलोफर का गम समझती हो वो अपनी नीलोफर का गम नहीं। सुनोबी, अपनी नीलोफर तो बागी और बहादुर लड़की है जो चट्टान की तरह मुस्तकिल है अपने जज्बे में।
0: चट्टान और इंसान में फर्क होता है हैदर।
1: इतना ही ना कि चट्टान टूट सकती है और सादिक जज्बे अटूट होते हैं। तुम क्यों नहीं समझती हो मेरी जान कि अगर वो सब जानते बूझते हुए भी कमाल से अपना मुस्तकबिल जोड़ना चाहती है तो महज इसीलिए ना कि उसने कमाल को पहचान लिया है, उस अजीम लाफानी हुस्न का नजारा कर लिया है जो जो तुम देख लेना किसी रोज।
0: दुनिया की बेहतरीन कहानी लिखी तो डालेगा।
1: सुनो पर।
0: मैं जानती थी तुम खफा हो जाओगे।
1: तुम नीलोफर की वक्ती घबराहट को उसका दायमी गम समझ बैठी हो। सुनो पर,
0: आंखें है तो जहान है।
1: आज अगर फर्ज महाल मेरी बिनाई जाती रहे या मैं लंगड़ा हो जाऊं या मुझ पर खुदा ना करे फालिज गिर जाए तो क्या तुम मुझे छोड़ दोगी?
0: कैसी बदशगुनी की बातें करते हो जी। लो कान पकड़े, अब और कुछ ना कहूंगी।
1: मैं जानता हूँ कि कमाल ने कभी भूल कर भी ना सोचा होगा कि उसकी बिनाई के चले जाने से उसकी नीलू से छिन जाएगी उनका ईमान, उनका यकीन। है काश हम उन दोनों के गहरे यकीन का अंदाजा कर सकते। तुम मेरी बात याद रखो सुनोबर, अगर कभी कमाल के खून से इंसान की तखलीक हुई या उसके गैर मामूली तखलीकी और इख्तराही कुव्वतों ने वाकई कभी कोई मार्का खेज शाहकार जन्मा तो हर दो सूरत में माँ हमारी नीलोफर ही होगी।

0: सवाल है,
1: है ना। मेरा अपना भी ख्याल था कि सवाल बढ़िया था, मैंने जवाब भी बहुत बढ़िया दिया।
0: हाँ, तुमने तो लंबा चौड़ा लेक्चर छाट दिया होगा।
1: तो तुम समझती हो कि इस छोटे से सवाल का बहुत लंबा जवाब होना चाहिए?
0: ये सवाल छोटा थोड़े ही है, हजम में कुछ सुकड़ा हुआ जरूर है, मगर हकीकत में बहुत बड़ा है। बहुत फैला हुआ सवाल है, जैसे कोई पूछ बैठे दुनिया क्या है, खुदा क्या है, मोहब्बत क्या है, दोस्ती क्या है।
1: मगर मैंने इस बड़े सवाल का बहुत ही मुख्तसर जवाब दिया, कहा कि एक आम आदमी का कल्चर है एक सिगरेट का कश और एक चाय का प्याला।
0: यूं कहिए कि चाय के लिए मन मचल रहा है।
1: तुम कितनी समझदार हो, वो बच्चे भी कम समझदार न थे, झट चाय हाजिर कर दी। हाँ,
0: चाय का रंग है गोया मेरी भाभी के आरिस, लीजिए भाईजान पी जाइए मेरी भाभी को।
1: अरे निशात, चाय के रंग में मिलावट ना होनी चाहिए भाई। आज फिर तुम चाय के रंग को अपनी भाभी के गालों की रंगत से मिलाने के लिए दूध ही में पत्ती घोल कर तो नहीं ले आई हो?
0: आप चखिए तो भाईजान।
1: अरे बीबी, हम चाय पीते हैं, तुम्हारे अल्ताफ मियां की तरह बिगड़े रईस नहीं है जो खाना भी दूध में पकवा कर खाता है। हाँ भाई, चाय तो वाकई जायकेदार है। भाई नीलू, तुम वाकई बड़ी मजेदार है। क्यों निशु बीबी, अपनी प्यारी भाभी को चाय नहीं दोगी?
0: रामू, ए रामू, दो प्याले चाय और लाना।
1: निशात, तुम्हें कितनी बार समझाया है कि तुम्हें राम काका की बुजुर्गी का लिहाज और एहतराम रखना चाहिए।
2: बड़े सरकार, मेरा नाम रामू ही है।
0: मुझे माफ कर दो राम काका।
2: अरे अरे, ये आप क्या कर रही हो बीबी, क्यों मुझे गुनाहगार बना रही हो?
1: घर जाओगे काका, साल भर से तुम छुट्टी में नहीं गए।
2: नहीं सरकार, ईश्वर को छोड़ने की गलती नहीं करूंगा कभी। ऐसा आपसी प्यार, ऐसे भले लोग मैंने कभी कहीं नहीं देखे। और फिर निषाद बीबी को तो मुझे लताड़ने का हक भी है, वो मेरी गुरु माँ है, मुझे पढ़ाती हैं।
1: हमारा स्वर्ग, हमारी जन्नत, हमारी ये छोटी सी दुनिया, तुम ठीक कहते हो काका, यही जन्नत।
3: जब भी जन्नत से आजकल जो भी आवाज निकलती है इल्हाम का हुक्म रखे।
1: अरे हैदर भाई, आप अकेले हैं क्या?
0: नहीं कमाल भैया, मैं भी तुम्हारी जन्नत का नजारा करने आ निकली हूँ।
4: आदाब भाईजान।
0: आदाब भाईजान। कहो कैसी हो नीलू, तुम कैसी हो निशात, और आप राम काका?
2: सलाम बड़े भैया, सलाम बीबी।
0: आपकी दुआ है आपा, खुदा के फजल से सब ठीक है।
3: खुदा कसम कमाल, तुम पर तो नजरे बद दूर हो।
1: क्या
3: जवानी का जैसे दूसरा दौर शुरू हुआ है। अरे अभी कल ही वो अमरीकी लड़की कह रही थी कि तुम्हारे बाल दिन ब दिन सुनहरी रंगत पकड़ते जा रहे हैं। और वो क्या लतीफा है ऑस्कर वाइल्ड का, हर हेयर टर्न्ड गोल्डन फ्रॉम ग्रे।
0: और मिस पाउस फरमाती होंगी भाईजान कि इस पहनावे में हमारे भाईजान अब अमेरिकी बाके लगते हैं।
3: बिल्कुल यही अल्फाज तो खैर नहीं थे, मगर वो कहते जरूर सुनी गई है कि शादी के बाद कमाल भाई साहब आदमी दिखने लगे हैं।
1: औरत?
3: लड़की मेरे यार, लड़की। मिस फाउस्ट औरत नहीं, लड़की है।
1: भाई मेरी नीलू भी तो माशाल्लाह लड़की तो है, जाने कैसे रंगा रंग के कपड़े पहनाया करती है मुझे। अब जरा इससे कोई पूछे, मैं भला कोई कॉलेज का छोकरा हूँ या सिनेमा का एक्टर जो मुझे यूँ बन ठन कर रहना चाहिए?
2: बहू बेगम, सलामत मियाँ ये स्वेटर दे गए है।
0: वाह वाह, क्या रंग है, और धुलकर कैसा निखर आया, देखो तो भाईजान कैसी नफीस ऊन है, और क्या बाकी बुन। निशात,
1: मेरी निशु बेटी को मत डांटो, ये हमारी मेहमान है। हाँ निशु, मैं इस स्वेटर को देख सकता हूँ जो खूबसूरत है और नजर नहीं आता, उसकी छाया दिल के अंदरूनी पर्दों पे पड़ती है, जहाँ निगाहें धोखा खा जाती हैं वहाँ दिल ही का तोल पूरा उतरता है। क्या हुआ जो मैं इस स्वेटर को देख नहीं सकता? मैं उस जज्बे को महसूस कर सकता हूँ जो इस स्वेटर से लिपटा हुआ है। सुबह की चाय का प्याला, नाश्ता, दोपहर और शाम का खाना, अपने बिस्तर की नरमी, क्या इन सब में वो जज्बा नहीं झलकता? नीलोफर, निशात, क्या तुम लोगों को यही जिद है कि मैं अपने अंधेपन पर मलाल करूं? क्या तुम लोग मेरी आंखें नहीं हो?
0: मुझे माफ कर दीजिए भाईजान।
3: तुम बहुत खुश नसीब हो दोस्त।
0: तुम बड़ी किस्मत वाली हो नीलू, मुझे तुम पर रश्क आता है।
3: खुदा कसम यही जन्नत है

0: और यहां से जो भी आवाज निकलेगी अवधि नगमे ही की तरह आदमी के दुखों का मरहम होगी।
1: क्या तकरीर हो रही है हैदर भाई?
2: देखता हूं तुम सब लोग मिलकर डॉक्टर साहब का दिमाग खराब कर देना चाहते हो। दुनिया के आगे ही कम आइडियलाइज कर रही है इन्हें। कमाल भाई, प्रोफेसर जुनान कर तशरीफ लाए हैं।
3: प्रोफेसर साहब, आप कब तशरीफ लाए?
4: इधर राजी पहुंचा हूँ। अल्ताफ मियां ने लालच दिया कि चलिए आपको उस हस्ती के दर्शन करा दूं जिसकी शख्सियत सारे यूरोप एशिया का मरकज बने हुई है।
5: आदाब बजा लाती हूँ।
4: वल वल यंग लेडी, तो तुम ही हो बेगम कमाल।
5: जी हाँ, इनसे मिलिए प्रोफेसर साहब। आप हैं प्रोफेसर हैदर अली, इकोनॉमिक्स के मशहूर आलिम, और आप मिसेस सनोबर हैदर अली यानी मेरी बड़ी बहन, और आप हैं हमारी निशात।
4: निशात यानी मसर्रत। तुम्हारा नाम तो किसी कदर फेमिलियर है बेटे। हाँ याद आया, तुम ग्रेट मैन की बहन हो। एक प्रोफेसर साहब का कमाल के अदबी नजरियात पर बात तस्वीर मजमून एक रिसाले में छपा था जिसमें तुम्हारा भी जिक्र था। कुछ ऐसे था कि निशात कमाल की बहन कतई बहनों ऐसी लड़की है। ये एक्सप्रेशन मुझे बहुत पसंद आया था।
5: ये प्रोफेसर साहब जब पिछली बहार में तशरीफ लाए तो ये हमारे ही मेहमान थे। मैं उनके लिए हिंदुस्तानी तितलियों के पंख और फूल इकट्ठे किया करती थी।
2: बहनों ऐसी लड़की
4: क्या अल्ताफ मियां, तुम्हारी समझ में क्या ये एक्सप्रेशन नहीं आया? जो
3: डॉक्टर साहब, अल्ताफ मियां के लिए हमारी निशात बहनों ऐसी नहीं, जूलियट ऐसी लड़की है। अल्ताफ साहब आजकल मेरे बारे में कुछ इस किस्म के खराफात लिखने लगे हैं कि मुझे हैरत होती है। जिस किस्म का तसव्वुर वो मेरे बारे में अपने मिस्कीन पढ़ने वालों के सामने रखते हैं, वो न सिर्फ मैं ही नहीं हूँ, कोई दूसरा भी कहीं नहीं हो सकता। हैरत होती है कि उन्हें वो सब मेरे बारे में या मेरे काम के बारे में वाकई दिखाई देता है या फिर
2: क्या कह रहे हैं आप कमाल भाईजान?
4: अरे तुम में क्या है मेरे अजीज, भगवान कसम तुम वाकई कमाल हो। तुम्हारा टीचर होने के नाते मेरा तुम पर नाजा होना तो खैर गैर मामूली नहीं। यूरोप और अमरीका के दानिश्वर भी तुम्हारे नजरियों की बारीकियों पर तज़करा करते नहीं थकते। अबदी नगमे पर एक नक्कात का मकाला तो तुम सबने पढ़ा ही होगा, उसने तो अबदी नगमे का तर्जुमा भी मुकम्मल कर लिया, और मिडिल ईस्ट तो तुम्हें अपना ही अदीब मानता है।
5: ये दोनों दानिश्वर हमारे सच्चे हमदर्द हैं। अगली बहार में कम से कम एक महीना हमारे यहाँ गुजारने का दोनों का वादा है। उम्मीद है हमें उन दोनों से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा।
4: क्यों नहीं, क्यों नहीं?
2: ये घर तो अब दानिश्वरों का मक्का बन जाएगा।
3: भाई तुम्हारा मक्का तो बस अब कुछ ही दूर है।
5: भैया
3: मेरी निशो अब माशाल्लाह जवान हो गई है।
5: भैया आप भी बस। अरे अरे भाई रुको, भी कहाँ भागी जा रही हो?
2: भाभी आप सब लोग जल्दी से तैयार हो ले, वक्त बहुत कम है।
4: अभी तो खैर से पूरा घंटा
2: बाकी। एक घंटा क्या होता है प्रोफेसर साहब, ये कोई हमारी आपकी तैयारी थोड़ी ही है।
4: जाओ बेटा तुम लोग तैयारी करो, अब भी तो चल रहा है ना प्रोफेसर आदर।
0: मैं तो आज की मीटिंग का कन्वीनर हूँ प्रोफेसर साहब।
4: उम्मीद है कमाल आज हमें अपनी उस कहानी के बारे में भी बताएंगे जो अभी तक लिखी नहीं गई, मगर जब लिखी जाएगी तो दुनिया के अदब की बेहतरीन कहानी होगी।
3: वो कहानी तो मेरे तसव्वुर की हद से अभी दूर है मेरे बुजुर्ग। वो तो एक दानिश्वर के नजदीक कामयाबी का एक तसव्वुर है, एक मयार, मगर कामयाबी का जो नया तसव्वुर हर कामयाबी के बाद पैदा होता है, वो मंजिल को हर बार दूर, बहुत दूर की चीज बना देता है। हम जैसे ही एक तयशुदा मंजिल की कुर्बत पाने को होते हैं तो मंजिल मंजिल मकसूद नहीं रहती, आगे सरक जाती है और हम फिर चलने लगते हैं। मेरी मसाफत का मंतहा, मगर अभी से क्या, अभी तो मेरे सफर की इत्तिदा हुई है।
4: अभी तो हम जवान है
0: और फिक्रे जवान है
2: और तू शाहीन है।
3: चलिए पाई बाग

0: चाय तैयार है, ले आऊं?
1: बस एक मिनट और रुक जाओ जानमन, आर्टिकल मुकम्मल हो चुका, बस हुआ क्या? लो खत्म हो गया, मैं अब चाय पीता हूँ, तुम फर्श पर बिखरे और राख लो। हाँ आज का मजमून जो भी पढ़ेगा फड़क उठेगा। अल्ताफ को टेलीफोन कर दो, आर्टिकल मंगवा ले, आज ही कंपोज हो जाना चाहिए ताकि संडे एडिशन में शामिल किया जा सके।
0: भाईजान, भाईजान।
1: क्या है मेरी लाडो?
0: कल सारा दिन टाइपराइटर पर बैठे रहे, रात को फिर जगकर टिक टिक शुरू कर दी, और सुबह जब आंख खुली तो देखा पहले ही से जगह टाइपराइटर उड़ाए जा रहे। इस तरह आप बीमार न पड़ जाएंगे, इंसान के फेफड़े हैं, कोई लोहे के तो नहीं। इतना काम, आखिर कौन सी ऐसी बात है जिसको कल या परसों पर मुलतवी नहीं किया जा सकता? हर चीज की एक हद है, एक सीमा होती है भाईजान।
1: ज़हन में जब कोई बात आती है या कोई आइडिया उपजता है गुड़िया, तो उंगलियां उसे रिकॉर्ड कर लेने के लिए उतावली हो जाती हैं। मबादा वो बात, वो आइडिया किसी दूसरे खारजी असर में गुम होकर उलझ ना जाए, ज़हन से खारिज ना हो जाए।
2: टेलीफोन सुनाओ निशान, और अगर अल्ताफ मियां हो तो उनसे कह देना कि आर्टिकल मंगवा ले।
1: दरवाजा बंद कर जाना निशाद, ये तुम्हारे अल्ताफ मियां का टेलीफोन है।
0: ओफो, आप भी भाईजान।
1: तुम कितनी अच्छी हो नीलू, कभी कभी मैं सोचता हूँ ये अपाहिज से रिश्ता जोड़ कर क्या पाया तुम?
0: तुम्हें कौन अपाहिज कहता है, और क्या नहीं पाया मैंने? तुम्हारा प्यार पाया है, भरोसा पाया है, सफिया जैसी फरिश्ता सीरत बच्ची पाई है, शोहरत, इज्जत, बड़ा नाम, नौकर चाकर सवारी, कपड़े सेवर, क्या नहीं है मेरे पास?
1: लोग तुम्हें अंधे की लाठी कहते हैं।
0: मैं कुछ भी नहीं हूँ, महज तुम्हारा साया हूँ।
1: मेरा साया?
0: खुद अपने में से कुछ भी नहीं हूँ, तुम हो इसी में मैं हूँ, तुम रोशनी हो, मैं उस रोशनी का अक्स हूँ।
1: मेरी रोशनी तो तुम हो नीलू, तुम मेरी आँखें हो। जब ही मैंने अपने अंधेपन का मलाल कभी नहीं जाहिर किया।
0: हाँ, मैं तुम्हारी आँखें हूँ, देखो तो कैसे ढंग से चल रही है अपनी जिंदगी की गाड़ी।
1: तुम वाकई मेरी सब कुछ, मेरी बीवी, मेरी महबूबा, मेरी सफिया की माँ, तुम मेरी सारी जिंदगी हो, सारी दुनिया हो नीलू, तुम इन सब नेमतों का मुरक्कब हो।
0: मैं तुम्हारा अक्स हूँ, तुम्हारा साया।
1: आज का दिन गुजर गया, रोशनियां गुल कर दो और आप सो जाएं।

밖에서 그 자리로 시설 가득한데 무슨 맛이다 요왁방이야 아기하고 사니하 이스카무지 액못다 캔트 알라

0: फिर भी जग गए। मेरी नींद भी निगोड़ी क्या है, खोड़े बेचकर सोती हूँ। उसने मुझे जगा क्यों नहीं दिया? चाय ले लो थोड़ी सी, देखती हूँ सारी रात नहीं सोए हो। सारा फर्श पाथरों से।
1: अल्लाह का शुक्र है नीलू, अल्लाह का शुक्र है। चाय लाई हो, ले आओ। आज की सुबह मुबारक हो नीलू, आज तुम्हारा कमाल वाकई कमाल तक क्या पहुंचा। आज उसने वो

0: शाहकार लिख डाला जिसे लिखने के लिए उसने जन्म लिया था। मेरी जिंदगी का सबसे अहम सबसे बड़ा कारनामा दुनिया के अदब का है? मगर तुम बोलती क्यों नहीं? अरे कहां हो तुम? तुम्हारे बगैर मेरी खुशी अधूरी है। नीलोभर्ष तुम बोलती क्यों नहीं? अरे हाँ, मैं तुम्हारी खुशी का अंदाजा कर सकता हूँ मेरी जान, मगर कहानी पढ़ना छोड़कर मुझसे बात करो। अरे ऐसा भी क्या? ये हमारे रोने का दिन नहीं नीलू, ये हमारे मुस्कुराने कहे लगाने का दिन है, ये मेरा दिन है। तुम भी गजब करती हो, क्या हो गया तुम्हें? तुम बोलती क्यों नहीं हो? ये खुशी के इजहार का कौन सा तरीका है?
1: मैं
0: क्या हुआ तुम्हें? क्या किया है तुमने? साफ कहो मुझे, मेरी लाचारी का इस शिद्दत से एहसास न कराओ।
1: टाइफाइड।
0: बोलो क्या हुआ टाइपराइटर को?
1: मैं टाइपराइटर पर रिबन चढ़ाना भूल गई थी। तुम्हारे सारी मेहनत बेकार गई।
0: क्या
1: नीलू?
0: नीलू
1: सरताज। भाभी होश में आ रही है। नीलू क्या हुआ? नीलू
2: आप भाईजान को देखिए डॉक्टर साहब।
1: रात भर टाइप करते रहे, सारी रात, पूरी रात, और मैं सोती रही। मशीनरी बना था, चारों तरफ बिखरे हुए ये सारे कागज खोले रह गए।
3: कहानी खत्म हो गई। कमाल हमें छोड़कर चले गए अपने खालिक के घर। इंतकाल की वजह दिल की हरकत का एक हरकत बंद हो जाना है। जाहिर है कोई सदमा है, शदीद असहत, शदीद और फौरी है।
4: टूटी कहां कमन। अभी आप सुन रहे थे जनाब बलराज वर्मा का तहरीर करता ये ड्रामा। तरतीब व पेशकश अनवर खान की थी। हिस्सा लेने वाले फनकार थे पंडित दीनानाथ जुतशी, ललिता शंकर, बी आर एल सक्सेना, बनी महाजन, सलमा कुरेशी, सुहेल रिजवी, मोहम्मद इलियास, राजगुप्त राजीव और एफ सी माथुर। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। मीडियम वेव्स 1071 किलो हर्ट्ज, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और DTP रेडियो पर हमारी नशियात जारी हैं। दिन के 12 बजे चाहते हैं अब खबरें नशे की जाएंगी।
5: ये आकाशवाणी है, अब आप मुजीब अख्तर से खबरें सुनिए। हुकूमत ने पेपर लीक वाकयात की रोकथाम के लिए ज्यादा सख्त सजा से मुतालिक बिल के मसौदे को मंजूरी दे दी है। उम्मीद है कि यह बिल पार्लियामेंट में अगले हफ्ते पेश किया जाएगा। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने नौजवानों का शुक्रिया अदा किया है कि उन्होंने पेपर लीक वाकयात की रोकथाम के लिए मुजवदा इसलाहत से मुतालिक उनकी वीडियो पर तजावीज पेश की हैं। उन्होंने कहा कि ये ताल्लुकात मजीद मजबूती के साथ जारी रहेंगे। हुकूमत और CJP के दरमियान आज तीसरी बार बातचीत होगी। भारत ने बहरे अस्वद में कमर्शियल जहाज पर किए गए हमले की सख्त मजम्मत की है। इसमें एक भारतीय मल्लाह की मौत हो गई थी और दौलत मुश्तरका खेलों में जनरू कुमार ने मर्दों के हैवी वेट पैरा पावर लिफ्टिंग मुकाबले में भारत की तरफ से कांसे का तमगा हासिल किया है। अब खबरें तफसील से। मरकजी काबीना ने तेजी से काम करने वाली अदालतें कायम करने और पेपर लीक से निमटने और इम्तिहान में गलत तौर तरीके अपनाने पर सख्त सजा को यकीनी बनाने से मुतालिक बिल के एक मसौदे को मंजूरी दे दी है। پارلیمنٹ ہاؤس کمپلیکس میں وزیر اعظم نریندر مودی کی صدارت میں بل کے اس مسودے کو منظور کیا گیا. ضائع نے ہمارے نامہ نگار کو بتایا کہ امید ہے کہ یہ مجوزہ بل پارلیمنٹ میں اگلے ہفتے پیش کیا جائے گا. اسی دوران امتحان کے نظام میں اصلاحات کرنے کی ایک بڑی کوشش کے طور پر امتحانات کا

0: को मुस्तैद कर दिया कि भारत पड़ोसी मुल्क में जानबूझकर सैलाब की सूरत हाल पैदा कर रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि दरियाए चिनाब में हालिया तुगयानी जम्मू और इससे मुतसिल नशेबी इलाकों में 20 से 23 जुलाई के दरमियान मानसून की शदीद बारिश का बराह रास्त नतीजा है। तर्जुमान ने मजीद कहा कि पाकिस्तान के सैलाब से मुतालिक पेशगोई के डिवीजन ने खुद दरियाए चिनाब में सैलाब की वजह ऊंचे नशेबी इलाकों में शदीद बारिश बताई है। उन्होंने कहा कि दरियाओं में तुगयानी मानसून की शदीद बारिश का एक फितरी रद्द अमल है जो भारत के किसी जानबूझ कर उठाए हुए कदम का नतीजा नहीं है। भारत और इसराइल ने मुजवजा भारत इसराइल आदात तजारती समझौते FTA के बारे में दूसरे दौर की बातचीत मुकम्मल कर ली है। इस चार रोजा बातचीत में जो नई दिल्ली में इस महीने की 20 से 23 तारीख तक की गई, दोनों मुल्कों ने मुजवजा मुआहदे के सभी पहलुओं पर तफसीली तबादला ख्याल किया और एक मुतवाजन जामे और बाहमी तौर पर फायदेमंद FTA की जानिब पेशरफ्त की। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने मुत्तला किया है कि कौमी राजधानी में सिक्योरिटी के सबब 18 स्टेशनों को सुबह 7:30 बजे से दूसरी हिदायत जारी किए जाने तक के लिए बंद कर दिया गया है। इनमें राजीव चौक, पटेल चौक, नई दिल्ली सेंट्रल सेक्रेटरिएट, ITO, मंडी हाउस, सुप्रीम कोर्ट और दिग्गर स्टेशन शामिल हैं। अलबत्ता DMRC ने वादे किया है कि राजीव चौक, मंडी हाउस और सेंट्रल सेक्रेटरिएट पर ट्रेन तब्दीली की सहूलियत बरकरार रहेगी। भारत के महकमे मौसमियात IMD ने गुजरात, कोकण, गोवा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा और राजस्थान के कुछ हिस्सों में इंतहाई शदीद बारिश की पेशगोई की है। ग्लासगो में 226 की दौलत मुश्तरक खेलों में भारत ने मेडल जीतने का आगाज कर दिया है। झंडू कुमार ने मर्दों के हैवी वेट पैरा पावर लिफ्टिंग में कांसे का तमगा हासिल किया। उन्होंने बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए दूसरी कोशिश में 190 किलोग्राम वजन उठाया। इस तरह से उन्होंने 130.9 प्वाइंट के साथ कांसे का तमगा हासिल किया। खास खबरें एक बार फिर। हुकूमत ने पेपर लीक वाकयात की रोकथाम के लिए ज्यादा सख्त सजा से मुतालिक बिल के मसौदे को मंजूरी दे दी है। उम्मीद है कि यह बिल पार्लियामेंट में अगले हफ्ते पेश किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने नौजवानों का शुक्रिया अदा किया है कि उन्होंने पेपर लीक वाकयात की रोकथाम के लिए मुजवजा इसलाहात से मुतालिक उनके वीडियो पर तजावीज पेश की हैं। उन्होंने कहा कि ताल्लुकात मजीद मजबूती के साथ जारी रहेंगे। हुकूमत और CJP के दरमियान आज तीसरी बार बातचीत होगी। भारत ने बहरे असद में कमर्शियल जहाज पर किए गए हमले की सख्त मजम्मत की है जिसमें एक भारतीय मल्लाह की मौत हो गई थी। इसी के साथ खबरों का बुलेटिन खत्म हुआ।
1: मीडियम वेव 1071 किलो हर्ट्ज, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और DT फ्रीडिश पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी से उर्दू सर्विस। मिले सुर मेरा तुम्हारा, इस प्रोग्राम में सुनिए चंद फिल्मी दो गाने। आगाज ताल फिल्म के नगमे से। आवाज़ अलका याग्निक, उदित नारायण और साथियों की।

मेरी सुर मेरा तुम्हारा प्रोग्राम की अगली पेशकश है दिल से, फिल्म का नगमा सुखविंदर सिंह और सपना अवस्थी का गाया हुआ। नगमा निगार गुलजार, मौसीकी ए आर रहमान की।

0: मिलिस और मेरा तुम्हारा प्रोग्राम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी की उर्दू सर्विस से। यह प्रोग्राम अभी जारी है, आइए पहले सुनते हैं तारीख साज प्रोग्राम। मौजू है गुलाम रसूल गलवान।
1: वक्त के हर जिंदा लम्हे के साथ तारीख की कोई ना कोई खसूसियत वाबस्ता है। रवायात और तारीख की तश्कील में सिर्फ बड़े बड़े हुक्मरानों या बड़ी शख्सियात का ही हिस्सा नहीं होता, वो इंसान जो लम्हों की तेज रफ्तार रिदा पर अपने किसी कारनामे या तजर्बे के नकोश छोड़ते हैं, वो भी तारीख की तश्कील का बाइस बनते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि इंसानों का मुनफरिद अंदाज से सांस लेना भी तारीख में किसी न किसी नए बाप का इजाफा होता है। बड़े सगीर की हजारों बरस पुरानी तारीख पर ऐसे बेशुमार गुमनाम या कम नाम इंसानों की मोहरें लगी हुई हैं। ऐसी ही एक गुमनाम शख्सियत लद्दाख के गुलाम रसूल गलवान की है। रसूल गलवान एक मामूली कुली था जो मुख्तलिफ मुहक्किकों और मुहिम जोइयों के हमराह बारबरदारी और दीगर कामों के लिए सफर करता था, जिसने हिंदुस्तान के बाद हैरत अंगेज मकामात की सियाहत की और मैदानों से बुलंद बाला चोटियों तक अपनी अजमत के नकोश सब्त किए। लद्दाख के रहने वाले इस मामूली कुली को यह अहमियत हासिल है कि उसने किसी मकतब में तालीम हासिल किए बगैर अंग्रेजी जुबान सीखी और इंतहाई मामूली आदमी होने के बावजूद अपने सवाने उम्र खुद अंग्रेजी जबान में लिखी। ये सवाने 1923 में इंग्लिस्तान से कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस ने बड़े एहतमाम के साथ शाये की। रसूल गलवान वो पहला कश्मीरी या लद्दाखी है जिसने अपने सवाने अंग्रेजी में तहरीर की। इस किताब को लिखने के वक्त रसूल गलवान की उम्र

0: वर्ष की थी। वो लगभग 1878 में पैदा हुआ और इब्तदाई उम्र से ही मुख्तलिफ बैरूनी मुहिमजुइयों के साथ हिमालय के वादियों में सफर करता रहा। 12 बरस की उम्र में वो यंग हस्बैंड के हमरा वेस्ट एशिया की मशहूर मुहिम पर रवाना हुआ था। सन 1892 में वो लॉर्ड डेनमोर के हमरा दुनिया के बुलंदतरीन मकाम पामेर पहुंचा। सन 1895 में वो एक और अंग्रेज महक्कत के हमरा दुश्वार गुजार इलाकों से होता हुआ तिब्बत की राजधानी ल्हासा के नजदीक पहुंचा। इसके बाद वो कराकुरम की मुहिम पर रवाना हुआ। सन 1913 में अतालवी महक्कत डॉक्टर फिलिपो फिलिपी की मुहिम कराकुरम में वो मीर कारवां था। रसूल गलवान पैदाइशी मुहिमजू था। सरहद के शौक उसे बेहद था। वो किसी लालच या मजबूरी की वजह से सफर नहीं करता था, बल्कि मुहिमजुई का इश्क और सफर का शौक उसे वादियों और पहाड़ों में सरगर्दा रखता था। उसने अपनी सामान्य उम्री सर्वेंट ऑफ द साहिब में लिखा है कि चीनी तुर्किस्तान में मेरे एक रिश्तेदार ने मुझे दौलत की पेशकश करते हुए कहा कि सफर के मसाइब क्यों झेलते हो, माल दौलत ले लो और आराम से रहो। लेकिन मैंने माल और दौलत को ठुकराते हुए जवाब दिया कि मुझे हकीकी सुकून बादा पैमाई और सयाहत में ही मिलता है। पामेर की मुहिम के दौरान रसूल गलवान ने अपनी जुरत और जसारत से एक नई वादी को तलाश किया था। यह वादी आज तक गलवान वादी के नाम से मशहूर है। लद्दाख का यह अजीम मुहिमजू इंसान मार्च 1925 में अपने सफर आखरत पर रवाना हुआ। लेह के पुराने कब्रिस्तान में रसूल गलवान की कब्र मौजूद है, जिस पर एक कदबा नस्ब कराया गया है ताकि वो लोग जो जिंदगी के अजम से सरशार हैं, रसूल गलवान के नक्श कदम पर चलते हुए वादियों और कोहसारों को अपनी मुहिमात का महवर बनाए और इंसानी अजम अमल की तारीख को एक नया बाब अता कर सकें।
1: गुलाम रसूल गलवान, इस मौजू के हवाले से अभी आप तारीख सास प्रोग्राम सुन रहे थे। तहरीर जनाब महमूद हाशमी की थी, रावी थे एसएम शफीक। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। प्रोग्राम जारी है मिले सुर मेरा। तुम्हारा अगली पेशकश सरफरोश फिल्म का नगमा आमिर खान और अलका याग्निक का गाया हुआ। नगमा निगार समीर, मौसीकी जतिन ललित की।

अर्ज है, कुछ मजनू बने, कुछ रांझा बने, कुछ रोमियो कुछ फरहाद हुए, इस रंग रूप की चाहत में जाने कितने बर्बाद हुए। वो देखो,

जिसे देखो दिल की धुनी रमाता। अरे ये मंदिर नहीं है, शिवाला नहीं है, हसीनों से कह दो कहीं और जाएं, मेरा दिल है दिल, धर्मशाला नहीं है।

0: फूल खिलते हैं, बहारों का समा होता है, ऐसे मौसम में ही तो प्यार जवां होता है। दिल की बातों को होंठों से नहीं कहते, ये फसाना तो निगाहों से बयां होता है।
1: वाले जी मिले सुर मेरा तुम्हारा प्रोग्राम के आखिर में सुनिए, जानवर फिल्म का नकमा अलका याग्निक सोनू निगम का गाया हुआ, नापा निगाह समीर, मौसीकी आनंद मिलिंद की।

0: इस नगमे के साथ ही मिले सुर मेरा तुम्हारा प्रोग्राम अब खत्म होता है। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। लीजिए सुनिए प्रोग्राम सुर्खियों में।
1: सुर्खियों में
2: ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए केंद्रीय मंत्रिमंडल के निर्णयों पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार केजी सुरेश और पत्रकार टीना झा।
3: नमस्कार, सुर्खियों में कार्यक्रम के आज के अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं टीना झा। आज हम बात करेंगे केंद्रीय मंत्रिमंडल की दो अहम मंजूरियों की, जिन्हें आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में स्वीकृति दी गई। पहला फैसला है भारत औद्योगिक विकास योजना रसायन यानी भव्य रसायन को मंजूरी देने का, जिसके तहत देश में 3 समर्पित केमिकल पार्क स्थापित किए जाएंगे। इस योजना की घोषणा वित्त वर्ष 2026-27 के बजट में की गई थी। लगभग 3030 करोड़ रुपए के परिव्यय वाली यह योजना अगले 5 वर्षों में लागू की जाएगी। दूसरा महत्वपूर्ण फैसला है कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के बेल्लारी गुंतकल रेलखंड पर तीसरी और चौथी रेल लाइन बिछाने की परियोजना को मंजूरी। लगभग 1264 करोड़ रुपए की लागत वाली ये परियोजना वर्ष 2028-29 तक पूरी किए जाने का लक्ष्य है। इसके तहत करीब 46 किलोमीटर रेलवे नेटवर्क का विस्तार होगा और लगभग 99 गांवों के करीब 7 लाख लोगों को बेहतर रेल संपर्क का लाभ भी मिलेगा। इन दोनों फैसलों के दूरगामी प्रभाव औद्योगिक विकास, निवेश, रोजगार, कनेक्टिविटी और साथ ही आर्थिक वृद्धि पर आज विस्तार से चर्चा करेंगे। हमारे साथ जुड़े हैं वरिष्ठ पत्रकार श्री केजी सुरेश। आपका बहुत स्वागत है सर आकाशवाणी में।
4: जी नमस्कार।
3: कैबिनेट ने देश में 3 समर्पित केमिकल पार्क, ये पहला फैसला है जिसको स्थापित करने के लिए भव्य रसायन योजना की मंजूरी दी है। अनाउंसमेंट थोड़ी देर पहले ही हमने सुना कि केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने किया, तो आप इस फैसले को भारत के रसायन और पेट्रोकेमिकल क्षेत्र के लिए कितना अहम मान रहे हैं अभी?
4: बिल्कुल, ये जो आज का जो फैसला है मैं समझता हूँ कि ऐतिहासिक है। रसायन उद्योग के लिए तो निश्चित ही मील का पत्थर है, क्योंकि इसके तहत पहली बार एक समग्र विकास की एक कल्पना की गई है कि किस तरीके से रसायन उद्योग को हम एक समग्र विकास, समुचित विकास कर सकते हैं। और इसमें जो भी ये 3 पार्क्स की बात की गई है, इसमें पूरे सिर्फ यूनिट्स ही नहीं स्थापित होंगे बल्कि पूरे वैल्यू चेन इसका जो है, चाहे वो अपस्ट्रीम हो, डाउनस्ट्रीम हो, एंसिलरी इंडस्ट्री हो, ये सारे के सारे, ताकि जो संसाधनों का सबसे बेहतरीन किस तरीके से उपयोग हो सकता है और किस तरीके से कॉस्ट कटिंग हो सकता है, लॉजिस्टिक्स में जो खर्चा

0: आज के तारीख में हो रहा है, केमिकल्स को आवाजाही में जो खर्चा हो रहा है, ट्रांसपोर्टेशन में जो खर्चा हो रहा है, तो ये लॉजिस्टिक्स का खर्चे को बहुत बड़े पैमाने पर कम करेंगे। यही नहीं, इसमें जब कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर होगा फैसिलिटीज का और बेसिक यूटिलिटीज होगा, तो फिर आप देखेंगे कि जो रसायन उद्योग है उसके लिए एक बहुत बड़ा बूस्ट है ये, क्योंकि इसमें कॉस्ट कॉम्पिटिटिवनेस भी आएगा और भारतीय रसायन जो उद्योग है उसको वैश्विक स्तर पर जो है कॉम्पिटिटिव बनाना, ये मैं समझता हूं कि बहुत ही महत्वपूर्ण है।
1: जी, अगर इसको थोड़ा
0: जी
1: और डिटेल में समझने की कोशिश करें तो मौजूदा जो औद्योगिक क्षेत्र हैं देश भर में या
0: जी
1: इंडस्ट्रियल पार्क्स जिनको सरकार कहती
0: जी
1: है,
0: जी
1: ये जो केमिकल
0: जी
1: पार्क अब अनाउंस किए गए हैं, ये इन सब
0: वही
1: मौजूदा औद्योगिक क्षेत्रों या इंडस्ट्रियल पार्क से किस तरह से अलग होंगे?
0: ये एक्सक्लूसिव होगा केमिकल इंडस्ट्री के लिए। जैसे अब अभी आप देखते हैं आईटी पार्क्स देखते हैं, सॉफ्टवेयर पार्क्स देखते हैं, जहां सॉफ्टवेयर से जुड़े हुए सारे एंसिलरी इंडस्ट्री, सारे उसकी जो लॉजिस्टिक्स की व्यवस्थाएं एक जगह करने का एक प्रयास होता है। अगर आप एक बड़े इंडस्ट्रियल औद्योगिक क्षेत्र में आपने रसायन का उद्योग लगा दिया तो वो स्टैंड अलोन होगा, यहां सबके सब एक क्लस्टर बना दिया जाएगा जिसके तहत जो है सभी इंडस्ट्रीज एक साथ जो है एक जगह से, तो इससे ट्रांसपोर्टेशन में जो होगा, रेल हेड्स अगर वहां शुरू करने हैं गुड्स के माध्यम से अगर करना है, तो ये सारा कुछ जो लॉजिस्टिक जो है वो तभी संभव हो पाएगा जब सब एक ही जगह में केंद्रित है। हमें ये नहीं भूलना चाहिए केमिकल ट्रांसपोर्टेशन थोड़ा हजार्डस भी होता है,
1: जी
0: इस दृष्टि से भी अगर आप देखेंगे, सेफ्टी के दृष्टि से भी देखेंगे, तो एक क्षेत्र में आप स्पेसिफिक जैसे स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स होते थे वैसे ही एक डेडिकेटेड जोन होगा। अब ये देखने वाली बात है कि किधर किधर इसको स्थापित किया जाएगा, लेकिन इसका उद्देश्य है कि पूरे देश में जो है हम रसायन उद्योग को कैसे बढ़ाएं, क्योंकि आज बहुत बड़े पैमाने में हम लोग रसायन को जो है आयात करते हैं।
1: जी
0: इसको हम अगर कॉम्पिटिटिव बन गए, एक जब आप कई चीजों को इंफ्रास्ट्रक्चरल कॉस्ट को शेयर करते हो एक जगह में, आपका जब सारा सेटअप होता है तो आप कॉम्पिटिटिव हो जाते हो, आपका इंडिविजुअल जो खर्चा होता है यूनिट्स का उसमें कमी आती है, और निश्चित ही एक्सपोर्ट्स में हमें उसका फायदा मिलेगा, हम बेहतर चीजों को कॉम्पिटिटिव रेट्स में हम इसको बेच पाएंगे। तो न सिर्फ आयात को कम करना है अपितु भारतीय रसायन उद्योग को जो है निर्यात के जो मौके हैं उसको भी कैसे बढ़ावा देना है, और इसको किस तरीके से हम एक सस्टेनेबिलिटी को ध्यान में रखते हुए जो है, क्योंकि पर्यावरण एक बड़ा चिंता का विषय हमेशा रहता है, तो हम ऐसे सेंट्रलाइज्ड फैसिलिटीज होंगे जहां अभी हम एक चिंता रहती है कि भाई केमिकल्स जो है कभी नदी में बहाया जाता है, कभी नदी नालों में चला जाता है, कभी अंडरग्राउंड चला जाता है, तो इसके लिए एनवायरमेंटल फ्रेंडली हो इस बात को सुनिश्चित करने के लिए कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट की भी बात की गई है, ट्रीटमेंट की बात की गई है, स्टोरेज और डिस्पोजल बहुत बड़ा विषय होता है केमिकल्स को डिस्पोज ऑफ करना, क्योंकि उसमें बहुत जो है खतरे भी होते हैं, आग लगने की खतरे होते हैं, केमिकल्स के फैलने से जो है कई घटनाएं आपने देखा है, लीकेज को लेकर जो है
1: जी
0: कई घटनाएं रिपोर्ट की गई है देश में। तो जब एक जगह इन सब चीजों को किया जाएगा, हजार्ड वेस्ट जो होता है इसका वेस्ट मैनेजमेंट बड़ा ही कठिन होता है, अगर इसको एक जगह में अगर केंद्रित करके एक पार्क में अगर हम इसको करेंगे तो हम देखेंगे कि इसका बेहतर कंप्लायंस होगा, और जो पर्यावरण के रेगुलेशंस हैं, नियमन हैं, उसके अनुसार हमारी ये इंडस्ट्री जो है बेहतर तरीके से चल पाएगी।
1: बिल्कुल, आपने पर्यावरण संबंधी चिंताएं इसमें बखूबी समझाई हैं। इसी व्यापक सोच को आगे बढ़ाती हुई एक दूसरी जो मंजूरी दी गई है, जो दूसरा कैबिनेट का फैसला है, वो है बल्लारी गुंतकल रेलखंड पर तीसरी और चौथी रेल लाइन बिछाने को मंजूरी देने का। तो रेलवे के आधुनिकीकरण और क्षमता विस्तार के लिहाज से तो ये काफी महत्वपूर्ण है ही, लेकिन ये परियोजना पीएम गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के तहत भी इससे जुड़ी हुई है, इसके अंतर्गत ही इसको मंजूरी दी गई है। इस सोच को किस तरह से आगे बढ़ाती है ये परियोजना आज जिसको मंजूरी मिली है सुरेश जी, और खास करके जब हम विकसित भारत का सपना देखते हैं और हम कहते हैं कि जो भी देश में हो रहा है, जो भी ग्रोथ है, जो भी बेनिफिट्स है, वो हर उस नागरिक के पास पहुंचे, हम अंत्योदय की बात करते हैं, तो उस अगर परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो ये योजना कितनी महत्वपूर्ण आपकी नजर में?
0: देखिए, मैं समझता हूं कि रेल एक क्षेत्र है जहां हमने अप्रत्याशित विकास किया है, खासकर पिछले 10-11 वर्षों में, और अभी कुछ ही दिन पहले हमने देखा, जींद में देखा हमने, देश का पहला हाइड्रोजन ट्रेन देखा, जो शायद विश्व में उस स्तर का हाइड्रोजन का उपयोग होता है जितने सारे

0: डब्बे हमारे यात्रियों के लिए उसमें लगे हैं। इस तरह की व्यवस्था दूसरे किसी देश में नहीं है। तो जो भी हम काम करते हैं उसको बहुत ही सोच समझ कर आगे बढ़ते हैं। एक चीज जरूर आपको यहां बताना चाहूंगा जो बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म जो है उसी के तहत काम हो रहा है। चाहे कितने भी राजनीतिक मतभेद हो सकते हैं, लेकिन जब आवंटन की बात आती है, संसाधनों की बात आती है, तो केंद्र सरकार इस मामले में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करती है। ये दोनों जगहों में जो है, अगर आप देखेंगे, जो लाभ इसको मिल रहा है कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के 3 जिलों को, अब दोनों जगह जो है केंद्र में जो सत्ताधारी दल है उसका कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन इसके बावजूद जो है उस प्रदेश के पूरे देश को सबका साथ सबके विकास के अंतर्गत मैं समझता हूं कि ये परियोजना तैयार की गई है। और निश्चित ही जो है आज हम मेट्रो का जो एक्सपेंशन पूरे देश में हुआ है, आज हम ऑल्टरनेटिव जितने मोनोरेल्स की बात कर रहे हैं, बुलेट ट्रेन्स की बात कर रहे हैं, तो उसी दिशा में मैं समझता हूं कि ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के 3 जिलों को जो इस वक्त नेटवर्क है उसको लगभग 46 किलोमीटर सिर्फ रेल नेटवर्क होगा, नया रेल ट्रैक्स जो है वो बिछाए जाएंगे। सरकार का हमेशा जो फोकस है वो ग्रामीण क्षेत्रों में रहा है,
1: जी
0: तो उसको देखते हुए जो है लगभग 99 गांव जिसमें 7 लाख के करीब लोग हैं उनको इस परियोजना से लाभ मिलेगा। यानी कि ग्रामीण क्षेत्रों से, चाहे वो सामग्री गुड्स को ले जाने के मामला हो या पैसेंजर्स का हो, उनको जो है किस तरीके से हम एक अफोर्डेबल यात्रा की व्यवस्था कर सकते हैं। याद रखें कि जो ये रूट की बात की गई है इसमें बहुत प्रमुख पर्यटन के भी केंद्र हैं और साथ ही साथ धार्मिक केंद्र भी है।
1: जी
0: एक तरफ बेल्लारी फोर्ट जैसे इलाके हैं तो दूसरी तरफ श्री कुमार स्वामी मंदिर जैसे बहुत पवित्र स्थान भी जो है इसमें है। तो इस तरीके से हम टूरिज्म को भी बढ़ावा दे रहे हैं। तो कोई भी योजना जब हम लागू करते हैं तो ये प्रयास रहता है कि उसका जो मल्टी प्रोंग्ड, उसके जो लाभ हो वो बहुआयामी हो, सिर्फ एक दिशा में नहीं कि चलो रेल की पटरी खुल गई। पर्यटन को भी लाभ होगा, वहां के ग्रामीण क्षेत्रों को भी लाभ होगा, वहां के कृषि क्षेत्र को भी लाभ होगा, वहां के गुड्स को दूर दराज के क्षेत्रों तक पहुंचाने में, कनेक्टिविटी बनाने में लाभ होगा। तो मैं समझता हूं इस सभी दृष्टि से ये प्रोजेक्ट जो है बहुत महत्वपूर्ण है।
1: बिल्कुल, सिर्फ कनेक्टिविटी नहीं बल्कि आधुनिकीकरण, और जिस तरह से आपने बताया कि स्थानीय स्तर पर जब निर्माण कार्य होगा तो रोजगार भी बढ़ेगा, आर्थिक गतिविधि में भी कई तरह के अवसर पैदा होंगे, और टूरिज्म की भी आपने बात कही। अंत में यदि हम आपसे जानना चाहें कि अगर हम देखें कि रेलवे का ये सिर्फ एक और प्रोजेक्ट नहीं है, इट्स वन अमंग मेनी प्रोजेक्ट्स, कई विभिन्न परियोजनाओं को साथ अगर हम रखकर देखें, तो क्या आकलन है आपका कि भारतीय रेलवे में किस तरह का व्यापक बदलाव पिछले कुछ सालों में हुआ है, और देश भर में इसका लाभ अगर आम नागरिकों को और देश की अर्थव्यवस्था को किस तरह से न सिर्फ अभी मिल रहा है बल्कि आगे आने वाले 20-30 सालों के बाद उनकी जीवन में किस तरह का बदलाव आएगा। और ये मैं आपसे इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि ये परियोजनाएं जब आज अनाउंस भी कर रहे थे केंद्रीय मंत्री, तो उन्होंने आगे का एक रोड मैप बताया, और उन्होंने बताया कि ये परियोजनाएं हर उस विजन से जुड़ी हुई है जो हमें 2047 विकसित भारत विजन की ओर ले जाएंगे।
0: आधुनिकीकरण जब भी होता है, आज हम देखेंगे जो सड़कों का जाल फैलाया गया है, चाहे वो ईस्टर्न क्वाड्रिलेटरल हो, चाहे वो आगरा एक्सप्रेसवे हो, देखिए जहां हवाई जहाज तक उतर सकते हैं, फाइटर प्लेन्स उतर सकते हैं, इस स्तर का जो है बनाया गया है। रेलवे, हम कभी कश्मीर में ट्रेन का जाने का हम सोच नहीं सकते थे। अभी मैं उत्तराखंड से आ रहा था तो उत्तराखंड में रेल का काम चल रहा है, पहाड़ों को काट के जो है रेलवे को वहां तक पहुंचाने का काम चल रहा है। तो आम जनता को किस तरीके से जोड़ा जा सकता है, उनके यहां रोजगार निवेश कैसे बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि जब ट्रांसपोर्टेशन या इंफ्रास्ट्रक्चर जब मजबूत होता है तो औद्योगीकरण होता है, औद्योगीकरण होता है तो रोजगार निर्माण होता है, रोजगार निर्माण होता है तो जीडीपी बढ़ती है, उसमें जो है लोग जो है खर्चा कर पाते हैं अपने जेब से, और उससे जो है हमारे अर्थव्यवस्था है उसको स्फूर्ति मिलती है, उसको गति मिलती है। ये जो एनर्जी एफिशिएंसी पर जोर दिया गया है, और इससे जो है एक तो हमारे नेट जीरो का हमने जो एक कमिटमेंट दिया है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एमिशंस को लेकर, उसमें क्लाइमेट चेंज में यानी कि जो मौसम में बदलाव आ रहा है वो सब विषयों को लेकर हमारा एक बहुत बड़ा योगदान होगा कार्बन फुटप्रिंट को कम करने के लिए, क्योंकि जब लॉजिस्टिक कॉस्ट कम होगा और इसके साथ साथ हमारा जब तेल का हम जो आयात करते हैं वो बहुत बड़े तादाद में कम होगा जब हम रेल के माध्यम से, हम जब हाइड्रोजन ट्रेन जैसे इलेक्ट्रिसिटी के माध्यम से जब हम चलाते हैं तो

0: का फर्क होता है। और निश्चित ही जो है हम समझते हैं कि उससे न सिर्फ हमारा अपना जो प्रदूषण और अन्य चीजों से हम बचते हैं, पर्यावरण बेहतर होता है, अपितु जो वैश्विक स्तर पर भी हमारा उसमें योगदान रहता है। तो मैं समझता हूं कि एक विकसित भारत 2047 की जब कल्पना करते हैं तो वो समावेशी है, उसमें हम पर्यावरण को साथ में लेते हुए जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट मॉडल है जिसमें हम तरक्की भी करें लेकिन एक संतुलित तरक्की हो जिससे जो है हमारे पर्यावरण को भी चोट ना पहुंचे, हमारे लोगों को भी लाभ पहुंचे और उद्योगीकरण जो है वो एक ह्यूमन फेस के साथ हो, एक मानवीय चेहरे के साथ हो।
1: बिल्कुल, संतुलित लेकिन समावेशी ग्रोथ, यही हमारा मंत्र है और इसी मंत्र के साथ हम 2047 विकसित भारत के सपने की ओर बढ़ रहे हैं। समय इतने की ही इजाजत देता है। सुरेश जी, धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए,
0: बहुत बहुत धन्यवाद,
1: और अपने विचार हमारे साथ साझा करने के लिए।
0: नमस्कार।
1: तो श्रोताओं, सुर्खियों में आज इतना ही, नमस्कार।
2: अभी आप सुन रहे थे केंद्रीय मंत्रिमंडल के निर्णयों पर चर्चा, इसमें भाग ले रहे थे वरिष्ठ पत्रकार केजी सुरेश और पत्रकार टीना झा। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।
3: सुर्खियों में
4: अभी आप सुन रहे थे प्रोग्राम सुर्खियों में, ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। मीडियम वेव्स 1071 किलोहर्ट्ज़, मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR और DD फील्ड डिश पर हमारी नशियात का सिलसिला जारी है। सावन, हम आपको याद दिला दें, हमारी दूसरी मजलिस में आज सहपहर 3:30 बजे सूबाई लोकगीतों के प्रोग्राम में आप सुन सकते हैं कश्मीरी लोकगीत मुख्तलिफ फनकारों के गाए हुए। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। दिन का 1 बजा जाता है। अब आलमी खबरें नशर की जाएंगी।
5: ये आकाशवाणी है। अब आप हबीब रहमान से आलमी खबरें सुनिए। हुकूमत ने पेपर लीक वाकयात की रोकथाम के लिए ज्यादा सख्त सजा से मुतालिक बिल के मसौदे को मंजूरी दे दी है। उम्मीद है कि यह बिल पार्लियामेंट में अगले हफ्ते पेश किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने नौजवानों का शुक्रिया अदा किया है कि उन्होंने पेपर लीक वाकयात की रोकथाम के लिए मुजव्वजा इस्लाहात से मुतालिक उनके वीडियो पर तजावीज़ पेश की हैं। उन्होंने कहा है कि मजीद मजबूती के साथ ये ताल्लुकात जारी रहेंगे। हुकूमत और CJP के दरमियान आज तीसरी बार बातचीत होगी। भारत ने बहरे अस्वद में कमर्शियल जहाज पर किए गए हमले की सख्त मजम्मत की है जिसमें एक भारतीय जहाज की मौत हो गई थी। और दौलत मुश्तरका खेल में झंडू कुमार की जानिब से मर्दों के हैवीवेट पैरा पावर लिफ्टिंग मुकाबले में कांसे का तमगा जीतने के साथ भारत ने तमगे जीतने का सिलसिला शुरू कर दिया है। अब खबरें तफसील से। मरकजी काबीना ने तेजी से काम करने वाली अदालतें कायम करने और पेपर लीक से निमटने और इम्तिहान में गलत तौर तरीके अपनाने पर सख्त सजा को यकीनी बनाने से मुतालिक बिल के एक मसौदे को मंजूरी दे दी है। पार्लियामेंट हाउस कम्प्लेक्स में वजीर आजम नरेंद्र मोदी की सदारत में बिल के इस मसौदे को मंजूर किया गया। जराए ने हमारे नामा निगार को बताया है कि उम्मीद है कि यह मुजव्वजा बिल पार्लियामेंट में अगले हफ्ते पेश किया जाए। इसी दौरान इम्तिहान के निजाम में इस्लाहात करने की एक बड़ी कोशिश के तौर पर इम्तिहानात का इनेकाद कराने वाली एजेंसी NTA ने 47 अफसरान को बर्खास्त कर दिया। जराए के मुताबिक इनमें से कुछ अहलकारों के खिलाफ कानूनी और फौजदारी कार्रवाई भी की जाएगी। ये इकदामात NTA में मुकम्मल तौर पर तब्दीली लाने का एक हिस्सा है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने अपने वीडियो से मुतालिक मौसूला मुस्बत रद्दअमल और तजावीज पर हर एक का शुक्रिया अदा किया है जिसमें उन्होंने पेपर लीक मामले में मुलव्वस अफराद को सजा देने का एक सख्त कानून तश्कील देने के हुकूमत के फैसले का ऐलान किया था। एक वीडियो पैगाम में जनाब मोदी ने कहा कि पेपर लीक मामलात की रोकथाम के लिए सख्त कार्रवाई से मुतालिक शिकों को शामिल करते हुए एक नया बिल अगले हफ्ते पार्लियामेंट के इस इजलास में पेश किया जाएगा। बिल के इस मसौदे को कल मरकजी काबीना ने मंजूरी दी। इस मसौदे का ऐलान वजीर आजम ने अपने एक इंस्टाग्राम वीडियो में किया था। जनाब मोदी ने एक ताजा वीडियो पैगाम में, जो उनके इंस्टाग्राम हैंडल से कल जारी किया गया है, कहा है कि ये ताल्लुकात मजीद मजबूती के साथ जारी रहेंगे। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज

0: पहरा करते हुए दूसरी कोशिश में 190 किलोग्राम वजन उठाया। इस तरह से उन्होंने 130.9 पॉइंट्स के साथ कांसे का तमगा हासिल किया। मर्दों के क्रिकेट में आज हरारे में भारत 3 मैचों की T20 सीरीज के दूसरे मैच में मेजबान जिम्बाब्वे से मुकाबला करेगा। यह मैच भारतीय वक्त के मुताबिक शाम 4:30 बजे शुरू होगा। भारतीय टीम को सीरीज में 1-0 से सबकत हासिल है। उसने जुमेरात को पहले मैच में 7 विकेट से जीत हासिल की थी। आखिर में खास खास खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। हुकूमत ने पेपर लीक वाकयात की रोकथाम के लिए ज्यादा सख्त सजा से मुतालिक बिल के मुसव्विदों को मंजूरी दे दी है। उम्मीद है कि यह बिल पार्लियामेंट में अगले हफ्ते पेश किया जाएगा। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने नौजवानों का शुक्रिया अदा किया है कि उन्होंने पेपर लीक वाकयात की रोकथाम के लिए मुजवजा इसलाहात से मुतालिक उनके वीडियो पर तजावीज पेश की हैं। उन्होंने कहा है कि मजीद मजबूती के साथ ये ताल्लुकात जारी रहेंगे। हुकूमत और CJP के दरमियान आज तीसरी बार बातचीत होगी। भारत ने बहरे अस्वद में कमर्शियल जहाज पर किए गए हमले की सख्त मजम्मत की है, जिसमें एक भारतीय जहाजी की मौत हो गई थी। और दौलत मुश्तरका खेलों में झंडू कुमार की जानिब से मर्दों के हैवीवेट पैरा पावर लिफ्टिंग मुकाबले में कांसे का तमगा जीतने के साथ भारत ने तमगे जीतने का सिलसिला शुरू कर दिया है। इसी के साथ आलमी खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
1: ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है, मीडियम वेव 1071 किलो हर्ट्ज़, मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR और DD फ्री डिश पर हमारी नशरियात का सिलसिला जारी है।

ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। पेश है अब तक की अहम खबरों की सुर्खियां। हुकूमत ने पेपर लीक वाकयात की रोकथाम के लिए ज्यादा सख्त सजा से मुतालिक बिल के मसौदे को मंजूरी दे दी है। उम्मीद है कि यह बिल पार्लियामेंट में अगले हफ्ते पेश किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने नौजवानों का शुक्रिया अदा किया है कि उन्होंने पेपर लीक वाकयात की रोकथाम के लिए मुजवजा असलाहत से मुतालिक उनके वीडियो पर तजावीज पेश की हैं। उन्होंने कहा कि मजीद मजबूती के साथ ये ताल्लुकात जारी रहेंगे। हुकूमत और CJP के दरमियान आज तीसरी बार बातचीत होगी। भारत ने बहरे अस्वद में कमर्शियल जहाज पर किए गए हमले की सख्त मजम्मत की है, जिसमें एक भारतीय जहाजी की मौत हो गई थी। और दौलत मुश्तका खेलों में झंडू कुमार की जानिब से मर्दों के हैवी वेट पैरा ओलंपिक लिफ्टिंग मुकाबले में कांस्य के तमगे जीतने के साथ भारत ने तमगे जीतने का सिलसिला शुरू कर दिया है। ये थी अब तक की अहम खबरों की सुर्खियां। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। अब हमारी पहली मजलिस की नशरियात इख्तिताम पजीर होती हैं। सहपहर 3 बजे आपकी खिदमत में एक बार फिर हाजिर होंगे दूसरी मजलिस की नशरियात के साथ। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए।

जी बिल्कुल ठीक पहचाना आपने श्रोताओं, ये फिल्म है दिल एक मंदिर। साल 1963 में आई इस फिल्म का निर्देशन किया था सीवी श्रीधर ने, और फिल्म में राजेंद्र कुमार राजकुमार और मीना कुमारी ने अपने सशक्त अभिनय से कहानी को जीवंत बना दिया। वहीं अगर हम संगीत की बात करें तो यहाँ शंकर जयकिशन के मधुर संगीत और शैलेंद्र और हसरत जयपुरी के गीतों ने इस फिल्म को अमर बना दिया। आज के सफर में हम और आप कई सारे ऐसे नगमे सुनेंगे जो इस दिल एक मंदिर की कहानी के चुनिंदा गीत हैं, और उनसे जुड़ी कुछ रोचक बातें भी करेंगे और इस कहानी के बारे में भी जानकारी देंगे। शुरुआत करते हैं उस मधुर गीत से जो प्रेम की कोमल भावनाओं से बेहद खूबसूरती से अभिव्यक्त करता है। प्रस्तुत है फिल्म दिल एक मंदिर का ये गीत।

तो दोस्तों, ये था दिल एक मंदिर का एक बहुत ही शानदार गीत, जिसे सुनकर आज भी दिल में पुरानी यादें ताजा हो जाती हैं। तो चलते हैं फिल्म की कहानी की तरफ। कहानी एक ऐसे दंपत्ति की है जो प्यार में, सच्चे प्यार में डूबे हुए होते हैं। कहते हैं कि सच्चा प्यार केवल साथ निभाने का नाम नहीं होता, बल्कि हर मुश्किल में एक दूसरे के लिए त्याग करने का नाम होता है। और ऐसी ही भावनाओं से भरी फिल्म है ये दिल एक मंदिर की कहानी। कहानी एक शादीशुदा जिंदगी और प्यार और विश्वास से भरी हुई है, जिसमें एक दंपत्ति होता है जिनकी जिंदगी में प्यार और विश्वास कूट कूट के भरा होता है। लेकिन अचानक उनकी खुशियों पर संकट आ जाता है जब कहानी में पति का किरदार निभाने वाले अभिनेता की गंभीर बीमारी की चपेट में आ जाते हैं। इलाज की जिम्मेदारी होती है एक मशहूर डॉक्टर के हाथों में। आखिरकार कहानी में भावनात्मक मोड़ तब आता है जब पता चलता है कि ये जो डॉक्टर हैं, वो कभी पत्नी के पुराने प्रेमी रह चुके हैं। अब डॉक्टर के सामने एक कठिन परीक्षा है, क्या वह अपनी

रानी प्रेम को याद करेगा या अपने पेशे की शपथ निभाकर मरीज की जान बचाएगा। कहानी का अगला भाग हम आपको इस गीत के बाद बताएंगे, तब तक बने रहिए हमारे साथ।

तो दोस्तों, इस गीत से पहले हम बात कर रहे थे फिल्म की कहानी की, जिसमें डॉक्टर साहब के पास ये कश्मकश होती है कि वो अपने प्यार के साथ जाएं या फिर अपने पेशे के साथ। वहीं दूसरी ओर पत्नी अपने पति के प्रति पूरी तरह समर्पित रहती है और हर परिस्थिति में उसका साथ नहीं छोड़ती। तो आखिरकार डॉक्टर अपने व्यक्तिगत भावनाओं से ऊपर उठकर अपना कर्तव्य निभाते हैं और मरीज का सफल इलाज करते हैं। आखिरकार फिल्म का संदेश भी यही है कि जो सच्चा प्रेम होता है श्रोताओं, त्याग, ईमानदारी

दारी और कर्तव्य में छिपा होता है। रिश्तों की जो मजबूती होती है ना, वो विश्वास और समर्पण से बनती है, ना कि केवल भावनाओं से। ऐसे ही न जाने हिंदी सिनेमा में कितनी फिल्में, फिल्मों की कहानी के बारे में हम आपको बता चुके हैं, लेकिन कुछ फिल्में और उनके संगीत ऐसे होते हैं जो समय के साथ कितनी भी समय निकल जाए वो बदलते नहीं हैं। समय ज़रूर बदलता है, तकनीक बदलती है, लेकिन जो अच्छा संगीत होता है ना, वो अपना आकर्षण कभी भी होता नहीं है या कम नहीं होने देता। यही एक कारण है कि दिल एक मंदिर के गीत जो हैं, आज भी रेडियो, संगीत मंचों और श्रोताओं की यादों में उतने ही ताज़ा हैं जैसे कि

0: रेडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे।
1: So easy.
2: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये गीत जरूर पसंद आया होगा। सुमन कल्याणपुर की आवाज और शंकर जयकिशन का संगीत। अपने भाव, संगीत और गायकी के कारण ऐसे तमाम गीत आज भी श्रोताओं की पसंद बने हुए हैं। आज के कार्यक्रम एक ही फिल्म से में बस इतना ही। उम्मीद है कि ये फिल्म दिल एक मंदिर और इससे जुड़े सदाबहार गीत और उनकी कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी। अपनी प्रतिक्रियाएं हमें अवश्य भेजिए। अगले अंक में आपसे फिर मिलेंगे एक और यादगार फिल्म और उसके मधुर गीतों के साथ। तब तक के लिए मुझे यानी दुर्गेश सारस्वत को दीजिए अनुमति। नमस्कार। चलते चलते सुनते हैं ये इसी फिल्म का एक और प्यारा सा गीत।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम एक ही फिल्म से। आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़ पर, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। 1:40 हुए हैं, आपसे सुनते हैं समाचार।
1: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। खबरां इस बुलेटिन नाल मैं अमन देव। पहला चोण मियां खबरां। सरकार अज कोकर जनता पार्टी के वफद नाल प्रीख्या प्रणाली विच सुधार अते पेपर लीक नूं रोकण दे उपावां नाल संबंधित मंगां बारे इक होर गेड दी गलबात करेगी। लद्दाख विच 27वें करगिल विजय दिवस के संबंध में 2 दिना समारोह अज द्रास विच शुरू हो गए ने। आसाम विच हड़ां संबंधी स्थिति गंभीर बनी हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सूबे विच हड़ां दी हालत संबंधी जायजा लैण लई आसाम दे मुख्यमंत्री हिम्मत बिस्व सरमा नाल टैलीफोन ते गलबात कीती है। जम्मू कश्मीर विच श्री माता वैष्णो देवी ते श्री अमरनाथ जी यात्रा लगातार 6 दिन मुलतवी रहण तों बाद अज तों मुड़ शुरू हो गई है। ते भारत अते जिम्बाबवे विचकार 3 T20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैचां दी लड़ी दा दूजा मैच अज हरारे विच खेडिया जाएगा। ਹੁਣ ਖਬਰਾਂ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ। ਸਰਕਾਰ ਅੱਜ ਕੋਕਰੋਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ CJP ਦੇ ਵਫਦ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਉਪਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮੰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੇੜ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੇਗੀ। ਮੀਟਿੰਗ 3:30 ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਕੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਕਲੱਬ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਤੈਅ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ JP ਨੱਡਾ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ CJP ਦੇ ਵਫਦ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ੍ਰੀ ਨੱਡਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰਾਂ ਲਈ CJP ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ ਗਿਆ। ਸ੍ਰੀ ਨੱਡਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ CJP ਨੇ 3 ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੁਝ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵੀਡੀਓ ਸੰਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਵਾਂ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ।
2: थैंक यू फ्रेंड्स, मेरे जो वीडियो पोस्ट किया था उसको जिस प्रकार से आपने रिस्पॉन्ड किया, सकारात्मक सुझाव दिए, थैंक्स टू एवरीबॉडी। ये आपका प्यार बना रहेगा, हमारा नाता और अधिक सक्रियता से जुड़ता रहेगा।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि पेपर लीक वर्गियां घटनावां नूं रोकण ते दोषियों विरुद्ध सख्त कार्रवाई करने लई एक नवा बिल अगले हफ्ते संसद विच पेश कीता जाएगा। बिल दे खरड़े नूं केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कल मंजूरी दे दित्ती है। इस दे नाल ही प्रधान मंत्री मोदी दे इंस्टाग्राम वीडियो ने एक नवा रिकॉर्ड कायम किया है। यह वीडियो 24 घंटे 30 करोड़ 30 लाख तो वध वार देखा गया, जिस नाल दुनिया विच सब तो वध देखा गया वीडियो बन गया है। लोक सभा विच विरोधी धिर दे नेता राहुल गांधी ने अज नवी दिल्ली विच एक प्रेस कॉन्फ्रेंस विच सिक्ख्या मंत्री धर्मेंद्र प्रधान नूं मंत्रिमंडल तों हटाउण दी मंग कीती है। कांग्रेस नेता ने मंग कीती है कि प्रदर्शन दौरान विद्यार्थियों तों होए हमले लई जिम्मेवार लोकां खिलाफ कार्रवाई कीती जानी चाहीदी है। सरकार ने सोशल मीडिया ते घूम रहे उस वीडियो का खंडन किया, जिस विच दावा किया गया कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल NS राजा सुब्रमणी ने कहा कि नवी दिल्ली के जंतर मंत्र के विरोध प्रदर्शन कारण 30,000 फौजी जवानों ने इस्तीफा दे दिया है। प्रेस इन्फॉर्मेशन PIB की तथ्य जांच इकाई ने स्पष्ट किया कि वीडियो फर्जी है और आर्टिफिशियल इंटैलीजेंस राही तैयार किया गया है। यूनिट ने कहा है कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ने अजिहा कोई बयान नहीं दिता। PIB ने नागरिकों को अपील की है कि वह किसी भी जान

0: ਖੇਡੇ ਗਏ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਮਿਸਰ ਦੀ ਬਾਬ ਸਮੇਰ ਨੂੰ 3-1 ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ। ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਨਾਹਦ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਮਿਸਰ ਦੀ ਰੁਕਾਇਆ ਸਲੇਮ ਨਾਲ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਮੈਚ ਭਾਰਤੀ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਤੀ 10:30 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗਾ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਚੋਣਵੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸੁਣ ਲਓ। ਸਰਕਾਰ ਅੱਜ ਕਾਕਰੋਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ CJP ਦੇ ਵਫਦ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਉਪਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮੰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੇੜ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੇਗੀ। ਲੱਦਾਖ ਵਿੱਚ 27ਵੇਂ ਕਾਰਗਿਲ ਵਿਜੇ ਦਿਵਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ 2 ਦਿਨਾਂ ਸਮਾਰੋਹ ਅੱਜ ਦਰਾਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ। ਅਸਾਮ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਸਬੰਧੀ ਸਥਿਤੀ ਗੰਭੀਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸਬੰਧੀ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਅਸਾਮ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਿਮੰਤ ਬਿਸਵਾ ਸਰਮਾ ਨਾਲ ਟੈਲੀਫੋਨ 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਮਾਤਾ ਵੈਸ਼ਨੋ ਦੇਵੀ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਰਨਾਥ ਜੀ ਯਾਤਰਾ ਲਗਾਤਾਰ 6 ਦਿਨ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਤੋਂ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਬਾਬਵੇ ਵਿਚਕਾਰ 3 T20 ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਮੈਚਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਦਾ ਦੂਜਾ ਮੈਚ ਅੱਜ ਹਰਾਰੇ ਵਿੱਚ ਖੇਡਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਕੁਐਸ਼ ਖਿਡਾਰਨ ਅਨਾਜ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਜੂਨੀਅਰ ਸਕੁਐਸ਼ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਦੇ ਮਹਿਲਾ ਸਿੰਗਲਸ ਦੇ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾ ਕੇ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਬੁਲੇਟਿਨ ਸ਼ਾਮੀ 6:20 'ਤੇ ਹੋਏਗਾ। ਨਮਸਕਾਰ।
1: ਮੀਡੀਅਮ ਵੇਵ 343.6 ਮੀਟਰ ਯਾਨੀ 873 ਕਿਲੋ ਹਰਟਸ ਤੇ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦਾ ਇਹ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ 1:50 ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋ ਉਰਦੂ ਸਮਾਚਾਰ।
2: ਆਦਾਬ, ਇਹ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਹੈ, ਖਬਰੋਂ ਕੇ ਸਾਥ ਮੈਂ ਹਬੀਬ ਰਹਿਮਾਨ। आसाम में सैलाब की सूरत हाल नाजुक बताई जाती है। मरने वालों की तादाद बढ़कर 61 तक पहुंच गई है। 1 लाख से ज्यादा अफराद ने इमदादी कैंपों में पनाह ले रखी है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने हर मुमकिन इमदाद का यकीन दिलाया है। गुजरात में बारिश से मुतासर इलाकों में बचाव और इमदादी काम जोर शोर से जारी है। भारतीय साहिली मुहाफिजों ने 170 महसूर अफराद को बचाया है। जम्मू कश्मीर में श्री अमरनाथ यात्रा और श्री माता वैष्णो देवी यात्रा फिर से शुरू हो गई है। खराब मौसम की वजह से 6 दिन से ये यात्रा मुअत्तल थी। आज सरकार और CJP के दरमियान इम्तिहानात में इस्लाहात और पेपर लीक की रोकथाम के इकदामात पर तीसरे दौर की गुफ्तगू होगी। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने 4 खसूसी अदालतें नामजद की हैं, जिनमें पेपर लीक और मुतालिका बदुदुमानियों के मामलात की तेजी से समाअत होगी। भारत की अनाहत सिंह ओंटारियो में स्कॉश की खवातीन की आलमी जूनियर चैंपियनशिप के सिंगल्स के फाइनल में पहुंच गई हैं। और भारत और जिम्बाब्वे की मर्दों की क्रिकेट टीम के दरमियान आज तीसरे पहर हरारे में दूसरा T20 मैच खेला जाएगा। अब खबरें तफसील से। आसाम में सैलाब की सूरत हाल बदस्तूर संगीन बताई जाती है। वहां 1,15,000 से ज्यादा लोगों ने इमदादी कैंपों में पनाह ले रखी है। खबरों में कहा गया है कि ये शिवसागर, चराईदेव और जोरहाट जिले में सबसे ज्यादा मुतासिर हुए हैं। मजीद 14 अफराद के हिलाक होने की खबर मिलने के बाद सैलाब से वाबस्ता वाकयात में मरने वालों की तादाद बढ़कर 61 हो गई है। दीखू, दीसांग और धानसीरी नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं, जिससे सूरत हाल और बिगड़ गई है। बचाव इमदादी काम जारी हैं। आफात से निमटने वाली टीमें और जिला हुक्काम मुतासर इलाकों पर कड़ी नजर रखे हुए हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आसाम के वजीर आला हिमंत बिस्वा सरमा से टेलीफोन पर बात की और रियासत में सैलाब की सूरत हाल का जायजा लिया। जनाब सरमा ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि वजीर आजम ने सैलाब की तबाहकारियों और इमदादी कामों की पेशरफ्त वगैरह के बारे में जानकारी हासिल की है। उन्होंने कहा है कि वजीर आजम ने बाजाबादकारी, तामीर नो की कोशिशों और इमदादी कामों के लिए मरकजी सरकार की तरफ से हर मुमकिन इमदाद का यकीन दिलाया है। उधर गुजरात में मूसलाधार बारिश के बाद बचाव और इमदादी काम जंगी पैमाने पर जारी है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 265 तालुका में बारिश हुई है। रियासत की इमदाद से मुतालिक कमिश्नर ने बारिश से वाबस्ता वाकयात में 5 अफराद की जानें तलफ होने की तस्दीक की है। खबरों के मुताबिक भारत के साहिली मुहाफिजों ने 170 महसूर अफराद को बचाया है। हुकाम ने बचाव और इमदादी काम तेज कर दिए हैं और मुतासर इलाकों के हालात पर लगातार नजर रखी जा रही है। जम्मू कश्मीर में सालाना श्री अमरनाथ यात्रा और श्री माता वैष्णो देवी यात्रा

आज फिर से शुरू हो गई है। खराब मौसम की वजह से 6 दिन मुअत्तल रहने के बाद आज से ये यात्रा शुरू हुई है। हुकाम हालात पर लगातार नजर रखे हुए हैं ताकि यात्रियों के तहफ्फुज़ को यकीनी बनाया जा सके और यात्रा खुशुसलूबी से जारी रह सके। यात्रियों को मशवरा दिया गया है कि वो इंतजामिया की तरफ से जारी हिदायात पर सख्ती से अमल करें। नायब सदर सीपी राधाकृष्णन ने आज कहा है कि ऐवान में गुजारा जाने वाला हर दिन, हर घंटा, हर मिनट और हर लम्हा जमहूरियत को मजबूत बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाना चाहिए। नई दिल्ली में राज्यसभा के नौ मुंतखब और नामजद अरकान के लिए मुनाकिदा दो रोजा तारुफी व तरबियती प्रोग्राम की इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि बहस मुबाहसा हमेशा किसी नतीजे और फैसले तक पहुंचना चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज आषाढ़ी एकादशी के पवित्र मौके पर शहरियों को अपनी नेक ख्वाहिशात पेश की। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर जनाब मोदी ने कहा कि यह शुभ दिन अकीदत और हमदर्दी के अबदी पैगाम का है। वजीर आजम ने दुआ की कि भगवान विट्ठल का आशीर्वाद सभी के लिए खुशी, भाईचारा और खुशहाली लेकर आए और मुल्क को एक बेहतर मुआशरे की जानिब रहनुमाई करे। हुकूमत आज सहपहर नई दिल्ली में सीजेपी के वफद के साथ तीसरे दौर की बातचीत करेगी। इस बातचीत में इम्तिहान के निजाम में इस्लाहात और पेपर लीक को रोकने के इकदामात पर तबादले ख्याल किया जाएगा। यह मीटिंग सहपहर 3:30 बजे कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में मुनाकिद होगी। इससे कबल मरकजी वजरा जेपी नड्डा और डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कल नई दिल्ली में सीजेपी के वफद से मुलाकात की थी। मुलाकात के बाद सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए जेपी नड्डा ने कहा कि हुकूमत ने इम्तिहान के निजाम में इस्लाहात से मुतालिक सीजेपी के मुतालबात को पूरी संजीदगी और तवज्जो से सुना है। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने 4 खसूसी अदालतों को नामजद किया है जिनमें इम्तहानात का पर्चा लीक होने और मुतालका बदउनवानियों के मामलात की तेजी से समाअत की जाएगी। यह हिदायत दी गई है कि फर्द जुर्म दाखिल होने के 3 महीने के अंदर अंदर समाअत मुकम्मल की जाए। कायम मकाम चीफ जस्टिस विवेक रूसिया ने भोपाल, इंदौर, ग्वालियर और जबलपुर की जिला और एडिशनल सेशन अदालतों को खसूसी अदालत नामजद किया है। इससे पहले मरकज ने इम्तिहानात से मुतालिक बदउनवानियों के मामलात की जल्द समाअत का यकीन दिलाया था और वजीर आला मोहन यादव ने भी 4 शहरों में खसूसी अदालतें बनाने का ऐलान किया था। लद्दाख में 27वीं करगिल विजय दिवस की मुनासबत से 2 रोजा यादगारी तकरीबात का आगाज आज दरास में हुआ। इन तकरीबात का मकसद ऑपरेशन विजय में भारत की फतेह को याद करना और 1999 की करगिल जंग में अपनी जानों का नजराना पेश करने वाले शहीदों को खराज अकीदत पेश करना है। इस मौके पर

और 1999 की करगिल जंग में अपनी जानों का नजराना पेश करने वाले शहीदों को खराज अकीदत पेश करना है। इस मौके पर युद्ध संस्मरण प्रोग्राम का इनेकाद किया गया, जिसमें ऑपरेशन विजय पर एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म, बहादुर फौजियों को खराज तहसीन, शहीदों के अहले खाना से मुलाकातें और

0: में संस्कृति और शौर्य संध्या जैसे प्रोग्रामों के साथ हो रहा है। कल 26 जुलाई को वजीर दिफा राजनाथ सिंह मेहमान खुसूसी की हैसियत से श्रद्धांजलि समारोह में शिरकत करेंगे और करगिल जंग के अजीम शहदा को खराज अकीदत पेश करेंगे। करगिल विजय दिवस मुल्क के बहादुर जवानों के शुजात, कुर्बानी और हुब्बुल वतनी को सलाम पेश करने का एक बावकार मौका है। करगिल से आकाशवाणी समाचार के लिए मैं इनायत अली।
1: ओडिशा का पवित्र शहर पुरी आज शाम सालाना रथ यात्रा की सबसे शानदार और अहम रसूमात में से एक सुनहरी लिबास की तकरीब का गवाह बनने जा रहा है। इस मौके पर भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा को शानदार सुनहरी लिबास और जेवरात से आरास्ता किया जाएगा। लोकसभा में अपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने मांग की है कि वजीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान को काबीना से हटाया जाए। आज नई दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस रहनुमा ने यह मुतालबा भी किया कि एहतजाज के दौरान जो लोग तलबा पर मुबैना तौर पर हमले के जिम्मेदार हैं उनकी जवाबदेही की जाए। भारत की स्क्वैश खिलाड़ी अनाहत सिंह ने कैनेडा के ओंटारियो में मिस्र की बारब सामह को सेमीफाइनल में 3-1 से हराकर आलमी जूनियर स्क्वाश चैंपियनशिप के खवातीन सिंगल्स फाइनल में पहुंचकर तारीख रकम कर दी है। भारत की 18 साल अनाहत इस अहम जूनियर मुकाबले के फाइनल में पहुंचने वाली दूसरी भारतीय खिलाड़ी बन गई हैं। इससे पहले 2005 में जोशीना चिनप्पा ने यह कामयाबी हासिल की थी। अब खिताबी मुकाबले में उनका सामना आज रात मिस्र की रुकैया सालिम से होगा। तवक्को है कि यह मैच भारतीय वक्त के मुताबिक रात 10:30 बजे होगा। मर्दों के क्रिकेट में आज हरारे में भारत 3 मैचों की T20 सीरीज के दूसरे मैच में मेजबान जिम्बाब्वे से मुकाबला करेगा। यह मैच भारतीय वक्त के मुताबिक शाम 4:30 बजे शुरू होगा। आखिर में खास खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। आसाम में सैलाब की सूरत हाल नाजुक बताई जाती है। मरने वालों की तादाद बढ़कर 61 तक पहुंच गई है। 1 लाख से ज्यादा अफराद ने इमदादी कैंपों में पनाह ले रखी है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने हर मुमकिन इमदाद का यकीन दिलाया है। गुजरात में बारिश से मुतासर इलाकों में बचाव और इमदादी काम जोरों शोर से जारी है। भारतीय साहली मुहाफिजों ने 170 महसूर अफराद को बचाया है। जम्मू कश्मीर में श्री अमरनाथ यात्रा और श्री माता वैष्णो देवी यात्रा फिर से शुरू हो गई है। खराब मौसम की वजह से 6 दिन से ये यात्रा मुअत्तल थी। आज सरकार और CJP के वक्त के दरमियान इम्तिहानात में इस्लाहात और पेपर लीक की रोकथाम के इकदाम पर तीसरे दौर की गुफ्तगू होगी। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने 4 खसूसी अदालतें नामजद की हैं जिनमें पेपर लीक और मुतल्लिका बदउनवानियों के मामलों की तेजी से समाप्त होगी। भारत की अनाहत सिंह ओंटारियो में स्क्वाश की खवातीन की आलमी जूनियर शिप के सिंगल्स के सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। भारत और जिम्बाब्वे की मर्दों की क्रिकेट टीम के दरमियान आज तीसरे पहर हरारे में दूसरा T20 मैच खेला जाएगा। इसी के साथ खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
2: गुड आफ्टरनून, दिस इज आकाशवाणी। आई एम अनुजा कुमार विद द मिडडे न्यूज। The headlines. Flood situation in Assam remains critical as death toll reaches 61. Over 1 lakh people take shelter in relief camps. Prime Minister Narendra Modi assures all possible assistance. Rescue and relief operations in full swing in rain-hit Gujarat. Over 40,000 people evacuated. Shri Amarnath Yatra and Shri Mata Vaishno Devi Yatra in Jammu and Kashmir resume after remaining suspended for 6 days due to inclement weather. Government to hold third round of talks with CJP delegation on exam reforms and paper leak prevention measures this afternoon. Madhya Pradesh High Court designates 4 special fast-track courts for trial of cases relating to paper leak and related irregularities. In squash, India's Anahat Singh enters women's singles final of World Junior Championships at Ontario. And in men's cricket, India to take on hosts Zimbabwe in second T20 at Harare this afternoon. And now the news in detail. The flood situation in Assam remains critical with over 1,15,000 people taking shelter in relief camps. Sibsagar, Charaideo and Jorhat are the worst affected districts. 14 more flood-related deaths have been reported, taking the state's flood death toll to 61. The Diko, Desang and Dhansiri rivers continue to flow above the danger mark, worsening the situation. Relief and rescue operations are

0: Divas began today at Dras. Kargil Vijay Divas is celebrated on the 26th of July every year to mark the nation's victory over Pakistan in Operation Vijay during the 1999 Kargil War. The Yudh Sansmaran program was held at Lamuchin Viewpoint. The celebrations will continue today with Vijay Bhoj and the Shaurya Sandhya ceremony. More from our correspondent.
1: The Kargil War Memorial at Dras is wearing a festive yet solemn look as preparations for the 27th Kargil Vijay Diwas celebration have been completed. The two-day commemorative event begins today, while tomorrow, Honorable Raksha Mantri Rajnath Singh will lead the nation in paying homage to the martyrs of Operation Vijay. The celebration stands as a tribute to the unmatched valor, courage and supreme sacrifice of the Indian Armed Force during the 1999 Kargil War. For Akashwani News, Zanad Ali from Kargil.
0: Vice President C.P. Radhakrishnan today stressed that every day, every hour, every minute and every second spent in the House should be used to strengthen democracy. Mr. Radhakrishnan was addressing the inaugural ceremony of the two-day orientation cum training program for the newly elected and nominated members of the Rajya Sabha in New Delhi.
2: I always say in the House, debates, discussions and even disruptions, it must be always lead to a final decision. Without decision, no country can move forward. Without decision, no government can function. So decision is required. If we delay also, the right decision also becomes sometimes wrong decision, or that becomes no decision. This is where we need to have a knowledge of the rules and procedures of the House towards contributing effectively through debates.
0: Lok Sabha Speaker Om Birla today paid floral tributes to former Lok Sabha Speaker Somnath Chatterjee on his birth anniversary. On the occasion, members of Parliament, former members of Parliament and other dignitaries also paid floral tributes to Somnath Chatterjee. Prime Minister Narendra Modi will interact with the participants of Viksit Vibrant Village Program 2026 tomorrow through video conferencing. Over 400 youth participants representing every state and union territory will interact with the Prime Minister. The sacred city of Puri in Odisha is set to witness one of the most magnificent rituals of the annual Rath Yatra this evening, as Lord Jagannath, Lord Balbhadra and Devi Subhadra will be adorned in the resplendent Suna Besha or golden attire. Lakhs of devotees from the country and abroad are expected to gather along the grand road to witness this magnificent spiritual spectacle. We have a report.
3: The holy city of Puri is immersed in an atmosphere of profound devotion and festivity as the revered Suna Besha or the golden attire of Lord Jagannath, Lord Balabhadra and Devi Subhadra will be ceremonially observed this evening atop their majestic chariots stationed on the Grand Road. During this time honored ritual, the Shivling deities will be adorned with around 208 kilograms of traditional ornaments comprising gold and other precious materials, symbolizing divine majesty, prosperity and universal benevolence. Elaborate security arrangements and extensive pilgrim facilitation measures have been put in place to ensure the smooth conduct of the occasion, which is expected to draw millions of devotees from across India and abroad. Prakash Das for Akashwani News.
0: Dev Shayani Ashadhi Ekadashi, one of the most sacred observances dedicated to Lord Vishnu, is being observed today. Prime Minister Narendra Modi extended his greetings to the citizens on the sacred occasion. On to sports. In men's cricket, India will take on hosts Zimbabwe in the second T20 international of this three-match series at Harare today. The match will begin at 4:30 p.m. in the afternoon. The visitors took 1-0 lead in the game after a dominant 7-wicket win in the opening match on Thursday. In squash, India's Anahat Singh created history by reaching the women's singles final of the World Junior Championships after defeating Egypt's Barb Sameh 3-1 in the semi-final at Ontario in Canada. The 18-year-old became the second Indian player to enter the final of the prestigious junior tournament after veteran Joshna Chinnappa achieved the feat in 2005. Anahat will now face Egypt's Rukaiya Salem in the title clash at the same venue tonight. The match is expected to begin at around 10:30 p.m. Indian Standard Time. India opened its medal tally at the 2026 Commonwealth Games in Glasgow last night after a para-athlete, Chandu Kumar, clinched the bronze medal in the men's heavyweight para-powerlifting. Prime Minister Narendra Modi congratulated the para-athlete on the feat. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Flood situation in Assam remains critical as death toll reaches 61. Over 1 lakh people take shelter in relief camps. Prime Minister Narendra Modi assures all possible assistance. Rescue and relief operations in full swing in rain-hit Gujarat. Over 40,000 people evacuated. Sri Amarnath Yatra and Sri Mata Vaishno Devi Yatra in Jammu and Kashmir resume after remaining suspended for 6 days due to inclement weather. Government to hold third round of talks with CJP delegation on exam reforms and paper leak prevention measures this afternoon. Madhya Pradesh High Court designates 4 special fast-track courts for trial of cases relating to paper leak and related irregularities. And in men's cricket, India to take on hosts Zimbabwe in second T20 at Harare this afternoon. And with that, we end the midday news.
4: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं फरहत नाज। असम में बाढ़ की स्थिति गंभीर, मरने वालों की संख्या 61 हुई। 1 लाख से अधिक लोगों ने राहत शिविरों में शरण ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हर संभव सहायता का आश्वासन। वर्षा प्रभावित गुजरात में बचाव और राहत कार्य जोरों पर। 40,000 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। जम्मू कश्मीर में खराब मौसम के कारण 6 दिन तक स्थगित रहने के बाद श्री अमरनाथ यात्रा और श्री माता वैष्णो देवी यात्रा फिर से शुरू। सरकार और सीजेपी के बीच परीक्षा प्रणाली में सुधार और पेपर लीक रोकने के उपायों पर आज तीसरे दौर की बातचीत। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने पेपर लीक और उससे जुड़ी अनियमितताओं के मामलों की सुनवाई के लिए 4 विशेष फास्ट ट्रैक अदालत गठित की। स्क्वैश में भारत के अनाहत सिंह विश्व जूनियर चैंपियनशिप के महिला सिंगल्स के फाइनल में पहुंची और क्रिकेट में भारत और जिम्बाब्वे के बीच दूसरा मुकाबला आज हरारे में खेला जाएगा। अब समाचार विस्तार से। असम में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। 1 लाख से अधिक लोग राहत शिविरों में शरण लिए हुए हैं। सबसे ज्यादा प्रभावित जिले शिवसागर, चराईदेव और जोरहाट हैं। ताजा रिपोर्ट के अनुसार बाढ़ से संबंधित मामलों में 14 और लोगों की मौत हुई। इनमें चराईदेव में 7, शिवसागर में 6 और जोरहाट में 1 व्यक्ति की मृत्यु हुई है। एक रिपोर्ट।
5: राज्य में बाढ़ से मरने वालों की कुल संख्या बढ़कर 61 हो गई है। प्रमुख नदियां दीखो, दिसंग और धनसरी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। इससे ऊपरी असम में बाढ़ की स्थिति और भी गंभीर हो गई है। प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव अभियान जारी है। आपदा मोचन बल, जिला प्रशासन और अन्य एजेंसियां राहत सामग्री उपलब्ध कराने, फंसे हुए लोगों को निकालने और बाढ़ प्रभावित परिवारों को सहायता प्रदान करने में लगी हुई है। अधिकारी स्थिति पर कड़ी नजर रख रहे हैं और प्रभावित जिलों राहत उपायों को तेज कर दिया गया है। गुवाहाटी से राकेश डोले की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
4: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा से टेलीफोन पर बातचीत कर बाढ़ की स्थिति की समीक्षा की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शर्मा ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें राहत पुनर्वास और पुनर्निर्माण कार्यों में केंद्र सरकार की ओर से हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। श्री शर्मा ने कहा कि असम के लोग इस कठिन समय में प्रधानमंत्री द्वारा दिए गए आश्वासन और अटूट समर्थन के लिए उनके प्रति अत्यंत आभारी हैं। इस बीच गुजरात में मॉनसून की स्थिति गंभीर बनी हुई है। राज्य के कई हिस्सों में तेज बारिश हो रही है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव अभियान युद्ध स्तर पर जारी है।
6: सीआरपीएफ की 32 प्लाटून और सेना की 6 टुकड़ियां भी विभिन्न जिलों में तैनात की गई है। लगातार हो रही बारिश से राज्य के जलाशय में जल स्तर भी तेजी से बढ़ रहा है। सरदार सरोवर नर्मदा बांध में जल भंडारण क्षमता का लगभग 69% पानी भर चुका है, जबकि राज्य के 21 बांधों के लिए हाई अलर्ट जारी किया गया है। जल भराव के कारण यातायात और विद्युत सेवाएं भी प्रभावित हुई है। 34 स्टेट हाईवे समेत राज्य के 600 से अधिक सड़कें एहतियातन बंद कर दी गई है। वहीं मौसम विभाग ने राज्य के विभिन्न जिलों के लिए भारी से अति भारी बारिश की चेतावनी जारी करते हुए मछुआरों को समुद्र में न जाने की सलाह दी है। अपर्णा खुंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
4: भारतीय तटरक्षक बल ने 22 जुलाई के मध्य रात्रि से चलाए गए 11 बचाव अभियानों के माध्यम से दमन, दादरा और नगर हवेली तथा दक्षिण गुजरात के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में फंसे 170 लोगों को बचाया है। वहीं सिक्किम के नामची जिले के फामतम गांव में आज भूस्खलन के कारण 2 लोगों के मारे जाने की आशंका है। नामची के एसएसपी ने बताया कि बचाव अभियान चलाया जा रहा है। 2 घायलों को नामची जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। अधिक जानकारी की प्रतीक्षा है। जम्मू कश्मीर में खराब मौसम के कारण 6 दिनों तक स्थगित रहने के बाद वार्षिक श्री अमरनाथ यात्रा आज फिर से शुरू हो गई है। कश्मीर के संभागीय आयुक्त अंशुल गर्ग ने आकाशवाणी समाचार

0: को बताया कि बालतल और पहलगाम दोनों मार्गों से यात्रा फिर से शुरू कर दी गई है। यात्रियों को सुरक्षित तीर्थ यात्रा के लिए प्रशासन द्वारा जारी निर्देशों का सख्ती से पालन करने की सलाह दी गई है। इस बीच 6,269 तीर्थयात्रियों का एक नया जत्था आज सुबह जम्मू के भगवती नगर यात्री निवास से रवाना हुआ। जम्मू कश्मीर में तेज बारिश के कारण लगातार 6 दिन तक निरस्त रही श्री माता वैष्णो देवी यात्रा आज फिर शुरू हुई। इस मार्ग पर लगातार बारिश, भूस्खलन और अचानक बाढ़ आने के जोखिम के कारण यात्रा को निरस्त कर दिया गया था। तीर्थयात्रियों को अपनी यात्रा के दौरान श्राइन बोर्ड और सुरक्षा एजेंसियों के निर्देशों तथा सुरक्षा परामर्श का पालन करने और मौसम संबंधी जानकारी से अवगत रहने की सलाह दी गई है। मौसम विभाग ने आज गुजरात में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। वहीं कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, उड़ीसा और राजस्थान में भी इसी तरह की स्थिति रहने की संभावना है। अगले 2 से 3 दिन के दौरान हरियाणा, चंडीगढ़ और उत्तर प्रदेश में भी तेज बारिश हो सकती है। वहीं असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, तटीय कर्नाटक, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, पंजाब, दक्षिणांतरी कर्नाटक और उत्तराखंड में भी कुछ स्थानों पर तेज बारिश की संभावना है। दिल्ली में भी आज तेज वर्षा हो सकती है। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। सरकार आज दोपहर नई दिल्ली में कांग्रेस जनता पार्टी CJP के प्रतिनिधिमंडल के साथ तीसरे दौर की वार्ता करेगी। इस बैठक में परीक्षा प्रणाली में सुधार और प्रश्न पत्र लीक की घटनाओं को रोकने के उपायों पर प्रतिनिधिमंडल की मांगों पर चर्चा होगी। ये बैठक दोपहर 3:30 बजे कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब में आयोजित होगी। इससे पहले केंद्रीय मंत्री JP नड्डा और डॉ जितेंद्र सिंह ने कल नई दिल्ली में CJP प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की थी। बैठक के बाद मीडिया से बातचीत में श्री नड्डा ने कहा कि सरकार ने परीक्षा प्रणाली में सुधार संबंधी CJP की मांगों को गंभीरता और धैर्यपूर्वक सुना है। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने परीक्षा प्रश्न पत्र लीक और उससे जुड़े अनियमितताओं के मामलों की सुनवाई के लिए 4 विशेष फास्ट ट्रैक अदालतों को नामित किया है। न्यायालय ने निर्देश दिया है कि आरोप पत्र दाखिल होने के 3 महीने के भीतर इन मामलों का निपटारा किया जाए। उच्च न्यायालय ने कहा है कि ये अदालतें राज्य और केंद्रीय जांच एजेंसियों द्वारा भेजे गए संबंधित मामलों की भी सुनवाई करेगी। इनका अधिकार क्षेत्र आसपास के जिलों तक विस्तारित रहेगा। न्यायालय ने कहा कि इस पहल का उद्देश्य परीक्षा प्रणाली में निष्पक्षता, पारदर्शिता और विश्वसनीयता सुनिश्चित करना तथा ऐसे मामलों में त्वरित न्याय उपलब्ध कराना है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि राज्य सरकार अब इस घोषणा को अमल में लाते हुए 4 प्रमुख शहरों में विशेष अदालतें स्थापित कर रही है। ये घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं के हित में शिक्षा और रोजगार से जुड़े मामलों के शीघ्र निपटारे के लिए की थी। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कल मध्य कोलकाता में कई वामपंथी संगठनों द्वारा नीट परीक्षा पेपर लीक के विरोध में आयोजित रैली के दौरान पत्रकारों पर हुए कथित हमले की कड़ी निंदा की है। उन्होंने कहा कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री ने आज विधानसभा में कहा कि इस घटना के संबंध में 7 मामले दर्ज किए जा चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेपर लीक मामले में सख्त कानून लाने को लेकर जारी किए गए अपने वीडियो संदेश पर मिली प्रतिक्रिया और सुझावों के लिए देश के युवाओं को धन्यवाद दिया है। श्री मोदी ने युवाओं के जबरदस्त समर्थन के लिए आभार व्यक्त किया।
1: थैंक यू फ्रेंड्स, मेरे जो वीडियो पोस्ट किया था उसको जिस प्रकार से आपने रिस्पॉन्ड किया, सकारात्मक सुझाव दिए, थैंक्स टू एवरीबॉडी। ये आपका प्यार बना रहेगा, हमारा नाता और अधिक सक्रियता से जुड़ता रहेगा।
0: वीडियो को अब तक 30 करोड़ 30 लाख से अधिक बार देखा जा चुका है। ये पहले 24 घंटों में सबसे अधिक देखा जाने वाला वीडियो है। प्रधानमंत्री ने कहा कि पेपर लीक जैसी घटनाओं पर रोक लगाने और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के लिए नया विधेयक संसद के मौजूदा सत्र में अगले सप्ताह पेश किया जाएगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पेपर लीक और परीक्षा में गड़बड़ी के मामलों में फास्ट ट्रैक अदालत बनाने और कड़ी सजा के लिए एक मसौदा विधेयक को भी मंजूरी दे दी है। संसद भवन परिसर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में इसे मंजूरी दी गई। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि संसद के बाहर मीडिया को दिए गए बयान के साथ AI का दुरुपयोग कर छेड़छाड़ की गई और एक डीप फेक वीडियो तैयार कर उसे गलत सूचना फैलाने के उद्देश्य से प्रसारित किया गया। सोशल मीडिया पर साझा किए गए पोस्ट में श्री गोयल ने बताया कि इस मामले में आज सुबह चाणक्यपुरी पुलिस थाने में FIR दर्ज की गई है। उन्होंने कहा कि फर्जी वीडियो बनाने, प्रसारित करने या उसे बढ़ावा देने में शामिल सभी लोगों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। दिल्ली पुलिस ने कहा है कि नीट पेपर लीक मामले को लेकर चल रहे विरोध प्रदर्शनों के मद्देनजर वो सोशल मीडिया पर लगातार नजर रख रही है। आज नई दिल्ली में मीडिया को जानकारी

0: जीते हुए मध्य दिल्ली के पुलिस उपायुक्त रोहित राजवीर सिंह ने बताया कि फर्जी खबरें और एआई द्वारा निर्मित सामग्री फैलाने वाले 400 से अधिक सोशल मीडिया हैंडल की पहचान कर उन्हें ब्लॉक दिया गया है।
1: दिल्ली पुलिस ने लोगों से अपील की कि बिना पुष्टि वाले दावों पर बिल्कुल भी भरोसा ना करें। हमारी जांच में यह भी सामने आया कि पाकिस्तान से चलाए जा रहे कुछ सोशल मीडिया अकाउंट्स फेक कंटेंट फैला रहे हैं। दिल्ली पुलिस संबंधित एजेंसियों के साथ मिलकर ऐसे और अकाउंट्स की पहचान करने पर लगातार काम कर रही है। ऐसे 400 से अधिक हैंडल्स की अब तक पहचान कर ली गई है और उन्हें एआई जनरेटेड कंटेंट, डीपफेक वीडियो, एडिटेड तस्वीरें और प्रदर्शन से जुड़ी अन्य झूठी सामग्री फैलाने के कारण ब्लॉक किया गया।
0: और अभी समाचार मिला है कि नीट पेपर लीक मामले में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अपना इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना इस्तीफा सौंपा। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि संसद में बिताया गया हर दिन, हर घंटा, हर मिनट और हर सेकंड लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए समर्पित होना चाहिए। नई दिल्ली में आज राज्यसभा के नव निर्वाचित और मनोनीत सदस्यों के लिए आयोजित दो दिवसीय ओरिएंटेशन और प्रशिक्षण कार्यक्रम के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि सदन में होने वाली बहस हमेशा किसी सार्थक निर्णय तक पहुंचनी चाहिए। सरकार ने सोशल मीडिया पर चल रहे उस वीडियो का खंडन किया है जिसमें दावा किया जा रहा है कि प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल एनएस राजा सुब्रमणि ने कहा है कि नई दिल्ली के जंतर मंतर पर हो रहे प्रदर्शनों के कारण 30,000 सेना के जवानों ने इस्तीफा दे दिया है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने स्पष्ट किया है कि यह वीडियो फर्जी और एआई से तैयार किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल शाम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विकसित वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम 2026 के प्रतिभागियों से बातचीत करेंगे। इस अवसर पर सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करने वाले 400 से अधिक युवा प्रतिभागी प्रधानमंत्री से बातचीत करेंगे। पश्चिम बंगाल सरकार ने आज राज्य विधानसभा में नियंत्रक और महालेखा परीक्षक सीएजी की 28 लंबित रिपोर्टें पेश की हैं। इन लंबित रिपोर्ट को पेश करके पश्चिम बंगाल सरकार ने अपना किया गया वायदा पूरा किया। वित्त मंत्री स्वपन दासगुप्ता ने ये रिपोर्ट पेश की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आज आषाढ़ी एकादशी के अवसर पर नागरिकों को शुभकामनाएं दी हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। भारत की स्क्वैश खिलाड़ी अनाहत सिंह ने इतिहास रचते हुए विश्व जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप के महिला सिंगल्स फाइनल में जगह बना ली है। उन्होंने आज कनाडा के ओंटारियो में खेले गए सेमीफाइनल में मिस्र की बार्ब सामेह को 3-1 से हराया। वहीं फाइनल में अनाहत का सामना आज मिस्र की रुकैया सलीम से होगा। ये मैच भारतीय समयानुसार रात करीब 10:30 बजे शुरू होने की उम्मीद है। अनाहत सिंह जोशना चिनप्पा के बाद विश्व जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने वाली भारतीय खिलाड़ी बन गई हैं। ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों में भारत ने अपना पहला पदक जीत लिया है। झंडू कुमार ने पैरा भारोत्तोलन की पुरुष हैवीवेट स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। उन्होंने 190 किलोग्राम भार उठाकर तीसरा स्थान हासिल किया। इस उपलब्धि के बाद उन्होंने खुशी व्यक्त करते हुए अपने कोच और प्रशिक्षकों का आभार व्यक्त किया।
2: बहुत अच्छा लग रहा है, पहला मेडल है हमारा। हमारे पीछे कोच हैं राजेंद्र सिंह और हमारा जेपी सर हैं, वो भी बहुत सहयोग किए हैं। आज उन्हीं सब बदौलत हमें आज मेडल प्राप्त हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि हम पे आज इतना प्रैक्टिस करवाए, प्यार दिए और भी आगे हम अच्छा करने की कोशिश करेंगे।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एथलीट झंडू कुमार को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कुमार के प्रदर्शन को शानदार बताते हुए कहा है कि ये उपलब्धि उनकी अदम्य शक्ति, अटूट दृढ़ संकल्प और वर्षों के अनुशासित प्रयासों का सशक्त उदाहरण है। क्रिकेट में भारत और जिम्बाब्वे के बीच 3 मैचों की T20 अंतर्राष्ट्रीय श्रृंखला का दूसरा मुकाबला आज हरारे में खेला जाएगा। ये मैच भारतीय समयानुसार शाम 4:30 बजे शुरू होगा। आकाशवाणी कार्यक्रम पर्सन बिहाइंड द स्टोरी श्रृंखला के अंतर्गत हम करगिल युद्ध के जाबाज योद्धा और भारत के पहले ब्लेड रनर सेवानिवृत्त मेजर डीपी सिंह से बातचीत करेंगे। इस बातचीत को आज शाम 5:10 से 100.1 आकाशवाणी गोल्ड पर सुना जा सकता है। श्रोता कार्यक्रम को न्यूज ऑन AIR ऐप और न्यूज ऑन AIR के आधिकारिक यूट्यूब चैनल पर भी सुन सकते हैं। कार्यक्रम का पुनः प्रसारण कल दोपहर 12:30 से किया जाएगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अपने पद से इस्तीफा दिया। सरकार और सीजीपी के बीच परीक्षा प्रणाली में सुधार और पेपर लीक रोकने के उपायों पर आज तीसरे दौर की बातचीत।

प्रदेश उच्च न्यायालय ने पेपर लीक और उससे जुड़ी अनियमितताओं के मामलों की सुनवाई के लिए 4 विशेष फास्ट ट्रैक अदालत गठित की। असम में बाढ़ की स्थिति गंभीर, मरने वालों की संख्या 61 हुई, 1,00,000 से अधिक लोगों ने राहत शिविरों में शरण ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हर संभव सहायता का आश्वासन। वर्षा प्रभावित गुजरात में बचाव और राहत कार्य जोरों पर, 40,000 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। जम्मू कश्मीर में खराब मौसम के कारण 6 दिन तक स्थगित रहने के बाद श्री अमरनाथ यात्रा और श्री माता वैष्णो देवी यात्रा फिर से शुरू। और खेलों में स्क्वैश में भारत के अनाहत सिंह विश्व जूनियर चैंपियनशिप के महिला सिंगल्स के फाइनल में पहुंची। वहीं क्रिकेट में भारत और जिम्बाब्वे के बीच दूसरा मुकाबला आज हरारे में खेला जाएगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स, डीआरएम 810 किलो हर्ट्स पर। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम एक कलाकार। नमस्कार श्रोताओं, मैं हूं आपकी रेडियो सखी निधि वर्मा और लेकर आई हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम एक कलाकार। आप ये भी कह सकते हैं कि किसी कलाकार की फ्लैशबैक की कहानी, जहां पुराने जमाने की कहानियां वापस जिंदा होती हैं। जी हां, आज की कहानी है एक ऐसे इंसान की जिन्होंने बिना कैमरे के सामने आए पूरे बॉलीवुड को कैमरे के पीछे से चलाया। नाम सुनोगे तो कहोगे, अरे ये तो सुना हुआ लगता है। इससे पहले कि हम आपको उनका नाम बताएं, तो उन्हीं का क्यों ना एक गीत सुन लिया जाए।

इस गीत के बाद शायद आपको इस बात का पता तो चल ही गया होगा कि आज हम किस कलाकार के बारे में बात करने वाले हैं। जी हाँ, आज हम बात करेंगे कलाकार एफ सी मेहरा की, यानी फाकिर चंद मेहरा की। श्रोताओं, एफ सी मेहरा का जन्म 29 अगस्त 1923 को पेशावर में हुआ था। हाँ, वही पेशावर जहाँ से पृथ्वीराज कपूर का पूरा परिवार भी था। इन्होंने अपने कैरियर की शुरुआत रॉयल इंडियन एयर फोर्स से की, लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। इसकी आगे की कहानी हम आपको बताएं, क्यों ना सुन लिया जाए एक और प्यारा सा गीत।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम एक कलाकार और मैं हूं आपकी रेडियो सखी निधि वर्मा। आज हम जिस कलाकार के बारे में बात कर रहे हैं उनका नाम है एफसी मेहरा। ये से पहले हमने आपको बताया था कि इनकी शुरुआत जो हुई थी वो हुई थी रॉयल इंडियन एयरफोर्स से। एक दिन इनकी ईमानदारी के कारण इनकी जॉब चली गई। जेब खाली थी पर जज्बा उनका फुल ऑन था। इन्होंने छोटे मोटे काम किए। एफसी मेहरा ने 1950 के दशक में भारतीय फिल्म उद्योग में अपना सफर शुरू किया और बहुत जल्द प्रसिद्धि हासिल भी कर ली और इन्होंने ईगल फिल्म्स नामक प्रोडक्शन हाउस की स्थापना की, जहां उन्होंने उस दौर की कुछ प्रतिष्ठित फिल्में बनाई। शम्मी कपूर और कल्पना अभिनीत फिल्म प्रोफेसर एक संगीतमय कॉमेडी फिल्म थी, जो अपनी आकर्षक कहानी और ए गुलबदन और क्या तुमने है कहा जैसे यादगार गानों के लिए बेहद लोकप्रिय हुई।

एफसी मेहरा ने आम्रपाली, ऐलान, अलीबाबा, अलीबाबा 40 चोर, सोनी महवाल, राम जाने, चमत्कार भी उन्हीं फिल्मों की देन है। मतलब जिस दौर में स्टार, म्यूजिक, कहानी तीनों चाहते थे, एफसी मेहरा ने वो फॉर्मूला पकड़ लिया था। और फिल्म ही नहीं, टीवी भी, जमान संभाल के, ऑफिस ऑफिस, खट्टा मीठा जैसे सीरियल भी ईगल फिल्म से ही आए थे। एफसी मेहरा मुंबई के सबसे पुराने सिनेमा हॉल मिराज के और दिल्ली के प्लाजा के मालिक भी थे। मतलब फिल्म बनाना भी उनका और दिखाना भी उनका। उनके बेटे उमेश मेहरा और राजीव मेहरा भी उनके पदचिन्हों पर ही चले।

श्रोताओं, एफसी मेहरा ने 80 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कह दिया, लेकिन उनकी फिल्में आज भी चलती हैं, क्योंकि एफसी मेहरा का सिनेमा बिल्कुल साफ सुथरा और एंटरटेनमेंट और अच्छी कहानियों भरा रहा। तो श्रोताओं, अगली बार जब आप प्रोफेसर का सॉन्ग सुनिएगा या सोनी महवाल देखें, तो ईगल फिल्म का वो लोगो आपको जरूर याद आएगा। बस आज के लिए इतना ही, जल्द ही आपसे मिलेंगे एक और कलाकार की कहानी के साथ। तो बने रहिए हमारे एक बहुत ही अच्छे आखिरी गीत के साथ। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए, गाते रहिए और अपनी रेडियो सखी निधि वर्मा को इजाजत दीजिए। नमस्कार।

ये आकाशवाणी है। अब आप मुनम्मार से खबरें सुनिए। आसाम में सैलाब की सूरतहाल नाजुक बताई जाती है। मरने वालों की तादाद बढ़कर 61 तक पहुंच गई है। 1 लाख से ज्यादा अफराद ने इमदादी कैंपों में पनाह ले रखी है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने हर मुमकिन इमदाद का यकीन दिलाया है। गुजरात में बारिश से मुतासरा इलाकों में बचाव और इमदादी काम जोर शोर से जारी है। भारतीय साहिली मुहाफिजों ने 170 महसूर अफराद को बचाया है। जम्मू कश्मीर में श्री अमरनाथ यात्रा और श्री माता वैष्णो देवी यात्रा फिर से शुरू हो गई है। खराब मौसम की वजह से 6 दिन से यह यात्रा मुअत्तल थी। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने 4 खसूसी अदालतें नामजद की हैं, जिनमें पेपर लीक और मुतल्लिका बदनवानियों के मामलों की तेजी से समाप्त होगी। भारत की अनाज सिंह ओंटारियो में स्क्वैश की खवातीन की आलमी जूनियरशिप के सिंगल्स के फाइनल में पहुंच गई हैं। अब खबरें तफसील से। आसाम में सैलाब की सूरतहाल बदस्तूर संगीन बताई जाती है। वहां 1,15,000 से ज्यादा लोगों ने इमदादी कैंपों में पनाह ले रखी है। खबरों में कहा गया है कि शिवसागर और जोरहाट जिले सबसे ज्यादा मुतासिर हुए हैं। मजीद 14 अफराद के हलाक होने की खबर मिलने के बाद सैलाब से वाबस्ता वाकयात में मरने वालों की तादाद बढ़कर 61 हो गई है। देखू, दिसांग और धनसीरी नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं, जिससे सूरतहाल और बिगड़ गई है। बचाव और इमदादी काम जारी हैं। आफात से निपटने वाली टीमें और जिला हुक्काम मुतासर इलाकों पर कड़ी नजर रखे हुए हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आसाम के वजीर आला हेमंत बिस्व सरमा से टेलीफोन पर बात की और रियासत में सैलाब की सूरतहाल का जायजा लिया। जनाब सरमा ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि वजीर आजम ने सैलाब की तबाहकारियों इमदादी कामों की पेशरफ्त वगैरह के बारे में जानकारी हासिल की है। उन्होंने कहा कि वजीर आजम ने बाज़ाबादकारी तामीर नौ की कोशिशों और इमदादी कामों के लिए मरकजी सरकार की तरफ से हर मुमकिन इमदाद का यकीन दिलाया है। उधर गुजरात में मूसलाधार बारिश के बाद बचाव और इमदादी काम जंगी पैमाने पर जारी है। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 265 तालुका में बारिश हुई है। रियासत के इमदाद से मुतालिक कमीशन में बारिश से वाबस्ता वाकयात में 5 अफराद की जानें तल्फ होने की तस्दीक की है। खबरों के मुताबिक भारत के साहिली मुहाफिजों ने 170 महसूर अफराद को बचाया है। हुक्काम ने बचाव इमदादी काम तेज कर दिए हैं और मुतासर इलाकों के हालात पर लगातार नजर रखी जा रही है। भारत के मौसमियात महकमे ने आज गुजरात में बहुत तेज बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, उड़ीसा और राजस्थान में भी इसी तरह के हालात रह सकते हैं। मौसमियात के महकमे ने अगले 2 से 3 दिन के दौरान हरियाणा, चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश में भी मूसलाधार बारिश की पेशगोई की है। आसाम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, साहिली कर्नाटक, मगरबी बंगाल के गंगा के मैदानी इलाकों, पंजाब, जनूबी अंदरूनी कर्नाटक और उत्तराखंड में भी तेज बारिश होने का इम्कान है। सिक्किम के नामची जिले के फांगटाम गांव में आज मिट्टी के तोदे खिसकने के बायस 2 अफराद के हलाक होने का अंदेशा है। नामची के एसएसपी ने कहा है कि लाशों को निकाला जा रहा है। 2 जख्मियों को इलाज के लिए नामची जिला अस्पताल में दाखिल कराया गया है। मजीद तफसीलात का इंतजार है। जम्मू कश्मीर में सालाना श्री अमरनाथ यात्रा और श्री माता वैष्णो देवी यात्रा आज से फिर शुरू हो गई है। खराब मौसम की वजह से 6 दिन मुअत्तल रहने के बाद आज से ये यात्रा शुरू हुई है। हुक्काम हालात पर लगातार नजर रखे हुए हैं ताकि यात्रियों के तहफ्फुज़ को यकीनी बनाया जा सके और यात्रा खुशअसलूबी से जारी रह सके। यात्रियों को मशवरा दिया गया है कि वो इंतजामिया की तरफ से जारी हिदायत पर सख्ती से अमल करें। ये खबरें आकाशवाणी से नश्र की जा रही हैं। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने 4 खसूसी अदालतों को नामजद किया है, जिनमें इम्तिहानात का पर्चा लीक होने और मुतल्लिका बदनवानियों के मामलों की तेजी से समाप्त की जाएगी। ये हिदायत दी गई है कि फर्द जुर्म दाखिल होने के 3 महीने के अंदर अंदर समाप्त मुकम्मल की जाए। कायम मकाम चीफ जस्टिस विवेक रूसिया ने भोपाल, इंदौर, ग्वालियर और जबलपुर की जिला और एडिशनल सेशन अदालतों को खसूसी अदालत नामजद किया है। इससे पहले मरकज ने इम्तिहानात से मुतल्लिक बदनवानियों के मामलों की जल्द समाप्त का यकीन दिलाया था और वजीर आला मोहन यादव ने भी 4 शहरों में खसूसी अदालतें बनाने का ऐलान किया था। इसी दौरान मरकजी काबिना ने तेजी से काम करने वाली अदालतें कायम करने और पेपर लीक से निपटने और इम्तिहान में गलत तौर तरीके अपनाने पर सख्त सजा को यकीनी बनाने से मुतल्लिक बिल के एक मसौदे को मंजूरी दी है। पार्लियामेंट हाउस

0: अनाहत सिंह ये स्क्वैश की खवातीन के आलमी जूनियरशिप के सिंगल्स के फाइनल में पहुंच गई हैं। इसके साथ ही खबरों के बुलेटिन खत्म।
1: ये आकाशवाणी है, मीडियम वेव्स 1071 किलोहर्ट्ज़, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और DD फ्री डिश पर हमारी नशरियां जारी हैं। पेश है प्रोग्राम मेरी पसंद।

लता मंगेशकर की आवाज में नागिन फिल्म से ये नगमा आपने सुना। अब सुनिए मोहम्मद रफी, लता मंगेशकर, शमशाद बेगम और साथियों को। फिल्म का नाम है बैजू बावरा।

इस नगमे के साथ ही आज का फिल्मी नगमों का ये प्रोग्राम मेरी पसंद अब खत्म हुआ। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। सुबह लोकगीतों के प्रोग्राम में आज हम आपको कश्मीरी लोकगीत सुनवा रहे हैं।

एक हजार 71 किलोहर्ट्स मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एयर और डीडी फ्री डिश पर आकाशवाणी से उर्दू सर्विस की नशरियात जारी हैं। अब सुनते हैं कुछ फिल्मी नगमे।

0: सोनू निगम के साथ साधना सरगम को आपने सुना, फिल्म थी हम तुम। अब सुनिए उदित नारायण की आवाज में हमारे आज के प्रोग्राम की अगली पेशकश। फिल्म का नाम है हमराज।
1: दूसरा कोई दूसरा इस समय पे हुआ

उदित नारायण के साथ अलका याग्निक की आवाज में ये नगमा था राज फिल्म से। अब सुनिए सलामी फिल्म का नगमा, आवाजें हैं कुमार सानू और अलका याग्निक की।

हमको तू आंखें सजाने दे, बाहों में ले ले और खुद

सोनू निगम और सुनिधि चौहान, आमिर खान और काजोल की आवाजें अभी आपने फना फिल्म में सुनी। प्रोग्राम की अगली पेशकश कुमार सानू अलका याग्निक को सुनिए फिल्म है खुददार।

कविता कृष्णमूर्ति, अलका याग्निक, उदित नारायण और अमित कुमार की आवाजों में ये नगमा था कभी खुशी कभी गम फिल्म से। अब सुनिए कुमार सानू और अलका याग्निक को, फिल्म का नाम है आंदोलन।

अब सुनिए आज के प्रोग्राम की आखिरी पेशकश उदित नारायण और मधुश्री की आवाजों में। फिल्म का नाम है किसना।

भास्कर गिद्दी। कविता लिखन दी काबिलियत भरतेंदु जी को अपने पियू करके ही हासिल थई है। 5 साल दी उम्र विच ही उन्होंने हिक दोहा लिख के पियू को सुनाया है ते पिता जी ने सु कवि थीवन दी डाट दित्ती। तकरीबन 15 साल दी उम्र विच भरतेंदु जी ने साहित्य सेवा शुरू कर दित्ती। 18 साल दी निक्की जी उम्र विच भरतेंदु हरीश चंद जी ने हिक रिसाला कवि वचन सुधा नाम नाल शुरू कीता। हुण वेले वड्डे वड्डे मशहूर लिखारी दी रचनावां हुण रिसाले दी शोभा वधेंदी हन। 20 साल दी उम्र विच इन्हां को ऑनरेरी मजिस्टर दे रुतबे नाल नवाजा गया। 1868 विच कवि वचन सुधा दे बाद 1873 विच हरीश चंद्र मैगजीन ते 1874 विच त्रिमितियां दी शिक्षा वास्ते बाला बोधनी रिसाला कढ़ना शुरू कीता। नालो नाल कुछ साहित्यक जलसे ते कठ भी करेंदे रह गए। वैष्णव भक्ति दे प्रचार वास्ते भी तदीय समाज स्थापित कीता। राज भक्ति ते देश भक्ति दी भावना होण करके भरतेंदु जी को अंग्रेजी हकूमत दी नाराजगी दा भी सामना करना पिया। हरीश चंद जी मशहूरी ते काबिलियत दा लूहा मनेंदे वे काशी दे वड्डे दानिशमंद लोगां ने 1880 विच इन्हें को भरतेंदु जी दी सिफत नाल नवाजा। भरतेंदु यानी भारत दे इंदू ते इंदू यानी चंद्रमा यानी भारत दा चंद्र। हिंदी साहित्य विच भरतेंदु हरीश चंद जी दी देन भाषा ते साहित्य दोवें पासे है। भाषा दे क्षेत्र विच उन्होंने खड़ी बोली को तवज्जो दित्ती। जेड़ी उम्र कन्नू अलेदा है ए हिंदी इलाके दी रली मिली बोलियां दा रूप है। खड़ी बोली विच ही भरतेंदु जी ने अपने सारे गद्य साहित्य दी लिखत पूरी कीती है। हिंदी साहित्य विच भरतेंदु हरीश चंद जी दी देन भाषा ते साहित्य दोवें पासे है। भाषा दे क्षेत्र विच उन्होंने खड़ी बोली को तवज्जो दित्ती। जेड़ी उर्दू कन्नू अलेदा है ए हिंदी इलाके दी रली मिली बोलियां दा रूप है। खड़ी बोली विच ही भरतेंदु जी ने अपने सारे गद्य साहित्य दी लिखत पूरी कीती है। अपनी लिखत दे नाल भरतेंदु जी दी समाज सेवा भी चलदी रही। ढेर सारी संस्था कठ जलसे दी बुनियाद रखेंदे वे गरीब दीन दुखी ते साहित्यकार बोली दी मदद करेंदे रहे। अज दी तारीख विच जिथां भी हिंदी भाषा या मां बोली दी तरक्की दी गाल थींदी है उथां भरतेंदु जी दा हिक दोहा सारियां दी जुबान ते मिलदा है। निज भाषा उन्नति अहे सब उन्नति को मूल बिन निज भाषा ज्ञान के मिटन ना हिए के शूल। दोहे दे मायने हैं मां बोली मातृभाषा दी तरक्की दे बगैर कोई भी बिरादरी या समाज दी तरक्की मुमकिन कैनी ते अपनी भाषा दे ज्ञान दे बगैर मन दी पीड़ा को दूर करना भी मुमकिन कैनी। भरतेंदु जी दी कविता पाठ सुनन वास्ते दूरों दूरों तो विद्वान लोग आंदे हन ते खूबसूरत चेहरे दे नाल उन्हां दी मनमोहक वालां दी लट देख के खुश थींदे हन। भरतेंदु जी एक वड्डी शख्सियत दे मालिक हन। भरतेंदु जी एक वधिया कवि लिखारी नाटककार ते हन ही नालो नाल तकरीर करण आले तर्जुमेकार पत्रकार देशभक्त भी हन। सारी भाषा दे जानकार ते ए हन ही नालो नाल भी डेक सारी लिपि विच भी ए लिख गिंदे हन। हिक भी गाले वी नाल के भरतेंदु जी इतने वधिया आशु कवि हन के उन्होंने हिक डी विच ही अंधेर नगरी चौपट राजा पूरा लिख गिदा ता शतरंज देवी शुकीन हन। इन्हां दी लिखी भी मझाइया रचनावां को ही गल को साबित करेंदी हन के भरतेंदु जी दी लिखी मझाइया लिखत विच उन्हां दा व्यंगे करण आला अंदाज बहु ही उच्चे दर्जे दा है। उन्होंने सिर्फ 35 साल दी उम्र विच इतना लिख दिता कि कई लिखारी 70 साल दी उम्र विच भी इंजा मुकाम हासिल नहीं कर सकते। भरतेंदु जी बारे एक गाल ए भी खास है कि हिंदी भाषा विच नाटक लिखन दी शुरुआत भरतेंदु जी ने ही कीती है। भरतेंदु जी लिखदे वेले खास रंग दे कागल दा इस्तेमाल करेंदे हन। आड़ितवार यानी एतवार को गुलाबी सोमवार वाले दिन चिट्टा मंगलवार को लिखदे वे लाल रंग बुधवार वाले दिन सावा रंग दा

ਜਾਨਵਰ ਦਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਡਰ ਮੈਂ ਡੁੱਬ ਜਾਣੀ ਚੜ ਗਈ।

एफएमबैंड 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्स, एफएमबैंड 103.6 मेगाहर्ट्स आकाशवाणी अमृतसर, डीडीएचडी आकाशवाणी पंजाब सेवा का यह जलंधर केन्द्र है। तुम साडे प्रोग्राम वेवस ऐप राही भी सुन सकते हो। शाम के 6:30 बज चुके हैं। लगन सुनो देहाती प्रोग्राम।

0: हां जी लुड़िया राम जी,
1: देखो खेती मशीनरी आपां सारे जानदे आ कि एक ऐसी चीज है जिते साडा खेती दा बहुत सरमाया जांदा है।
0: सही गल
1: है, चाहे तुसीं ट्रैक्टर लै लो, ट्राली लै लो, कंबाइन लै लो, टिलर लै लो, मशीना लै लो, कोई मशीनरी ऐसी नहीं भी जिन्हों कोई लैना साडे लई सौखा काम हो।
0: लखां दा काम है जी,
1: लखां दा काम है। और जे उहदे काम दे घंटे गिण के देखिए तो लखा की ओ मतलब अपना दहाई च भी नहीं जाते।
0: सही गल है,
1: किसी 25 घंटे का काम होना, किसी का 30 घंटे का काम होना, सैकड़े घंटे का काम तो किसी का होना ही
0: नहीं।
1: खेतीबाड़ी च आपां लोग जान
0: नहीं
1: है सारे।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: सो इस करके सब तो पहले ते बल साहब ये सानू पता होना चाहिए कि साडी जोत दे लिहाज नाल साडे कोल काम है।
0: हां बिल्कुल जी,
1: जे तुसीं 25 पावर दा 35 दा या 50 दा ट्रैक्टर लै रहे हो, वो काम तो होना चाहिए कि गुआंढियां नू दिखावे लई खड़ा करना लिया के
0: काम यही चल पिया।
1: काम यही चल पिया,
0: बिल्कुल जी,
1: वी मैं गुआंढियां नू दिखाउणा है।
0: हां जी,
1: जो किश्त टूटदी फिर गुआढ़ियों भाषा नहीं आता,
0: गुआढ़ी
1: ना पता लग जाए। सो इस करके जेड़ी चीज का गुआढ़ी तो तुम डर है ना ही जाओ।
0: सही गल
1: है ना,
0: बिल्कुल।
1: इस करके खेती मशीनरी दे विच आपां ने बड़ा सूझवान तरीके दे नाल चोण करनी है। जे जरूरत है लो, नहीं तो ना लो, जे लै लिया संभाल करो।
0: हां जी, नाले अजकल तो किराए ते वैसे सारी मशीनरी तकरीबन मिल जाती है।
1: हुण बाल साहब आप सारे जानते हैं
0: भी
1: ट्रैक्ट दे टेलर है
0: बाहर
1: जी खड़े रहिंदे आ, उत्थे जंगाले जांदे आ, ड्रिल मशीन है उत्थे जंगालियां जांदियां है। सो अगे दी कोई सार ही नहीं लैंदा जिथे पिया, जे पिंड दी साथ च लाता उत्थे ही पिया। ट्राली बाहर खड़ी है, ए नहीं पै जंगाली जा रही है। ट्रैक्टर दे उत्ते जो नहीं काम है भी आपां उहदे जिहड़ी हवा दा रुख देख के जां उहदे थल्ले कुछ दे के टायर उच्चे करके खड़ा करी, ओ ओ मतलब नहीं,
0: ओ काम नहीं जी।
1: सो इस करके खेती मशीनरी सांभ संभाल आपां करनी है। इंजीनियर आर एस रंधावा जानकारी साझा की आप साझे कर दे।
0: सुना दियो जी।
2: इंजीनियर रणबीर सिंह रंधावा जी, बहुत खुश हुए तुहानु मिल के। हुण आपां देखिए रंधावा जी कि तुसीं जे आपां नजर मारीए, एक समां सी कि बहुत असीं रवायती ढंग नाल किसान वीर खेती करदा सी, बलदां नाल, हल पंजाली या इस तरीके नाल, पर समय दे हिसाब नाल हुण बदल गया बहुत कुछ। ते हर काम आपां कहिंदे आ वी खेती मशीनरी

0: टांगे वाली, ये पहाड़ी जगह तो बहुत खूबसूरत है।
1: हाँ बाबू जी, तादी तो लोग इतने दूरों दूरों आते ने पहाड़ी नजारे का आनंद मानने लगे।
0: इस वे इतने रात हो चुकी ना, सब साफ साफ नजर नहीं आ रहा।
1: हाँ बाबू जी, दिन विच इस थां दे नजारे वेखोगे ना ते वापस जाने नूं दिल नहीं करेगा।
0: पर सर्दी बहुत ज्यादा है, मेरे तो हाथ पैर सुन हो रहे हैं।
1: हाँ बाबू जी, पहाड़ी इलाका जो है
0: की गल, टांगा रोक क्यों देता?
1: डाक बंगला जो आ गया है, और सामने डाक बंगला ही तो है। इस वेले इथों का चौकीदार मौला होएगा, वो बड़ा चंगा आदमी है।
0: अच्छा अच्छा, डाक बंगला आ गया।
1: हाँ जी,
0: आ ले किराया, तेरा सामान उतार दे।
1: बाबू जी, समान मैं अंदर तक छड़ आऊं?
0: नहीं नहीं, कटैची से बैग ही तो है, मैं खुद ले जावांगा।
1: शुक्रिया।
0: अच्छा बाबू जी,
1: कौन आया?
2: सलाम बाबू जी।
0: सलाम। तुसी?
2: बाबू जी, मेरा नाम मौला, इस डाक बंगले का चौकीदार।
0: मौला चौकीदार, बड़ी तारीफ सुनी है तेरी।
2: बड़ी मेहरबानी, मैं तो सेवादार हाँ। इस डाक बंगले ते मेरा प्यो ते मेरे प्यो दा प्यो भी इत्थे ही काम करदे सी, ते हुण 40 सालां तो मैं भी इत्थे ही काम कर।
0: मौला, मैं डाक बंगले च कुछ समा रहन लई बुकिंग करवाई है, डीसी ऑफिस तो इतला मिल गई।
2: बाबू जी, किस नाम ते करवाई है बुकिंग?
0: आनंद देव दे नाम ते। मेरा नाम आनंद है।
2: हाँ बाबू जी, उसकी चिट्ठी तो पिछले हफ्ते मिल गई सी। आओ आओ, तुहाडा कमरा दिखा दिया। आ समान मैनू फड़ा दियो।
0: ले आई ले।
2: बाबू जी, आए तुहाडा कमरा।
0: मगर ठंड बहुत ज्यादा है, तो इस तरह कर खिड़कियां बंद कर दे, फायर प्लेस से थोड़ी अग बाल दे।
2: चंगा बाबू जी। लो बाबू जी, खिड़कियां बंद कर दीतियां ने, ते अग भी बाल दीती है।
0: हुण सर्दी तो थोड़ा सुकून मिलेगा।
2: बाबू जी, लगता है तुसी इस पहाड़ी इलाके च पहली बार आए हो।
0: हाँ मौला, दरअसल मैनूं चित्रकारी दा शौक है।
3: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। कॉकरोच जनता पार्टी सीजेपी ने सरकार द्वारा मांगों को स्वीकार किए जाने के बाद आंदोलन को तत्काल प्रभाव से समाप्त करने की घोषणा की है। केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा और जितेंद्र सिंह के साथ सीजेपी प्रतिनिधिमंडल की तीसरे दौर की वार्ता के बाद पार्टी प्रवक्ता आशुतोष रामका ने ये घोषणा की।
4: तमाम मांगे जो हमारी थी वो मान ली गई है, तो हम इमीडिएट इफेक्ट से प्रोटेस्टर्स से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप विड्रॉ करें, पीसफुली अपने घर वापस जाएं, और आगे की जो भी हमारी रणनीति होगी या बातचीत होगी उससे हम आपको अवगत कराएंगे।
3: श्री नड्डा ने कहा कि सरकार ने प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करने की मांग स्वीकार कर ली है।
4: सबसे पहली बात तो यह है कि कोई भी एक्शन एफआईआर न हो, और अगर है तो वो विड्रॉ हो, और उसको विड्रॉ करने की बात कोई भी एक्शन नहीं होगा, इस बात को सरकार ने स्वीकारा है जो प्रोटेस्टर्स के साथ प्रोटेस्ट के दौरान हुआ है। उसी तरीके से फ्यूचर में भी जो ऑर्गेनाइजर्स हैं और प्रोटेस्टर्स हैं उनका इस एक्टिविटी के लिए कोई भी उन पर आगे केस नहीं होगा, इस बात को हम लोगों ने माना है।
3: श्री नड्डा ने कहा कि परीक्षा प्रणाली में सुधार के लिए दिए गए सीजीपी के सुझावों पर विचार किया जाएगा।
4: हम एजुकेशन के एग्जामिनेशन के रिफॉर्म्स के लिए जो आपका चार्टर है उस पर हम गहन चिंतन भी करेंगे, और आपके डेलीगेशन के साथ बातचीत करके जो कुछ भी हम डेलीबरेट कर सकेंगे वो हम करने का प्रयास करेंगे।
3: आत्महत्या करने वाले छात्रों के परिवारों को मुआवजे के मुद्दे पर श्री नड्डा ने कहा कि सरकार को पूरी सहानुभूति है और सरकार नियमों के अनुसार अधिकतम मुआवजा

0: सुनिश्चित करेगी। इससे पहले शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना इस्तीफा सौंप दिया। श्री प्रधान ने कहा कि पिछले 10 दिन से छात्रों के विरोध प्रदर्शन के बाद उत्पन्न स्थिति से व्यथित हैं। उन्होंने कहा कि ये उनके लिए व्यक्तिगत प्रतिष्ठा का विषय नहीं है। श्री प्रधान ने कहा कि जंतर मंतर और पूरे देश में वर्तमान स्थिति का राष्ट्र विरोधी ताकतें लाभ न उठा सके, इसलिए उन्होंने प्रधानमंत्री को अपना इस्तीफा सौंपने का निर्णय लिया। श्री प्रधान ने कहा कि नीट यूजी परीक्षा में अनियमितताओं के बाद सरकार ने जांच सीबीआई को सौंप दी और परीक्षा रद्द कर दी। भारतीय जनता पार्टी ने संसद में नीट पेपर लीक मुद्दे पर चर्चा से कांग्रेस के पीछे हटने का आरोप लगाया है। नई दिल्ली में पार्टी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने आरोप लगाया है कि कुछ लोगों का एकमात्र उद्देश्य राजनीतिक लाभ उठाना है, न कि छात्रों की चिंताओं का समाधान करना। दिल्ली पुलिस ने भारी भीड़ और यातायात जाम के कारण लोगों को नई दिल्ली क्षेत्र की ओर जाने से बचने की सलाह दी है। पुलिस ने यात्रियों को निर्देश दिया है कि वे देरी से बचने और सुगम यात्रा सुनिश्चित करने के लिए वैकल्पिक मार्गों का प्रयोग करें। इस बीच दिल्ली मेट्रो ने सभी 18 मेट्रो स्टेशनों के प्रवेश द्वार यात्रियों के लिए खोल दिए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के सारनाथ को यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल किए जाने पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए इसे हर भारतीय के लिए गर्व का क्षण बताया। श्री मोदी ने कहा कि सारनाथ का भगवान बुद्ध से गहरा संबंध है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इससे दुनिया भर के लोग सारनाथ आने और भगवान बुद्ध के आदर्शों से जुड़ने के लिए प्रेरित होंगे। प्रधानमंत्री कल सवेरे 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क, आकाशवाणी समाचार वेबसाइट और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मोल्दोवा, उत्तरी मैसिडोनिया और रोमानिया की यात्रा पूरी करने के बाद नई दिल्ली के लिए रवाना हो गई हैं। यात्रा के अंतिम चरण में उन्होंने रोमानिया के राष्ट्रपति निकुसेवर डैम के साथ व्यापार, निवेश, रक्षा, डिजिटल प्रौद्योगिकी, शिक्षा, नवीकरणीय ऊर्जा और संस्कृति सहित विभिन्न क्षेत्रों में व्यापक चर्चा की। हरारे में दूसरे T20 क्रिकेट मैच में भारत ने जिम्बाब्वे को 220 रन का लक्ष्य दिया है। ईशान किशन ने 81 और तिलक वर्मा ने नाबाद 60 रन की शानदार पारी खेली। ताजा समाचार मिलने तक जिम्बाब्वे ने 7वें ओवर में 4 विकेट पर 49 रन बना लिए थे। अरहा सिंह विश्व जूनियर स्क्वाश चैंपियनशिप के महिला सिंगल्स फाइनल में पहुंच गई हैं। फाइनल में उनका सामना आज मिस्र की रुकैया सलीम से होगा। अरहा सिंह जोशना चिनप्पा के बाद इस प्रतियोगिता के फाइनल में पहुंचने वाली दूसरी भारतीय हैं। मौसम विभाग ने आज गुजरात में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, उड़ीसा और राजस्थान में भी इसी तरह की स्थिति रहने की संभावना है। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, DRM 810 किलोहर्ट्ज़ पर। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम कृषि जगत।

0: कृषि जगत कार्यक्रम सुनने वाले सभी किसान बहन भाइयों को
1: राम राम, राम।
0: तो नीलम बहन, हम हाजिर हैं अपने किसान बहन भाइयों का मनपसंद कार्यक्रम कृषि जगत लेकर के। जैसा कि हमारे किसान बहन भाई जानते हैं, बरसात का मौसम चल रहा है और बारिश के इस मौसम में आप किसान भाई टमाटर और मिर्च की खेती करके अच्छी आमदनी कर सकते हैं।
1: बिल्कुल शशि भाई, इन दोनों की अच्छी फसल उगाने के लिए पौधे का स्वस्थ होना बेहद जरूरी है। इसलिए मिट्टी में पर्याप्त मात्रा में जैविक पदार्थ होने चाहिए और साथ ही नर्सरी के लिए ऐसी जगह का चुनाव करना चाहिए जहां पानी नहीं भरता हो, और इसके अलावा बरसात में होने वाले रोगों और कीटों से भी फसलों की सुरक्षा करनी चाहिए। भारी बारिश की वजह से पौधे सड़ सकते हैं, इसके लिए जल निकासी का भी उचित प्रबंध होना चाहिए।
0: बिल्कुल, तो इन बातों का हमारे जो किसान भाई हैं जरूर ध्यान करें। जिन किसान बहन भाइयों ने नर्सरी तैयार कर ली है तो वो रोपण कर सकते हैं।

0: अच्छा है, क्योंकि उनसे पौधों की पानी से सुरक्षा होगी, क्योंकि अगर पौध में पानी भर जाता है तो कहीं ना कहीं जो जड़ गलन की समस्या है उससे पौधे खराब हो जाते हैं। तो मेड़ बनाकर आप रोपाई करेंगे तो आपको ज्यादा फायदा होगा।
1: बिल्कुल, और रोपाई के बाद पौधों की नियमित निगरानी करें और आवश्यकता अनुसार सिंचाई करें, और खरपतवार की समय समय पर सफाई करें ताकि पौधों को पर्याप्त पोषण मिल सके।
0: बिल्कुल, और संतुलित मात्रा में उर्वरकों का प्रयोग करें और पौधों की बढ़वार के अनुसार पोषक तत्व उपलब्ध कराएं, और साथ ही जल निकासी का विशेष ध्यान रखें ताकि पौधों की जड़ों में पानी ना रुक सके। तो इन सब बातों का ध्यान रख करके आप किसान बहन भाई इस बरसात के मौसम में मिर्च और टमाटर की खेती करके अच्छी आमदनी कर सकते हैं। और नीलम बहन, जो हमारे किसान बहन भाई कुछ हटकर करना चाहते हैं तो वो आधुनिक तकनीक का उपयोग करके मशरूम की खेती कर सकते हैं। और देखिए, बहुत सारे हमारे जो किसान बहन भाई हैं वो तकनीकों का उपयोग करके मशरूम की खेती कर भी रहे हैं और अच्छा खासा पैसा कमा रहे हैं।
1: बिल्कुल, और अब नई तकनीकी और नई फसलों में किसानों की रुचि बढ़ रही है। इसी के साथ अब किसान भाई कम लागत में अधिक मुनाफा देने वाली फसलों की खेती कर रहे हैं। इन फसलों में मशरूम भी शामिल है। मशरूम ने बाजार में बहुत ही कम समय में अपना स्थान कायम कर लिया है।
0: बिल्कुल, और वर्तमान समय में शहरों से लेकर गांव तक लोगों के बीच मशरूम बहुत ही पसंदीदा सब्जी बन गई है। बाजार के पहले की तुलना में बदलते स्वरूप को देख आप किसान भाई भी अब परंपरागत खेती को छोड़कर नए सिरे से आधुनिक तकनीकों का उपयोग करके मशरूम की खेती कर सकते हैं।
1: बिल्कुल, और साथ ही किसान भाई ऐसी खेती करके कम लागत में अधिक मुनाफा भी कमा सकते हैं, और किसानों के लिए मशरूम की खेती फायदे का सौदा बन सकती है।
0: तो बात हम तकनीक की कर रहे हैं तो संरक्षित खेती द्वारा आप किसान भाई मशरूम की उन्नत खेती कैसे कर सकते हैं, इन सब बातों की जानकारी देने के लिए आज हमारे स्टूडियो में उपस्थित हैं डॉक्टर डीके राणा। आप अध्यक्ष हैं कृषि विज्ञान केंद्र उजबा नई दिल्ली में। तो डॉक्टर डीके राणा जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
2: धन्यवाद।
0: आज हम संरक्षित तकनीक द्वारा मशरूम की उन्नत खेती की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो संरक्षित तकनीक है वो क्या है।
2: ये बड़ा एक ही इंटरेस्टेड विषय भी है और किसान भाइयों के लिए बहुत अच्छा आय का साधन भी है, क्योंकि जैसे आप जानते हो कि जो खेती होती है जनरली खेत में होती है, बीज लगाया जाता है, खाद डाला जाता है, पर मशरूम की खेती थोड़ा अलग हटके है। इसके लिए आपको, अगर हम प्रोटेक्टेड बात करते हैं, संरक्षित की बात करते हैं, इसके पहले तो मैं फायदे बताना चाहूंगा कि क्या फायदा है।
0: जी,
2: क्योंकि जब आप संरक्षित खेती करते हो मशरूम की, तो इसको पूरे साल भर आप इसका उत्पादन कर सकते हो, इसको उगा सकते हो। क्योंकि जब मार्केट की बात आएगी आपको बेचने की, तो सबसे पहले जरूरी होता है कि जहां भी इसको आप बेचेंगे, चाहे वो होटल्स हो, चाहे वो रेस्टोरेंट हो, चाहे कैटर्स हो, वहां आपको अच्छा मुनाफा मिलता है। तो वो चाहता है ये कि भाई पूरे साल मुझे मशरूम मिलती रहे। तो प्रोटेक्टेड की अगर हम बात करें तो बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है कि हम पूरे साल मशरूम की खेती करते रहे, और उससे हमको क्या है कि पूरे साल आमदनी मिलती रहेगी। और दूसरी हम बात करें जिसको कहते हैं हम फील्ड में खेती, सीधे तरीके से हम बात करते हैं, क्योंकि इसको उत्पादन करने के लिए दो तीन चीज महत्वपूर्ण है। एक तो चीज है कि तापमान, सबसे पहली जरूरत है तापमान। इसके लिए अगर हम बटन मशरूम की बात करें तो 15 से लेके 25 डिग्री सेल्सियस तापमान इसके उत्पादन के लिए होना चाहिए। और हम नमी की बात करें यानी कि ह्यूमिडिटी की बात करें तो 80 से लेके 90% के बीच जो है आर्द्रता यानी कि नमी होनी चाहिए। अगर हम बात करें कि ये हमको कम मिलती है, अगर हम नेचर की बात करते हैं तो जाके मिलती है हमको नवंबर से लेके फरवरी तक। अगर हम इन दोनों चीज को कंट्रोल कर लेते हैं तो पूरे साल हम इसकी मशरूम की खेती कर सकते हैं। इसके अलावा जो चीज की हम बात करें तो सबसे पहले जरूरी है कि इसके लिए मशरूम घर होना चाहिए। तो कुछ चीजें हैं हमको, पहले तापमान और आपकी ह्यूमिडिटी अगर हमारे पास है, इस चीज को अगर हम कंट्रोल कर लेते हैं तो हम इसकी राउंड द ईयर पूरे साल इसकी खेती कर सकते हैं।
0: बिल्कुल, तो डॉक्टर साहब तापमान कंट्रोल की बात की आपने, ह्यूमिडिटी की बात की, तो किन किन उपकरणों का इसमें इस्तेमाल किया जाता है?
2: इसको करने के लिए सबसे पहले हमको ये देखना होगा कि हमको कितने क्षेत्र में मशरूम की खेती करनी है, और एक और भी ध्यान रखना होगा कि जब हम प्रोटेक्टिव कल्टीवेशन करेंगे मशरूम का, तो हमको साथ साथ तीन कम से कम रूम एक साथ रखने पड़ेंगे। एक रूम में हमने क्या किया, पहले कंपोस्टिंग की, दूसरे में हमने

0: 15 दिन के बाद कंपोस्टिंग की, तीसरे में उससे 15 दिन बाद की, तो ये क्या होगा, ये रेगुलर राउंड द ईयर चलती रहेगी। एक बार अगर हमारे पास एक ही कमरा है या कोई भी हमने कंट्रोल किया हुआ है पैलन से किया है, तो उसमें क्या है कि एक बार की या फिर बीच में गैप नहीं होना चाहिए। अगर गैप होगा तो मार्केट में आप रेगुलर जो मशरूम सप्लाई नहीं कर पाओगे। तो इसके लिए सबसे पहले तो उपकरण की बात करें तो मशरूम का जो घर होना चाहिए, और कंट्रोल कंडीशन की हम बात कर रहे हैं तो इसके लिए प्रॉपर वे में पूरी की पूरी तरह से इतना कंट्रोल होना चाहिए हमारा कि हवा भी उसके अंदर हम चाहें तो आए, अन्यथा हवा भी ना आ पाए। दूसरा, आप इसको पक्का बना सकते हो। इसके अलावा भी आप पैनल के द्वारा बना सकते हो जिसमें कि आपका जो तापमान है, ह्यूमिडिटी है, वो प्रॉपर से आपका मैनेज हो जाए। इसके लिए आपको इंस्ट्रूमेंट की, एसी की भी जरूरत पड़ेगी आपको, आपको जो है डक्टिंग की भी आवश्यकता पड़ेगी आपको। जहां आप कंपोस्ट डालोगे, स्पान मिलाओगे, वो रैक होना चाहिए या पोलोथीन होनी चाहिए, स्प्रे मशीन पानी की होनी चाहिए ताकि उसमें जो आप ह्यूमिडिटी मेंटेन करने के लिए, या जब आप उसके अंदर जो केसिंग मिट्टी आप डालते हो उसकी ऊपर की परत को गीला करने के लिए स्प्रेयर भी आपके पास होना चाहिए। तापमान नापने का थर्मामीटर आपके पास होना चाहिए, ह्यूमिडिटी भी नापने का थर्मामीटर आपके पास होना चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड नापने का इंस्ट्रूमेंट आपके पास होना चाहिए। तो ये कुछ चीजें तो जनरली है कि जब आप कंट्रोल कंडीशन में करोगे तो ये चीजें आपको चाहिए ही चाहिएंगी।
1: बिल्कुल डॉक्टर साहब, तो आपने जो चीजें बताई उनमें लागत भी काफी आएगी, तो सरकार की तरफ से कुछ अनुदान मिलता है हमारे किसान भाइयों को?
0: हाँ, किसान भाइयों के लिए अगर हम कंट्रोल कंडीशन की बात करें तो इसके लिए अगर हम हरियाणा में बात करें, उत्तर प्रदेश में बात करें, राजस्थान में बात करें, तो वहां पे 40% यानी 40-50% सब्सिडी MIDH के माध्यम से भी दी जाती है किसानों को। जो मिशन है भारत सरकार का बागवानी मिशन, उसके माध्यम से भी दी जाती है, और वहां का जो डिस्ट्रिक्ट हॉर्टिकल्चर ऑफिसर है यानी कि बागवानी का जो अधिकारी है, उससे किसान भाई अपने जो डिस्ट्रिक्ट का है उससे संपर्क कर सकते हैं। जो वहां की जो सब्सिडियां हैं मशरूम के बारे में हो, चाहे मधुमक्खी के बारे में हो, या स्प्रिंकलर के बारे में हो, या बागवानी के क्षेत्र में हो, तो आप वहां से संपर्क करके पूरी जानकारी ले सकते हैं।
1: बिल्कुल डॉक्टर साहब, मशरूम तो कई प्रकार की होते हैं और खासकर हम संरक्षित तकनीक की बात कर रहे हैं, तो इसमें कौन सी किस्म की मशरूम हमारे किसान भाई उगा सकते हैं?
0: अगर भारत में हम बात करते हैं तो अधिकतर जो है व्हाइट बटन मशरूम जो है उसको किसान भाई उगाते हैं, क्योंकि बाजार जो है, मांग जो है वो व्हाइट बटन मशरूम की है। तो इसको जो उगाने के लिए सबसे पहले जरूरी है, देखो दो तरीके से मैंने बताया, एक तो हम कंट्रोल कंडीशन में जिसको प्रोटेक्टिव कल्टीवेशन हम कह रहे हैं
1: जी,
0: दूसरा है कि नेचुरल कंडीशन में, या झोपड़ी वगैरह बना के वो भी हम वहां मशरूम सीजन में, वो भी सीजन में हम पैदा कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले मशरूम घर आपके पास हो। मशरूम घर के अलावा जो आप बात करते हो तो इसकी खाद होती है जिसको कहते हैं कंपोस्ट, यानी कि मशरूम की खाद, वो साधारण गोबर की खाद नहीं होती, उसको बनाने के लिए वो कई चीजों का इस्तेमाल किया जाता है। उसकी भी बनाने की कई तकनीक हैं, जैसे एक को कहते हैं हम लॉन्ग मेथड द्वारा, जो लगभग 30 दिन में बनकर तैयार होती है। तो इसमें सबसे पहले गेहूं का भूसा हो, चाहे आपका धान का भूसा हो, चाहे वो सरसों का भूसा हो, चाहे वो बाजरे का भूसा हो, उसको इस्तेमाल किया जाता है। इसके साथ कुछ जो अलग मिश्रण होते हैं, जैसे यूरिया का भी इस्तेमाल किया जाता है, म्यूरेट ऑफ पोटास का भी इस्तेमाल किया जाता है, आपका आटे का जो चोकर होता है जिसको बोलते हैं वो भी इस्तेमाल किया जाता है, तो इसके अलावा जिप्सम का भी इस्तेमाल किया जाता है। तो बनाने की कई सारी तकनीक है, जैसे लॉन्ग मेथड होगा, शॉर्ट मेथड होगा, एक होता है इंडोर मेथड, तो उसके द्वारा हम कंपोस्ट बना सकते हैं। और कंपोस्ट हम बाहर से भी ले सकते हैं, वो अगर परचेज भी करना तो वो भी ले सकते हैं। इसके अलावा फिर जरूरत पड़ती है स्पान की, जिसको कहते हैं मशरूम का बीज। तो मशरूम का बीज भी जो है लगभग मार्केट में 80-100 रुपए किलो के आसपास मिलता है। 100 किलो कंपोस्ट जो होगी हमारी, लगभग 1 किलो बीज उसमें हमारा बटन मशरूम का लगेगा। तो इस हिसाब से अगर आप स्पान है तो स्पान को आप ले सकते हैं। इसके अलावा जरूरत पड़ती है जिसको कहते हैं हम केसिंग मिट्टी। केसिंग मिट्टी की आवश्यकता तब पड़ती है जब पूरी तरह से जो आपकी खाद है माइसीलियम उसमें फैल जाता है, यानी कि मशरूम, जैसे मशरूम का बताया, मशरूम एक फंगस है, इसकी फ्लोटिंग बॉडी खाई जाती है, तो मशरूम फंगस है यानी कि जीव है, कवक है। तो ये धीरे धीरे क्या होता है कि जो इस खाद है कंपोस्ट उसमें धीरे धीरे फैलता है, वो लगभग 12-15 दिन के अंदर पूरी तरह से खाद में माइसीलियम फैल जाता है, कवक जाल उसका अच्छी तरह से फैल जाता है। उसके बाद केसिंग मिट्टी हम उस पर बिछाते हैं। केसिंग मिट्टी बिछाने के बाद धीरे धीरे उसके अंदर फिर माइसीलियम फैलने लगता है, अब हमको मॉइस्चर की नमी की आवश्यकता पड़ती है, तो केसिंग मिट्टी को बनाने के लिए भी कई मिश्रण होते हैं जिनका इस्तेमाल किया जाता है। फिर केसिंग मिट्टी बिछा दी तो लगभग 12 से 15 दिन बाद फिर धीरे धीरे उसमें से

0: पीनिंग निकलने लगती है, यानी कि धीरे धीरे से मशरूम की बॉडी निकलने लगती है, फूटिंग बॉडी, और वही चार पांच दिन में धीरे धीरे बढ़कर पूर्ण हो जाती है, फिर उसको तुड़ाई करके मार्केट में बेच दिया जाता है। साथ ही साथ मैनेजमेंट की हम बात करेंगे इसमें कि साफ सफाई का ध्यान रखना, और कहीं भी किसी भी चीज की कोई इंसेक्ट आ रहा है या कोई डिजीज दूसरी आ रही है उनसे कंट्रोल करना, समय समय पर मॉइस्चर का ध्यान रखना, तापमान का ध्यान रखना, वो भी एक बहुत बड़ा पार्ट है मशरूम के लिए। अच्छा उत्पादन करने के लिए हमको मैनेजमेंट जो है यानी कि प्रबंधन जो है वो अच्छा होना चाहिए।
1: बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब, ये तो आपने बताया कि सफेद मशरूम उत्पादन के लिए किन किन चीजों की आवश्यकता होती है। अब बात करते हैं, कोई भी हम काम शुरू करते हैं तो कहीं ना कहीं हमें उसकी जानकारी की या प्रशिक्षण की भी आवश्यकता होती है। तो जो भी किसान भाई मशरूम की खेती करना चाहते हैं खास करके संरक्षक तकनीक द्वारा, तो कहाँ से प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं?
0: क्योंकि जो इसकी खेती है अन्य खेतियों की तुलना में बिल्कुल अलग है, तो इसकी जानकारी प्रॉपर वे में होनी चाहिए। तो इसकी जानकारी के लिए जो इच्छुक किसान भाई हैं वो नजदीक के अपने कृषि विज्ञान केंद्र में, क्योंकि सभी जिलों में देश के कृषि विज्ञान केंद्र है, वहां से संपर्क कर सकते हैं। वहां से लगभग उनको 10 दिन का प्रशिक्षण दिया जाता है। प्रशिक्षण देने में सारी चीजों को बताया जाता है कि किस प्रकार से जो है मशरूम को हम कर सकते हैं, स्पान कैसे तैयार कर सकते हैं, क्या क्या सावधानी आपको रखनी है, टेम्परेचर कैसे मेंटेन करना, रूम कैसे आपका होना चाहिए, रेक एक दूसरे से कितनी दूरी पर होनी चाहिए, तो वो पूर्णतः आपको जानकारी दी जाए। साथ ही साथ जो डिस्ट्रिक्ट हॉर्टिकल्चर ऑफिस है जिसको हम कहते हैं, उनके माध्यम से भी, कृषि इकाई के माध्यम से भी ट्रेनिंग दी जाती है। तो किसान भाई सबसे पहले तो आपके नजदीक के कृषि विज्ञान केंद्र में, इसके अलावा जो देश में कृषि विश्वविद्यालय हैं, कृषि विश्वविद्यालय में भी इनका प्रशिक्षण दिया जा सकता है। तो अपने नजदीक के जो कृषि विश्वविद्यालय वहां से किसान भाई वहां से भी संपर्क कर प्रशिक्षण ले सकते हैं और अपना रोजगार शुरू कर सकते हैं।
1: बिल्कुल। तो हमारे जो भी किसान भाई इस तरफ आना चाहते हैं तो जरूर अपने जो नजदीकी कृषि विज्ञान केंद्र है, कृषि विश्वविद्यालय, वहां जाकर के संपर्क कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, बात आती है जैसे कोई भी किसान भाई इस संरक्षित तकनीक को सीखकर उसने मशरूम का उत्पादन कर लिया, अब बात आती है बाजार की या मार्केटिंग की, बेचे कहां पर, तो किस तरह से कहां पे वो संपर्क करें?
0: देखो, बेचने के लिए वैसे तो जब आपको प्रशिक्षण दिया जाएगा, उस जिले की इकाई जो आपको प्रशिक्षण देगी, चाहे वो कृषि विश्वविद्यालय है चाहे कृषि विज्ञान केंद्र है, उनको बाजार का पता होता है कि भाई यहाँ आप आसानी से बेच सकते हैं। इसके अलावा भी मैं बताना चाहूंगा कि सबसे पहले बड़ी बड़ी मंडियां, सब जगह मशरूम को आप बेच सकते हैं। इसके अलावा जो होटल्स हैं, होटल्स में आप बेच सकते हो, क्योंकि आज कल जो है सभी जगह छोटे छोटे रेस्टोरेंट में भी, छोटे छोटे आपके जो ढाबे हैं वहां भी मशरूम का प्रयोग किया जाता है, इस सब्जी आपको मिल जाएगी। तो बहुत सारे कैटल्स हैं, उनके माध्यम से भी आप इसको सेल कर सकते हैं। बहुत सारे लोग ऐप बनाया रखा है, उनके माध्यम से भी इसको सेल करते हैं। रिटेल में भी, मार्केट में आप जो है वहां सेल कर सकते हैं। तो इस प्रकार से धीरे धीरे मार्केट आपको पकड़ना पड़ेगा, और जब आप कंट्रोल कंडीशन में करते हैं तो मार्केट आपको आसानी से मिल जाती है। यानी कि जब आप प्रोटेक्टिव कल्टीवेशन करते हैं तो आपको आसानी से मार्केट की दिक्कत नहीं आती। तो इस तरह से किसान भाई जब मशरूम पैदा करेंगे तो धीरे धीरे आप अपना मार्केट में इन जगह आप बेच सकते हैं।
1: बिल्कुल। और सब जैसे कोई भी हमारे किसान भाई मशरूम उत्पादन करके बाजार ले जाते हैं तो खासकर उस वक्त कितना ध्यान रखना जरूरी, किन किन बातों का ध्यान आवश्यक है?
0: मशरूम क्योंकि एक ऐसी चीज है कि आप इसको एक बार तुड़ाई करने के बाद में, क्योंकि इसकी जो सेल्फ लाइफ है बहुत नहीं होती, तो इसको आप तुड़ाई करने के बाद में 8-10 घंटे के बीच में आप इसको सेल भी कर लेते हैं, मार्केटिंग सारी चीज कर लेते हैं तो अच्छा, नहीं तो कई बार उसके बाद क्या होता है कि वो धीरे धीरे बढ़ने लगती है, कई बार नीचे से खुल भी जाती है, और खुल जाएगी तो मार्केट में अच्छा उसका रेट नहीं मिलेगा। साथ ही साथ प्रोटेक्टिव कल्टीवेशन में मैं किसान भाइयों को एक चीज और बताना चाहूंगा, ये ध्यान रखना है कि आपको कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन दोनों का अनुपात आपको जो है सही रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपको CO2 की मात्रा ज्यादा होगी कार्बन डाइऑक्साइड की तो भी आपको मशरूम उगाने में दिक्कत आएगी, और अगर कम होगी तो भी आपको दिक्कत आएगी। कि जब आपने स्पानिंग की है यानी कि खाद के अंदर जब आपने बीज मिलाया, उसके बाद जब माइसिलियम धीरे धीरे फैलना शुरू होता है तो उस समय 10,000 से 20,000 PPM के बीच आपकी कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा होनी चाहिए। उसके बाद ये होता है पहला चरण। फिर दूसरा चरण जब स्टार्ट होता है कि जब आप उसके ऊपर केसिंग बिछा देते हो, और फिर उसके बाद जब फूटिंग बॉडी की तरफ चलते हैं हम, तो वो दूसरा चरण होता है मशरूम का। तो उस समय आपको 800 से 1500 PPM के बीच आपका जो है कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा होनी चाहिए। अब ये ध्यान रखना, अगर दोनों में ही अगर 800 से इस समय जब आप फूटिंग बॉडी आपकी निकल रही है, 800 से अगर कम CO2 हो जाएगी

0: वो भी कहीं ना कहीं मशरूम को निकलने में दिक्कत आएगी। अगर 2000 से ऊपर हो जाती है तो जो मशरूम का जो तना है वो पतला हो जाएगा, उसकी जो लंबाई है तने की वो ज्यादा बढ़ जाएगी, तो उससे मार्केट में भी उसको अच्छा रेट नहीं मिलेगा, उनको वो अच्छी मशरूम नहीं मानी जाएगी। तो ये ध्यान रखना है कि फ्रेश एयर यानी कि ऑक्सीजन को भी टाइम टाइम आपको सुबह के टाइम आपको देना है, इन चीजों को आपको मेंटेन रखना है। दूसरा आपकी नमी जो है, मॉइस्चर जो है, उसको प्रॉपर वे में आपने मेंटेन करना है। अगर नमी आपका, कई बार क्या होता है अगर आपकी जो केसिन की ऊपर की लेयर है वो ड्राई होगी, सूखगी, नमी कम है, तो पीनिंग निकलने में दिक्कत आ जाएगी, फिर आप समझोगे कि ऊपर मशरूम आ ही नहीं रही है। और अगर नमी ज्यादा होगी तो उसका क्या रोटिंग हो जाएगी, सड़ने लगेगी वो अंदर ही अंदर। तो ये जरूरी है कि मॉइस्चर का आप पूरी तरह से मेंटेन उसको रखें। और इसी तरह से तीसरा टेम्परेचर का, अगर आज ये चीजें आपने सही से मेंटेन कर ली तो बिल्कुल आप अच्छा मुनाफा कमा पाओगे।
1: बिल्कुल, तो जरूरी है कि हमारे जो किसान भाई हैं मशरूम की खेती कर रहे हैं, करना चाहते हैं, तो जैसे डॉक्टर साहब ने बताया है ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और तापमान, नमी, इनका ध्यान रखना बहुत जरूरी है। आखिर में डॉक्टर साहब आपसे जानना चाहेंगे, जो हमारे युवा साथी हैं उनके लिए मशरूम के क्षेत्र में रोजगार की क्या कुछ संभावना है?
0: नहीं, मशरूम आज के डेट में बहुत तेजी के साथ बढ़ता हुआ व्यवसाय है। तो जो नवयुवक है उनको बुलाया जाता है, उनको प्रेफरेंस दी जाती है कि भाई वो सीखें और अपना स्वयं का रोजगार वो करें। इसीलिए भारत सरकार जो है कई क्षेत्रों में इसके लिए आपको सब्सिडी के रूप में भी मदद करती है, तो नए यूथ के लिए तो बहुत अच्छा एक व्यवसाय है।
1: बिल्कुल डॉक्टर डीके राणा जी, आपने बहुत ही अच्छी जानकारी आज हमारे किसान मित्रों को, किसान भाइयों को दी है। हमारे खासकर जो युवा साथी हैं जरूर इस बारे में सोचेंगे और इस तरफ रोजगार की संभावनाएं तलाश करेंगे, क्योंकि साल भर का ये रोजगार है। और जो हमारे किसान भाई अभी तक मशरूम की खेती नहीं करते हैं तो वो शुरुआत करेंगे कार्यक्रम में आने के लिए, और इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अब नीलम बहन अपने किसान बहन भाइयों को सुनवाते हैं एक देशभक्ति गीत। कलाकार है इंद्रपाल शर्मा।

0: किसान बहन भाइयों, आप सुन रहे थे देशभक्ति गीत और कलाकार थे इंद्रपाल शर्मा।
1: और अब घड़ी की सुइयां इशारा कर रही हैं कि आपसे अनुमति ली जाए, लेकिन अनुमति लेने से पहले आपको बताते चलें कल प्रसारित होने वाले ग्राम संसार और कृषि जगत कार्यक्रम के बारे में।
0: ग्राम संसार में कल बहन भाई सुनेंगे पत्रोत्तर पर आधारित लोक संगीत का फरमाइशी कार्यक्रम। इसके साथ ही बहन भाई चर्चा सुनेंगे कारगिल विजय दिवस और मैंग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस पर, और इसके अलावा भारतमाला परियोजना योजना की जानकारी दी जाएगी।
1: और कल के कृषि जगत कार्यक्रम में आप किसान बहन भाइयों के पत्रों के उत्तर और आपकी पसंद के लोक गीत सुनवाए जाएंगे, और इसके अलावा किसानों के लिए मौसम आधारित कृषि सलाह पर आप चर्चा सुन सकेंगे। तो किसान बहन भाइयों, ये तो जानकारी रही कल प्रसारित होने वाले ग्राम संसार और कृषि जगत कार्यक्रम की। लेकिन आज का ग्राम संसार और कृषि जगत कार्यक्रम आपको कैसा लगा, इस बारे में कोई भी प्रतिक्रिया आप देना चाहते हैं तो आप हमें पत्र लिख सकते हैं। हमारा पता है कृषि एवं गृह एकांश द्वारा केंद्र निदेशक, कमरा नंबर 610, नव प्रसारण भवन, आकाशवाणी, नई दिल्ली। और आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं, हमारी ईमेल आईडी है feedback@gmail.com। इसी के साथ कार्यक्रम कृषि जगत के प्रस्तुतकर्ता तुषार पराशर और कार्यक्रम के संयोजक शिव नंदन लाल के साथ दीजिए अनुमति। सभी किसान बहन भाइयों को राम राम।
2: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम कृषि जगत। यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज, टीआरएम 810 किलोहर्ट्ज पर। आइए अब सुनते हैं गजल और कव्वाली का कार्यक्रम।

0: आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। 7:45 होने को है। थोड़ी देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
1: सोलर पैनल लगवा ले, सोलर पैनल लगवा ले। कब से मुझे सारे दोस्त बोलते थे, पर मैंने माना जब प्रधानमंत्री जी ने कहा
2: भारत सरकार का सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
1: मैंने प्रधानमंत्री जी के कहने पर सोलर पैनल लगवाया और मेरा बिजली बिल जीरो आया। आप भी लगवा लो।
3: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
4: नमस्कार, आकाशवाणी दिल्ली से प्रादेशिक समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। कॉकरोच जनता पार्टी ने तत्काल प्रभाव से आंदोलन समाप्त करने की घोषणा की, कहा तीनों मांगे मानी गईं। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना त्यागपत्र सौंपा। दिल्ली मेट्रो के सभी स्टेशन खोले गए। दिल्ली पुलिस ने मादक पदार्थ तस्करी मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम ने 27वें करगिल विजय दिवस पर वीर जवानों को श्रद्धांजलि दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कॉमनवेल्थ गेम्स में पुरुषों की हैवीवेट पैरा पावर लिफ्टिंग में भारत का पहला पदक जीतने पर बधाई दी। सरकार के साथ बातचीत के बाद कॉकरोच जनता पार्टी सीजेपी ने तत्काल प्रभाव से आंदोलन वापस लेने की घोषणा की है। सीजेपी ने कहा कि हमारी सभी तीन मांगे मान ली गई हैं, इसलिए अब जंतर बंतर से लोग शांतिपूर्वक वापस लौट जाएं। नई दिल्ली में सरकार के साथ वार्ता के बाद सीजेपी प्रवक्ता सौरभ दास ने इसकी घोषणा की।
5: तमाम मांगे जो हमारी थी वो मान ली गई है, तो हम इमीडिएट इफेक्ट से प्रोटेस्टर्स से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप विड्रॉ करें, पीसफुली अपने घर वापस जाएं और आगे की जो भी हमारी रणनीति होगी या बातचीत होगी उससे हम आपको अवगत कराएंगे।
4: केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने बताया कि सरकार प्रदर्शनकारियों पर दर्ज सभी मामले वापस लेगी।
5: सबसे पहली बात तो यह है कि कोई भी एक्शन FIR न हो और अगर है तो वो विड्रॉ हो और उसको विड्रॉ करने की बात कोई भी एक्शन नहीं होगा। इस बात को सरकार ने स्वीकारा है जो प्रोटेस्टर्स के साथ प्रोटेस्ट

0: उसी तरीके से फ्यूचर में भी जो ऑर्गेनाइजर्स हैं और प्रोटेस्टर्स हैं उनका इस एक्टिविटी के लिए कोई भी उन पर आगे केस नहीं होगा, इस बात से हम लोगों ने माना है।
1: श्री नड्डा ने कहा कि परीक्षा प्रणाली में सुधार के लिए दिए गए सीजीपी के सुझावों पर विचार किया जाएगा।
0: हम एजुकेशन के एग्जामिनेशन के रिफॉर्म्स के लिए जो आपका चार्टर है उस पर हम गहन चिंतन भी करेंगे और आपके डेलीगेशन के साथ बातचीत करके जो कुछ भी हम डेलीबरेट कर सकेंगे वो हम करने का प्रयास करेंगे।
1: इससे पहले शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना त्यागपत्र सौंप दिया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री प्रधान ने कहा कि पिछले 10 दिन से छात्रों के विरोध प्रदर्शन के बाद उत्पन्न स्थिति से वे व्यथित हैं और ये उनके लिए व्यक्तिगत प्रतिष्ठा का विषय नहीं है। उन्होंने कहा कि जंतर मंतर और पूरे देश में वर्तमान स्थिति का राष्ट्र विरोधी ताकतें लाभ न उठा सकें और किसी भी छात्र का भविष्य कानूनी पेचीदगियों में न उलझे, इसलिए उन्होंने प्रधानमंत्री को अपना त्यागपत्र सौंपने का निर्णय लिया। श्री प्रधान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन, विश्वास और निरंतर सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि राष्ट्र सेवा उनके जीवन की सर्वोच्च प्राथमिकता है और वे इसके प्रति सदा समर्पित रहेंगे। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद कहा कि उनका 10 साल का सफर सार्वजनिक जीवन और विद्यार्थी कल्याण के प्रति आजीवन समर्पण का प्रमाण है। उन्होंने श्री धर्मेंद्र प्रधान को उनकी अथक सेवा, सुधारों के प्रति प्रतिबद्धता और मजबूत भारत के निर्माण में योगदान के लिए धन्यवाद दिया। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के पद से त्यागपत्र देने पर कहा कि यह निर्णय सार्वजनिक जीवन में नैतिक मूल्यों, मर्यादा और सिद्धांतों के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता दर्शाता है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्रीमती गुप्ता ने कहा कि श्री प्रधान ने अपने सार्वजनिक जीवन में हर दायित्व को निष्ठा, ईमानदारी और पूर्ण समर्पण के साथ निभाया। दिल्ली सरकार में मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने पंजाब में कथित पेपर लीक मामलों को लेकर पंजाब सरकार की आलोचना की है। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य में प्रतियोगी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के बावजूद अब तक स्पष्ट जवाबदेही तय नहीं की गई है।
2: श्री सिरसा ने कहा कि यदि छात्रों के भविष्य की चिंता है तो ये केवल दिल्ली तक सीमित नहीं होनी चाहिए बल्कि पंजाब के युवाओं के साथ भी समान न्याय होना चाहिए। उन्होंने पंजाब सरकार से सभी कथित पेपर लीक मामलों की समयबद्ध और निष्पक्ष जांच, दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई तथा नैतिक जिम्मेदारी के आधार पर पंजाब के शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग की। साथ ही उन्होंने कहा कि छात्रों के भविष्य के मुद्दों पर दोहरे मानदंड नहीं अपनाए जाने चाहिए। आरजू की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से हमेशा।
1: इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेपर लीक मामले में कड़ा कानून लाने को लेकर जारी किए गए अपने वीडियो संदेश पर मिली प्रतिक्रिया और सुझावों के लिए देश के युवाओं को धन्यवाद दिया। श्री मोदी ने युवाओं के जबरदस्त समर्थन के लिए आभार व्यक्त किया।
3: थैंक यू फ्रेंड्स, मेरे जो वीडियो पोस्ट किया था उसको जिस प्रकार से आपने रिस्पॉन्ड किया, सकारात्मक सुझाव दिए, थैंक्स टू एवरीबॉडी। आपका प्यार बना रहेगा, हमारा नाता और अधिक सक्रियता से जुड़ता रहेगा। थैंक यू।
1: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। दिल्ली मेट्रो के सभी स्टेशन अब यात्रियों के लिए खोल दिए गए हैं। इससे पहले दिल्ली मेट्रो ने सुरक्षा कारणों से 18 मेट्रो स्टेशन बंद कर दिए थे। इनमें लोक कल्याण मार्ग, राजीव चौक, पटेल चौक, रामकृष्ण आश्रम मार्ग, बाराखंबा रोड, सुप्रीम कोर्ट, सेवा तीर्थ, जनपद, मंडी हाउस, केंद्रीय सचिवालय, आईटीओ, दिल्ली गेट, इंद्रप्रस्थ, खान मार्केट, जोरबाग, शिवाजी स्टेडियम, झंडेवालान और नई दिल्ली स्टेशन शामिल थे। नागर विमानन मंत्रालय ने चेतावनी दी है कि कुछ फर्जी वेबसाइट एयर सुविधा 2.0 के नाम पर यात्रियों को गुमराह कर रहे हैं। प्रेस विज्ञप्ति में मंत्रालय ने बताया कि एयर सुविधा 2.0 की सेवाएं पूरी तरह से निशुल्क हैं और स्वघोषणा पत्र जमा करने के लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाता। मंत्रालय ने कहा कि एकमात्र आधिकारिक एयर सुविधा 2.0 पोर्टल airsuvidha.civilaviation.gov.in है। भारत की पहली हाइड्रोजन रेलगाड़ी ने निर्बाध रूप से 1200 किलोमीटर से अधिक की दूरी तय की है। इससे 3000 लीटर से अधिक डीजल की बचत हुई है और इससे केवल जल वाष्प उत्सर्जित हुआ है। इस हाइड्रोजन रेलगाड़ी को इस महीने की 17 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जींद और सोनीपत के बीच झंडी दिखाकर रवाना किया था। रेल मंत्रालय ने बताया कि रेलगाड़ी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच रासायनिक प्रतिक्रिया के माध्यम से बिजली उत्पन्न करती है। दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने मादक पदार्थ

0: तस्करी मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। एक रिपोर्ट।
1: पुलिस ने इस दौरान लगभग 12 किलोग्राम से अधिक मात्रा में मादक पदार्थ बरामद किया है। इसके अलावा 28,800 रुपए और 13 मोबाइल फोन भी जब्त किया गया है। पुलिस के अनुसार गिरफ्तार आरोपियों में एक नाइजीरियाई महिला भी शामिल है। वहीं एक अन्य मामले में पुलिस ने अंतर्राज्यीय मादक पदार्थ तस्करी गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के पास से लगभग 19,70,000 की नशीली गोलियां बरामद की हैं, जिनका कुल वजन लगभग 470 किलोग्राम है। पुलिस ने बताया कि यह गिरोह दिल्ली, नोएडा और उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ तक फैला हुआ है। दोनों मामलों में जांच जारी है। आरजू की रिपोर्ट के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए करिश्मा राय।
0: दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने अवैध शराब तस्करी मामले में एक आरोपी को द्वारका क्षेत्र से गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के पास से 150 क्वार्टर अवैध शराब और तस्करी में इस्तेमाल होने वाली एक दोपहिया वाहन बरामद किया है। मामले की जांच जारी है। दिल्ली पुलिस ने एक बार फिर साफ तौर पर उन वायरल सोशल मीडिया अफवाहों को खारिज कर दिया है, जिनमें दावा किया गया है कि नई दिल्ली जिले में ऐप आधारित फूड डिलीवरी सेवाओं पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। पुलिस ने कहा कि जानकारी तथ्यों के आधार पर गलत और गुमराह करने वाली है। वहीं दिल्ली यातायात पुलिस ने नई दिल्ली जिले में भारी भीड़ और अत्यधिक यातायात जाम को देखते हुए नागरिकों को नई दिल्ली क्षेत्र की ओर से यात्रा करने से बचने की सलाह दी है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम NCRTC ने 27वें करगिल विजय दिवस के अवसर पर भारतीय सशस्त्र बलों के वीर जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की है। एक रिपोर्ट।
2: इस अवसर पर आज बेगमपुर नमो भारत स्टेशन पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें स्कूली विद्यार्थियों के साथ NCRTC के अधिकारियों ने हिस्सा लिया। इस मौके पर स्कूली छात्रों के लिए गार्डिंग द बॉर्डर्स विषय पर चित्रकला प्रतियोगिता आयोजित की गई, जिसमें बच्चों ने सैनिकों के साहस को चित्रों के माध्यम से श्रद्धांजलि दी। NCRTC ने कहा कि नमो भारत स्टेशनों को सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियों का भी केंद्र बनाया जा रहा है। आरजू की रिपोर्ट के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए समाचार कक्ष से प्रशांत कुमार।
0: कल करगिल विजय दिवस है। इसी संदर्भ में हमारी पर्सन बिहाइंड द स्टोरी श्रृंखला के अंतर्गत आगामी कड़ी में हम करगिल युद्ध के वयोवृद्ध और भारत के पहले ब्लेड रनर मेजर डीपी सिंह से बातचीत करेंगे। दिल्ली नगर निगम ने भारत मंडपम में आयोजित दिल्ली सरकार अचीवमेंट एंड स्कीम एक्सपो 2026 में अपने समर्पित स्टॉल के माध्यम से नागरिक केंद्रित पहलों, जन कल्याणकारी योजनाओं, नवाचारों और विभिन्न नागरिक सेवाओं का प्रदर्शन किया है। निगम के स्टॉल पर बड़ी संख्या में विद्यार्थियों, नागरिकों और विभिन्न संस्थानों के प्रतिनिधियों ने उत्साहपूर्वक भ्रमण किया तथा निगम की प्रमुख जन कल्याणकारी योजनाओं और नागरिक सेवाओं की जानकारी प्राप्त की। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। दिल्ली के उपराज्यपाल तरणजीत सिंह संधू ने के नेतृत्व में दिल्ली पुलिस राष्ट्रीय राजधानी में कई पहलों के माध्यम से जुलाई महीने को बाल संरक्षण माह के रूप में मना रही है। कार्यक्रम के अंतर्गत दिल्ली पुलिस ने 321 सेशन के माध्यम से 1,12,000 से अधिक विद्यार्थियों को आत्मरक्षा का प्रशिक्षण दिया। शिक्षा निदेशालय ने पॉक्सो और बाल सुरक्षा नियमों के पालन की जांच के लिए 1,503 स्कूलों का निरीक्षण किया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री संधू ने कहा कि विद्यालय में शपथ समारोह, साइबर सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम और पुलिस स्टेशन के दौरे से बच्चों में पुलिसिंग के प्रति भरोसा और आत्मविश्वास बढ़ रहा है। दिल्ली के शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने आज दिल्ली के उपराज्यपाल तरणजीत सिंह संधू के लोक निवास में मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सूद ने बताया कि इस दौरान राष्ट्रीय राजधानी से जुड़े प्रमुख नीतिगत विषयों और विकासात्मक पहलों पर विचार विमर्श हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सवेरे 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। मासिक रेडियो कार्यक्रम की ये 136वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क, आकाशवाणी समाचार वेबसाइट और newsonair मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कॉमनवेल्थ गेम्स में पुरूषों की हैवीवेट पैरा पावर लिफ्टिंग स्पर्धा में भारत का पहला पदक जीतने वाले झंडू कुमार को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्रीमती गुप्ता ने कहा कि उपलब्धि देश के युवाओं और खिलाड़ियों को बड़े सपने देखने और उन्हें साकार करने की प्रेरणा देती है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली की पूर्व महापौर शकुंतला आर्य के निधन पर शोक व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली के विकास, जनसेवा और संगठन के प्रति उनका समर्पण सदैव याद रखा जाएगा। राजधानी दिल्ली के कई इलाकों में आज सवेरे हल्की वर्षा हुई, वहीं दिन भर लोगों को उमस भरी गर्मी का सामना करना पड़ा। मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 27.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने कल आमतौर पर बादल छाए रहने के साथ साथ कई जगहों पर सवेरे और दोपहर के समय हल्की हवा चलने की संभावना व्यक्त की है। वहीं कल का अधिकतम तापमान 33 डिग्री से 35 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 24 से 26 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। पर्यटन मंत्री कपिल मिश्रा ने आज राजधानी में कांवड़ यात्रा को सुचारू, सुरक्षित और सुविधाजनक बनाने के उद्देश्य से संबंधित अधिकारियों तथा उच्च स्तरीय कांवड़ समिति के पदाधिकारियों के साथ बैठक की। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज देवशयनी एकादशी पर लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में मुख्यमंत्री ने भगवान विष्णु के सभी के स्वस्थ, सुखी, समृद्ध और मंगलमय जीवन की कामना करते हुए कहा कि प्रभु की कृपा सदैव सभी पर बनी रहे। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। कॉकरोच जनता पार्टी ने तत्काल प्रभाव से आंदोलन समाप्त करने की घोषणा की, कहा तीनों मांगे मानी गईं। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना त्याग पत्र सौंपा। दिल्ली मेट्रो के सभी स्टेशन खोले गए। दिल्ली पुलिस ने मादक पदार्थ तस्करी मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम ने 27वें करगिल विजय दिवस पर वीर जवानों को श्रद्धांजलि दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में पुरुषों के हैवीवेट पैरा पावर लिफ्टिंग में भारत का पहला पदक जीतने पर बधाई दी। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज पर। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम मुशायरा।
1: सामीन की खिदमत में मोहम्मद अली कमाल का पुरखलूस आदाब। सामीन, किसी अच्छे फनकार में ये खूबी होती है कि वो न सिर्फ जहनी और कलबी कैफियतों को समझता है और महसूस करता है, बल्कि जो कुछ लोगों पर गुजरती है उसका अपनी तख्लीकी काविश से बरमला इजहार भी करता है। शायरी के हवाले से अगर बात की जाए तो शायर जहनी और कलबी कैफियत को जो महसूस करता है शायरी में डालता है और उन सबको लोगों के रूबरू पेश कर देता है। यही शायर का एक बड़ा कमाल है। अहम फिलोसफर हुमर का कहना है, शायरी तो की जाए लेकिन शायर का फर्ज ये है कि जो कुछ वो अपनी शायरी में बयान करे वो सच भी हो। इस तरह शायरी में जब हकीकत को बयान किया जाता है तो वो सबके दिलों की आवाज बन जाती है। वो किसी एक फर्द या शख्स के ख्यालात, जज्बात और एहसासात ना होकर आफाकी बन जाते हैं। आइए सामीन शायरी सुनी जाए, यानी सुनते हैं मुशायरा। इस मुशायरे की निजामत फरमा रही हैं जनाब एजाज अंसारी। आइए सुनते हैं।
2: आकाशवाणी के इस मुशायरे में जिन शोरे करम को आज अपना कलम पेश करना है उसमें जनाब राशिद रहमान, जनाब शाकिर दहलवी, जनाब सलीम अमरोहवी और ये खादिम एजाज अंसारी। तो आइए आकाशवाणी के इस मुशायरे का आगाज किया जाए और मैं सबसे पहले जहमत देना चाहूंगा जनाब राशिद रहमान साहब को, जिनका ताल्लुक मेरठ से है और वो वहां से तशरीफ लाए हैं।
3: एक मतला और चंद शेर पेश कर देता हूं। समाप्त फरमाए कि जब से तेरी आंख मेरी आंखों से लड़ी है,
2: जब से तेरी आंख मेरी आंखों से लड़ी है,
3: जब से तेरी आंख मेरी आंखों से लड़ी है, दुनिया की हर एक शय मेरे कदमों में पड़ी है।
2: क्या कहने क्या कहने,
3: दुनिया की हर एक शय मेरे कदमों में पड़ी है और पूछो न सनम मुझसे जुदाई का ये आलम।
2: वाह।
3: पूछो न सनम मुझसे जुदाई का ये आलम, लगता है कि जैसे ये कयामत की घड़ी है।
2: वाह।
3: लगता है कि जैसे ये कयामत की घड़ी है।
2: वाह।
3: वाइज ये तेरा रोजे कयामत तो नहीं है,
2: वाइज ये तेरा रोजे कयामत तो नहीं है,
3: क्यों अपनी तुझे और मुझे अपनी पड़ी है।
2: वाह।
3: क्यों तुझे अपनी और मुझे अपनी पड़ी है।
2: वाह, वाह, वाह।
3: और कोई भी यहाँ मेरी हिमायत नहीं करता, कोई भी यहाँ मेरी हिमायत नहीं करता, ये भीड़ तो सूली पे चढ़ाने को अड़ी है।
2: वाह।
3: ये भीड़ तो सूली पे चढ़ाने को अड़ी है।
2: वाह, वाह, वाह।
3: और तदबीर ने तो अर्श पर पहुंचा दिया हमको, तदबीर ने तो अर्श पर पहुंचा दिया हमको, तकदीर से हर हाल में तदबीर बड़ी है।
2: अच्छा है, अच्छा है भाई,
3: तकदीर से हर हाल में
2: साहब अच्छा है।
3: बहुत बहुत शुक्रिया, तकदीर बड़ी है।
2: क्या कहने।
3: और बतौर खास कि सब रस्ते चले जाते हैं रुकता नहीं कोई, सब रस्ते चले जाते हैं रुकता नहीं कोई, हालांकि बहुत देर से एक लाश पड़ी है।
2: हालांकि
3: बहुत देर से एक लाश पड़ी
2: है। वाह वाह, क्या मंजर बना।
3: जब से तेरी आंख मेरी आंखों से लड़ी है, दुनिया की हर एक शय मेरे कदमों में पड़ी है, और मक्कारों दगाबाजों की चलती है यहाँ पर, मक्कारों दगाबाजों की चलती है यहाँ पर, सच बोलने वाले की यहाँ खाट खड़ी है, सच बोलने वाले की यहाँ खाट खड़ी है। और मक्ता पेश है, मैं कई रोज से राशिद ये सोच रहा हूँ वो कौन सी शय है जो मोहब्बत से बड़ी है।
2: वाह।
3: वो कौन सी शय है जो मोहब्बत से बड़ी है। एक मतलब चंद शेर और पेश कर देता हूँ, इशारा करें कि देखिए क्या से क्या हो गया,
2: देखिए क्या से क्या हो गया,
3: हमसे अपना जुदा हो गया।
2: वाह।
3: हमसे अपना जुदा हो गया और हमसे कैसी खता हो गई, हमसे कैसी खता हो गई, बावफा बेवफा हो गया। باوفا بے وفا ہو گیا اور حسن جب سے خفا ہو گیا.
4: حسن جب سے خفا
3: حسن جب سے خفا ہو گیا منفعل آئینہ ہو گیا. منفعل آئینہ ہو گیا اور زندگی ایک الجھن بنی. زندگی ایک الجھن بنی سانس لینا سزا ہو گیا. سانس لینا سزا ہو گیا اور رات بھر خاک چھانی مگر خواب بھی لاپتا ہو گیا. خواب بھی لاپتا ہو گیا اور کوئی شکوا نہیں اب ہمیں. کوئی شکوا نہیں اب ہمیں جو ہوا معجزہ ہو گیا. ڈھونڈتا ہے انہیں اب کہاں راشد ان سے جدا ہو گیا. اور ایک غزل کے تم شیر کہ میرے خیال میں دن رات آ رہا ہے وہ. میرے خیال میں دن رات آ رہا ہے وہ. مجھے صدائے لگا کے بلا رہا ہے وہ. اور چمن میں چھائی ہے جیسے پیار کی بدلی. چمن میں چھائی ہے جیسے یہ پیار کی بدلی. دل و دماغ پہ اس طرح چھا رہا ہے وہ. دل و دماغ پہ اس طرح چھا رہا ہے وہ. اور جفا و ظلم کی ذہنوں میں تیرگی ہے بہت. جفا و ظلم کی ذہنوں میں تیرگی ہے بہت. محبتوں کا دیا یوں جلا رہا ہے وہ. محبتوں کا دیا یوں جلا رہا ہے وہ. اور زبان اردو کا یہ بھی تو ایک کرشمہ ہے. زبان اردو کا یہ بھی تو ایک کرشمہ ہے. غزل کی بزم کو ہر دن سجا رہا ہے وہ. غزل کی بزم کو ہر دن سجا رہا ہے وہ. اور وہ جتنے شعروں میں پنہا ہے حسرت غم کی. وہ جتنے شعروں میں پنہا ہے حسرت غم کی. وہی کلام دوبارہ سنا رہا ہے وہ. وہی کلام دوبارہ سنا رہا ہے وہ. اور یہ دیکھتا ہوں میں نفرت کی کھیتیاں کرنے. یہ دیکھتا ہوں میں نفرت کی کھیتیاں کرنے. میرے دیار میں ہر روز آ رہا ہے وہ. میرے دیار میں ہر روز آ رہا ہے وہ. اور مکتہ پیش ہے کہ دعا کو ہاتھ اٹھانے تھے اب جسے راشد. دعا کو ہاتھ اٹھانے تھے اب جسے راشد. ہر ایک بات پہ خنجر اٹھا رہا ہے وہ.

0: इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है, मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 810 किलोहर्ट्ज, DRM 810 किलोहर्ट्ज पर। 8:45 होने को है, आइए अब सुनते हैं समाचार संध्या।
1: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं, मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया। कांग्रेस जनता पार्टी ने केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और डॉ जितेंद्र सिंह के साथ बातचीत और सरकार द्वारा मांगों को स्वीकार किए जाने के बाद विरोध प्रदर्शन तत्काल प्रभाव से समाप्त किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 3 देशों मोल्दोवा, उत्तरी मैसेडोनिया और रोमानिया की यात्रा पूरी कर स्वदेश रवाना। उत्तर प्रदेश में सारनाथ के प्राचीन बौद्ध स्थल को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। और हरारे में भारत में दूसरे T20 क्रिकेट मैच में मेजबान जिम्बाब्वे को 90 रन से हराया। अब समाचार विस्तार से। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना इस्तीफा सौंप दिया। श्री प्रधान ने कहा कि पिछले 10 दिनों से छात्रों के विरोध प्रदर्शन के बाद उत्पन्न स्थिति से वे व्यथित हैं। उन्होंने कहा कि ये उनके लिए व्यक्तिगत प्रतिष्ठा का विषय नहीं है। श्री प्रधान ने कहा कि जंतर मंतर और पूरे देश में वर्तमान स्थिति का राष्ट्र विरोधी ताकतें लाभ न उठा सके, इसलिए उन्होंने प्रधानमंत्री को इस्तीफा सौंपने का निर्णय लिया है। श्री प्रधान ने कहा कि नीट यूजी परीक्षा में अनियमितताओं के बाद सरकार ने जांच सीबीआई को सौंप दी और परीक्षा रद्द कर दी। इस बीच राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने श्री प्रधान का मंत्रिपरिषद से इस्तीफा तत्काल प्रभाव से स्वीकार कर लिया है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी नए शिक्षा मंत्री होंगे। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण और नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री श्री जोशी को शिक्षा मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का 10 साल का सफर सार्वजनिक जीवन और विद्यार्थी कल्याण के प्रति आजीवन समर्पण का प्रमाण है। श्री रिजिजू ने देश के शिक्षा तंत्र को सुदृढ़ करने और लाखों युवा विद्यार्थियों को हर निर्णय के केंद्र में रखने के लिए श्री प्रधान के ईमानदार प्रयासों की सराहना की। भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा कि श्री प्रधान ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के सफल कार्यान्वयन और अन्य पहलों के माध्यम से भारत की शिक्षा व्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। कांग्रेस जनता पार्टी CJP ने सरकार द्वारा मांगों को स्वीकार किए जाने

0: के बाद आंदोलन को तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दिया है। केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा और जितेंद्र सिंह के साथ प्रतिनिधिमंडल की तीसरे दौर की वार्ता के बाद सीजेपी प्रवक्ता आशुतोष रामका ने लोगों से शांतिपूर्वक घर लौटने की अपील की।
1: तमाम मांगे जो हमारी थी वो मांग ली गई है, तो हम इमीडिएट इफेक्ट से प्रोटेस्टर से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप विड्रॉ करें, पीसफुली अपने घर वापस जाएं और आगे की जो भी हमारी रणनीति होगी या बातचीत होगी उससे हम आपको अवगत कराएंगे।
0: श्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा कि सरकार ने प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करने की मांग स्वीकार कर ली है।
1: सबसे पहली बात तो ये है कि कोई भी एक्शन एफआईआर न हो और अगर है तो वो विड्रॉ हो और उसको विड्रॉ करने की बात कोई भी एक्शन नहीं होगा, इस बात को सरकार ने स्वीकारा है जो प्रोटेस्टर्स के साथ प्रोटेस्ट के दौरान हुआ है। उसी तरीके से फ्यूचर में भी जो ऑर्गेनाइजर्स हैं और प्रोटेस्टर्स हैं उनका इस एक्टिविटी के लिए कोई भी उन पर आगे केस नहीं होगा, इस बात को हम लोगों ने माना है।
0: नीट यूजी पेपर लीक के बाद आत्महत्या करने वाले छात्रों के परिवारों को मुआवजे के मुद्दे पर श्री नड्डा ने कहा कि सरकार नियमों तथा विनियमों के अनुरूप अधिकतम मुआवजा सुनिश्चित करेगी।
1: कॉम्पनसेशन के बारे में सरकार ने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा है, जान किसी बच्चे की जाए और उसके प्रति हम भी सहानुभूति रखते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी अत्यंत सहानुभूति के साथ कहा है कि ऑनरेबल कॉम्पनसेशन अकॉर्डिंग टू द रूल्स एंड रेगुलेशंस व्हाटएवर मैक्सिमम विल बी पॉसिबल दैट विल बी गिवन टू देम।
0: परीक्षा सुधारों पर सीजेपी के 5 सूत्री प्रस्ताव पर श्री नड्डा ने कहा कि सरकार इस प्रस्ताव पर गंभीरता से विचार करेगी। भारतीय जनता पार्टी ने संसद में नीट पेपर लीक मुद्दे पर चर्चा से कांग्रेस के पीछे हटने का आरोप लगाया है। नई दिल्ली में पार्टी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने यह बात कही।
2: कांग्रेस पार्टी से स्पष्ट रूप से पूछना चाहता हूं कि सोमवार को संसद के वर्तमान सत्र का दूसरा सप्ताह प्रारंभ होगा, आप इस समस्या पर और आपके द्वारा जो भी विषय रखे गए जब सरकार संसद में चर्चा करने के लिए तैयार है तो आप सोमवार से संसद की चर्चा में भाग लेंगे अथवा पुनः चर्चा से भागेंगे।
0: श्री त्रिवेदी ने आरोप लगाया कि कुछ लोगों का एकमात्र उद्देश्य राजनीतिक लाभ उठाना है, न कि छात्रों की चिंताओं का समाधान करना। लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने सरकार से देश की शिक्षा व्यवस्था में सुधार लाने के लिए ठोस कदम उठाने की मांग की है। नई दिल्ली में उन्होंने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान के इस्तीफे को छात्रों की जीत बताया। महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा टीईटी पेपर लीक मामले के मुख्य आरोपी विजेंद्र कुमार गुप्ता और उसके सहयोगी इंद्रजीत विनय कुमार सिंह को भिवंडी की एक अदालत ने 30 जुलाई तक पुलिस हिरासत में भेज दिया है। दोनों को बिहार के समस्तीपुर से गिरफ्तार किया गया था। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की आलोचना करते हुए कहा कि पेपर लीक माफिया इन्हीं पार्टियों की देन है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार पेपर लीक माफिया के खिलाफ सख्त कानून ला रही है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सवेरे 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क, आकाशवाणी समाचार वेबसाइट और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी क्षेत्रीय भाषाओं में भी इस कार्यक्रम का प्रसारण करेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मोल्दोवा, उत्तरी मैसेडोनिया और रोमानिया की यात्रा पूरी करने के बाद नई दिल्ली के लिए रवाना हो गई हैं। यात्रा के अंतिम चरण में उन्होंने रोमानिया के राष्ट्रपति निकोशो डान के साथ व्यापार, निवेश, रक्षा, डिजिटल प्रौद्योगिकी, शिक्षा, नवीकरणीय ऊर्जा और संस्कृति सहित विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के उद्देश्य से व्यापक चर्चा की। बुखारेस्ट में उन्होंने भारतीय समुदाय के सदस्यों के साथ बातचीत की। राष्ट्रपति ने भारतीय समुदाय को दोनों देशों के बीच बढ़ती साझेदारी का एक महत्वपूर्ण स्तंभ बताया।
3: भारतीय प्रवासी समुदाय एकजुट होकर रोमानिया में भारत की सांस्कृतिक विरासत को जीवंत बनाए। भारतीय आईटी इंजीनियरिंग स्कॉलर्स, रिसर्चर्स, हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स तथा विद्यार्थियों की नई पीढ़ी अब रोमानिया को अपना घर बना रहे हैं। रोमानिया की अर्थव्यवस्था और समाज में अपना योगदान तथा यहाँ भारतीय संस्कृति और मूल्यों के प्रसार के लिए आपके प्रयास आपको भारत का सच्चा प्रतिनिधि बनाते हैं।
0: विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने नई दिल्ली में सिंगापुर के कानून मंत्री एडविन टोंग एससी के साथ द्विपक्षीय बैठक की। श्री मेघवाल ने दोनों देशों के बीच कानूनी सहयोग मजबूत करने, वैकल्पिक विवाद समाधान को

0: बढ़ावा देने और संस्थागत तथा न्यायिक सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की। सरकार नियमित संवाद और रचनात्मक परामर्श के माध्यम से कर्मचारी संगठनों के साथ जुड़ने के लिए प्रतिबद्ध है। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने नई दिल्ली में भारतीय मजदूर संघ से संबद्ध भारतीय डाक कर्मचारी संघ के 12 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल के साथ बातचीत के दौरान ये बात कही। डॉ सिंह ने बताया कि लगभग 3 दशकों से लंबित कई पुरानी सेवा संबंधी शिकायतों का समाधान पारदर्शी और कर्मचारी केंद्रित संचालन के माध्यम से किया गया है। रसायन और उर्वरक मंत्री जेपी नड्डा ने आज नई दिल्ली में लघु उद्योग भारती फार्मा कॉन्क्लेव 2026 का उद्घाटन किया। श्री नड्डा ने कहा कि भारत का फार्मास्यूटिकल सेक्टर राष्ट्र निर्माण का एक प्रमुख स्तंभ है, जो नवाचार को बढ़ावा देता है, रोजगार सृजित करता है और सस्ती स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित करता है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। उत्तर प्रदेश के सारनाथ को यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे प्रत्येक भारतीय के लिए गर्व का क्षण बताया है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि सारनाथ भारत की शाश्वत आध्यात्मिक और दार्शनिक विरासत का प्रतीक है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इससे दुनियाभर के लोग सारनाथ आने और भगवान बुद्ध के आदर्शों से जुड़ने के लिए प्रेरित होंगे। संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि सारनाथ मानवता के लिए भारतीय सभ्यता के गहन आध्यात्मिक और दार्शनिक योगदान को दर्शाता है। ओडिशा के पवित्र नगर पुरी में ग्रैंड रोड पर भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा की भव्य रथ यात्रा देश विदेश से आए श्रद्धालुओं के आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: पुरी में ग्रैंड रोड पर अपने शानदार रथों पर विराजमान भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा आज पवित्र सोना व स्वर्ण वेश में बेहद भव्य लग रहे हैं। उन्होंने बेहद खूबसूरती से बने मुकुट, हार, बाजूबंद, झुमके और अन्य पारंपरिक आभूषण पहने हैं। सालाना रथ यात्रा की सबसे भव्य रस्मों में से एक इस पवित्र स्वर्ण वेश के दर्शन के लिए आम लोगों को आधी रात तक का समय मिलने का उम्मीद है, जिससे लाखों भक्त इन तीनों पवित्र देव रूपियों की दिव्य भव्यता के दर्शन कर सकेंगे। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार।
0: लद्दाख में 27वें करगिल विजय दिवस समारोह का पहला दिन आज शाम द्रास स्थित करगिल युद्ध स्मारक पर आयोजित शौर्य संध्या समारोह के साथ संपन्न हुआ। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्रास पहुंचे और समारोह में शामिल हुए। समारोह के दौरान रक्षा मंत्री ने करगिल शहीदों के परिजनों को श्रद्धांजलि अर्पित कर ऑपरेशन विजय के वीर योद्धाओं के सर्वोच्च बलिदान को नमन किया। आकाशवाणी कल करगिल विजय दिवस के अवसर पर पर्सन बिहाइंड द स्टोरी श्रृंखला के अंतर्गत करगिल युद्ध के वयोवृद्ध और भारत के पहले ब्लेड रनर मेजर डीपी सिंह से बातचीत प्रसारित करेगा। कार्यक्रम का प्रसारण कल दोपहर 12:30 बजे 100.1 आकाशवाणी गोल्ड पर होगा। आप इसे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और न्यूज ऑन एआईआर के आधिकारिक यूट्यूब चैनल पर भी सुन सकते हैं। भारत की पहली हाइड्रोजन चालित रेलगाड़ी ने 1200 किलोमीटर से अधिक की दूरी तय की है। इससे 3000 लीटर से अधिक डीजल की खपत कम हुई है। इस रेलगाड़ी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 17 जुलाई को जींद और सोनीपत के बीच रवाना किया था। ये परियोजना भारतीय रेलवे के नेतृत्व में एक स्वदेशी पहल है। राजस्व खुफिया निदेशालय ने सोने की तस्करी करने वाले गिरोह के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 27 किलो से अधिक विदेशी सोना जब्त किया है और 12 लोगों को गिरफ्तार किया है। इस सप्ताह देशभर में खुफिया जानकारी के आधार पर कई अभियान चलाए गए। मौसम विभाग ने मध्य महाराष्ट्र और ओडिशा में कल अत्यधिक वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। छत्तीसगढ़, गुजरात, कोंकण और गोवा में भी अगले 2 दिन के दौरान तेज बारिश की संभावना है। तटीय आंध्र प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, उत्तराखंड, पश्चिमी राजस्थान और उत्तर पूर्वी क्षेत्र में कल तेज वर्षा होने की आशंका है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, आंध्र प्रदेश, उत्तरी आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारिककाल में सोमवार तक बिजली चमकने और तेज हवाओं के साथ बारिश का पूर्वानुमान है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने असम में बाढ़ से हुई जानमाल की हानि और तबाही पर गहरा दुख व्यक्त किया है। राष्ट्रपति ने इस आपदा से प्रभावित सभी लोगों की सुरक्षा और बचाव, राहत और पुनर्वास कार्यों में लगे सभी कर्मियों के कुशल मंगल की कामना की। उन्होंने आश्वासन दिया कि पूरा देश असम के लोगों के साथ एकजुटता से खड़ा है। और अब बात खेलों की। हरारे में दूसरे T20 क्रिकेट मैच में भारत ने जिम्बाब्वे को 90 रन से हरा दिया है। 220 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए जिम्बाब्वे की टीम 18वें ओवर में 129 रन पर सिमट गई। ईशान किशन ने शानदार 81 रन की पारी खेली और उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। तीन मैचों की श्रृंखला में भारत ने 2-0 की बढ़त बना ली है। अनाहत सिंह ने इतिहास रचते हुए विश्व जूनियर स्क्वाश चैंपियनशिप के महिला सिंगल्स के फाइनल में जगह बना ली है। फाइनल में उनका सामना आज रात मिस्र की रुकैया सलीम से होगा। अनाहत सिंह जोशना चिनप्पा के बाद इस प्रतियोगिता के फाइनल में पहुंचने वाली दूसरी भारतीय खिलाड़ी बन गई हैं। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया। कांग्रेस जनता पार्टी ने केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और डॉ जितेंद्र सिंह के साथ बातचीत और सरकार द्वारा मांगों को स्वीकार किए जाने के बाद विरोध प्रदर्शन तत्काल प्रभाव से समाप्त किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू तीन देशों मोल्दोवा, उत्तरी मैसेडोनिया और रोमानिया की यात्रा पूरी कर स्वदेश रवाना। उत्तर प्रदेश में सारनाथ के प्राचीन बौद्ध स्थल को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। और हरारे में भारत ने दूसरे T20 क्रिकेट मैच में मेजबान जिम्बाब्वे को 90 रन से हराया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

आदाब, ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। अब उर्दू सर्विस की तीसरी मजलिस की नशरियात का आगाज होता है। टाइम हो चला है 9:17 और अब आप ये नशरियात समाप्त कर रहे हैं। मीडियम वेव 1071 किलोहर्ट्ज पर, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR के जरिए और DD फ्री डिश पर। पेश है आज की इस तीसरी मजलिस में नशर होने वाले प्रोग्रामों का खुलासा। अब से कुछ देर में 9:20 पर आप सुनेंगे गैर फिल्मी गजलों का प्रोग्राम एक फनकार, जिसके तहत आज आप सुनेंगे पीनाज मसानी की आवाज में मिर्जा असदुल्लाह खान गालिब, रिफत सरोश, फरियाज जयपुरी और मोमिन खान मोमिन की लिखी हुई गजलें। रात 9:45 पर खबरें नशर होंगी और रात 9:55 पर आप सुनेंगे प्रोग्राम हेल्थ टिप्स के तहत कुछ बातें आपकी सेहत के हवाले से। रात 10 आप सुनेंगे प्रोग्राम मार्केट मंत्रा और 10:30 पर नशर होगा आपका पसंदीदा फरमाइशी फिल्मी नगमों का प्रोग्राम तामील इरशाद। इसी प्रोग्राम के दौरान रात 11 आप सुनेंगे खबरें बर्रे सवेर से और 11:30 पर नशर होगा प्रोग्राम सुर्खियों में। 11:45 पर आप सुनेंगे प्रोग्राम बज्म मौसीकी के तहत पंडित यशपाल की आवाज में राग चैनत में ख्याल। रात 12 आलमी खबरें नशर होंगी और 12:10 पर आप सुनेंगे इंस्ट्रूमेंटल मौसीकी के प्रोग्राम के तहत उस्ताद रईस खान का सितार पर बजाया हुआ राग शंकर बिहाग। रात 12:30 पर आप सुनेंगे आखिर शब प्रोग्राम के तहत फिल्मी नगमे और 12:50 पर खबरें नशर होंगी। रात 1 उर्दू सर्विस की तीसरी मजलिस की नशरियात इख्तिताम पसीर होंगी।

यह आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। पेश है प्रोग्राम एक फनकार। आइए सुनते हैं पी नाज मसानी की आवाज में गजलें। हाजिर है पहली पेशकश मिर्जा असदुल्ला खान गालिब की गजल।

लीडर और कांग्रेस के रुकने पार्लियामान राहुल गांधी ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि वो मुल्क के तालीमी निजाम में इस्लाहात के लिए ठोस इकदाम करें। दिल्ली मेट्रो नेटवर्क के तमाम स्टेशन अब मुसाफिरों की खिदमत के लिए खुल गए हैं। आसाम में सैलाब की सूरत हाल बदस्तूर संगीन बनी हुई है और तकरीबन 1,15,000 लोगों ने इमदादी कैंपों में पनाह ली हुई है। शिवसागर, किरियाडियो और जोरहाट सैलाब से सबसे ज्यादा मुतासिर हैं। सैलाब से मजीद 14 लोगों की अमवात की खबर है, जिससे रियासत में हलाक होने वालों की कुल तादाद 61 हो गई है। मुतासर इलाकों में राहत और बचाव कार्रवाइयां जारी हैं। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने आसाम में सैलाब से इंसानी जानों के नुकसान और उससे होने वाली तबाही पर दुख का इजहार किया है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज आसाम के वज़ीर आला हेमंत बिस्वा सरमा से टेलीफोन पर बात की और रियासत में सैलाब की सूरत हाल का जायजा लिया। ये आकाशवाणी है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी कल दिन में 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात प्रोग्राम में मुल्क और बैरून मुल्क लोगों से अपने ख्यालात का इजहार करेंगे। ये महाना रेडियो प्रोग्राम का 136वां नशरिया होगा। ये प्रोग्राम आकाशवाणी और दूरदर्शन के तमाम नेटवर्क्स, एआईआर न्यूज की वेबसाइट और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी नशर होगा। इसे एआईआर न्यूज, डीडी न्यूज, वज़ीर आज़म के दफ्तर और इत्तला तो नशरियात की वजारत के यूट्यूब चैनलों पर बराह रास्त सुना जा सकेगा। हिंदी नशरिये के फौरन बाद आकाशवाणी से इस प्रोग्राम को इलाकाई जबानों में नशर किया जाएगा। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू का रोमानिया का सरकारी दौरा मुकम्मल हो गया है और वो आज तीसरे पहर नई दिल्ली के लिए रवाना हो गई है। इससे कबल दिन में सदर जमहूरिया मुर्मू ने भारतीय बिरादरी के अराकीन के साथ बातचीत की। बुखारेस्त में भारतीय बिरादरी के लिए मुनाकिदा एक इस्तकबालिया से खिताब करते हुए सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने रोमानिया में भारतीय बिरादरी के तावुन की एक कहते हुए सताइश की कि वो दोनों मुल्कों के दरमियान बढ़ती हुई शराकत दारी के अहम सुतून है। अपने दौरे के दौरान सदर जमहूरिया ने रोमानिया के अपने हम मनसब से वसी मुजाकरात किए। जिनका मकसद तिजारत, सरमाकारी, दिफा, डिजिटल टेक्नोलॉजी, तालीम, काबिल तजदीद तवानाई और सकाफत के शोबों में बाहमी तावुन को मुस्तहकम करना था। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने रोमानिया के वजीर आजम और पार्लियामानी लीडरों से भी मुलाकात की। नीज भारत रोमानिया कारोबारी फोरम से खिताब किया। उन्होंने अननोन सोल्जर मकबरे पर खराज अकीदत पेश किया। उन्हें इक्तिसादी मुतालियात की बुखारेस्त यूनिवर्सिटी के जरिए डॉक्टरेट की एजाजी डिग्री से नवाजा गया। यह एजाज उन्हें अवामी खिदमत और भारत रोमानिया ताल्लुकात में उनके खिदमत के मद्देनजर दिया गया है। रोमानिया सदर जमहूरिया मुर्मू के 3 रोजा सरकारी दौरे का आखिरी मरहला था। 3 मुल्कों के इस दौरे में मोल्डोवा और शिमाली मकदूनिया का दौरा भी शामिल था। उत्तर प्रदेश का कदीमी बौद्ध मजहबी मकाम सारनाथ यूनेस्को की आलमी मीरास की फहरिस्त में शामिल हो गया है। आज जनूबी कोरिया के बुसान में आलमी मीरास से मुतालिक कमेटी के 48वें इजलास के दौरान इसे बाज़ाब्ता शामिल किया गया। आलमी मीरास की सरकर्दा फहरिस्त में भारत की ये 45वीं इमलाक है। नायब सदर जमहूरिया सीपी राधाकृष्णन और वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने सारनाथ को आलमी मीरास की फहरिस्त में शामिल किए जाने पर मसर्रत का इजहार किया है और इसे हर भारतीय के लिए फख्र का एक लम्हा करार दिया है। नायब सदर ने कहा कि सारनाथ अमन, दानिशमंदी और हमदर्दी की एक लाजवाल अलामत रहा है, जिसे भारत के रूहानी और फलसफियाना दाइमी विरसे की अक्कासी होती है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि इसे फहरिस्त में शामिल किया जाना मुल्क की तहजीबी और रूहानी विरासत का जश्न है। सकाफत और सयाहत के वजीर गजेंद्र सिंह शेखावत ने इसे भारतीय सकाफती विरासत के लिए एक अहम लम्हा करार दिया। मुल्क शाम की राजधानी दमिश्क को मशरकी सूबे दैरल जोर से मरबूत करने वाली कौमी शाहरा पर 2 बसों के आज आपस में टकराने के बाद कम अज कम 35 अफराद हलाक और मुतअद्दिद जख्मी हो गए। मकामी मीडिया ने खबर दी है कि सहराई शाहरा पर शहरियों की बस और दाखिली उमूर की वजारत की एक बस के दरमियान टक्कर में तकरीबन 30 अफराद जख्मी हुए हैं। इस हादसे की वजह अभी मालूम नहीं हुई है। भारतीय मौसमियात महकमे ने मध्य महाराष्ट्र और ओडिशा में कल इंतहाई शदीद बारिश के लिए रेड अलर्ट जारी किया है।
مردوں کی کرکٹ میں ہرارے میں 3 میچوں کی سیریز کے دوسرے ٹی ٹوینٹی بین الاقوامی میچ میں بھارت نے میزبان زمبابوے کو 90 رن سے ہرا دیا. بھارت نے زمبابوے کو 220 رن کا بڑا نشانہ دیا تھا لیکن اس کی پوری ٹیم 18 اوور میں محض 229 رن پر آؤٹ ہو گئی.

0: साथ भारतीय टीम ने 3 मैचों की सीरीज 2-0 से जीत ली है। भारत ने T20 के नए कप्तान सुरेश अय्यर की कप्तानी में पहली सीरीज जीती है। आज कनाडा के ओंटारियो में भारतीय स्क्वैश खिलाड़ी अनहत सिंह ने मिस्र की बार्ब समय को 3-1 से हराने के बाद आलमी जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप के खवातीन सिंगल्स के फाइनल में पहुंचकर तारीख रकम की है। इसी मकाम पर अब उनका सामना खिताबी मुकाबले में मिस्र की रुकैया सलीम से होगा। इस मैच के भारतीय वक्त के मुताबिक रात तकरीबन 10:30 बजे शुरू होने का इम्कान है। आखिर में खास खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। मरकजी वजीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है। सीजेपी ने एहतजाज खत्म कर दिया है क्योंकि नई दिल्ली में मरकजी वजरा जेपी नड्डा और डॉ जितेंद्र सिंह के साथ मुजाकरात के बाद उनके मुतालबात को हुकूमत ने मंजूर कर लिया है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी कल आकाशवाणी पर मन की बात प्रोग्राम में अपने ख्याल का इजहार करेंगे। सदर जमहूरियत द्रौपदी मुर्मू ने मोल्डोवा, शिमाली मकदूनिया और रोमानिया का 3 मुल्कों का अपना दौरा मुकम्मल कर लिया है। उत्तर प्रदेश में सारनाथ के कदीम बौद्ध मजहबी मकाम को यूनेस्को की आलमी सकाफती फहरिस्त में शामिल किया गया है। और क्रिकेट में भारत ने हरारे में दूसरे T20 बैन अलावा मैच में मेजबान जिम्बाब्वे को 90 रन से शिकस्त दी। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
1: ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। पेश है प्रोग्राम हेल्थ टिप्स। हेल्थ टिप्स में आज का हमारा मौजू है बेलगिरी के फवाइद। बेलगिरी एक ऐसा गैर मामूली फल है जिसके इस्तेमाल से अनगिनत फवाइद हासिल किए जा सकते हैं। इसका एक नाम बेल पत्थर भी है जबकि अंग्रेजी में बेल फ्रूट और वुड एप्पल, पंजाबी में बिल और सिंधी में काठोरी, बंगला और संस्कृत में इसे बलवा कहते हैं। बेलगिरी का इस्तेमाल बर्स, बवासीर, इसहाल या डायरिया, हैजा, अल्सर, सोजिश, दिल की बीमारियों, निदाम हजम की बहाली, सांस लेने में दुश्वारी के इलाज समेत दीगर बहुत सी बीमारियों में मुफीद है। इस फल से अनीमा, कान और आंखों की खराबी का इलाज भी किया जाता है। बेलगिरी इंसुलिन से भरपूर है जो खून में शक्कर की सतह को कंट्रोल करने के लिए जरूरी है। ये शुगर के मरीजों के लिए किसी बड़ी नेमत से कम नहीं। इस फल का खुश्क पाउडर दायमी इसहाल के इलाज के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कदीम जमाने में इसके खुश्क पाउडर को पतली लकड़ी के साथ मखलूत करके इसे फ्रैक्चर का इलाज करने के लिए टूटी हुई हड्डियों पर लगा दिया जाता था। बेलगिरी अमले तकसीर को रोकने का आमिल है जो गैस्ट्रिक अल्सर को रोकता है। खास तौर पर मादे में गैर मामूली तेजाबियत जो अल्सर का असल सबब बनता है उसको बनने से रोकता है। माहरीन ने तहकीक से साबित किया है कि बेलगिरी से खासी हासिल एंटी माइक्रोबियल ज्वाइंट वायरल और एंटी फंगल की खासियत रखता है। जिस्म में मुख्तलिफ बीमारियों के इलाज में मददगार बनता है और मुतअद्दिद वबाई अमराज से महफूज रखता है। जिसमें विटामिन सी की कमी के बायस कमजोरी, थकावट, हाथ पांव में जख्म बनना, खून में सुर्ख खुलियों की कमी, मसूड़ों की बीमारियों और स्किन के खून का इखराज, इन तमाम खराबियों को जिस बीमारी का नाम दिया जाता है उसे स्कर्वी कहते हैं। बेलगिरी में ऐसे विटामिन की वाफर मकदार मौजूद है जो इन तमाम खराबियों को दूर करता है। बेलगिरी से हासिल रोगन के इस्तेमाल से सांस लेने की दुश्वारियों और खराबियों जैसे दमे के इलाज के लिए इस्तेमाल किया जाता है। शदीद नजला जुकाम, जब नाक और कान बंद हो जाए, इसके रोगन के को सर पर लगाने से फायदा मिलता है। इसका इस्तेमाल इन्फेक्शन का जल्द का इलाज भी होता है। बेलगिरी का इस्तेमाल सोजिश में इंतहाई मुफीद है। जिसमें किसी जगह सोजिश की शिकायत की सूरत में इसे मुतासर जगह पर लगाने से सोजिश दूर हो सकती है। बेलगिरी के फल का जूस और उसको घी की निस्बतन कम मकदार के साथ रोजाना की बुनियाद पर बतौर गजा शामिल रखना दिल की बीमारियों को रोकता है। ये एक पुराना रिवायती तरीका है जिसके इस्तेमाल से दिल पर हमलावर बीमारियों जिसमें दिल का दौरा भी शामिल है इससे बचने का इम्कान बढ़ जाते हैं। कहा जाता है कि बेलगिरी का इस्तेमाल कब्ज कुशा और उसकी बेहतरीन कुदरती दवा है। इसके गूदे में छोटी काले मिर्च और नमक को शामिल करके खाने से आंतों में बनने वाले जहरीले मादे को खत्म कर देता है। बेलगिरी का शरबत भी कब्ज के खात्मे का सबब बनता है। बेलगिरी का इस्तेमाल खून में कोलेस्ट्रॉल की मकदार को काबू रखने में बहुत मुफीद है। इसका बाकायदा इस्तेमाल खून में कोलेस्ट्रॉल की

0: Namaskar and welcome to Market Mantra. Friends, today being a Saturday, we shall be taking your calls on your market related queries. But please do remember that we do not address stock or company specific queries. And you may call us on the numbers, and they are 2331-4444, 2331-0481 and 2371-7106. And if you're calling us from outside Delhi, please do not forget to add 011 as a prefix. To these numbers. Well, I'm your anchor, Lalima Aneja Dang, and with me is my co-anchor, Manoj Pathak.
1: Namaskar, Market Mantra ke prasang mein aapka swagat hai. Aadhe ghante ke is karyakram mein hamesha ki tarah hum desh aur duniya ki chuni hui karobari, aarthik aur share bazaar se sambandhit taza khabron ko lekar hazir hain. Aaj shanivar hai aur aaj ke din apne karyakram mein hum aapko aamantrit kiya karte hain sawal poochne ke liye. आप भी अर्थनीति कारोबार या शेयर बाजार से जुड़ा कोई भी सवाल हमसे पूछ सकते हैं. बस ये ध्यान रखिएगा कि हम किसी कंपनी या शेयर के बारे में कोई खास जानकारी आपको नहीं दे पाएंगे. हमसे इस सवाल कीजिए करने के लिए आप डायल कर सकते हैं 2331-4444, 2331-0481 या फिर 2371-7106. हमारे साथ खबरों पर चर्चा और आपके सवालों का जवाब देने के लिए आज स्टूडियो में आमंत्रित हैं इसके जाने माने आर्थिक मामलों के विश्लेषक शरद कोहली. शरद जी नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत है.
2: नमस्कार मनोज, नमस्कार लालिमा और मार्केट मंत्रा की सभी टीम और श्रोताओं को मेरा अभिवादन.
0: वेलकम.
1: आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं अंग्रेजी में हेडलाइंस से, जिसे लेकर मौजूद हैं लालिमा अनेजा डैंक.
0: थैंक यू मनोज जी. लेट्स बिगिन विद द हेडलाइंस. बेंचमार्क डोमेस्टिक इंडेक्सेस रजिस्टर्ड स्टीप वीकली लॉसेस अमिड जियोपॉलिटिकल कंसर्न्स. यूएस स्टॉक मार्केट लॉग वीकली डिक्लाइन. And global crude oil prices extend rising streak this week.
1: भू राजनीतिक तनावों के बीच कारोबारी सप्ताह में घरेलू शेयर बाजार घाटे के साथ हुए बंद. अमरीकी शेयर बाजार भी साप्ताहिक आधार पर नुकसान में रहे और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में कच्चे तेल के दाम इस सप्ताह भी बहुत में रहे.

0: Well, before we move any further, here's a disclaimer for all our listener friends. The views and opinions expressed by experts in this program are their own and not those of Akashvani. Akashvani advises its listeners to do their own research or consult a registered professional before taking any investment decision. And we further advise all our listeners to exercise due diligence and rely on their own judgment for taking any financial decision. Right.
1: आइए खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। सबसे पहले घरेलू शेयर बाजार। दुनिया भर में बढ़ते भू राजनीतिक तनाव और कच्चे तेल के दाम बढ़ने से अपने घरेलू शेयर बाजार में इस सप्ताह को मिलाकर अच्छी खासी गिरावट हुई। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स कारोबारी सप्ताह के अंत में साप्ताहिक आधार पर ये 2091 अंक यानी 2.7% नुकसान के साथ 76,060 पर बंद हुआ। उधर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 50 567 अंक यानी 2.3% नीचे आकर 30,767 दर्ज हुआ। इस दौरान निजी क्षेत्र के बैंक और रियल्टी सेक्टर से जुड़ी कंपनियों को अधिक नुकसान उठाना पड़ा, जबकि लाभ उठाने वाली कंपनियों में एफएमसीजी और ऑटो सेक्टर ने बेहतर प्रदर्शन किया। विस्तारित बाजार की ओर चलें तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का मिड कैप 100 इंडेक्स 1.3% नीचे आकर बंद हुआ। उधर निफ्टी स्मॉल कैप 100 इंडेक्स में लगभग 2.2% की गिरावट हुई। रुपए की स्थिति पर ध्यान दें तो अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में साप्ताहिक आधार पर $1 की तुलना में रुपया 28 पैसे कमजोर हुआ और 96.56 रूपये के स्तर पर बंद हुआ। यहां पर हम कारोबारी हालात पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहेंगे और कुल मिलाकर घरेलू शेयर बाजार का प्रदर्शन किस रूप में रहा, क्या बयान करते हैं आखिर?
2: मनोज, बहुत कठिन है डगर पनघट की। मुझे पुरानी एक लाइन याद आ रही है क्योंकि बार बार जब जब बाजार निफ्टी की बात करते हैं 24,000 से ऊपर जाने की टिकने की कोशिश करता है तभी भू राजनीतिक तौर पर कोई ना कोई ऐसी खबर आ जाती है और अमेरिका और ईरान का युद्ध, क्रूड ऑयल मैं समझता हूं विलेन रहा है, इसमें $100 छुआ, उसके बाद थोड़ी सी करेक्शन कल शाम को देखी गई $95। तो मुझे लग रहा है कि और इसको हम कॉरोबरेट कैसे करते हैं कि आप देखें कि जो विदेशी संस्थागत निवेशक हैं बीच में जुलाई में वो थोड़े पॉजिटिव हुए थे, पर जैसे ही कच्चे तेल के दाम ऊपर जाते हैं तो वो फिर से बिकवाली पर आ जाते हैं। तो मुझे लग रहा है ये जो कच्चा तेल इस बाजार को और ऊपर जाने के बीच में एक दीवार की तरह खड़ा हुआ है क्योंकि उससे कॉर्पोरेट कॉस्ट पड़ती है।
1: यानी कुल मिलाकर यदि हम सेक्टर वाइज देखना शुरू करें और यदि हर सेक्टर पर ध्यान दें तो इस अकेले नुकसान के बीच भी ऑटो सेक्टर का अपेक्षाकृत थोड़ा बेहतर प्रदर्शन रहा है। हाँ, ऑटो सेक्टर का भविष्य कैसा लग रहा है?
2: कह सकते हैं, हालांकि सेक्टर रोटेशन मनोज लगातार मार्केट में होता रहता है। अभी आपने आईटी सेक्टर में काफी उथल पुथल देखा। ऑटो सेक्टर का अगर भविष्य पूछे तो मुझे लगता है वो कंपनियां जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे थोड़ा ज्यादा स्ट्रेटेजिकली फोकस कर रही हैं उनका भविष्य मुझे उज्जवल दिखता है क्योंकि यहां से पेट्रोल डीजल के दाम मुझे लगता है लोगों को इस समय परेशान कर सकते हैं आने वाले, क्योंकि क्रूड ऑयल की कीमत यदि बहुत बढ़ गई और अभी पेट्रोलियम माननीय मंत्री जी का बयान आया था कि फिर एक बार पेट्रोल में डीजल में गैस में बहुत बड़ा लॉस शुरू हो गया है, तो जब ज्यादा दिन तक टिका रहा तो फिर कोई कठिन निर्णय लेना पड़ सकता है, ये नहीं कि लेंगे। तो मुझे लग रहा है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स वाली कंपनी पे ऑटो सेक्टर की बात करें तो ज्यादा फोकस रखना चाहूंगा।
0: And FMCG, sometimes they, for some time they were not doing well, but now our weekly report says they are doing fine.
2: I think, Lalima, FMCG in any crisis situation is always a good bet in the long run, because we saw during COVID, and anytime when the world sees a crisis, it's like I call it as a safe haven sector, because that is something which people tend to buy, and although the inflation also hits you when the crude oil prices go, but then you cannot do without FMCG. I mean, those are the goods which you need on an everyday basis. So I feel that FMCG is a go-to sector in the times of crisis.
0: And a safe bet.
2: Absolutely.
0: All right. We are now joined by Ram Kishan from Ghaziabad and let's see what he has to ask. Ji, Ram Kishan ji, apna sawal poochiye.
3: Namaste ji, main Ghaziabad se Ram Kishan bol raha hu.
0: Ji.
3: मैंने एग्जाम्पल लिया हुआ है, रिटर्न में बढ़ता नहीं है, मेरी जो इनकम है इंटरेस्ट है 2,90,000 होती है साल, तो आए दिन की कीमत जो है 3,00,000 से 4,00,000 है।
2: चलिए, आपका रामकिशन जी जो शुरू का हिस्सा था वो तो पूरी तरह से स्पष्ट नहीं था, आप हमारे बहुत वरिष्ठ और आदरणीय नागरिक आवाज से लग रहे हैं। जो नए रजीम में जो सीमा है वो 4 लाख की है और पुराने रजीम में सीमा जो है वो 2.5 लाख की, आयकर सीमा का बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट का जानना चाहते हैं। तो अभी जो नया बजट आया था आपको याद होगा उसमें 4 लाख से अब शुरू होता है और जो पुराने रजीम में अभी भी वो 2.5 लाख ही है, तो मैं उम्मीद करता हूं उसी के अनुसार आप कैलकुलेट करेंगे। पर सीनियर सिटीजन के लिए, वरिष्ठ नागरिकों के लिए कोई अतिरिक्त बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट नहीं है, ये भी मैं रामकिशन जी को बताना चाहूंगा।
1: तो आइए आपको ले चले बेंगलुरु, हमारे साथ फोनलाइन पर है एनआर प्रसाद। प्रसाद साहब स्वागत, आपका सवाल पूछिए।
4: हाय, गुड इवनिंग मार्केट मंत्र, दिस इज एनआर प्रसाद फ्रॉम बेंगलोर। हेलो लालिमा जी, हेलो मनोज जी,
0: हेलो प्रसाद जी।

0: the sector. And before that, I just want to say thank you to you, your advice maybe a couple of months back on the annual SIP on stock when it comes down buying and when it goes up selling. Really, it turned out to be very profitable for me. That a separate thank you to you. Thank you, the other two questions.
1: Thank you for the answer. I'm glad, first of all, that the advice given by Market Mantra turned out to be good. And I wish, you know, there was a facility, Lalima and Manoj, to send a laddu through the radio, which is unfortunately not there at this point of time, but we are very happy that itself is a laddu for us. Mm. Your first question is regarding the ITR error. So you have a provision, Mr. Prasad, to revise your return. If there is an error which happens either on your part or it happens because of the system or something which you observe, which is clearly visible, you can always go and revise the return. So, and you can revise it any number of times, by the way, and you must be aware now you can revise up to 31st December without a fee. You can even revise by 31st of March. There is a small fee, 1,000, 5,000, which is now under the new provisions. So if there is an error, please do not, because then otherwise your return becomes defective. And your second question was regarding the tariff announcement by President Trump on the generic drugs coming from India. Now, you have to appreciate the fact that as far as America is concerned, I think after 2 years, he says we're going to levy 100% tariffs. So 2 years for me, as far as President Trump is concerned, is a very long time, because we find decisions being switched to two to three times a day sometimes. And moreover, I think Trump regime in 2028 will be almost at its fag end. And the American Constitution says that you can't have a president for more than two terms. So, Mr. Prasad, I really don't think there should be any matter of concern. So the bullish view on pharma sector basically remains there. I think the order book of the pharma companies which are supplying generic drugs to America, those order books need to be seen, that if they are doing well. I don't see any concern for these announcements after 2 years, because we've seen decisions being you know turned over by evening or next morning. I'm sure you too must have observed. So I continue to remain bullish on Indian pharma sector. India is global world's pharmacy, I would say. So I think India is going to continue domination in that particular area, which should keep the investors excited.
2: All right, we are joined by Kavita Arya from Noida. Yes, Kavita ji, please ask a question. Yeah.
3: Sir, namaste.
1: Namaste.
3: सर मेरे को जानना था कि मैं मार्केट में काम करती हूँ, तो मुझे कौन सा आईटीआर भरना चाहिए और क्या जो भी इंट्राडे शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म जो भी जानकारी है वो कहाँ से प्राप्त होगी?
1: बहुत अच्छा सवाल है, और हम लालिमा और मनोज, अभी आज 25 जुलाई है, 31 जुलाई आखिरी तारीख है आयकर विवरणी दाखिल करने की. कविता, अगर आप मार्केट में काम करते हैं और अगर आप F&O में काम करते हैं, ध्यान से सुनिएगा इसको, तो फिर आप ये बिजनेस इनकम इसको दिखाया जाता है. आपको पता होगा इनकम के 5 स्रोत होते हैं, सैलरी, बिजनेस, अदर सोर्सेज, हाउस प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन्स. तो फिर आपको बिजनेस रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी, बकायदा खाते भी रखने पड़ते हैं, डिपेंड करता है फिर टर्नओवर कितनी है, उसमें फिर टैक्स ऑडिट का प्रोविजन भी होता है. और अगर आप मार्केट में डिलीवरी बेसिस पे काम करते हैं, यानी कि आप एक निवेशक की तरह काम करते हैं, आप डिलीवरी लेते हैं, तो आपको फिर शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है. तो जो पहला वाला मैंने बताया, अगर आप बिजनेस में काम करते हैं तो आपको आईटीआर 3 आपके लिए लगेगा. अगर आप कैपिटल गेन यानी कि डिलीवरी लेके काम करते हैं, और एक इसमें इंटरेस्टिंग बात जो मुझे लगता है बहुत सारे लोगों के काम की होगी, कि मान लीजिए आप उसको एज अ बिजनेस दिखाते हैं और कल को आप उसको स्विच कर देते हैं, नहीं मैं तो बिजनेस नहीं, मैं तो इसको डिलीवरी की तरह, पहले F&O की तो बात अलग है, पर अगर आप डिलीवरी में भी दो तरीके से किया जा सकता है, कैपिटल गेन में या बिजनेस की तरह. एक दफे आपने जो सिलेक्ट कर लिया उसको फिर आप स्विच नहीं कर सकते हैं, ये कविता इस पर ध्यान दीजिएगा. तो आप अगर इसको कैपिटल गेन में ले रहे हैं तो आईटीआर 2 होगा, अगर बिजनेस की तरह ले रहे हैं तो आईटीआर 3 होगा. अब ये कविता डिपेंड करेगा कि आपका जो मार्केट में जो काम है वो किस प्रकार का है, उसकी वॉल्यूम कितनी है, और आपका इंटेंशन क्या है, आपका इंटेंशन एज एन इन्वेस्टर है या आपका इंटेंशन एज ए ट्रेडर है. जी,
4: दिल्ली से हमारे साथ जगन लाल जी हैं, स्वागत है आपका, सवाल पूछिए.
5: फोन मत काटना, मैं रेडियो पर नहीं फोन पे ही हूँ.
1: जी हाँ जी हाँ
5: जी, मेरा एक्सपर्ट से ये सवाल है, मैंने अभी आईटीआर 2 भरी थी
1: जी,
5: तो उसमें कैपिटल गेन फ्रॉम लैंड हाउस प्रॉपर्टी
1: जी,
5: मैंने 2013-14 में एक प्लॉट लिया था
1: जी,
5: और अभी 2025 में अक्टूबर में बेचा
1: जी.
5: तो जब मैंने लिया था 46 लाख का
1: जी,
5: बैंक से कुछ लोन के अगेंस्ट डिफॉल्टर का ऑप्शन में
1: जी,
5: और अभी बिका है वो 38,25,000 का
1: जी,
5: मतलब वो 2013 में लिया था, उस टाइम प्रॉपर्टी रेट चढ़े हुए थे, अब वो होलो हो गया
1: जी.
5: अच्छा, एनी हाउ जब मैंने उसमें फिगर डाली तो उसने इंडेक्सेशन से उसको 40 लाख का तो

0: 76 लाख लेकिन जब मैं लॉस्ट कैलकुलेट लॉस्ट का कॉलम आया तो उसने ओनली 46 में से वो 38 माइनस करके वो 8 लाख जो है वो दिखाया
1: जी।
0: कोई क्लॉज कोई चेंज कर दिया है या क्या है
2: या? मैं समझ गया इनका सवाल लालिमा। देखिए इनका नाम जगनाल जी है। तो जगनाल जी देखिए इसमें दो ऑप्शन होते हैं जो लोग प्रॉपर्टी बेचते हैं कैपिटल गेन में। एक आपके पास इंडेक्सेशन का एडवांटेज होता है, तो आपने जो क्या किया जब आपने कैलकुलेट किया तो आपने इंडेक्सेशन चूज कर लिया और उसने जब कैलकुलेशन करके बताया तो उसने विदाउट इंडेक्सेशन लेके आपका सीधा सीधा 46 लाख या इनका जो भी था उसमें से 38 लेस करके 7 लाख कर दिया। तो आप कृपया इसको एक बार और ITR 2 में चेक करिए कि जो आप ऑप्शन सेलेक्ट कर रहे हैं आप इंडेक्सेशन ऑप्शन सेलेक्ट करिए और उसको जिसमें आप लॉस भर रहे हैं वो भी इंडेक्सेशन में ही भरिए। ये दो आइटम मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके भरते टाइम मिक्स हो गया है, तो इसको आप एक दफे चेक करिए। लॉस तो आपका दोनों ही हालात में आ रहा है उसमें यह है कि उसमें, और मैं आपको ये बता दूं इंडेक्सेशन में आप कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन तो बढ़ा सकते हैं पर इंडेक्सेशन के माध्यम से आप लॉस क्लेम करना चाहते हैं तो इसपे जो कैलकुलेशन है वो उसको ध्यान से फॉलो करिए। मैं बताना चाहूंगा सभी श्रोताओं को मनोज और लालिमा के जो आयकर की विवरणी है जो इनकम टैक्स रिटर्न है उसमें बड़े सिस्टमैटिक तरीके से कैलकुलेशन दी हुई है। तो जगनाल जी चेक करिए, अगर आपको फिर भी कठिनाई आ रही है तो मैं सलाह दूंगा आपके इर्द गिर्द अगर कोई एक्सपर्ट है, क्योंकि हम रेडियो पर आई विश के हम सॉल्व कर सकते पर रेडियो पर क्योंकि कैलकुलेशन हम तो दिखा नहीं सकते तो कोई इर्द गिर्द आपके एक्सपर्ट है आप उसकी सहायता ले सकते हैं। मुझे उम्मीद है जो मैंने बताया उससे आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा।
3: Right, let's take a look at the US markets now. US indices displayed mixed trend yesterday. The Dow Jones Industrial Average rose nearly 0.5%. S&P 500 closed marginally higher, while the Nasdaq Composite Index shed over 0.6%. All three major indices posted weekly losses as investors sold chip stocks on worries about massive spending on artificial intelligence. For the week, the Nasdaq slid 2.2% and the S&P 500 declined 0.6%, with both indices posting their second straight weekly losses. Meanwhile, the Dow fell 0.4%, marking its third consecutive weekly decline. And now we are joined by Vishal from Delhi. Yes, Vishal, please ask a question.
4: स्टॉक नहीं रखा है उसका अभी रिजल्ट नहीं आया तो उसका रिजल्ट पर मेरे को वेट करना चाहिए या सेल कर दूं?
2: अच्छा ये तो बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है क्योंकि आईटी में काफी रोलर कोस्टर राइड एक तरह से हो रही है, कभी उथल कभी ऊपर कभी नीचे। कुछ आईटी कंपनीज के नतीजे अच्छे आए हैं, कुछ के तसल्ली बख्श आए हैं सेटिस्फैक्ट्री आए हैं और कुछ एक के बहुत अच्छे नहीं भी आए। अब देखिए विशाल जी ये तो निर्भर करता है कि कौन सी कंपनी, क्योंकि हम यहां कंपनी स्पेसिफिक तो बात करते नहीं है तो अब बड़ी दुविधा है कि आप पूछ रहे हैं कि उसके रिजल्ट आए नहीं, मालूम नहीं उसके रिजल्ट कैसे आए और जब तक हम कंपनी का नाम ना जाने और कंपनी का नाम हम आपको लेने नहीं देंगे ना हम उस पर चर्चा करेंगे। तो इसलिए मैं आपको सलाह यह दूंगा कि आप कंपनी के जो पिछला रिकॉर्ड है उसके आधार पर आप एक एक डिसीजन ले सकते हैं कि आएगा। और मैं एक मजेदार बताऊं शेयर्स के बारे में बताऊं कि कई दफे क्या होता है कि कंपनी के रिजल्ट अच्छा आया उसके बाद उसमें एकदम बिकवाली आती है और उसके रेट नीचे चले जाते हैं तो ऐसा भी होता है। तो इसलिए विशाल जी अब ये तो क्योंकि मामला यहां सस्पेंस का है तो इसमें आप इस कंपनी के पिछले रिकॉर्ड देखें और कोशिश करें ये जो क्वार्टरली अपने रिजल्ट फाइल करते थे स्टॉक एक्सचेंज में वो रिजल्ट्स कैसे रहे हैं ये भी आप देखने की कोशिश करें, हो सकता है उससे आपका कुछ दिशा मिल जाए। बाकी कंपनी के बिना ये तो हमारे लिए बहुत कठिन हो जाएगा ये बताना।
5: आइए आपको ले चले गाजियाबाद, हमारे साथ फोनलाइन पर है अमित। अमित जी स्वागत है आपका, सवाल पूछिए।
6: गुड इवनिंग मार्केट मंत्रा, तो गुड इवनिंग कॉलेज सर। तो आई फाइंड वन अपॉर्चुनिटी टू क्लियर माई वन कंफ्यूजन रिगार्डिंग फाइलिंग ऑन
2: ICR।
6: क्वेश्चन इज की सर मेरे कुछ शेयर्स हैं तो बाई बैक कर लिए थे कंपनी में, तो आफ्टर बाई बैक आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड की वेदर दिस इज रिलेटेड टू कैपिटल गेन और नॉन कैपिटल गेन, क्योंकि AIF में वो जो AI स्टेटमेंट है उसमें वो एज अ डिविडेंड इनकम दिखा रहा है तो कंपनी ने बाई चेक करा
2: जी।
6: लेकिन मेरे जो ब्रोकर साइट है उसमें वो दिखा रहा है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन विदाउट एनी सेल वैल्यू कमिंग है जीरो बट लेकिन परचेज वैल्यू वो दिखा रहा है
2: जी।
6: तो आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कि ये मेरा कैपिटल गेन हो या सिंपल डिविडेंड इनकम होगी, सो दैट अकॉर्डिंगली आई कैन फाइल माय आईटीआर 1 और आईटीआर 2।
2: सो अमित एज पर द न्यू प्रोविजंस दिस इज बायबैक इज कंसिडर्ड एज डिविडेंड्स नाउ और जो कैपिटल वैल्यू है यू कैन रिड्यूस योर परचेज प्राइस फ्रॉम दैट। सो आई थिंक यू विल हैव टू रिलाई मोर ऑन AIS, व्हाट AIS इज शोइंग इज करेक्ट। जो ब्रोकर्स नोट दिखा रहा है हो सकता है

0: developer's note might be showing as per the old provisions. As per the new provision, buyback is treated as dividend, and you can reduce the capital value for the capital gain loss or if there is anything of that sort happening. So please, please follow your AIS, because AIS may, to the best of my knowledge, Lalima and Manoj, it has been updated now. Mm-hmm. So the updated provisions are there as per the amendments made by the budget and all that. So I think you follow AIS, and you can also inform this to your broker that आपके उसमें ऐसा आ रहा है तो उसको आप ठीक करिए
1: जी। तो ये खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। एनटीपीसी लिमिटेड ने चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही के वित्तीय नतीजे जारी कर दिए हैं। कल जारी वक्तव्य में कहा गया है कि संचालन से कंपनी का समेकित राजस्व वार्षिक आधार पर 7.8% बढ़कर 50,741 करोड़ रुपए पर पहुंच गया। इस दौरान एनटीपीसी का समेकित शुद्ध लाभ 12.9% बढ़कर 6,896 करोड़ रुपए दर्ज हुआ। और अब हमारे साथ ऑनलाइन पर धैर्य के साथ बने हुए हैं दिल्ली से अमित झा। अमित जी स्वागत है आपका, सवाल पूछिए।
2: नमस्कार सभी को। हेलो सर
1: जी, नमस्ते।
2: सर कोली सर, मेरा प्रश्न ये है सर
1: जी
2: कि सरकार जो रिन्यूएबल एनर्जी पे जैसे मांग को बढ़ावा देने के लिए बात कर रही है सर, लेकिन जो सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा या हाइड्रो पावर जो भी नवीकरणीय ऊर्जा है उसमें एक सर दिक्कत ये आती है, जो उसकी इक्विपमेंट होती है ना, जो सेटअप बैठाने के लिए सर
1: जी,
2: उसकी जो क्या कहते हैं मशीनरी है वो महंगी पड़ती है। वो अभी भी हम उसको हम आयात ही करते हैं, यानी कि जो ढांचा बैठाने के लिए हमें चाहिए होता है सर, वो हम अभी भी विदेश से मंगाते हैं। और दूसरी चीज सर, कभी किसी कंपनी का, अगर ए नाम की कोई कंपनी है, बी नाम की कंपनी का ए में अगर मर्ज हो जाता है, तो किस हिसाब से ये ए नाम की कंपनी को फायदा करेगा मर्ज होने के, मतलब क्या वजह है, क्या इसके फायदे नुकसान है? धन्यवाद सर।
0: अमित, मुझे याद है अमित ने कुछ पिछले हफ्ते, उससे पिछले हफ्ते भी ग्रीन एनर्जी से काफी कंसर्न रहते हैं, इनके अक्सर सवाल ग्रीन एनर्जी से संबंधित होते हैं। तो इम्पोर्टेड इक्विपमेंट उसमें अमित जा है, पर अमित देखिए, पर धीरे धीरे कर ये सस्ता हो रहा है। इस पर टेक्नोलॉजी में काफी काम हो रहा है, रिसर्च हो रही है। हम सोलर सेल्स की बात करें, हम विंड एनर्जी की बात करें, हम बायोफ्यूल्स की बात करें, हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बात करें, तो धीरे धीरे करके हम इवॉल्व कर रहे हैं। अमित, पहले के मुकाबले अब बहुत सस्ता है, कुछ इक्विपमेंट अभी भी हम इम्पोर्ट कर रहे हैं, भरसक प्रयास चल रहे हैं इसको भारत में ही लाने का और भारत में ही करने का। दूसरा, आपने कंपनी मर्ज करने के बहुत सारे कारण होते हैं। कई बार इसको हम अंग्रेजी में सिनर्जिस्टिक एडवांटेजेस कहते हैं, जैसे एक कंपनी के पास कुछ एक स्ट्रेंथ है, दूसरी कंपनी के पास दूसरी स्ट्रेंथ है, और दोनों मिल जाए तो एक और एक 11 हो जाते हैं। तो एक और एक 11 के कॉन्सेप्ट पे मर्जर किया जाता है, और एक दूसरे के रिसोर्सेस को एक करकर और आगे बढ़ने की मुहिम होती है। उसमें फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज दिखाई देती है, ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज ज्यादा दिखाई देती है। बहुत सारे कारण होते हैं मर्जर के अमित। अब कोई मर्जर अब की बार आएगा तो फिर हम आपसे उसको स्पेसिफिकली बात करेंगे जी।
3: जॉइंड बाय प्रेमजीत फ्रॉम दिल्ली। यस प्रेमजीत जी, प्लीज आस्क योर क्वेश्चन।
4: नमस्कार पूरे एंटायर टीम को। कोहली साहब, मैं आपका बहुत बड़ा शिष्य हूँ, आपको प्रणाम।
0: मेरा भी प्रणाम सर।
4: सर मेरा सवाल है, मैं सी फेयर हूँ सर, मैं नाविक हूँ, जो विदेशों में जहाजों पे काम करता हूँ, जिन पे आजकल डिस्प्यूटेड डिस्ट्रक्शन चल रहा है
0: जी, जी।
4: सर मेरा प्रश्न ये है कि हम लोग को सर अलॉटमेंट होता है सर यूएसडी में या यूरो में, एनआरडी अकाउंट में, तो हम जो पैसा कमाते हैं उस पर क्या यहाँ की इंडियन टैक्स रीजन में कोई प्रोविजन है, कोई अलग सा क्लाउज है? क्योंकि हम लोग तो एग्जेम्प्टेड है सर, सर लॉ बेहतर जानते हैं आपसे, बेहतर कौन जान सकता है
0: जी। जी प्रेमजीत, आपका आपका सवाल समझ में आ गया। देखिए, आप सी फेयरर हैं, और अगर आप भारत से बाहर रहते हैं 180 दिन, तो ऐसे हालात में फिर आप एनआरआई हो जाते हैं। तो एनआरआई की जो टैक्सेबल इनकम भारत में जो इनकम है वही टैक्सेबल है, विदेश में जो इनकम हो रही है वो भारत में टैक्सेबल नहीं है। इस पैसे को निवेश करके जब आप भारत से कमाते हैं, मान लीजिए आपने कोई फिक्स डिपॉजिट किया, म्यूचुअल फंड्स में कुछ लिया, कुछ भी आपने निवेश किया, वो फिर प्रेमजीत जी टैक्सेबल हो जाती है। तो जो आपकी डॉलर्स में इनकम आ रही है, विदेशी मुद्रा में आ रही है, उस दौरान जब आप भारत से बाहर हैं, तो इसमें आपको यह देखना पड़ेगा कि आप एनआरआई हैं कि नहीं। उसके लिए प्रोविजंस हैं आयकर अधिनियम के अंदर, जिसको हम नॉन रेजिडेंट इंडियन जब बोलते हैं, तो 180 दिन अगर आप भारत से बाहर रहे हैं तो आप उस साल में एनआरआई हो जाते हैं। उसमें भारत में आपकी सिर्फ भारतीय इनकम टैक्सेबल होगी, विदेशी इनकम टैक्सेबल नहीं होगी। अगर आपका दोनों जगह टैक्स लग गया है, मान लीजिए आप जिस देश में है उस देश में लग गया, सी फेयरर्स को यह बड़ी प्रॉब्लम आती है, बड़ी इंटरेस्टिंग होती है, क्योंकि आप जब पानी पर हैं तो कुछ पीरियड के लिए आप किसी और पानी में चले गए, फिर किसी और देश के। अच्छा, मरीन रूल्स भी होते हैं कि आप किस देश का ये पानी है, तो बड़ी ही कठिन परिस्थिति कई बार हो जाती है। तो आसान भाषा में आप ऐसे रखिए कि अगर आप एनआरआई है बाय इनकम टैक्स लॉ, तो उसमें

0: आपकी वो इनकम भारत में टैक्सेबल नहीं होगी। केवल भारत में निवेश किया हुआ पैसा या भारत में कोई बिजनेस है, भारत में कोई पार्ट टाइम जॉब है, वही सिर्फ टैक्सेबल होगा।
1: दिल्ली से ही हमारे साथ फॉरलाइन पर प्रकाश। प्रकाश जी स्वागत, आपका सवाल पूछिए।
2: जी मार्केट मंत्र टीम को नमस्कार, कोहली साहब को नमस्कार।
0: नमस्कार प्रकाश जी,
2: मेरा क्वेश्चन आईटीआर के बारे में है। ये जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का तो आईटीआर 1 में है प्रोविजन है, जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या लॉस होता है क्या वो भी हम आईटीआर 1 में कोई उसमें कोई उल्लेख है नहीं उसमें उसका, तो उसके लिए आईटीआर 2 भरना पड़ता है जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो या लॉस हो?
0: जी उसके लिए फिर आपको आईटीआर 2, बिल्कुल प्रकाश जी आपने ठीक पकड़ा है, अगर आपका सैलरी इनकम है और थोड़ा सा कैपिटल गेन है और आपके पास एक हाउस प्रॉपर्टी है तो फिर आप आईटीआर 1 थोड़ा सा सरल है, उसका नाम भी सरल होता है, तो उसका प्रयोग कर सकते हैं। पर अगर आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, लॉस है जिसको आप सेट ऑफ करना चाहते हैं, कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको बिल्कुल प्रकाश जी आईटीआर 2 का इस्तेमाल करना चाहिए। बहुत अच्छी आपने रिसर्च और जानकारी हासिल करी है, आपकी जानकारी बहुत दुरुस्त है, इस बात को मैं सत्यापित कर सकता हूं।
3: Let's take a look at another story now. India has been placed in the lower tier of additional tariffs under the final measures under Section 301 of the US Trade Act, providing a relative advantage to Indian exports in key sectors. The Commerce and Industry Ministry today informed that the United States Trade Representative has imposed an additional 10% duty on imports from India, which is a reduction from the 12.5% duty initially proposed on the 2nd of June this year. The ministry noted that India's exports to the United States, which currently attract zero additional duties such as general pharmaceuticals, smartphones and certain other specified products, continue to remain outside the scope of the additional 10% duty. Further, products already covered under Section 232 measures, including steel, aluminium and auto parts, are also not subject to the additional 10% duty.
1: आपको समझना चाहेंगे कुल मिलाकर ये आंकड़े क्या कह रहे हैं, सरल लोगों की भाषा में ये हमारे लिए अच्छी खबर है या थोड़ी चिंता?
0: कुछ मिली जुली सी मैं कहूंगा, क्योंकि सेक्शन 301B है यूएस ट्रेड एक्ट 1974 का, जिसके अंतर्गत हमारे ऊपर ये ड्यूटी लगाई गई है, और मुझे लगता है कि और जिस कारण से लगाई गई है वो कारण की वजह से मैंने बोला मिला जुला है, क्योंकि जबरन मजदूरी वगैरह इस प्रकार के कि भारत कुछ ऐसा रॉ मटेरियल चीन से मंगाता है जिसमें जबरन मजदूरी होती है, अब मिला जुला सा मैं कहूंगा। हालांकि बाकी कुछ देशों के मुकाबले थोड़ा सा हमारे ऊपर कम लगा है, बाकी देशों पर 12.5% लगा है, और 70% तो हमारे वैसे ही 70% इसमें कवर होते हैं, बाकी तो हमारे वैसे ही एग्जाम कैटेगरी जैसा कि अभी लालिमा ने पढ़ा उसमें मोबाइल फोन्स हैं, जेनरिक ड्रग्स वगैरह हैं जिनपे 0% है, मिला जुला सा मैं इसको कहूंगा।
1: आइए चले कोलकाता, हमारे साथ हैं डीआर आचार्य, स्वागत आपका, सवाल पूछिए।
4: नमस्कार सर।
1: नमस्ते
4: सर, हम एनपीएस में और थोड़ा पैसा लगाना चाहते हैं, अभी जो प्रॉब्लम चल रहा है लगाना ठीक होगा कि नहीं?
0: आप शेयर्स में लगाना चाहते हैं
4: तो एनपीएस
0: में लगाना, नहीं एनपीएस में तो बहुत अच्छा विचार है आचार्य जी, आप उसमें लगा सकते हैं, आप अकाउंट को ऑनलाइन खुलवा सकते हैं, और एनपीएस में जो लगाते हैं उनकी जानकारी के लिए बता दूं कि एनपीएस बहुत सारे लोग नहीं जानते कि एनपीएस का जो इन्वेस्टमेंट स्ट्रक्चर है वो आप चूज कर सकते हैं, आप सिलेक्ट खुद ही सिलेक्ट कर सकते हैं कि एनपीएस में आप इक्विटी का ज्यादा कंपोनेंट चाहते हैं कि आप डेट का ज्यादा चाहते हैं, आप फिक्स रिटर्न इन्वेस्टमेंट का ज्यादा चाहते हैं, तो जिस हिसाब से आपकी आचार्य जी रिस्क कैपिटाइट है, उसको हिंदी में हम कहेंगे जोखिम उठाने की क्षमता है, उसके अनुसार आप उस मिक्स को चूज कर सकते हैं। एनपीएस बहुत अच्छा है और लंबे वक्त के लिए आप नजरिया रखिए और मुझे लगता है आपको आगे कारगर सिद्ध होगा।
3: Right now, let's take a look at the oil prices. Well, global crude oil prices continued their upward momentum this week amid supply risks linked to West Asia conflict and disruptions to Red Sea shipping routes. During the week at the Intercontinental Exchange, Brent crude September futures surged more than 9.8% to settle at $96.78 per barrel. West Texas Intermediate crude September futures jumped 9.2% to end at $89.31.
1: श्रोताओं, आपने बड़े उत्साह के साथ इस कार्यक्रम में भाग लिया, इसके लिए अपनी टीम की ओर से हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे, और शरद जी आपने हमारे साथ चर्चा में और श्रोताओं के सवालों का जितना बढ़िया जवाब दिया उसके लिए श्रोताओं की ओर से हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे।
0: माई प्लेजर, थैंक यू सो मच।
3: थैंक यू शरद जी वंस अगेन। एंड फ्रेंड्स, बिफोर वी क्लोज, हियर्स अ रिमाइंडर ऑफ द हेडलाइंस। बेंचमार्क डोमेस्टिक इंडिसेस रजिस्टर स्टीप वीकली लॉसेस amid geopolitical concerns. U.S. stock markets log weekly decline, and global crude oil prices extend rising streak.

0: last week. Well, friends, that's all we have for you in this edition of Market Mantra. This is myself, Lalima Aneja Dang, and my co-anchor, Manoj Pathak, signing off. So, from all of us here, namaskar.
1: इस कार्यक्रम में विशेषज्ञों द्वारा विचार उनके अपने हैं। आकाशवाणी अपने श्रोताओं को सलाह देता है कि निवेश का निर्णय करने से पहले स्वयं रिसर्च करें या किसी पंजीकृत सलाहकार से राय लें।
2: You are listening to a repeat broadcast of today's Market Mantra program, originally aired at 6:30 PM.
3: सुनिए, अभी आप सुन रहे थे प्रोग्राम मार्केट मंत्रा। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। पेश है आपका पसंदीदा फरमाइशी फिल्मी नगमों का प्रोग्राम तामिल इरशाद। सामिन की खिदमत में मेजबान मोहम्मद शाहरुख का आदाब। हाजिर इस प्रोग्राम की पहली पेशकश लता मंगेशकर और मन्ना डे की आवाज में।

में अभी आप सुन रहे थे ये नगमा निरार शैलेंद्र का लिखा हुआ नगमा श्री 420 फिल्म से मुकेश की आवाज में, जिसकी तर्ज बनाई थी शंकर जयकिशन ने। और इस प्रोग्राम की अगली पेशकश मोहम्मद रफी और आशा भोसले की आवाज में, जिसको सुनना चाहे मिलवाकी यूएसए से वर्षा चावड़ा ने। और सुनना चाहते हैं मुकेश शर्मा, गौरव शर्मा, गरिमा शर्मा छत्तीसगढ़ से, और सुनने के ख्वाहिशमंद हैं गंजनवारे से शमसुल कमर राय, शाहिन फातिमा, अदनान खान। सुनना चाहते हैं समीरा खानम, फरीदा शबनम और रईस खातुन उदयपुर से, पाबू गढ़वा पथरिया छत्तीसगढ़ से, नरेन नीतम, कुसुम नीतम सुनने के ख्वाहिशमंद हैं। और सुनना चाहते हैं मीरा सिंह, ज्योति सिंह, अनामिका सिंह बिहार से, और सुनने के ख्वाहिशमंद हैं दिलीप रामेकर, अक्षय रामेकर, अक्षय रामेकर रात गांव के अमरावती से, अपना महाराष्ट्र से गणन कुंभर, पद्मावती कुंभर और मधुरा सुनने के ख्वाहिशमंद हैं, मोहम्मद कलीम नकवी, नाज बीबी फातिमा शेख रेलवे रोड गंजवारा से सुनना चाहते हैं, छिपकलोनी खंडवा से मोहम्मद यूनिस खत्री, सादिक खत्री, अयुब खत्री सुनने के ख्वाहिशमंद हैं। और सुनना चाहते हैं कृष्ण बाठे, संदीप बाठे, अमूल्य बाठे महाराष्ट्र से, ऊपरकोट मोहल्ला चुगनट्टी बुलंदशहर सुनने के ख्वाहिशमंद हैं, सईद अब्बासी, निकतरवीन अब्बासी, शाहनवाज सरफराज अब्बासी, और गेड़ी झारखंड से सुनना चाहते हैं मोहम्मद यासिन अंजान, साइमन नवाज, हसन नवाज, और सुनने के ख्वाहिशमंद हैं गंगनवारा से आफ्ताब अहमद अंसारी, रियाज अहमद अंसारी, अनवर मास्टर, और सुनना चाहते हैं रेणु देवी शर्मा, अरुण कुमार शर्मा और राहुल कुमार शर्मा नेपाल से, राहुल मनवर, सल्ला मनवर और बेबी प्रियांशी सुनना चाहते हैं यवतमाल से, और सुनने की ख्वाहिशमंद हैं

अशोक दले, सविता दले, अनिकेत दले, श्रीरामपुर से, और बिहारी कॉलोनी को से दिल्ली से सुनना चाहते हैं तुलसी मस्किन, चैतन्य मस्किन और रचिता मस्किन, और खंडवा से सुनने की ख्वाहिशमंद है संजय पंचोलिया, प्रियंका पंचोलिया, संप्रीत पंचोलिया।

मैंने अभी आप सुन रहे थे नगमा निगार शकील बदायूनी का लिखा हुआ ये नगमा फिल्म गहरा दाग से मोहम्मद रफी और आशा भोसले की आवाज में, जिसकी मौसीकार थे रवि। हाजिर इस प्रोग्राम की अगली पेशकश लता मंगेशकर की आवाज में, जिसको सुनना चाहा है पुरानी बागपत से इलियास मुस्कान कुरैशी और बेबी बाबा जैद ने, और सुनने के ख्वाहिशमंद हैं अनिल जैन संयम जैन मेरठ से। सुनना चाहते हैं गजन एले नवदीप येले अमोल एंड नवदीप येले, सुभाष योगी राजू मिगलानी, और सुनने के ख्वाहिशमंद हैं बब्बू डब्बू हांसी से, और सुनना चाहते हैं शरफुद्दीन अंसारी, फातिमा खातून अंसारी, सुरेश रमेश साहू और रियासत हुसैन सिद्दीकी ने, नजमा बेगम सिद्दीकी रियाज रिफाकत सुनना चाहते हैं उत्तराखंड से, और बसंत सिंह चंद, राजकुमार, कुलदीप गांधी, अली कड़ वली सुनना चाहते हैं, जयवीर सिंह ठाकुर, अनिल वर्मा सुनने के ख्वाहिशमंद हैं हरियाणा से, और शाहिद अली, इफ्फत फारूकी, हिफ्जा अली सुनना चाहते हैं ताम्बरम चेन्नई से, और चंपालाल दुबे अनंत और दर्शित सुनना चाहते हैं भोपाल से, और सुनने के ख्वाहिशमंद हैं शालिया डावर, हलीमा डावर और जिक्रा डावर मध्य प्रदेश से। खंडवा सुनना चाहते हैं शेख सईद राही और अनस। अमरावती से श्याम कीते, वंदना कीते, कार्तिक कीते सुनना चाहते हैं, और सुनने के ख्वाहिशमंद हैं अहमद फुलवाले, इकबाल अहमद फुलवाले, करजत मुंबई से। जफर मौजूम शेख, तलक तबस्सुम शेख, बेबी अलीजबा शेख, रघुवीर नगर नई दिल्ली से सुनना चाहते हैं, अब्दुल हक डावर और जिया उल हक डावर सुनना चाहते हैं खंडवा से, और सुनने के ख्वाहिशमंद हैं पंदार कावड़ा से अनिल उषा बुरांदे, अनुश्री धनश्री बुरांदे।

कुमार और सुना चाहा था सेक्टर 5 जोधपुर राजस्थान से रमेश चंद्र चौहान, मोहिनी चौहान और कल्पित चौहान ने। उदयपुर से सुनने के ख्वाहिशमंद थे बाबू भाई और भारती देवी। हाजिर इस प्रोग्राम की अगली पेशकश आशा भोसले और महेंद्र कपूर की आवाज में, जिसको सुनना चाहा है मॉडल कंडाल से सुधीर नूतन, संदीप गुगलानी, जग्गी दुआ ने। और सुनने के ख्वाहिशमंद हैं शास्त्री नगर बीर शहर से किशन सबकाल, विशाल सबकाल। और सुनना चाहते हैं वहीद रुमानी, मोहम्मद फसी, मोहम्मद समीर, निजामाबाद तेलंगाना से। सुनना चाहते हैं अनंत भगत, अरुणा भगत मुस्तानपुरा से। और उत्तम कुमार भगत, श्वेता भगत, किशिता छुपाकुर झारखंड से सुनना चाहते हैं। और बेगम सोनम शेख, मारियायत शेख, मोहम्मद अरीफ शेख मुंबई से सुनना चाहते हैं। निशा सलमानी बेबी आलिया और निसार सलमानी धनोरी तेलीवाला से सुनने के ख्वाहिशमंद हैं। और गंगाधर सावणकर, विजय लक्ष्मी सावणकर कुंडलवाड़ी से सुनना चाहते हैं। भारत भूषण और अंजु श्रीवास्तव बेंगलुरु से सुनने के ख्वाहिशमंद हैं। और सुनना चाहते हैं मुनव्वर लल्ला परिजाद, नसरीन मिर्जा और अरबाज शहबाज गंजलवाड़ा से। नरेश मल्होत्रा नीटू, कोयल मल्होत्रा और नानक चंद मल्होत्रा पानीपत से सुनने के ख्वाहिशमंद हैं। सिद्धार्थ गोंदा ने, अर्चनी तई गोंदा ने, प्रणय प्रसिद्धि और हिरमन शिंदे अमरावती से सुनने चाहते हैं। जगमोहन सिंह प्रजापत, अरुण चुन भारती और भुवनेश्वरी देवी बागपत से सुनने के ख्वाहिशमंद हैं। सुनना चाहते हैं दवानगर दुर्ग से आरसी कांबड़े, करुणा और विपुल कांबड़े। फैम मंसूरी, फातिमा मंसूरी बांदा से सुनने के ख्वाहिशमंद हैं। और सुनना चाहते हैं हजर अलवी और इरशाद अहमद अलवी और सुहाना बेगम अलवी नई दिल्ली से। पवन गौड़, सुयद तन्मय पूर्वी गौड़, सुयद शशीर गौड़ कासगंज से सुनना चाहते हैं। और ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही लक्सर हरिद्वार से सुनना चाहते हैं।

प्रोग्राम का 136वां नशरिया होगा। ये प्रोग्राम आकाशवाणी और दूरदर्शन के तमाम नेटवर्क, एआईआर न्यूज की वेबसाइट और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी नशर होगा। इसे एआईआर न्यूज, डीडी न्यूज, वजीर आजम के दफ्तर, इत्तला और नशरियात की वजारत के यूट्यूब चैनलों पर बराह रास्त सुना जा सकेगा। हिंदी नशरिए के फौरन बाद आकाशवाणी से इस प्रोग्राम को इलाकाई जुबानों में नशर किया जाएगा। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू का रोमानिया का सरकारी दौरा मुकम्मल हो गया। वो आज तीसरे पहर नई दिल्ली के लिए रवाना हो गई। इससे कल दिन में सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने भारतीय बिरादरी के अरकान के साथ बातचीत की। बुखारेस्ट में भारतीय बिरादरी के लिए मुनक्किदा एक इस्तकबालिया से खिताब करते हुए सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने रोमानिया में भारतीय बिरादरी के ताउन के कहते हुए सताइश की और दोनों मुल्कों के दरमियान बढ़ती शराकतदारी के अहम सुतून है। अपने दौरे के दौरान सदर जमहूरिया रोमानिया के मनसब के साथ वसी मुलाकात किए। इनका मकसद तजारत, सरमाएकारी, दिफा, डिजिटल टेक्नोलॉजी, तालीम, काबिल तजदीद तवानाई, सकाफत के शोबों में वाहमी ताउन को मुस्तहकम करना था। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने रोमानिया के वजीर आजम और पार्लियामानी लीडरों से भी मुलाकात की। नीज भारत रोमानिया कारोबारी फोरम से खिताब किया। उन्होंने अननोन सोल्जर के मकबरे पर खिराज अकीदत पेश किया। उन्हें इक्तिसादी मुतालियात की बुखारेस्ट यूनिवर्सिटी के जरिए डॉक्टरेट की आजादी डिग्री से नवाजा गया। ये एजाज उन्हें अवामी खिदमत और भारत रोमानिया ताल्लुकात में उनकी खिदमत के मद्देनजर दिया गया। रोमानिया सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू के तीन रोजा सरकारी दौरे का आखिरी मरहला था। तीन मुल्कों के इस दौरे में मालडोवा और शुमाली मकदूनिया का दौरा भी शामिल था। उत्तर प्रदेश का कदीमी बौद्ध मकाम सारनाथ यूनेस्को के आलमी मीरास की फहरिस्त में शामिल हो गया है। आज जनूबी कोरिया के बोसान में आलमी मीरास से मुतालिक कमेटी के 48वें इजलास के दौरान इसे बाजाब्ता तौर पर शामिल किया गया। आलमी मीरास की इस सरकर्दा फहरिस्त में भारत की 45वीं इमलाक है। नायब सदर जमहूरिया सीपी राधाकृष्णन और वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने सारनाथ को आलमी मीरास की फहरिस्त में शामिल किए जाने पर मसर्रत का इजहार किया है और इसे हर भारतीय के लिए फख्र का एक लम्हा करार दिया। नायब सदर ने कहा कि सारनाथ अमन, दानिशमंदी और हमदर्दी की एक लाजवाल अलामत रहा है जिससे भारत का रूहानी और फलसफियाना दायमी विरसे की अक्कासी होती है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा कि इसे फहरिस्त में शामिल किया जाना मुल्क की तहजीबी और रूहानी विरासत का जश्न है। सकाफत सियाहत के वजीर गजेंद्र सिंह शेखावत ने इसे भारतीय सकाफती विरासत के लिए एक अहम लम्हा करार दिया। ओडिशा के पवित्र शहर पुरी के ग्राउंड रोड पर भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र, देवी सुभद्रा, सोना बेशा यानी सोने से तैयार मुलबूसात के साथ रथ पर सवार देखे जा सकते हैं। रिवायती खूबसूरत जेवरात से आरस्त इन देवी देवताओं के दर्शन के लिए पूरे मुल्क और बैरून मुल्क से बड़ी तादाद में अकीदतन मौजूद हैं। भारतीय मौसमियात महकमे आईएमडी ने मध्य प्रदेश और उड़ीसा में कल इंतहाई शदीद बारिश के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। आइंदा दो दिन के दौरान छत्तीसगढ़, गुजरात, कोंकण और गोवा में भी शदीद से बहुत शदीद बारिश का इम्कान है। आईएमडी ने इस माह की 27 तारीख तक अंडमान और निकोबार जजायर, आंध्र प्रदेश, गंगा के तराई वाले मगरबी बंगाल, शुमाली अंदरूनी कर्नाटक, तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में भी गरज चमक के साथ छींटे पड़ने, तेज हवाएं चलने की पेशगोई की है। वर्ल्ड के क्रिकेट में हारे में तीन मुल्कों की सीरीज के दूसरे T20 बैन अवी मैच में भारत ने मेजबान जिम्बाब्वे को 90 रन से करारी शिकस्त दी। भारत ने जिम्बाब्वे को 220 रन का बड़ा निशाना दिया था लेकिन उसकी पूरी टीम 18वें ओवर में महज 129 रन पर आउट हो गई। भारत के बल्लेबाज ऑलराउंडर अभिषेक शर्मा ने शानदार खेल का मुजाहरे करते तीन विकेट हासिल किए। अपना पहला मैच खेल रहे यश ठाकुर और प्रिंस यादव ने दो दो विकेट लिए। इससे कबल पहले बल्लेबाजी करते भारत ने मुकर्रा 20 ओवर्स में 5 विकेट पर 219 रन बनाए थे। जीत के साथ भारतीय टीम ने तीन मैचों की सीरीज 2-0 से जीत ली है। भारत ने T20 के नए कप्तान सुरेश अय्यर की कप्तानी में पहली सीरीज जीती है। आखिर में इस बुलेटिन की खास खबरें एक बार फिर। मरकजी वजीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है। सीजेपी ने एहतियात खत्म कर दिया क्योंकि नई दिल्ली में मरकजी वजरा जेपी नड्डा, डॉक्टर जितेंद्र सिंह के साथ मुलाकात के बाद उनके मुतालबात को हुकूमत ने मंजूर कर लिया है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी कल दिन में आकाशवाणी पर मन की बात प्रोग्राम में अपने ख्याल के इजहार करेंगे। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने मालदोवा, शिवाली

सुनने के ख्वाहिशमंद हैं और सुनना चाहते हैं। सुरेंद्र संधु, अनिता संधु, रितेश संधु, कोलम रोड, हरगोविंद नगर, नवा शहर से।

सुनिए, अभी आप सुन रहे थे टैक्सी ड्राइवर फिल्म नगमा तरत महमूद की आवाज में, जिसके नगमा निगार थी साहिर लुधियानवी और मौसीकार थे सचिन देव बर्मन। हाजिर इस प्रोग्राम के आखिरी पेशकश सुरैया की आवाज में, जिसको सुनना चाहे सुरेश चौरसिया, सरोज चौरसिया ने फरुखाबाद उत्तर प्रदेश से, और सुनना चाहते हैं मुकेश बत्ता, नीलम बत्ता, निहारिका, हार्दिक बत्ता कनेरा मोहल्ला से, और सुनने के ख्वाहिशमंद हैं सादिद अली, रुखसाना खातून साबिर परवाना मधुबनी बिहार से, पूजा वर्मा, दीप्ति वर्मा जेल रोड से सुनने के ख्वाहिशमंद हैं, और सुनना चाहते हैं डॉक्टर सोनम, डॉक्टर अदीबा, चमन पार्क नई दिल्ली से, बिलराम गेट कासगंज से असलम सैवी सुनना चाहते हैं, और सुनने के ख्वाहिशमंद हैं राकेश पटेल, परमिंदर पटेल राजकोट से कासगंज से, बेबी खान और नियाज खान सुनना चाहते हैं, आसमा परवीन, आमना परवीन नई दिल्ली से सुनने के ख्वाहिशमंद हैं।

0: آپ سن رہے تھے طلعت ثریا بیگم کی آواز میں یہ نغمہ شمع فلم سے. اسی کے ساتھ تامل ارشاد پروگرام اب ختم ہوتا ہے. یہ آکاش وانی کی اردو سروس ہے. پیش ہے پروگرام سرخیوں میں.
1: परीक्षा संचालन में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए सरकार के ठोस कदमों पर चर्चा. इसमें भाग ले रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार अदिति टंडन. कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं मनोज पाठक.
2: नमस्कार, सुर्खियों में कार्यक्रम में आपका स्वागत है. मैं हूं मनोज पाठक और आज इस अंक में हम चर्चा करने वाले हैं राष्ट्रीय प्रतियोगी परीक्षाओं की पवित्रता बनाए रखने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदम. ध्यान देने वाली बात है कि प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में स्पष्ट कहा कि इन परीक्षाओं की शुचिता बनाए रखने के लिए सरकार ने कई कदम उठाए हैं और आने वाले दिनों में इसे अमली ढांचा पहनाने के लिए विधि सम्मत उपाय भी किए जाएंगे. यानी संभव है आने वाले दिनों में हम एक नया कानून इसकी शुचिता बनाए रखने के लिए अस्तित्व में आता हुआ दिखे. इस विषय पर चर्चा के लिए हमने आमंत्रित किया है स्टूडियो में राजनीतिक मामलों की वरिष्ठ विश्लेषक अदिति टंडन जी को. अदिति जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है.
3: धन्यवाद.
2: सबसे पहले तो हम यही समझना चाहेंगे कि जो राष्ट्रीय प्रतियोगी परीक्षाएं हुआ करती हैं उसमें कहीं में हमने देखा कि कुछ लापरवाहियां रही या उचित कदमों में कहीं तालमेल का अभाव दिखा और प्रश्न पत्र लीक हो गए. इसका अंजाम अच्छा नहीं निकला और अंततः सरकार ने कड़े कदम उठाने के आश्वासन दिए हैं. किन रूप में दिख रही इन्हें?
3: देखिए, जैसा कि आपने कहा खुद ही अपने रिमार्क्स में कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जामिनेशंस हैं और इवन राज्य के स्तर पर जो एग्जामिनेशंस हैं, ऐसा नहीं है कि वो आज के लीक हो रहे हैं. सिस्टम में लीकेज ऑफ एग्जामिनेशन पेपर्स होते रहे हैं, बहुत सारे हुए हैं हर स्तर पर, राज्य के स्तर पर, केंद्र के स्तर पर हुए हैं. और सिस्टम्स को इम्प्रूव करने की जो कवायद है ये बहुत सालों से चल रही है. मैं खुद ही बहुत पहले एजुकेशन मिनिस्ट्री पर लिखा करती थी, तब से ये कोशिश चल रही है. मुझे आज भी याद है कि AIEEE का एग्जाम लीक हुआ था 2011 में, जिसके बाद सबसे पहले एक संजीदा मसौदा तैयार करने की बात हुई थी कि किस तरीके से आप अपने एग्जामिनेशन सिस्टम को फुल प्रूफ बना सकते हैं. तो ये जो चैलेंज है मनोज जी, हर सरकार के टाइम पर आया है और हर सरकार ने अपने तरीके से इसको प्लग करने की कोशिश की है. पर हम सब जानते हैं कि एक ऑर्गेनाइज्ड माफिया है जो इससे लाभान्वित होता है और इंडिविजुअल्स हैं जो बहुत वेल एंट्रेंच हो चुके हैं सिस्टम में. जो लोग एजुकेशन को फॉलो कर रहे हैं, पेपर लीक के डायनामिक्स को समझते हैं, वो ये जानते हैं कि ये कोई मामूली अपराध नहीं है. इसके जो तार हैं बहुत दूर तक जुड़े हुए हैं. और एक बहुत महत्वपूर्ण घटना जो कल मैंने देखी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के 47 ऑफिशियल्स को सैक किया गया है. और ये भी वक्तव्य आया है सरकारी सोर्सेज के हवाले से कि उनमें से बहुत लोगों पर अब मुकदमा भी चलने वाला है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि ये जो लेटेस्ट नीट यूजी जो मेडिकल अंडर ग्रेजुएट MBBS एग्जाम का पेपर लीक हुआ था, May 3 को पेपर कैंसिल हुआ था, उसमें ऑब्वियस सी बात है कि ना सिर्फ ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल गैंग्स इन्वॉल्व है, अंदर के भी लोग कुछ इन्वॉल्व हैं. तो उसके लिए एक इस सिस्टम में ट्रस्ट को रीबिल्ड करने के लिए ये एक बहुत महत्वपूर्ण कदम कल उठाया गया है. और आपने सही कहा कि प्रधानमंत्री ने दो बहुत इंपॉर्टेंट बातें अपने वक्तव्य में कही हैं सिस्टम को फुल प्रूफ बनाने के लिए. एक तो उन्होंने ये आश्वासन दिया है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बनाए जाएंगे. फास्ट ट्रैक कोर्ट्स ऐसा नहीं कि देश में है नहीं, लेकिन जो प्रधानमंत्री का मतलब है वो ये है कि डेडिकेटेड फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बनाए जाएंगे जो सिर्फ इस लॉ के तहत जो केसेस दर्ज होंगे उनको डे टू डे बेसिस पर सुनने के बाद 3 महीने में उनका ट्रायल खत्म करेंगे, चार्जशीट फाइल होने के बाद. और हम और आप आज बात कर रहे हैं, बल्कि कुछ ही घंटों पहले जो बिल का मसौदा है, जो बिल प्रधानमंत्री ने जिक्र किया था अपने वक्तव्य में परसों रात को, जब उन्होंने एक वीडियो सेल्फी बना के देश के युवाओं से संपर्क करने की कोशिश की थी, उसमें उन्होंने कहा था कि हम कैबिनेट में एक बिल लेके आने वाले हैं. जो पुराना बिल 2024 में सरकार ने पास किया है उसी को इम्प्रूव किया गया है और उसमें स्ट्रिंजेंट प्रोविजंस किए गए हैं. और जो महत्वपूर्ण बात उसमें ऐड की गई है वो ये की गई है कि स्टैट्यूटरी बैकिंग दी जाएगी फास्ट ट्रैक.

0: टैरिफ्स को जो प्रधानमंत्री ने घोषित किया परसों रात को अपने संदेश में, और कल कैबिनेट ने उसको पास कर दिया। आज बिल का मसौदा भी हम सबके सामने आ गया है और पार्लियामेंट में ये बिल मंडे को पेश भी होने जा रहा है।
1: यहाँ पर थोड़ा हम श्रोताओं के हित में समझना चाहेंगे कि ये जो मसौदा बिल आया है उसमें क्या सब बातें रखी गई हैं और कैसे ये आने वाले दिनों में सुधार के कारक बनकर सामने आएंगे।
0: इस बिल का जो नाम है वो है पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मींस एक्ट 2024। मैंने जैसे कहा कि ये नया बिल नहीं है, 2024 का बिल है, उसमें संशोधन लाएगी सरकार। संशोधन के माध्यम से नई पनिशमेंट्स घोषित करेगी और जो नए मसौदा तैयार किया है उसको स्टैट्यूटरी बैकिंग देगी। अब इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात जो है, जो मुझे इम्पोर्टेंट लगती है, वो ये है कि पनिशमेंट बढ़ा दी गई है। जो पुराना बिल था 2024 का, उसमें ये कहा गया था कि जब कोई इंडिविजुअल पेपर लीक के मामले में लिप्त पाया जाएगा तो उसको पनिशमेंट दी जाएगी 3 से 5 वर्ष की, और उस पर जो फाइन होगा वो 10 लाख का होगा। अब उसको बदल के कहा गया है कि मिनिमम पनिशमेंट 5 साल की होगी और जो फाइन होगा वो 10 लाख से बढ़कर 1 करोड़ तक ले गए हैं। और सिमिलरली अगर यही क्राइम ऑर्गेनाइज तरीके से कोई कर रहा है, ऑर्गेनाइज्ड नेक्सस इन्वॉल्व है, तो उसके लिए सजा के प्रावधान और भी कड़े किए गए हैं। उस केस में कहा गया है कि मिनिमम पनिशमेंट अब 7 साल होगी और मैक्सिमम जो फाइन होगा वो 10 करोड़ होगा। तो ये मेन इस बिल की प्रावधान है। ये तो हो गया कि आपने पनिशमेंट बढ़ा दी, लेकिन सिर्फ पनिशमेंट बढ़ाने से कुछ नहीं होता। हमें पता है कि केसेस लंबित रहते हैं लंबे लंबे समय तक। उसको ठीक करने के लिए इस बिल में एक इम्पोर्टेंट प्रावधान जो मुझे लगता है वो ये है कि तमाम स्टेट गवर्नमेंट्स और यूनियन टेरिटरीज को ये पावर्स दे दी गई हैं कि वो किसी भी कोर्ट ऑफ सेशंस को स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट घोषित कर सकते हैं इस कानून के तहत दर्ज मामलों को निपटाने के लिए। और ये भी कहा गया है कि जितनी भी प्रोसीडिंग्स इन मामलों में होंगी वो हर दिन होंगी, डे टू डे बेसिस पर चलेगा ट्रायल, और ट्रायल 3 महीने में कंप्लीट होगा फ्रॉम द डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ चार्जशीट। तीसरा जो इम्पोर्टेंट चीज है, उन्होंने ये भी कहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को भी एम्पावर कर दिया गया है कि जब जब ऐसा कोई बड़ा मामला आए नजर में तो इमीडिएटली स्पेशल टास्क फोर्स का गठन करके उस एसटीएफ को ये मैंडेट होगा कि आपने 2 महीने में इन्वेस्टिगेशन पूरी करनी है। अभी क्या हो रहा है ना, सिस्टम में मिसट्रस्ट इसलिए पैदा हो रहा है क्योंकि लंबित बहुत है केस। आप कानून लाकर सिस्टम को परिवर्तित नहीं कर सकते, आपको कानून को अमली जामा पहनाने के लिए जो सिस्टम्स चाहिए वो भी क्रिएट करने पड़ेंगे। मेरे हिसाब से बड़ा चैलेंज जो सरकार के सामने आएगा वो फाइनेंसेस का आएगा।
1: अच्छी बात कही है कि पिछले कानून से किस तरह ये कानून बदला हुआ होगा, अधिक सख्त होगा। यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण ये होता है कि एक मामला शुरू हुआ और आमतौर पर ये मामले दम तोड़ देते जब पुख्ता सबूत नहीं रखे जाते, वहां पर कैसे कहने के उस प्रक्रिया का ध्यान रखा जाएगा, यानी अदालतें बन गई। जैसे अभी यदि हाल का एक मामला लें तो उसमें जिस व्यक्ति को आरोपी ठहराया गया उसके विरुद्ध फिलहाल कोई सबूत नहीं मिलने से वह छूट गया, तो वहां पर क्या हो सकता है, क्या होना चाहिए?
0: इसमें मुझे लगता है कि प्रोसिक्यूशन की बहुत बड़ी भूमिका है कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो अपॉइंट होता है ऐसे केसेस में वो कितना लायक है, वो कितनी अच्छी तरीके से आर्ग्यू कर सकता है मैटर, और जो पुलिस इन्वेस्टिगेशन है वो कितनी क्विकली फॉरेंसिक एविडेंस गैदर कर सकती है, कितनी जल्दी डिजिटल इम्प्रिंट्स को देख सकती है, क्योंकि लीकेजेस तो अब डिजिटल माध्यम से हो रहे हैं। हम सब जानते हैं कि सारा का सारा एग्जाम ऑनलाइन है, तो उससे क्या है, साइबर सिक्योरिटी चैलेंज है। मुझे ऐसा लगता है कि सरकार को ये सोचना होगा कि जो स्पेशल टास्क फोर्स गठित किया जाएगा ऐसे क्राइम्स को इन्वेस्टिगेट करने के लिए, उसमें आपको एक्सपर्ट्स भी कोऑप्ट करने पड़ेंगे। अब ये जो वक्त है, ये जो जमाना है, उसमें कन्वेंशनल पुलिसिंग मेथड से आप क्रिमिनल गैंग्स को नहीं हैंडल कर सकते, आपको बहुत हाई लेवल की एक्सपर्टीज हर सेक्टर में चाहिए।
1: यहाँ पर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि इस दिशा में एनटीए क्या कर रही है और किस रूप में अपने आप को पेशेवर बनाने के लिए पेशेवर लोगों की सलाह लेने की योजना बना रही है।
0: इनफैक्ट परसों हमने देखा कि सरकार ने एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से नए पोस्ट घोषित किए हैं नेशनल टेस्टिंग एजेंसी में। उन्होंने ये कहा है कि नियुक्ति के लिए अब 4 जनरल मैनेजर्स बुलाए जाएंगे। अभी क्या है, अभी जो स्ट्रक्चर है बहुत सेंट्रलाइज्ड है, जैसे सबसे ऊपर एक चेयरमैन है, उसके नीचे सीईओ है, तो लेकिन अब डिसेंट्रलाइज्ड स्ट्रक्चर बनाने की बात हो रही है। इसके साथ ही संघ लोक सेवा आयोग के जो प्रतिभा सेतु पोर्टल के माध्यम से 16 युवा पेशेवरों को भी भर्ती में शामिल किया जाएगा, उनकी भर्ती की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। एनटीए ने एक बयान में यह भी कहा है कि ये उपाय एजेंसी के जो संस्थागत पुनर्निर्माण की दिशा है उसके लिए हेल्प करेंगे।

0: परिणामों को मिलाकर सरकार हर स्तर पर प्रयास कर रही है कि हमारी जो राष्ट्रीय परीक्षाएं हैं या राज्य स्तर की परीक्षाएं हैं उन परीक्षाओं की शुचिता सुनिश्चित की जाए और इसके लिए जिस तरह तकनीक बदल रही है, तकनीक हावी हो रही है, उसके निदान के लिए जो हमारा वैधानिक ढांचा है उसमें वैसे ही दक्ष पेशेवरों की नियुक्ति की जाए। यहाँ पर अदिति जी आपने कहा कि इसे वैधानिक स्वरूप दिया जाएगा, ढांचा तैयार किया जाएगा, किस रूप में परिवर्तन होता देख रही हैं आप वहाँ उस स्तर पर?
1: देखिए, परिवर्तन कितना हो पाएगा वो वक्त बताएगा, लेकिन जो इम्पोर्टेंट और पॉजिटिव सिग्नल इस वक्त है वो ये है कि परिवर्तन की दिशा में सरकार ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। ये जो लड़ाई है मनोज जी, ये बहुत लंबी है और ये जो पेपर लीक का मामला है, ये सिर्फ पेपर लीक का मामला चीटिंग से लिंक करके नहीं आप देख सकते। इसका एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है स्टूडेंट्स के माइंड पे, बिट्रेयल ऑफ ट्रस्ट होता है। आप सब जानते हैं कि मिडिल क्लासेस बच्चा पैदा होते ही पैसा जमा करना शुरू कर देती है कि देश में अच्छे एजुकेशन में या अच्छे कॉलेज में अगर बच्चे की भर्ती करानी है तो उसे अच्छे स्कूल में भेजना है, उसकी एक कॉस्ट है। अच्छी कोचिंग दिलानी है, वो कितनी एक्सपेंसिव है हम सब जानते हैं। उसके बाद कोई गारंटी नहीं है कि बच्चे को सीट मिलेगी। यही वजह होती है कि बच्चों की इमोशनल और साइकोलॉजिकल वल्नरेबिलिटी पर ये ऑर्गेनाइज्ड क्राइम ग्रुप्स फीड करते हैं।
0: थोड़ा इसे और विस्तार देकर बताएं कि सिस्टम में बदलाव किस तरह का और उसका इम्प्लीमेंटेशन किस रूप में?
1: मेरा जो व्यक्तिगत मानना है वो ये है कि एग्जामिनेशन सिस्टम तब फुल प्रूफ हो सकता है जब उसमें ग्रेडिंग हो। ये प्रामाणिक है। आप देखिए कौन कौन से एग्जाम्स, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स हमारे देश में हैं, जिनमें या तो आप बिल्कुल नहीं सुनेंगे कि लीक हुए हैं या बहुत नेग्लिजिबल हुए हैं। जैसे आप यूपीएससी का एग्जाम देखिए, वो कभी क्यों नहीं लीक होता?
0: बिल्कुल,
1: आप उस मसौदे को समझिए।
0: आर्म फोर्स है, उनके
1: आर्म फोर्सेस के लीक नहीं होते। आप और भी समझिए, जब से आपने आईआईटी एंट्रेंस एग्जामिनेशन को ग्रेडेड बना दिया है, जैसे पहले क्या होता था कि एक ही एंट्रेंस एग्जाम होता था AI EEE। मुझे आज भी याद है 2011 में एक बहुत बड़ा पेपर लीक हुआ था जिससे बहुत सारे बच्चे बहुत त्रस्त हुए थे। उसके बाद ये सिस्टम शुरू हुआ कि किस तरीके से एग्जामिनेशन सिस्टम को इम्प्रूव किया जाए। आप जानते हैं पहले JEE मेन कंडक्ट होता है, उसमें एक पर्टिकुलर लेवल के बच्चे जो टॉप 25% आते हैं उनको मौका मिलता है IIT में जाने का। उससे होता क्या है, जब आप ग्रेडेड एग्जामिनेशन सिस्टम बनाते हैं कॉम्पिटिशन के लेवल पे, आप डिसइंसेंटिवाइज करते हैं कि बच्चे पैसा देके पेपर खरीदें। क्यों? क्योंकि पहले लेवल पर आप निकल जाएंगे, कोई गारंटी नहीं है। जब कोई गारंटी नहीं है तो कोई इंसेंटिव नहीं है पैसा देने का, तो आप डिमांड और सप्लाई के साइकिल को तोड़ सकते हैं क्रेडिट सिस्टम में। सिमिलरली यूपीएससी में 3 लेवल्स हैं। सबसे पहले आप जानते हैं कि प्रिलिमिनरीज होते हैं, उसके बाद मेन्स होते हैं, उसके बाद इंटरव्यू होता है। किस किस लेवल पर कोई लीकेज के लिए पैसे देगा? सो ये एक सिंपल इजिली डूएबल एक फॉर्मूला है। जो AI PMT का एग्जाम भी पहले ग्रेडेड होता था, उस वक्त लीकेजेस मुझे लगता है कम होते थे। जब से आपने सिंगल एग्जाम बनाया है, ये जो NEET UG है, आपने जब से इसको सिंगल एग्जाम बनाया, 22 लाख बच्चे बैठते हैं, 500 सिटीज में होता है, जिसको कहते हैं बहुत बड़े स्केल पर ये एग्जाम होता है। 22 लाख बच्चों को एक साथ टेस्ट करना और उनको एक ही विंडो में MBBS की सीट देना, थोड़ा सा मुझे लगता है कि अगर हम ग्रेडेड एग्जाम करेंगे NEET UG को जैसा कि पहले होता था, 2 लेवल्स पर, पहले स्क्रीनिंग और फिर सिलेक्शन, तो शायद ये लीकेजेस का इंटेंसिटी कम होगा। ये प्रामाणिकता से मैं इसलिए कह सकती हूँ क्योंकि मैंने ऑब्जर्व किया।
0: अच्छा, कुछ राज्यों की ओर से इस नीट परीक्षा प्रणाली को ही लेकर विरोध जताए जा रहे हैं, उस दिशा में कुछ सुधार की या एक रूपता लाने की कोई भूमिका बनती नजर आ रही है आपको?
1: बिल्कुल, देखिए तमिलनाडु ने शुरुआत से NEET UG का विरोध किया है। उनका ये कहना था कि 12वीं कक्षा के एग्जामिनेशन के बेसिस पे हमारी स्टेट में एक MBBS की एडमिशन होती थी और वो चलती रहनी चाहिए। मुझे ऐसा लगता है आज की डेट में अगर आप कोई भी एग्जामिनेशन मॉडल स्टडी करेंगे उसमें JEE मेन और JEE एडवांस्ड का मॉडल बहुत अच्छा है। IITs के टॉप डायरेक्टर्स ने मिलकर उसे बनाया है, उसमें बहुत लेवल हुई थी स्टेक होल्डर कंसल्टेशन की, और उसमें 12वीं के रिजल्ट्स का भी एक पोर्शन काउंट होता है। फिर वही मैं कहूंगी कि NEET UG बहुत बार लीक हुआ है, 3 बार तो रिसेंट हिस्ट्री में हुआ है। तमाम मॉडल्स को स्टडी करने के बाद आप ये भी देखिए कि क्या कहीं NEET UG के स्ट्रक्चर को भी चेंज करने की जरूरत तो नहीं है।
0: यानी श्रोताओं, एक आत्मनिरीक्षण की आवश्यकता परीक्षा प्रणाली को है ऐसा लग रहा। बस यहीं पर हम श्रोताओं आपकी ओर से अदिति जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे।
1: धन्यवाद।
2: अब आप सुन रहे थे

0: परीक्षा संचालन में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए सरकार के ठोस कदमों पर चर्चा। इसमें भाग ले रही थी वरिष्ठ पत्रकार अंगेज टंडन। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे मनोज पाठक। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया।
1: अभी आप सुन रहे थे प्रोग्राम सुर्खियों में। यह आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। पेश है प्रोग्राम बज़्म मौसिकी। आइए इस प्रोग्राम के लिए सुनते हैं पंडित यशपाल की आवाज में राग चैनत में ख्याल।

यह आकाशवाणी है। अब आप मोहम्मद आजम खान से आलम खबरें सुनिए। सदर जमहूरियत द्रौपदी मुर्मू ने मालदोवा, शुमाली मकदूनिया, रोमानिया तीन मुल्कों का अपना दौरा मुकम्मल कर लिया है। मुल्क शाम की राजधानी दमिश्क को मशरकी सूबे दारुलजोर से मरबूत करने वाली कौमी शाहरा पर दो बसों के आपस में टकराने के बाद कम अज कम 35 अफराद हलाक और 30 जख्मी हो गए। वजीर आजम नरेन्द्र मोदी आज आकाशवाणी पर मन की बात प्रोग्राम में अपने ख्याल का इजहार करेंगे। उत्तर प्रदेश में सारनाथ के कदीम बौद्ध मजहबी मकाम को यूनेस्को की आलमी सकाफती फहरिस्त में शामिल किया गया है। और क्रिकेट में भारत ने हरारे में दूसरे T20 बैन अवी मैच में मेजबान जिम्बाब्वे को 90 रन से करारी शिकस्त दी। अब खबरें तफसील से। सदर जमहूरियत द्रौपदी मुर्मू का रोमानिया का सरकारी दौरा मुकम्मल हो गया है। इससे कबल कल दिन में सदर जमहूरियत मुर्मू ने भारतीय बिरादरी के अरकान के साथ बातचीत की। बुखारेस्ट में भारतीय बिरादरी के मुनक्कदा एक इस्तकबालिये से खिताब करते हुए सदर जमहूरियत द्रौपदी मुर्मू ने रोमानिया में भारतीय बिरादरी के ताउन की कहते हुए सताइश की कि दोनों मुल्कों के दरमियान बढ़ती हुई शराकतदारी के अहम सुतून है। अपने दौरे के दौरान सदर जमहूरिया ने रोमानिया के अपने हमसब के साथ वसी मुजाकरात किए। इनका मकसद तिजारत, सरमाकारी, दिफा, डिजिटल टेक्नोलॉजी, तालीम, काबिल तजदीद तवानाई, सकाफत के शोबों में बाहमी ताउन को मुस्तहकम करना था। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने रोमानिया के वजीर आजम पार्लियामेंट लीडरों से भी मुलाकात की। इस भारत रोमानिया कारोबारी फोरम से खिताब किया। उन्होंने अननोन सोल्जर्स के मकरे पर खिराज अकीदत पेश किया। उन्हें इक्तिसादी मुतालियात की बुखारेस्ट यूनिवर्सिटी के जरिए डॉक्टरेट की एजाजी डिग्री से नवाजा गया। यह एजाज उन्हें अवामी खिदमत और भारत रोमानिया ताल्लुकात की खिदमत के मद्देनजर दिया गया है। रोमानिया सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू के तीन रोजा सरकारी दौरे का आखिरी मरहल था। तीन मुल्कों के इस दौरे में मालडोवा और शुमाली मकदूनिया का दौरा भी शामिल था। मुल्क शाम की राजधानी दमिश्क के मशरकी सूबे रायरल जोन से मरबूत करने वाली कौमी शाहरा पर दो बसों के आपस में टकराने के बाद कम अज कम 35 अफराद हलाक और मुतअद्दी जख्मी हो गए। मकामी मीडिया ने खबर दी है कि सहराई शाहराओं पर शहरियों की एक बस और दाखिली उमूर की वजारत की एक बस के दरमियान टक्कर में तकरीबन 30 अफराद जख्मी हो गए। इस हादसे की वजह अभी मालूम नहीं हो सकी है। भारत इसराइल ने मुजवजा भारत इसराइल आजाद तजारती समझौते FTA के बारे में दूसरे दौर की बातचीत मुकम्मल कर ली है। इस चार रोजा बातचीत में जो नई दिल्ली में इस महीने की 20 से 23 तारीख तक की गई, दोनों मुल्कों ने मुजवजा माहदे के सभी पहलुओं पर तफसीली तबादला ख्याल किया और मुतवाजिन जामे और बाहमी तौर पर फायदेमंद FTA की जानब पेशरफ्त की। तजारत और सनत की वजारत ने बताया कि बातचीत तामीरी और उम्मीद अफजा रही। वजारत ने भी बताया कि पिछले साल नवंबर में दोनों मुल्कों ने जिन शराइत पर दस्तखत किए थे उनसे मुजाकरात के लिए मुनज्जम फ्रेमवर्क फराहम हो रहा है। वजीर आजम नरेन्द्र मोदी आज दिन में 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात प्रोग्राम मुल्क और बैरून मुल्क के लोगों से अपने ख्याल का इजहार करेंगे। यह महाना रेडियो प्रोग्राम का 136वां नशरिया होगा। यह प्रोग्राम आकाशवाणी और दूरदर्शन के तमाम नेटवर्क, AIN न्यूज की वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी नशर होगा। इसे AIN न्यूज, DD न्यूज, वजीर आजम के दफ्तर, इत्तलात नशरियात की वजारत के YouTube चैनल पर बरारा सुना जा सकेगा। हिंदी नशरिया के फौरन बाद आकाशवाणी से इस प्रोग्राम को इलाकाई जुबानों में नशर किया जाएगा। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। उत्तर प्रदेश का कदीमी बौद्ध मकाम सारनाथ यूनेस्को की आलमी मीरास के फहरिस्त में शामिल हो गया है। कल जनूबी कोरिया के बोसान में आलमी मीरास से मुतालिक कमेटी के 48वें इजलास के दौरान इसे बाजाब्ता तौर पर शामिल किया गया। आलमी मीरास की सरकर्दा फहरिस्त में भारत की 45वीं मिलाक है। नायब सदर जमहूरिया CP राधाकृष्णन और वजीर आजम नरेन्द्र मोदी ने सारनाथ को आलमी मीरास की फहरिस्त में शामिल किए जाने पर मसरत का इजहार किया है और इसे हर भारतीय के लिए फख्र का इकलौता करार दिया है। नायब सदर ने कहा कि सारनाथ अमन, दानिशमंदी और हमदर्दी की एक लाजवाल अलामत रहा है जिससे भारत के रूहानी और फलसफियाना दायमी विरसे की अक्कासी होती है। वजीर आजम नरेन्द्र मोदी ने कहा कि इसे फहरिस्त में शामिल किया जाना

अभी आप सुन रहे थे उस्ताद रईस खान का सितार पर बजाया हुआ राग शंकर बिहाग। इसी के साथ इंस्ट्रूमेंटल मौसीकी का ये प्रोग्राम अब खत्म होता है। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। पेश है प्रोग्राम आखिर शब। आज इस प्रोग्राम के तहत

0: इसकी लगती है।
1: तो हमने तो देखा ना, मेरे सामने ये असाइनमेंट पे काम करता था मैं, ये जर्नलिस्ट वाला काम ही करता था, ये वॉज एन असाइनमेंट कि हाँ ये कैमरा यहाँ गया कि नहीं, ये यूनिट यहाँ गई कि नहीं, वो रिपोर्टर वहां पहुंचा कि नहीं, ये फुटेज आई कि नहीं, ये स्क्रिप्ट आई कि नहीं, ये गेस्ट को बुलाओ वो उसको बस।
0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अपर्णा सिंह।

0: शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान ने शनिवार को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को अपना त्यागपत्र सौंप दिया। श्री प्रधान ने कहा कि पिछले 10 दिनों से छात्रों के विरोध प्रदर्शन के बाद उत्पन्न स्थिति से व्यथित हैं। उन्होंने कहा कि उनके लिए व्यक्तिगत प्रतिष्ठा का विषय नहीं है। श्री प्रधान ने कहा कि जंतर मंतर और पूरे देश में वर्तमान स्थिति का राष्ट्र विरोधी ताकतें लाभ न उठा सके, इसलिए उन्होंने प्रधानमंत्री को त्यागपत्र सौंपने का निर्णय लिया है। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान का 10 साल का सफर सार्वजनिक जीवन और विद्यार्थी कल्याण के प्रति आजीवन समर्पण का प्रमाण है। भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा कि श्री प्रधान ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के सफल कार्यान्वयन और अन्य पहल द्वारा के माध्यम से भारत की शिक्षा व्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इस बीच राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने श्री प्रधान का मंत्रिपरिषद से इस्तीफा तत्काल प्रभाव से मंजूर कर लिया है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी शिक्षा मंत्री होंगे। उपभोक्ता कार्य, खाद्य तथा सार्वजनिक वितरण और नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री श्री जोशी को शिक्षा मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। कांग्रेस जनता पार्टी सीजेपी ने सरकार द्वारा मांगों को स्वीकार किए जाने के बाद आंदोलन तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दिया है। केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा और जितेंद्र सिंह के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की तीसरे दौर की वार्ता के बाद सीजेपी प्रवक्ता आशुतोष रांका ने लोगों से शांतिपूर्वक घर लौटने की अपील की। श्री नड्डा ने कहा कि सरकार ने प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करने की मांग स्वीकार कर ली है। नीट यूजी पेपर लीक के बाद आत्महत्या करने वाले छात्रों के परिवारों को मुआवजा के मुद्दे पर श्री नड्डा ने कहा कि सरकार नियम अनुसार अधिकतम मुआवजा सुनिश्चित करेगी।
1: कंपनसेशन के बारे में सरकार ने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा है, जान किसी बच्चे की जाए और उसके प्रति हम भी सहानुभूति रखते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी अत्यंत सहानुभूति के साथ कहा है कि ऑनरेबल कंपनसेशन अकॉर्डिंग टू द रूल्स एंड रेगुलेशन व्हाटएवर मैक्सिमम विल बी पॉसिबल दैट विल बी गिवन टू देम।
0: परीक्षा सुधारों पर सीजेपी के 5 सूत्री प्रस्ताव पर श्री नड्डा ने कहा कि सरकार इस प्रस्ताव पर गंभीरता से विचार करेगी। सरकार सोमवार को लोकसभा में सार्वजनिक परीक्षाएं अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पेश करेगी। ये विधेयक सदन के सोमवार के कामकाज सूची में शामिल है। इस विधेयक का उद्देश्य सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम अधिनियम 2024 में संशोधन करना है। केंद्रीय मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ये विधेयक पेश करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सवेरे 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश और विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम का 136वां एपिसोड होगा। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के पूरे नेटवर्क, एआईआर न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन एयर मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। सिक्किम में नाथुला मार्ग से कैलाश मानसरोवर यात्रियों का 5वां जत्था माउंट कैलाश और मानसरोवर झील की पवित्र यात्रा पूरी कर गंगटोक सुरक्षित लौट आया है। यात्रा के सफल समापन के उपलक्ष्य में सिक्किम पर्यटन विकास निगम लिमिटेड ने शनिवार को गंगटोक में सम्मान समारोह आयोजित किया। आंध्र प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी विवेक यादव ने बताया कि मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण में 15,22,000 मृत मतदाताओं और 14,43,000 ऐसे मतदाताओं की पहचान की गई है जो स्थायी रूप से दूसरे निर्वाचन क्षेत्रों में चले गए हैं। इसके अलावा 7,37,000 ऐसे मतदाता पाए गए हैं जिनका नाम एक से अधिक जगह दर्ज है। आज जारी प्रेस विज्ञप्ति में मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि 3,71,00,000 मतदाताओं के गणना प्रपत्र प्राप्त हुए हैं जो राज्य के कुल 4,16,00,000 मतदाताओं का 89.22% है। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

तो साथियों, अभी आपने सुना फिल्म खुदा गवाह से कविता कृष्णमूर्ति की आवाज में ये गीत, और आइए अब आपको सुनवाते हैं ये अगला गीत आशा भोसले की।

साथियों, अभी आपने सुना फिल्म मौसम से यह खूबसूरत सा गीत, और गाया था लता मंगेशकर और भूपेंद्र ने। आइए अगली फिल्म से है, फिल्म से गाना सुनते हैं। फिल्म है उत्सव और गायक हैं सुनील वाडकर और अनुराधा पौडवाल।

अभी आपने सुना फिल्म एतबार से इस गीत को गायक भूपेंद्र और लता मंगेशकर। और आइए अब अगला गीत सुनते हैं फिल्म सिलसिला से, गायक अमिताभ बच्चन और लता मंगेशकर।

ये तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं, तुम होती तो कैसा होता, तुम ये कहती तुम वो कहती, तुम इस बात पे हैरा होती तुम उस बात पे कितनी हंसती, तुम होती तो ऐसा होता, तुम होती तो वैसा होता।

ये रात है या तुम्हारी जुल्फें खुली हुई हैं, है चांदनी या तुम्हारी नजरों से मेरी रातें धुली हुई हैं, ये चांद है या तुम्हारे कंगन, सितारे हैं या तुम्हारा आंचल, हवा का झोंका है या तुम्हारे बदन की खुशबू, ये पत्तियों की है सरसराहट कि तुमने चुपके से कुछ कहा है, ये सोचता हूं मैं कब से गुमसुम कि जबकि मुझको भी यह खबर है कि तुम नहीं हो, कहीं नहीं हो।

मजबूरी हालात इधर भी है उधर भी, तबाही की एक रात इधर भी है उधर भी। कहने को बहुत कुछ है मगर किससे कहें हम, कब तक यूं ही खामोश रहें और सहें हम। दिल कहता है दुनिया की हर एक रस्म उठा दें, दीवार जो हम दोनों में है आज गिरा दें। क्यों दिल में सुलगते रहें लोगों को बता दें। हां हमको मोहब्बत है, मोहब्बत है, मोहब्बत। अब दिल में यही बात इधर भी है।

0: ये अगला गीत सुनते हैं फिल्म आंधी से, गायक किशोर कुमार और लता मंगेशकर।
1: और सदी की बात थी,
2: शायद उन दिनों की बात होगी जब ये इमारत अभी उजड़ी नहीं थी।
1: पिछले किसी जन्म की बात ही तो लगती है।
2: एक काम करें, जब तक तुम यहां हो रोज घर पे खाने के लिए तो आया ही करोगी, खाने के बाद घूमने निकल आया करेंगे। कम से कम ये इमारत कुछ दिनों के लिए तो बस जाएगी। तुम्हारी शॉल कहाँ?
1: भूल गई।

0: सुनो आरती, ये जो फूलों की बेलें नजर आती हैं ना, दरअसल ये बेलें नहीं है, अरबी में आयतें लिखी हैं। इसे दिन के वक्त देखना चाहिए, बिल्कुल साफ नजर आती है। दिन के वक्त ये सारा पानी से भरा रहता है। दिन के वक्त जब ये फुहारे
1: कहां आ पाऊंगी मैं दिन में?
0: ये जो चांद है ना, इसे रात में देखना, ये दिन में नहीं निकलता।
1: ये तो रोज निकलता होगा।
0: हाँ, लेकिन बीच में अमावस्या आ जाती है।
2: तो अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गीत सुनहरे, और अब से थोड़ी देर में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार।
3: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अपर्णा सिंह। शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान ने शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना त्याग पत्र सौंप दिया। श्री प्रधान ने कहा कि पिछले 10 दिनों से छात्रों के विरोध प्रदर्शन के बाद उत्पन्न स्थिति से वे व्यथित हैं। उन्होंने कहा कि ये उनके लिए व्यक्तिगत प्रतिष्ठा का विषय नहीं है। श्री प्रधान ने कहा कि जंतर मंतर और पूरे देश में वर्तमान स्थिति का राष्ट्र विरोधी ताकतें लाभ न उठा सके, इसलिए उन्होंने प्रधानमंत्री को त्यागपत्र सौंपने का निर्णय लिया है। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान का 10 साल का सफर सार्वजनिक जीवन और विद्यार्थी कल्याण के प्रति आजीवन समर्पण का प्रमाण है। भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा कि श्री प्रधान ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के सफल कार्यान्वयन और अन्य पहल के माध्यम से भारत की शिक्षा व्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इस बीच राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने श्री प्रधान का मंत्रिपरिषद से इस्तीफा तत्काल प्रभाव से मंजूर कर लिया है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी नए शिक्षा मंत्री होंगे।

0: उपभोक्ता कार्य, खाद्य तथा सार्वजनिक वितरण और नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री श्री जोशी को शिक्षा मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। कांग्रेस जनता पार्टी सीजेपी ने सरकार द्वारा मांगों को स्वीकार किए जाने के बाद आंदोलन तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दिया है। केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा और जितेंद्र सिंह के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की तीसरे दौर की वार्ता के बाद सीजेपी प्रवक्ता आशुतोष रंका ने लोगों से शांतिपूर्वक घर लौटने की अपील की। श्री नड्डा ने कहा कि सरकार ने प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करने की मांग स्वीकार कर ली है। नीट यूजी पेपर लीक के बाद आत्महत्या करने वाले छात्रों के परिवारों को मुआवजे के मुद्दे पर श्री नड्डा ने कहा कि सरकार नियमानुसार अधिकतम मुआवजा सुनिश्चित करेगी।
1: कंपनसेशन के बारे में सरकार ने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा है, जान इस बच्चे की जाए और उसके प्रति हम भी सहानुभूति रखते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी अत्यंत सहानुभूति के साथ कहा है कि ऑनरेबल कंपनसेशन अकॉर्डिंग टू द रूल्स एंड रेगुलेशन वट एवर मैक्सिमम विल बी पॉसिबल दैट विल बी गिवन टू देम।
0: परीक्षा सुधारों पर सीजेपी के 5 सूत्री प्रस्ताव पर श्री नड्डा ने कहा कि सरकार इस प्रस्ताव पर गंभीरता से विचार करेगी। सरकार सोमवार को लोकसभा में सार्वजनिक परीक्षाएं अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पेश करेगी। यह विधेयक सदन के सोमवार के कामकाज सूची में शामिल है। इस विधेयक का उद्देश्य सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम अधिनियम 2024 में संशोधन करना है। केंद्रीय मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ये विधेयक पेश करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सवेरे 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश और विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। यह मासिक रेडियो कार्यक्रम का 136वां एपिसोड होगा। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के पूरे नेटवर्क, एआईआर न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन एयर मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन एमनेस्टी इंटरनेशनल ने पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले कश्मीर में अधिकारियों द्वारा संचार सेवाएं लगातार ठप करने, मनमाने ढंग से लोगों को गिरफ्तार करने और उनकी आवाजाही पर कड़ी पाबंदी लगाने पर गहरी चिंता व्यक्त की है। चीन में ग्वांगडोंग प्रांत में शक्तिशाली तूफान नोल के तट के समीप पहुंचने पर शनिवार शाम 4 बजे तक 3,40,000 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। इसकी तीव्रता सामान्य से लेकर भीषण हो सकती है। सिक्किम में नाथुला मार्ग से कैलाश मानसरोवर यात्रियों का 5वां जत्था माउंट कैलाश और मानसरोवर झील की पवित्र यात्रा पूरी कर गैंगटोक सुरक्षित लौट आया है। यात्रा के सफल समापन के उपलक्ष्य में सिक्किम पर्यटन विकास निगम लिमिटेड ने शनिवार को गैंगटोक में सम्मान समारोह आयोजित किया। दिल्ली में मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर के तहत गणना प्रपत्रों के डिजिटाइजेशन का काम 46 लाख का आंकड़ा पार कर गया। घर घर जाकर फॉर्म वितरण का काम भी लगभग पूरा हो गया है और तकरीबन सभी मतदाताओं को फॉर्म मिल गए हैं। हरारे में दूसरे T20 क्रिकेट मैच में भारत ने जिम्बाब्वे को 90 रन से हरा दिया है। जीत के लिए 220 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए जिम्बाब्वे की टीम 18 ओवर में 129 रन पर सिमट गई। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय हरप्रीत कौर। Union Education Minister Dharmendra Pradhan has resigned and tendered his resignation to Prime Minister Narendra Modi. In a social media post, Mr. Pradhan said that he was pained by the prevailing situation following students' protest during the past 10 days, saying that it is not a matter of prestige for him. He said he had taken into account the situation at Jantar Mantar in New Delhi as well as the situation across the country. Mr. Pradhan also expressed his gratitude to the Prime Minister for his guidance, trust and constant support. He said that service to the nation is the highest priority of his life and he will remain forever dedicated to it. Mr. Pradhan said from day one he took full responsibility and never turned away from the situation. He said the NEET UG results declared on July 16 were satisfactory, with many meritorious students from underprivileged backgrounds achieving success. He also said, however, even during this time, individuals holding responsible positions attempted to create obstacles and misled students, calling it an act.

0: तो अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गीत बहार, और अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अपर्णा सिंह। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना त्याग पत्र सौंप दिया। श्री प्रधान ने कहा कि पिछले 10 दिनों से छात्रों के विरोध प्रदर्शन के बाद उत्पन्न स्थिति से वे व्यथित हैं। उन्होंने कहा कि उनके लिए व्यक्तिगत प्रतिष्ठा का विषय नहीं है। श्री प्रधान ने कहा कि जंतर मंतर और पूरे देश में वर्तमान स्थिति का राष्ट्र विरोधी ताकतें लाभ न उठा सके, इसलिए उन्होंने प्रधानमंत्री को त्यागपत्र सौंपने का निर्णय लिया है। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का 10 साल का सफर सार्वजनिक जीवन और विद्यार्थी कल्याण के प्रति आजीवन समर्पण का प्रमाण है। भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा कि श्री प्रधान ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के सफल कार्यान्वयन और अन्य पहल के माध्यम से भारत की शिक्षा व्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इस बीच राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने श्री प्रधान का मंत्रिपरिषद से इस्तीफा तत्काल प्रभाव से मंजूर कर लिया है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी नए शिक्षा मंत्री होंगे। उपभोक्ता कार्य, खाद्य तथा सार्वजनिक वितरण और नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री श्री जोशी को शिक्षा मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। कांग्रेस जनता पार्टी सीजेपी ने सरकार द्वारा मांगों को स्वीकार किए जाने के बाद आंदोलन तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दिया है। केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा और जितेंद्र सिंह के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की तीसरे दौर की वार्ता के बाद सीजेपी प्रवक्ता आशुतोष रांका ने लोगों से शांतिपूर्वक घर लौटने की अपील की। श्री नड्डा ने कहा कि सरकार ने प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करने की मांग स्वीकार कर ली है। नीट यूजी पेपर लीक के बाद आत्महत्या करने वाले छात्रों के परिवारों को मुआवजे के मुद्दे पर श्री नड्डा ने कहा कि सरकार नियम अनुसार अधिकतम मुआवजा सुनिश्चित करेगी।

0: माननीय सरकार ने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा है, जान किसी बच्चे की जाए और उसके प्रति हम भी सहानुभूति रखें। प्रधानमंत्री मोदी जी अत्यंत सहानुभूति के साथ कहा है कि ऑनरेबल कंपनसेशन अकॉर्डिंग टू द रूल्स एंड रेगुलेशन वट एवर मैक्सिमम विल बी पॉसिबल दैट विल बी गिवन टू देम।
1: परीक्षा सुधारों पर सीजीपी के 5 सूत्री प्रस्ताव पर श्री नड्डा ने कहा कि सरकार इस प्रस्ताव पर गंभीरता से विचार करेगी। सरकार सोमवार को लोकसभा में सार्वजनिक परीक्षाएं अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पेश करेगी। ये विधेयक सदन के सोमवार के कामकाज सूची में शामिल हैं। इस विधेयक का उद्देश्य सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम अधिनियम 2024 में संशोधन करना है। केंद्रीय मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ये विधेयक पेश करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सवेरे 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश और विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। यह मासिक रेडियो कार्यक्रम का 136वां एपिसोड होगा। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के पूरे नेटवर्क, एआईआर न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन एयर मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। सिक्किम में नाथुला मार्ग से कैलाश मानसरोवर यात्रियों का 5वां जत्था माउंट कैलाश और मानसरोवर झील की पवित्र यात्रा पूरी कर गैंगटोक सुरक्षित लौट आया है। इस यात्रा के सफल समापन के उपलक्ष्य में सिक्किम पर्यटन विकास निगम लिमिटेड ने शनिवार को गैंगटोक में सम्मान समारोह आयोजित किया। उत्तर प्रदेश के सारनाथ को यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल किए जाने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए इसे हर भारतीय के लिए गर्व का क्षण बताया है। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन एमनेस्टी इंटरनेशनल ने पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले कश्मीर में अधिकारियों द्वारा संचार सेवाएं लगातार ठप करने, मनमाने ढंग से लोगों को गिरफ्तार करने और उनकी आवाजाही पर कड़ी पाबंदी लगाने पर गहरी चिंता व्यक्त की है। चीन में ग्वांगडोंग प्रांत में शक्तिशाली तूफान नोल के तट के समीप पहुंचने पर आज शाम 4 बजे तक 3,40,000 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। हरारे में दूसरे T20 क्रिकेट मैच में भारत ने जिम्बाब्वे को 90 रन से हरा दिया है। जीत के लिए 220 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए जिम्बाब्वे की टीम 18वें ओवर में 129 रनों पर सिमट गई। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: श्रोताओं, आकाशवाणी दिल्ली के AIR लाइव न्यूज 24/7 चैनल पर अभी आप सुन रहे थे गीत और गजल का कार्यक्रम। सुबह के 4 बजने को है, आइए अब सुनते हैं भक्ति संगीत पर आधारित कार्यक्रम अर्चना।
1: प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम अर्चना।

ऋषि व पुरेश सुप्रभातम सुनिए। रचना ज्ञानानंद सरस्वती की है। स्वर दिया है पारसाला पुन्नमल ने।

0: खुशी के साथ अर्चना कार्यक्रम संपन्न होता है।
1: श्रोताओं, आकाशवाणी दिल्ली के AIR लाइव न्यूज 24/7 चैनल पर अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत पर आधारित कार्यक्रम अर्चना। ये आकाशवाणी दिल्ली का AIR लाइव न्यूज 24/7 चैनल है। स्टूडियो की घड़ी के मुताबिक वक्त हो चला है 4:20 और 11 सेकेंड और ये वक्त है कार्यक्रम नाद ब्रह्म का। इसके अंतर्गत लीजिए सुनिए SR जानकी रमन की प्रस्तुति।

आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल पर अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम नाद ब्रह्म। इसके अंतर्गत अभी आपने एस आर जानकी रमन की प्रस्तुति सुनी। ये आकाशवाणी दिल्ली का AIR लाइव न्यूज 24/7 चैनल है।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। आज रविवार है, शक संवत 1948 के श्रावण मास की चौथी तिथि, तदनुसार 26 जुलाई 2026। सुबह के 4:53 और 40 सेकेंड हुए हैं। अब हमारे कार्यक्रम आरंभ होते हैं।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स, डीआरएम 810 किलो हर्ट्स पर। श्रोताओं, आइए आपको आगे प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी दे दें।

5:30 पर आप सुन सकते हैं कार्यक्रम स्वर रंजनी, जबकि 6 बजे का वक्त होगा हिंदी में समाचार का और 6:05 पर आप सुनेंगे अंग्रेजी में समाचार।

0: नानक मेर शरीर का एक रचिक रचवाहो जुग जुग पैर बटाई अज्ञानी विजेता है साजुग्रह संतों का धर्म ग्रंथ वाहो त्रित राज तय का जोर ग्रंथ वाहो द्वापुर तय का सत ग्रंथ वाहो काल युग रच अग्न का पूरा ग्रंथ वाहो महला पहला
1: साम कहेश तमर स्वामी सच में अच्छे साथ रहे सबको सच समावे रिक कह रहे आप पूर राम राम देवा में सु नायल प्राच जाय नानक तो मुखन कृपा जुज में जो छली चंद्रावल कान कृष्ण जादम पया पार जात गोपी ले आया वृंदावन में रंग किया काल में वेद थर्मन हुआ ना खुदाई अल पया नील वस्त्र ला कपड़े पहरे तुर पठानी अमल किया चारे वेद हो सचार पढ़े गुरु तीन चार विचार पाव भगत करनी सदाए तो नानक

0: सिमल रुख सराय रात दीर्घ अत मुच ओए जिया भे आस्था जाहिंद्रा से केत फल पिके फुल बक बके कामना वे पत मिठत नीवी नानका गुण चंगे आईया तत सब को निवे आपको पर को निवे ना कोय धरत राजू तो लिए निवे सो गौरा होए अपराधी दूना निवे जो हंता मृगा हे शीश निवाया क्या थी है जारी दया तो सुदे जाए महला पहला
1: पर पुस्तक संध्या वादम शिल्पु जिस भगत समादम मुख जोड़ विमोखन सारम त्रैपाल तिहार विचार गल माला तिलक लाटन दो धोती वस्त्र पाटन जे जानस ब्रह्मण कर्म सब होकर निश्चय कर्म कहो नानक नेह चुत्यावे विन सतगुर वाटन।

0: दया मा संतोख सूत जत गंडी सतवट एहो जने उजी का खैता पांडे घत ना एहो टुटे ना मन लगे ना एहो जले न जाए धन सुमान सुना निका जुगल चले पाए चौकड़ मुल अनाया बह चौकै पाया सिखा कं चढ़ाइया गुरु ब्राह्मण किया ओह मुआ हो झड़ पया बेतगा गया
1: महला पहला लख जोरिया लख जारिया लख कुड़िया लख गा लख लगिया पहना मिया रात दिन सी नाल तग तो पाह हो कत्ती बामन वटिया कोई बकरा रिन खाया सबको अख पाए कोई पुराण छुट्टी अपी फिर पाइए हो नानक तग ना टूटई जे तग होवे जोर महला पहला
0: नाए मने पातू उपजे साला ही सचसूत दरगे अंदर

बोल दे वाहे गुरु एक ओंकार वाहे गुरु जी के फतेह श्री भगवती जी सहाय वार श्री भगवती जी के पात साहिब दसवें प्रथम भगवती सिमरका गुरु नानक ले ते आए फिर अंगद गौर ते अमरदास रामदास होए सहाय अर्जन हर गोविंद नौ सिमरो श्री हर राय श्री हर कृष्ण ते आईया जस डटे सब दुख जाए एक बहादुर सिमरिया कर नौ नडिया बेताए सब थाई होए सहाय दसवें पात सहा श्री गुरु गोबिंद सिंह साहेब जी सब थाई होए सहाय दसा पात साहियां दी जोता।

आप जी दे पावन पवित्र स्थान सच खंड श्री हरमंदर साहिब जी विखे धन धन सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जीओ महाराज आप जी दे हजूर सबद चौंके आनंद साहिब जी की अरदास पुल चुक मुआफ करने सच्चे पातशाह जीओ जिन्ना जिन्ना गुरमुखा प्रेमिया वालों ग्रह प्रसार भेटा किया गया है तिन्ना दी अरदास समूह संगत अते टहलिया दी अरदास सतगुरु जीओ सरबत साध संगत नु अपने दरों करो सिखी सिदक भरोसा नाम दान बगसना शुभ भावनावां पूरिया करनिया आप जी दे हजूर ग्रह प्रसादी देग हाजर है दर प्रवान होवा प्रवान होया प्रसाद संगत विच वरतौण दी आग्या बख्शो सुख होवा नाम चित आवे सिख पढ़दे सुनदे सरबत लाहे बंद होवना नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे।

ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ

0: गौ ब्राह्मण का गला भाओ गोबर तरण न जाई तो टिका तै जप माली धान मिले शाखाई अंतर पूजा पढ़े कते बस नियम तुरका पाई छोड़ी ले पाखंडा नाम ले जहे तरंदा महला पहला
1: मानस खाने करे निवास श्री भगवान तिन गलता तिन कर ब्राह्मण पूरना दो ना पियावे ईसा कूड़ी रास कूड़ा वापार कूड़ बोल करे आहा संतन कड़े राधू नानक कूड़ रहे भरपूर मथे टिका टेर धोती का खाई हाथ श्री जगत का साई नील वस्त्र पहर होवे प्रवान लेस्तान ले पूजे प्राण अपाख्या का कुठा वकरा काना चौके पर किसना जाना देखे चौका कड्डी का ऊपर आई बैठे कुड़िया मत पिटा वे मत पिटा अन्न साडा फिटा तन फिटा फेड़ करे मर जूठे चुली प्रेम कहो नानक सच कहिए सच हो वह सच पाई पौड़ी।